0: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थित में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
3: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से 4 कीट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है। जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी वाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको, वो एक लीफ ऑफर होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
3: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है जिससे उत्पादन घटता है।
0: तो सर, फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
3: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं, और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
0: और इससे बचने का कोई तरीका जिससे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
3: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसिड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
3: बिल्कुल।
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें।
3: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
0: अच्छा।
3: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एक मतलब एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे।
0: जी, तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
3: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है, और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
0: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद आपको भी।
0: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते के बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बावस्टीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें,

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में और आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण है लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है। अगर कोई भी काम हम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसका प्रमाण हमारे पास हो, हमारे पास उसका सर्टिफिकेट हो। और ख़ास तौर से जब आप जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोग इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अगर जैविक खेती करते हैं तो उसका आपके पास प्रमाण हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो। आज इसी विषय में चर्चा करने के लिए यानी कि जैविक व प्राकृतिक खेती में प्रमाणीकरण की क्या महत्ता है और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट BAU सबौर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती में प्रमाणीकरण का क्या महत्व है।
1: जी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया सुरक्षित एवं रसायन मुक्त भोजन की ओर बढ़ रही है। लोग ऐसे फल, सब्जियां, अनाज और मसाले खरीदना चाहते हैं जिनमें रासायनिक अवशेष बिल्कुल भी न हो। भारत सदियों से प्राकृतिक खेती की परंपरा वाला देश है। गोबर, गौमूत्र, हरी खाद, जैव उर्वरक और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से खेती करना हमारी सांस्कृतिक विरासत भी रही है। तो मुख्यतः आज दो प्रमुख प्रणालियां अधिक चर्चा में हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। जैविक खेती जिसमें निर्धारित मानकों के अनुसार रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तथा जो प्राकृतिक खेती है नेचुरल फार्मिंग, जिसमें स्थानीय संसाधनों जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, आशादन तथा प्राकृतिक जैव विविधता पर विशेष बल दिया जाता है। इन दोनों प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना, किसानों की लागत को कम करना, उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है।
0: जी मैम, तो मैम अगर हम प्रमाणीकरण की बात करें तो इसे हम क्या समझते हैं?
1: जी, जैसे कि यदि कोई किसान कहे कि वह जैविक खेती कर रहा है तो उपभोक्ता जो है वो कैसे विश्वास करेगा? यहीं पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। प्रमाणीकरण का सीधा सीधा अर्थ है किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा यह प्रमाणित करना कि किसान निर्धारित जैविक अथवा प्राकृतिक खेती के मानकों का पालन कर रहा है। सरल शब्दों में प्रमाणीकरण किसान और उपभोक्ता के बीच एक विश्वास का प्रमाण है। जिस प्रकार किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र मिलता है, उसी प्रकार जैविक खेती करने वाले किसान को निरीक्षण एवं सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त होता है।
0: जी मैम, तो मैम ये क्यों जरूरी है?
1: जी, आप जानते हैं कि प्रमाणीकरण के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि उपभोक्ता पर सबसे पहला लाभ है कि विश्वास जगता है। तो आज ग्राहक केवल किसान की बात पर विश्वास नहीं करता, उसे प्रमाण भी चाहिए। तो प्रमाण पत्र देखकर वह निश्चिंत होकर उस उत्पाद को खरीद सकता है। फिर बेहतर बाजार मिलने की संभावना, प्रमाणित उत्पादों की मांग सुपरमार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, निर्यात बाजार, होटल उद्योग, अस्पताल, स्कूल, जैविक दुकानों, इन सभी संस्थानों पर लगातार बढ़ रही है। इससे जो किसान भाई हैं उनको मूल्य में भी अधिक प्राप्ति होती है। प्रमाणित जैविक उत्पादों को सामान्य उत्पादों की तुलना से बेहतर मूल्य मिल सकता है। फिर निर्यात की सुविधा मिलती है। विदेशों में अधिकांश खरीदार केवल प्रमाणित जैविक उत्पाद ही स्वीकार करते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। कई सरकारी योजनाओं में प्रमाणित किसानों एवं FPO को प्राथमिकता दी जाती है। फिर आप

0: तो किसान उत्पादक संगठन जो है एफपीओ, उनको भी मजबूती मिलती है। यदि किसी एफपीओ के सभी सदस्य प्रमाणित हो तो सामूहिक विपणन आसान हो जाता है, ब्रांड बनाना सरल हो जाता है और बड़ी कंपनियों से अनुबंध करना भी आसान हो जाता है।
1: जी मैम, मैम इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आप अब हमें ये बताइए कि भारत में प्रमुख प्रमाणीकरण प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं।
0: जी, तो बेसिकली मुख्यतः दो प्रकार की प्रमाणीकरण प्रणालियां जो है वो प्रचलित है। पहला है NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यह भारत सरकार की आधिकारिक प्रणाली है। इसका उपयोग मुख्यतः निर्यात, बड़े व्यापार, प्रोसेसिंग उद्योग के लिए किया जाता है। इससे हम तृतीय पक्ष मतलब थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और दूसरा है PGS, जो कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है। यह छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विकसित प्रणाली है। इसकी विशेषता कम खर्च, समूह आधारित, पारदर्शी, स्थानीय स्तर पर निरीक्षण, किसानों की सहभागिता है। इसमें किसान स्वयं समूह बनाकर एक दूसरे के खेतों का निरीक्षण करते हैं। प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न राज्यों में स्थानीय सत्यापन प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। कई स्थानों पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को भी समूह आधारित सत्यापन एवं विपणन सहायता प्रदान की जाती है।
1: जी मैम, मैम जो हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती करते हैं या जैविक खेती करते हैं, और अगर वो अब चाहते हैं कि अपने इस चीज का उन्हें प्रमाण मिले, तो उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना होगा?
0: जी, थोड़ी सी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जो कि चरणबद्ध तरीके से की जाती है। पहले चरण में किसान का पंजीकरण होता है। किसान व्यक्तिगत रूप से या एफपीओ के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दूसरे चरण में खेत का विवरण, जैसे कि खेत का नक्शा, क्षेत्रफल, फसल विवरण, कौन कौन से किस किस सीजन में कौन से फसल लगाते हैं, पूर्व में उपयोग किए गए रसायनों की जानकारी दी जाती है। तीसरे चरण में, जिसको हम कन्वर्जन पीरियड कहते हैं, रूपांतरण अवधि, इसमें अगर आप पहले से रासायनिक खेती कर रहे हैं तो तुरंत जैविक प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। इसे हम कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। जैसे कि पहला साल C1 कहते हैं, दूसरा C2 कहते हैं, तो लगभग 2 से 3 पूरे C3 एक उत्पाद को या फिर उसको प्रमाण पत्र देने के लिए 3 साल आवश्यक है। तो इसको रूपांतरण, 3 साल तक इसको रूपांतरण अवधि में हम कहेंगे, जिसमें कि किसान जैविक मानकों का पालन करते हैं। चौथे चरण में अभिलेख को संधारण करना है। किसानों को नियमित रूप से रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे कि बीज कहाँ से खरीद रहे हैं, खाद कब डाली, जैविक घोल कब बनाया, सिंचाई कब कब किया, फसल कटाई कब की, बिक्री कहाँ किए, कितने पैसे में किए। और पांचवें चरण में निरीक्षण का समय आता है, जिसमें कि प्रमाणीकरण संस्था या समूह द्वारा खेत का निरीक्षण किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कहीं रासायनिक उर्वरक तो नहीं प्रयोग किए गए हैं, प्रबंधित कीटनाशकों का उपयोग तो नहीं हुआ है, जैविक नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। फिर छठा चरण में प्रयोगशाला परीक्षण, हम लैब में उसका परीक्षण करते हैं। कुछ परिस्थितियों में उत्पाद का भी परीक्षण किया जाता है। फिर सातवें चरण में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें मानकों के पालन के बाद किसान को प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। इसके बाद किसान अपने उत्पाद को प्रमाणित जैविक उत्पाद के रूप में बेच सकता है।
1: तो ये तो बात हो गई मैम प्रक्रिया की, लेकिन कई बार इस प्रक्रिया से गुजरने के दौरान किसान भाई बहनों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, यानी कि सावधानियों की। तो क्या क्या सावधानी जो हमारे किसान भाई बहनों को इस प्रक्रिया से गुजरने के दौरान बरतनी चाहिए?
0: जी, यदि किसान प्रमाणीकरण चाहते हैं तो उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें, प्रतिबंधित कीटनाशकों से बचें, पड़ोसी खेत में रासायनिक बहाव जो है उसको बंद बना करके उसको रोकें, खेत के रिकॉर्ड नियमित रूप से रखें, जैविक बीज या इनपुट का ही उपयोग करें और समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करें।
1: जी मैम, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो प्रमाणीकरण के क्या अवसर हैं?
0: जी, बिहार में प्रमाणीकरण, जैविक प्रमाणीकरण के बहुत सारे अवसर हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मखाना, कतरनी चावल, सब्जियों, मसाले, फल, दलहन, इन सब में आप जैविक प्रमाणीकरण कर सकते हैं। जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। यदि किसान FPO के माध्यम से समूह बनाकर प्रमाणीकरण कराए तो लागत भी कम होगी और विपणन भी आसान होगा, ब्रांड भी विकसित होगा, ऑनलाइन बिक्री भी बढ़ेगी एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच भी संभव होगी।
1: जी मैम, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश तो जैसे कि आज के समय में केवल जैविक खेती करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रमाणीकरण भी उतना ही आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्रमाणीकरण केवल एक प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि किसान की ईमानदारी, गुणवत्ता और उपभोक्ता के विश्वास का प्रतीक है। यदि हम संगठित होकर किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्रमाणीकरण प्राप्त करें तो हमारी उपज को बेहतर पहचान, बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। और याद रखें कि स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ किसान और स्वस्थ समाज का आधार है प्रमाणित जैविक एवं प्राकृतिक खेती। धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम। तो किसान भाई बहनों, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप जितना संभव हो सके धीरे धीरे ही सही पर जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, और अगर आप पहले से इस ओर काम कर रहे हैं तो आप आगे इस बारे में सोचें कि प्रमाण आप अपने कार्य का ले, यानी कि प्रमाणीकरण की ओर बढ़ें। तो मैम ने जिस प्रक्रिया के बारे में बताया और मैम ने जितने विस्तार से बातें बताई, आप उन बातों का ध्यान रखें। और किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि में एक खास विषय हम लेकर आए हैं, अदरक की। जब हम बात करते हैं तो इसकी सुगंध से ही, जी हाँ, हमारा घर, हमारा माहौल काफ़ी खुशबूदार हो जाता है, और जब इसे सब्जियों में या फिर आप किसी भी पकवान में डालते हैं तो वो स्वादिष्ट तो बन ही जाता है। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, अदरक की खेती के बारे में आज हम जानेंगे, और इस विषय को लेकर डॉक्टर विजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अदरक का महत्व और इसकी खेती में जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं।
5: मसाला फसलों में अदरक का महत्वपूर्ण स्थान है। अदरक को पौराणिक ग्रंथों में महौषधि के नाम से सुशोभित इसलिए किया गया है क्योंकि यह अनेक बीमारियों का अचूक दवा है, परंतु बवासीर के रोगियों के लिए जहर का काम करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसाला फसल है जिसकी भूमिगत गांठों का उपयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इस मसाला के गांठों को परकंद कहते हैं। ताजे तथा कच्चे परकंदों को अदरक तथा सूखे परकंदों को सूंठ कहा जाता है। सोंठ मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं के अनेक रोगों की अचूक दवा है। भारत में अदरक की खेती सबसे अधिक केरल राज्य में होती है। अदरक की खेती में कुछ समस्याएं आती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अदरक की खेती से प्रति इकाई भूमि से अन्य फसलों की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक शुद्ध आय प्राप्त होती है, फिर भी इसकी खेती का विस्तार तेजी से नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अदरक उत्पादन में बीज पर बहुत अधिक खर्च होता है। 1 हेक्टेयर अदरक बोने के लिए लगभग 18 से 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। यदि बीज का दाम हम 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर जोड़ें तो लगभग 3 लाख रुपया बीज पर ही खर्च होता है 1 हेक्टेयर में। इतनी बड़ी रकम सभी किसान नहीं खर्च कर सकते हैं तथा जो किसान इसकी खेती करते भी हैं वे बहुत छोटे पैमाने पर। दूसरी समस्या है कि यह 2 फसल अवधि में तैयार होती है, अर्थात इसको तैयार होने में लगभग 8 महीना लग जाता है। तीसरी समस्या है कि इसमें परकंद विकलन रोग का बहुत अधिक प्रकोप होता है, जिसके चलते फसल 85 से 95% तक लगभग नष्ट हो जाती है।
0: इसकी खेती के लिए जलवायु, खेत का चुनाव एवं तैयारी तथा खाद एवं उर्वरकों के बारे में बताएं।
5: अदरक की सफल खेती के लिए गर्म तथा नम जलवायु उपयुक्त होती है। अच्छी उपज के लिए बुआई से अंकुरण तक साधारण वर्षा, पौधों की शाकीय बढ़ाव के समय नियमित एवं अधिक वर्षा तथा फसल खुदाई से 1 माह पहले मौसम सूखा रहना चाहिए। भूमि वैसा होना चाहिए जिसमें उचित जल निकास का प्रबंध हो और उसमें जीवांश युक्त पदार्थ अधिक मात्रा में मौजूद हो तथा मिट्टी बलुई दोमट हो जिसमें कि अदरक की उपज अच्छी हो सके। भारी मिट्टी में परकंदों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। रबी की इसकी खेत की तैयारी के लिए जब रबी की फसल कट जाए उसके बाद अप्रैल माह में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर कल्टीवेटर से 3-4 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी तथा समतल बना लें। यह एक लंबी अवधि की फसल है इसलिए इसको खाद एवं उर्वरक अधिक मात्रा में चाहिए। साधारणतः 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सरी खाद या कंपोस्ट के अलावा नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा खेत जुताई के समय तथा पोटाश की शेष आधी मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 50 से 60 दिन बाद निकाय गुराई के समय दें। बुआई के 80 से 90 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा पौधों के पंक्तियों के दोनों तरफ डालकर मिट्टी चढ़ा दें। फसल अवधि के दौरान 2 बार मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जस्ता, लोहा, बोरन इत्यादि प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। मिट्टी की जांच करा लें ताकि यह हम जान सकें कि इसमें कोई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी तो नहीं है।
0: बुआई का समय, बीज, प्रकंद का साइज और बुआई के विधि के बारे में बताएं।
5: अदरक की खेती से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए सही समय पर बुआई करना अति आवश्यक है। अनुसंधान से यह पाया गया है कि जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां अदरक की बुआई 15 से 31 मई के बीच अवश्य कर दें, परंतु जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां इसकी बुआई वर्षा प्रारंभ होते ही कर दें। अदरक पर हुए अनुसंधान परिणामों से यह सिद्ध हो चुका है कि अदरक का बीज परकंद ऐसी फसल से लेना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष रोग नहीं लगा हो। अधिक पैदावार के लिए हमेशा स्वस्थ बीज परकंद जिसका वजन 18 से 20 ग्राम हो तथा जिसमें 3 से 4 स्वस्थ कलियां हो का चुनाव करें। बीज परकंदों को 3 मिनट तक 0.5% एगालोल या 30 मिनट तक 0.1% सेरेसोन के घोल में डुबोकर उपचारित कर लें। उपचारित बीज परकंदों की बुआई हमेशा कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधा से पौधा की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें।
0: इसके बाद बारी आती है निकाई गुड़ाई, सिंचाई, खुदाई, तो इसके बारे में बताएं।
5: साधारणतः अदरक की फसल में खरपतवार की संख्या एवं बढ़ाव को देखते हुए 2 से 3 निकौनी की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम निकौनी बुआई के 45 दिनों बाद, दूसरी निकौनी 60 दिनों बाद तथा तीसरी निकौनी 100 से 120 दिनों बाद करें। सिंचाई की जहां तक सवाल है तो प्रथम सिंचाई बुआई के 3 से 4 दिन बाद ही कर देनी चाहिए। सामान्यतः अदरक के वानस्पतिक वृद्धि के लिए यदि वर्षा न हो तो 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि खेत में पर्याप्त नमी बना रहे। बरसात के बाद 2-3 सिंचाई करनी पड़ सकती है। जब फसल तैयार हो जाए तो इसकी खुदाई करनी पड़ती है। अदरक की फसल साधारणतः 7 से 8 महीना में तैयार हो जाती है। अदरक के परकंदों से अर्क निकालने के लिए अगाध खुदाई कर सकते हैं। अदरक को बुआई के पाँच से छः माह बाद कच्चा अदरक उपयोग हेतु या बाजार भाव अधिक हो तो खोदा जा सकता है। कच्चे अदरक का भंडारण एवं सोठ बनाने के लिए सदैव फसल पूर्ण परिपक्व हो जाए तभी खुदाई करनी चाहिए। खुदाई के 15 से 20 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।
0: और अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रमुख प्रभेदों, रोगों एवं कीटों के बारे में जानकारी दें।
5: अदरक की बहुत सारी प्रमुख प्रभेदें हैं, जिसमें कि एक नदिया प्रभेद है जो कि यह पश्चिम बंगाल की वैरायटी है। उसी प्रकार एक मरान है, रियो डी जिनेरो, यह बहुत ही मशहूर वैरायटी है। यह ब्राज़ील देश का वैरायटी है, परंतु हमारे यहाँ यह बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है। उसी प्रकार सुपरवा है, सुरुचि है। अब अदरक में कुछ रोग लगते हैं जो कि प्रमुख हैं, मृदुल या प्रकंद विगलन रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकंद सड़ने लगता है, पत्ता झुलस जाता है। दूसरा है पर्ण धर धब्बा रोग, यह भी एक बहुत प्रमुख बीमारी है। तो इन दोनों बीमारियों को रोकने के लिए डाइथेनियम 45 का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करते हैं, और यह छिड़काव 15-20 दिन के अंतराल पर पुनः उसे दोहराते हैं। अदरक में ऐसे कीट का प्रकोप कम होता है, लेकिन इसमें एक है तना छेदक। इसके रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक दवा जो है उसका 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। एक होता है रीफ रोलर, इसके शिशु जिसे कैटरपिलर कहते हैं हरा रंग का होता है। अदरक की पत्तियों को मोड़कर शिशु उसी के भीतर रहता है और भीतरी पत्ती को खाता रहता है। इसका आक्रमण अगस्त से अक्टूबर तक पाया जाता है। इसके रोकथाम के लिए अभी बताए गए कीटनाशी दवा इमामेक्टिन बेंजोएट का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अतः इस प्रकार से अदरक की खेती अगर किया जा सके तो हम भरपूर आय प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अदरक की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और आशा करते हैं आज के इस वार्ता से आप जरूर लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि,
6: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
7: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
6: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
9: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
8: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
10: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
11: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
10: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
12: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
10: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
13: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
10: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
14: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
10: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि 90.8 MHz और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे अनु FM ग्रीन पर। जी हाँ श्रोता, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ कुछ अच्छी बातें होती हैं, हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए ज़रूरी बातें होती हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी बातें होती हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मिट्टी, जी हाँ मिट्टी अगर ना हो तो हम खेती की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे तरह की खेती हैं जैसे कि मशरूम है, उसे हम घर में छांव वाले घर में उगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फसल जो सदियों से हमारे किसान भाई उगा रहे हैं वो धरती पर, वो मिट्टी पर उगा रहे हैं, और परंपरा से ये खेती बाड़ी की रीत चलती आ रही है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम मिट्टी भी अच्छे तरीके से जांचें कि उस मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद है या नहीं, ये हमारे फसलों को पोषक तत्व प्रदान करेगी या नहीं, तभी हमारा जो मेहनत है, जो हम मेहनत उस खेती बाड़ी में उस फसल को उगाने में लगा रहे हैं वो सार्थक होता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हमारे किसान भाई और बहन खेती करें, फसल उत्पादन करें, कुछ बोएं, गेहूं बोएं या आप धान बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, तो आप उससे पहले मिट्टी का जांच ज़रूर कर लें, बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप मिट्टी का जांच ज़रूर करेंगे, इसकी जो महत्व है वो आप ज़रूर जान लेंगे, लेकिन एक तरीका होता है मिट्टी के सैंपल को उठाना धरती पर से, फिर उसको लैब तक ले जाना, तो ये एक नियम है, ये तरीका है, ये एक प्रोसेस है, आपको उससे गुजरना होगा। अगर आप इस तरीके से, आप इस प्रोसेस से मिट्टी को लैब तक ले जाते हो जांच करवाने के लिए, तभी आपको एक सही रिज़ल्ट मिलता है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, और हमारे बीच हैं आज डॉक्टर राज किशोर कुमार, और मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
15: थैंक यू मैडम।
10: सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मैंने बस संक्षिप्त में बताया कि बहुत ज़रूरी होता है कि पोषक तत्व मिले मिट्टी से हमारे फसलों को, तो आप थोड़ा विस्तार में बताएं कि मिट्टी के नमूने जो हम लेते हैं धरती पर से जांच के लिए, उसका क्या उद्देश्य होता है?
13: मैडम, मिट्टी के नमूने प्राप्त करने की विधि और प्रक्रिया उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। मिट्टी के नमूने का विश्लेषण, फसलों के लिए मिट्टी की उर्वरता मूल्यांकन और उर्वरक का सिफारिशों के लिए किया जाता है। बहुत सावधानी से किए गए मिट्टी विश्लेषण के परिणाम भी उतने अच्छे नहीं आते हैं। अतः मृदा परीक्षण की दक्षता, देखभाल और कौशल जिसके साथ मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं उस पर निर्भर करती है। मिट्टी विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रयोगशाला में नहीं बल्कि खेत से प्रारंभ होता है, जहां से नमूने लिए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। इसे देखते हुए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि ऐसे नमूने का चयन करें जो सारे क्षेत्र का एक साथ समान प्रतिनिधित्व करे।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग क्षेत्र के मिट्टी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल जो है वो उगाए जाते हैं। चाहे हमारे बिहार क्षेत्र में अगर यहाँ की मिट्टी अलग है तो यहाँ पे कुछ फसल ऐसे हैं जो उगाए जाते हैं जो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे राज्य में नहीं उगाए जा सकते क्योंकि मिट्टी समान नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे किसान भाई भी ये जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण के लिए क्या विशेष तकनीक है, किन विशेष तकनीक से उन्हें गुजरना होगा।
13: मैडम, मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मृदा हम ये जानना हमको आपको ये बता दें कि मृदा संसाधन प्रबंधन एक अनिवार्य घटक है। एकत्र किए गए प्रत्येक नमूने को क्षेत्र का एक सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रयोगशाला विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की उपयोगिता नमूने की शुद्धता पर निर्भर करती है, इसलिए बड़ी संख्या में नमूने का संग्रह उचित है ताकि उप नमूने द्वारा वांछित आकार का नमूना प्राप्त किया जा सके। सामान्य तौर पर नमूनाकरण प्रत्येक 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक नमूने की दर से किया जाता है। हालांकि 5 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र के लिए कम से कम एक नमूना एकत्र किया जाना ही चाहिए। मृदा सर्वेक्षण कार्य के लिए हम विशेष तरह एक मिट्टी प्रोफाइल प्रतिनिधि से आसपास के क्षेत्र के मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने ये बताया कि तकनीक क्या है, तो हम ये अब जानना चाहते हैं कि चलिए हम मृदा परीक्षण के लिए अपने फील्ड में चले गए, हमें जहाँ से मिट्टी उठानी है, लेकिन इसके लिए ऐसा थोड़ी है कि हम अपने हाथ से खोद लें या खुरपी से खोद लें और ऐसे उठा के लेके चले जाएँ। उसके लिए कुछ सामग्री की भी ज़रूरत होगी जिसके अनुसार हम उसे लैब तक ले जाएँ। तो कौन कौन से सामग्री हम यूज़ कर सकते हैं मृदा परीक्षण के लिए?
13: मैडम, मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले हम कुदाल या मिट्टी भरमा ये जैसे सामग्री यूज करते हैं। जैसे ये मिट्टी भरमा एक ट्यूब भरमा, पोस्ट होल या स्क्रू प्रकार भरमा या कुदाल भी हो सकता है। दूसरा खुरपी, तीसरा कोर नमूना, चौथा नमूना बैग। नमूना बैग यह विशिष्ट प्रकार के कपड़े का बैग होता है। पाँचवा प्लास्टिक की ट्रे या बाल्टी मिट्टी। ये उप नमूना के लिए हम लोग मिश्रण के लिए एक साफ बाल्टी या ट्रे या साफ कपड़ा लेते हैं। उसके बाद मिट्टी का नमूना के लिए सूचना पत्र, इसमें कपड़ों के थैलियों के बांधने के लिए चिन्हों और टैग के लिए पेंसिल से नकल करने की जरूरत पड़ती है।
0: अच्छा, तो ये कुछ तरीके होते हैं। यहाँ पर तरीकों के साथ डॉक्टर साहब ने आपको ये भी बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ आपके पास रहनी चाहिए जब आप मृदा परीक्षण के लिए आप जाते हो। तो इसके बाद डॉक्टर साहब, आपने इकाई की बात कही, तो हम जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण में जो नमूना इकाई है इसका हम कैसे चयन कर सकते हैं?
13: इसके लिए किसी क्षेत्र का एक दृश्य सर्वेक्षण वास्तविक नमूने लेने से पहले होना चाहिए, जिसके अनुसार फील्ड को समान भागों में विभाजित करें और जिनमें से प्रत्येक को अलग से नमूना लिया जाता है। और यदि क्षेत्र की सभी स्थितियां समान हैं तो एक क्षेत्र से एक एकल नमूना इकाई के रूप में माना जाता है। ऐसी इकाई 1 से 2 हेक्टेयर से अधिक होनी नहीं चाहिए और यह एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो किसानों की एक देखरेख में हो, जहां 20 से 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक नमूना एकत्र किया जा सके और उसका संग्रह किया जा सके।
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर लवण जो प्रभावित मिट्टी होती है, अगर हमें उसका नमूना लेना हो तो हम कैसे लें?
13: इसके लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लवण प्रभावित मिट्टी का कारण क्या है, उसका स्रोत की पारगम्यता क्या है, मौसम में वर्षा का क्या स्रोत है, जल जमाव का क्या स्थिति है, जल तालिका की क्या स्थिति है, मृदा प्रबंधन का इतिहास क्या है, फसल की सिंचाई आवृत्ति प्रजातियों और पौधों के कवर और कड़े पैन या सांद्रता की गहराई कितनी है, इसके लिए ये सब पहले चिन्हित करनी चाहिए। उसके बाद लवण प्रभावित मिट्टी को दो तरीकों से नमूना लिया जाता है, जिसका उपयोग जिप्सम की आवश्यकता की निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए नमूनों के एक से चार हेक्टेयर में के स्थानों को दो स्थानों में हटाया जा सकता है। यदि मिट्टी समान रूप से लवण से प्रभावित हो और यदि पैच विशिष्ट हो, मतलब उसका जो पैच बहुत क्षारीय मिट्टी का सब ज़्यादा हो, तो इसके लिए बड़े पैच के लिए अलग से नमूने लिए जाते हैं। और कभी भी अगर लवण की मात्रता ज़्यादा हो तो मिट्टी के विभिन्न गहराइयों जैसे 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 100 सेंटीमीटर तक के मिट्टी की गहराई का नमूने लिया जा सके, जिससे उसकी उचित सांद्रता कितनी है उसका आंकलन हम कर सकते हैं।
0: जी जी, तो डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि हमें हमारे पास एक जानकारी पत्र भी रहना चाहिए जब हम मृदा परीक्षण के लिए जाते हैं फील्ड पर, तो ऐसे में अगर जो कोई हमारे किसान भाई और बहन नमूने की पहचान करना चाहते हैं तो जानकारी पत्र में उन्हें क्या क्या लिखना है?
13: इसके लिए सबसे पहले उसमें जानकारी पत्र के लिए किसान का नाम होना चाहिए, खेत का स्थान होना चाहिए, सर्वेक्षण संख्या होना चाहिए, फिर पिछली फसल उगाई गई उसका डिटेल होना चाहिए, अगले मौसम में क्या वो लगाएंगे उसका आकलन होना चाहिए, संग्रह की तारीख होना चाहिए, नमूनाकर्ता जो मिट्टी का जो कलेक्शन किया उनका नाम होना चाहिए, ये सब इत्यादि जानकारी एक बैग के ऊपर लेवल के रूप में करना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि अप्रमाणिक साइट है जहाँ से असामान्य सेचित दलदला जमीन, पुराना रास्ता, चैनल, पुराने बंड, पेड़ के पास के क्षेत्र, पिछले अगर कंपोस्ट के ढेर हो, अन्य इस तरह के क्षेत्र का कब से कभी नमूना नहीं लेना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, ये तो आपने जान लिया हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों और बहनों की आपको कहाँ से नमूना नहीं लेना है और आपको उसमें क्या क्या जो आपकी जानकारी पत्र है उसमें आपको याद रखने के लिए क्या क्या नोट डाउन करना है वो भी आपने जान लिया। तो डॉक्टर साहब अब बाढ़ आती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों को बताएं कि नमूना इकाई का चयन करने के बाद जो हम सैंपल बनाते हैं उसकी प्रक्रिया कैसे होती है?
13: इसके लिए अलग अलग सैंपलिंग यूनिट दिखाने के लिए सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र का नक्शा तैयार करना पड़ता है। इसमें विभिन्न क्षेत्र को पत्र ए बी सी आदि द्वारा मानचित्र पर निर्देशित किया जाता है। हल परत का एक टुकड़ा जो 1520 चरणों के अंतराल पर काटा जाता है या कवर किए जाने वाले क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। आमतौर पर एक के लिए 10 से 20 स्पॉट लेना चाहिए और क्षेत्र के आधार पर समग्र नमूना लेना चाहिए। मिट्टी का 1 से 2 सेंटीमीटर भी ही लेना चाहिए। नमूना कुदाल के ब्लेड पर एकत्र किया जा सके और एक साफ बाल्टी में दिया जाता है। इसी तरह चिन्हित सभी स्थानों पर नमूने को एकत्र किया जाता है। बाल्टी से मिट्टी को साफ कागज या कपड़े के टुकड़े पर डालें और अच्छी तरह से मिलाएं और मिट्टी के समान रूप से फैलाएं और इसे 4 तिबाहियों में विभाजित करें, 2 और 2 विपरीत को अस्वीकार करें, क्वार्टर और बाकी मिट्टी को फिर से मिलाए लगभग आधे के साथ छोड़ दे, जब तक प्रक्रिया को जुलाए जब तक मिट्टी की आधा किलो बच जाए और इसे इकट्ठा करें और एक साफ कपड़े के साथ थैली में डालें। नमूने के लिए इस्तेमाल किया गया बैग हमेशा साफ होना चाहिए।
0: जी, तो ये तो हुआ कि नमूना इकाई का चयन करने के बाद आप सैंपल कैसे बनाते हैं, पूरी प्रक्रिया डॉक्टर साहब ने आपको बताई। अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से लिख कर इसकी जानकारी दे देंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे हमारा जो मेन पॉइंट है, जो सबसे अहम प्रक्रिया है इसमें, वो है कि मिट्टी तो हम मतलब जिस भी प्रोसेस से जिस भी तरीके से आपने कहा कि हमारे पास ये सामग्री होनी चाहिए मिट्टी परीक्षण के लिए, इसके बाद हमें कौन से जगह की या किस तरह के मिट्टी के नमूने नहीं लेने हैं वो भी आपने बताया, और साथ ही यहाँ पर सैंपल बनाने की प्रक्रिया भी आपने बताई। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इसे लैब भेजेंगे यानी कि प्रयोगशाला भेजेंगे, तो मृदा नमूनों को हम कैसे भेजेंगे अब प्रयोगशाला में?
13: इसके लिए ये किसान द्वारा परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूने भेजने से पहले यह सूचित करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उचित पहचान चिन्ह नमूना बैग के साथ लेबल पर भी मौजूद रहे। अधिकांश जानकारी मुद्रित के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से मिट्टी के नमूने बैग या अमिट स्याही के साथ उन पर प्रेषण सूची के साथ बैग पर संख्या विवरण की तुलना करें। पहचान चिन्ह लगाकर विभिन्न स्थानों की संख्याओं को अलग किया जाना चाहिए। किसान मिट्टी के नमूने सीधे प्रयोगशाला में ले आ सकते हैं तथा नमूनों को फील्ड एक्सटेंशन स्टाफ के माध्यम से प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं। यदि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कर्मचारी नमूने खुद एकत्र करते हैं तो पर्याप्त फील्ड नोट हो सकता है। सभी अज्ञात नमूनों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर नमूने के बारे में विशिष्ट जानकारी हो तो उसको 66 नंबर रजिस्टर पर उसको दर्ज करना चाहिए और उसको प्रत्येक नमूने के एक प्रयोगशाला नंबर भी दिया जाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया श्रोताओं की जो नमूने हैं सीधे आप प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं या फिर नमूनों को फील्ड एक्सटेंशन जो स्टाफ हैं वो उनके द्वारा आप प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से आप प्रयोगशाला तक मिट्टी को पहुंचा सकते हैं, उसके सैंपल को पहुंचा सकते हैं। तो अब यहाँ पर नमूने अगर हम संग्रह कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसके बाद मिट्टी के नमूनों को हम सुखाएं कैसे?
13: इस प्रयोगशाला में जो भी मिट्टी आते हैं उनमें प्राप्त नमी कम होती है हो सकते हैं। मिट्टी को ट्रे या हवा में सुखाया जाता है। सुखाने के दौरान ट्रे को क्रमांकित किया जा सकता है या उसमें प्लास्टिक टैग संलग्न किया जाना चाहिए। इसको एक गर्म हवा कैबिनेट के रेक में रखा जाता है जिसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नहीं अधिक नहीं होना चाहिए तथा आर्द्रता भी इससे 30-60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिट्टी के ओवन में सुखाना चाहिए। मौजूदा अधिकांश पोषक तत्व की उपलब्धता को भी प्रभावित करते इसलिए केवल हवा सुखा इसलिए हमेशा हवा से सुखाने की सिफारिश किया जाना चाहिए। सुखाने के बाद नमूनों को तैयारी कक्ष में ले लिया जाता है जो प्रयोगशाला से अलग मुख्य प्रयोगशाला से अलग होता है। मिट्टी के नमूने को लकड़ी के दराज में कार्डबोर्ड बक्से में इत्यादि में संग्रह किया जाना चाहिए और पीसने के बाद मिट्टी के 2 mm की छलनी के माध्यम से ही छलनी के माध्यम से जमीन के नमूने के केवल एक हिस्से को पारित करना और त्यागना शेष त्रुटिपूर्ण है। कणों के ठीक होने तक दोहराते रहे और पीसते रहे। छलनी को पारित करने के लिए पर्याप्त है और केवल कंकड़ जैविक अवशेष कंक्रीट रहते हैं उसे बाहर कर देना चाहिए। यदि मिट्टी को कि मिट्टी के लिए हमें ट्रेस एलिमेंट जैसे आयरन कॉपर जिंक ये सब का अगर हमें परीक्षण करना है तो इस सब से बने कंटेनरों से में स्टोर करने या उससे पीसने से हमें हमेशा बचना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मृदा जांच बहुत ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी है ये भी हमने आपको शुरू में बताया था कि जो आपके उस मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्व हैं या नहीं जो आपके फसलों को चाहिए, क्योंकि हमारी जो फसल है वो मिट्टी से ही पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगर बंजर ज़मीन होगी तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं फसल की बुआई में वो सही रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई है कि आप कैसे परीक्षण कर सकते हैं, कैसे नमूना उठा सकते हैं मिट्टी का, और इसके साथ ही आप उसको लैब तक कैसे ले जा सकते हैं, कौन से जगह से आपको नमूने नहीं लेने हैं और उसके बाद आप नमूनों को कैसे सुखाएंगे। तो इस तरीके से पूरी जानकारी आप सभी को मिली है 90.8 MHz पर। और हमारे साथ स्टूडियो में इस जानकारी के साथ मौजूद थे डॉक्टर राजकिशोर कुमार जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
13: थैंक यू मैडम।
0: किसान भाइयों, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
15: उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद।
10: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
12: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है, तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
13: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
12: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी ना छोड़े ताकि डूबने या फंसने का खतरा ना हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टी विटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
13: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
12: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो

0: कार्य है उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85% और दोपहर में 60-70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3-7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं, और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है।

कहा, फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें, जल निकासी गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हेम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 cm की दूरी पर 10 से 15 cm ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 cm ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT presents audio book Bansuri, textbook of arts for grade 5.
1: Page number 51. Theatre. The image depicts three children standing on the stage. All three are holding each other's hands and standing in a circle. The spotlight is focusing on them. Page number 52. Dear theatre teacher, this textbook for grade 5 is designed to empower and encourage children to explore theatre as creators, collaborators and performers. The goal is to have the children work independently towards a final play performance. It intends to encourage student-led learning, where children take ownership of the process of performance, from idea generation to final presentation. Your role is to be a facilitator and a supportive guide, helping them stay on track, offering support when needed, and creating a safe, joyful space where they can express freely. Encourage them to make decisions as a team about the script, casting, costumes, sets, and direction. Mistakes are a part of the learning process. Let them experiment, solve problems, and discover the magic of performance on their own. It is suggested that the teacher step in when guidance is needed, but step back to let their confidence grow. This process builds life skills in addition to theatre skills, communication, teamwork, empathy, and leadership. Let us enjoy the journey with our students and celebrate their growth at every stage. Some points to keep in mind. Vidushak, just like given at the top right of the page, is a unique character from traditional Indian theatre. The Sanskrit theatre used this character to instill the scenes with humor and antics. This character continues to be a friend for the children, supporting them with concepts and ideas in theatre, guiding them with information as they proceed from one activity to another. Vidushak speaks about important takeaways and lessons for children. A spacious empty room is to be provided for theatre classes to facilitate free movement. It must be clean and free from obstructions or sharp objects that may cause injury. Start the class with a prayer and a recap of what was done in the previous class. A suggested prayer can be found in the grade 3 textbook. Suggested structure of a class: 5 minutes prayer and recap, 30 minutes class activities, 5 minutes circle time. Page number 53. Assessment. Theatre has always been a positive and enjoyable experience for children. Therefore, just as they enjoy the classes, the assessments must also be fun-filled and not bring in the stress or anxiety normally associated with tests and exams. All assessments are based on activities. Here are some basic pointers to keep in mind during assessment. Competency and skill acquired are the focus. There is no correct or wrong answer where creativity is involved. The final outcome or presentation is not the only benchmark. The effort, thoughts, and process behind it also need to be considered, along with knowledge application, effort and participation, creativity and presentation, teamwork and collaboration. Encourage self-reflection and treat it as feedback for teachers. Last column provided in the rubrics. Create a motivating and supportive environment, especially for those who may be shy or inhibited. Read the section on time allocation and assessments at the beginning of the book for better clarity. Formative assessments, a continuous process that goes on throughout the class duration. No separate test day. Includes 1. Circle time, where children freely share ideas. Teacher makes notes about each child. 2. Rubric provided at the end of the chapter. 3. Teacher's observations. Summative assessments. It is completely activity-based and conducted at the end of the year on a designated day. Question papers and written tests are to be avoided. 1. Activity examples are provided at the end of the book. 2. Grading to be based on rubrics. 3. Include the child's self-reflection in the overall score. Page number 54. At the center of the page, we have our Vidushak welcoming everyone. At the bottom left of the page is a scene from the story of Love Kush where they are tying a horse to the trunk of a tree. At the bottom right corner of the page is a scene from the story of Yam and Nachiketa. Nachiketa has reached the doorstep of Yamraj, who is sitting on his buffalo. Namaste. Suswagatam. Wow, we have already completed 2 years of theatre work and have reached our third year. Now, you are more experienced. So, you will put together all that you have learned to create a play on your own. I definitely think you are capable of doing it. I shall be there with you too at every step to help, support and guide you all the way. Vidushak is at your service. For centuries, we always believed that children have huge potential. They are an important part of our Itihas, Upanishads and Puranas. Do you know about Nachiketa, Dhruv, Love and Kush? They are all of your age. This year is all about you. With your friends, you will create a story, prepare for a play, get your costumes and props, rehearse and perform on your own. Let's begin. Page number 55. Chapter 6. Create a scene. On top left corner of the page is the image of our very own Vidushak. On top right is given the QR code, which can be scanned for more information on this topic. Beside the QR code is an image wherein three students are discussing and preparing for a play. Their thought bubbles are showing different scenes to be played. All of us talk about scenes when we refer to a specific part of a play or a movie. We also say, "What a scene they created!" when something dramatic happens on the road, school or any other place. So, what is this scene? A scene is a part of the play that takes the story forward, happens in a specific place and time, has something interesting or dramatic. So, as Vidushak says, you will be performing a play this year and you will get to create scenes on your own. On the basis of the activities done in grades 3 and 4, you have already learned some parts of it. Here is a list. In case you want to redo some activities in the first list, your teacher will help you do them based on the textbooks of grades 3 and 4. What you have already learnt: role play, building conversation, visualizing a scene entry and exit, adding props and actors to the scene. What you will learn: basic do's and don'ts on the stage, establishing place, establishing time, establishing characters. Page number 56. At the bottom of the page, there are two scenes of stage shows. Children are performing different scenes on the stage while other students are watching them. Let us first look at the basic requirements that you must remember when you are on stage. It helps in making your show more presentable to the audience. Things that you should do on stage. 1. Speak clearly and loudly. This is so that everyone in the audience, including the ones in the last row, can hear you. 2. Stay in character. If you are on stage, you are the character you are playing. This is true even if you are not speaking. Your entry and exit should also be in accordance with your character. 3. Respect your fellow actors. Wait for your turn to speak and support others on stage. Be clear about the position you have to stand in and where you have to walk. This has to be done without affecting others. Things that you should not do on the stage. 1. Do not turn your back to the audience. While facing the audience, always tilt slightly sideways. If you have to walk to a position that is behind, try to avoid speaking when your back is turned. 2. Do not talk backstage. If you are waiting to enter or have just completed your part, sit quietly. Talking or discussing will distract you, the other actors on stage, and the audience. 3. Do not block others. Be aware of where you are standing. Ensure that all actors are visible to the audience. Also check if there is someone in front of you blocking your view of the audience. Page number 57. Vidushak says, it is very important that you remember these do's and don'ts every time you are on stage for any performance that you do in the future. These comprise what is called stage etiquette. These are basic behavioral rules that create a pleasant experience for the actors and the audience. With this in mind, let us now look at how you can build a scene. The basic requirement of a scene is to communicate the answers of the following questions to the audience. Scene: where is it happening? When is it happening? Who are the people? The audience would have these questions while watching a play. Let us work on how we can answer them so that the audience can understand the story clearly. 1. Where? Establishing the place. The easiest way is to arrange your set and props in a way that depicts the location. For example, some chairs and a center table would represent a house. Tables with files, papers or laptops on it would represent an office, and so on. Costumes also add to it. An office will have formal clothes, while a park will have casual clothes. What will you do if you cannot bring all the props? The actors and their behavior will have to represent it. Here are some examples to help you understand. Page number 58. At the bottom of the page, three students are depicting a scene of a vegetable market. They all have baskets with different kinds of fruits and vegetables in them. A vegetable market. You will not be able to bring big carts and shops on the stage. So the best way is to have actors, that is your friends, sit with mats and baskets and call out names and rates of vegetables and fruits. You can also add some more actors who are buying from them and paying money. Depending on your team, you can add more people like ice cream vendor, balloon seller, etc. Activity 6.1. Guess where? Instructions: make groups of 6 to 7 members each. Each group is given a different place. You have to depict that place with acting and props available in the classroom. Remember object improvisation, where you used one object to show different things? Use it here. You can make your school bag into a vegetable sack. Or use pencils to show beans and ladies' fingers. The place given to one group is not revealed to others. When one group performs, the others guess the place and discuss how it could have been better. Basic. Familiar places like railway station, bus stand, park, office, etc. can be acted out. You can use acting, simple costume and speech to depict the place. Page number 59. Advanced. The same process has to be repeated, but this time you have to do it without speaking. You can use body language, expressions, and props. Unfamiliar places like forest, ocean, etc. can be given to build imagination. On the right side of the page are given two images. One is of Rani Lakshmibai holding a sword. The other is of a child having breakfast at the table. 2. When, establishing time. For the audience to correctly be involved in a scene, details like time period becomes important. Time is depicted at two levels. Time period, historical or present day or futuristic. It is mainly depicted using costumes, props and language. Time of the day, morning or evening or night, depicted through actions and speech. Let us try an example. Take the correct option. If you talk about getting late to school while eating breakfast in a hurry, the time is morning or evening or night. If you say you have had a very tiring day and yawn while speaking, the time is morning, evening or night. Activity 6.2. Time it right. You can continue with the same groups that worked together on depicting the place. You will now be given different time options and situations to depict, and the other groups will guess the time you are showing. Page number 60. At the top right corner of the page, two students are performing on the stage. One of them is speaking, "Hey Radha, where are you going so early in the morning?" At the bottom right of the page, a teacher is sitting on a table working on a laptop. There are a few books around on the table. Remember, this information should not be conveyed by speaking directly to the audience or announcing it is a night scene or in the evening. Instead, it should be a part of the scene itself and the characters reveal it in action or through dialogues. Ramesh, "Hey Radha, where are you going so early in the morning?" Or mother says, "Raju, it is 9 o'clock at night. Your father has not come yet." 3. Who, establishing character. Actors on stage are the ones who get maximum attention. So it is very important to convey the exact character. The basic appearance of a character is shown through costume and props. But it is also important to reveal more about the character than what costumes can. Observe this character. You can easily say that it is a professional woman who works hard. It is necessary for the story to convey that she is very kind and is always willing to help despite her busy schedule. How can you show this? This is the actual depiction of a character. Option 1. Make two other characters talk about her in their conversation. Example, her neighbors discussing how she helped their son for his maths examination. Page number 61. Option 2. Show a simple situation of her helping a wounded dog on the road. Option 3. You can think of a unique way to depict this character and write it in the blank. Pick different characters and discuss in groups about different ways of revealing them in the scene. Remember, a scene will have multiple characters. One could be short-tempered, another could be very funny, and so on. In the middle of the page, an image depicts 5-6 children trying to depict a character of their choice. Activity 6.3. The actual scene. Now, let us put together everything you have learned to get a complete scene. You can continue to work in the same groups created in the beginning of this chapter. Each team picks up a topic, could be suggested by your teacher, plans and practices and presents it to the other groups. Make sure you have included the basic stage etiquette, establishing place, time and character in your scene. It's circle time. Which scene was the most convincing in all the four areas? In the parts that you were not able to depict convincingly, what was difficult? Can the others in the class suggest solutions on how it can be done better? Page number 62. Assessment. Chapter 6. Create a scene. Competencies addressed here are C1.1 expresses enthusiasm to depict a variety of objects, people, situations, and experiences in drama activities. C1.2 discusses own thoughts and responses while working collaboratively in the dramatic arts. The table given consists of curricular goals, competency, learning outcomes, and assessment by teacher and self. CG1, C1.1, LO, able to depict place, time, and character in a scene. C1.2, LO, trying activities without inhibition. C1.1 and 1.2, LO, alertness and attention to detail. C1.2, LO, overall participation in class. All the LOs to be assessed by teacher and self. Teacher's observations to be mentioned in the space given. Other comments also to be mentioned in the space given. Chapter 6 ends here.
0: Basuri, you were just listening to this audiobook, Textbook of Arts for Grade 5. Narration, Tripti Upadhyay. Sound recordist, Amarjit Sarkar. Production assistant, Chetna Sharma. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: Suno, sabhi ek zaruri baat. Aaya Mission Indradhanush, tikakaran phir ek baar. Agar aapke ghar ya pados mein hai 5 saal ya usse chote bacche, jinka koi bhi tika chhoot gaya ho, to sochte kya ho? Jaldi se Asha Didi se karo baat. Bachcho ko swasthya kendra hai lekar jana aur unka tikakaran hai karwana.
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी
2: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
12: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं एक बार फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हां, आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम में हम बताते हैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी बातें। जी हां, खास तौर पर हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए। और जहां तक गर्मी के मौसम की हम बात करें, वैसे तो हर मौसम में आप जो टॉपिक आज हम लाए हैं, जो विषय आज हम लाए हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है ये, लेकिन खास तौर पर गर्मी में आप देखेंगे कि इसकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी मांग बढ़ जाती है तो ज़रूरत होता है कि इसके बारे में भी हम कुछ बातें जानें। वैसे तो आज हम एक जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं, विषय लेकर आए हैं, वो है बीज रहित खीरे की संरक्षित खेती। तो आज थोड़ा सा हट कर, यानी खीरे के बारे में हम जानेंगे, लेकिन बीज रहित खीरे के बारे में आज हम जानेंगे और इसकी खेती के बारे में जानेंगे। तो इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज, और मैं आपको बता दूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद
12: सर। वैसे खीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बीज रहित खीरा क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
13: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जो खीरा किसान भाई बाहर उगाते हैं उसकी तुलना में ये जो बीज रहित खीरा है, इसकी एक खासियत होती है कि ये गाढ़े हरे रंग के इसके फल होते हैं, इसके अंदर बीज बिल्कुल नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस खीरे की होती है कि इसके अंदर केवल और केवल मादा फूल ही आते हैं, जिसकी वजह से इसको जो लगाने के बाद किसानों को जो उत्पादन होता है वो उसमें काफ़ी गुना, 2 से 4 गुना तक की वृद्धि हो जाती है। अच्छा। और दूसरी बात, इस खीरे में सबसे ज़्यादा बाहर के खीरे की तुलना में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, तो ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है और काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। और मेट्रो सिटीज़ में आजकल इस खीरे की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस खीरे को इंग्लिश खीरा भी कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक खीरा भी कहते हैं, और भी कई कई तरह के नामों से इसे जाना जाता है। तो आज हम जिस नाम से इसे संबोधित कर रहे हैं वो बीज रहित खीरा है।
12: जी, मतलब कि इसका जो डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इसके फ़ायदे भी अनेक हैं। तो ये कुछ बातें हो गई बीज रहित खीरे के बारे में, और अब बात करते हैं खेती से जुड़ी। तो सबसे पहले ये बताइए कि किस मौसम में हम इसकी खेती कर सकते हैं।
13: देखिए, बीज रहित खीरा है, इसके अंदर मादा फूलों की संख्या ज़्यादा है, या सारे ही फूल जो इसके अंदर आते हैं वो मादा फूल हैं। तो इसके अंदर एक विशेषता ये है कि इसको अगर हम बाहर के एनवायरनमेंट में, यानी खुले वातावरण में इसको लगाते हैं, तो इससे इतनी अच्छी उपज नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ पर परागण हो जाता है, मक्खियाँ जो होती हैं वो परागण करती हैं, और परागण होने के बाद इसके अंदर जो बीज बनने का सिलसिला है वो चालू हो जाता है। तो जब इस खीरे के अंदर बीज बनता है तो इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, इसकी जो लाइकिंग है, इसकी जो इसको जो जिस वजह से इसे पसंद किया जाता है वो घट जाती है। तो खास तौर से इस खीरे को हम पॉली हाउस कंडीशंस में लगाते हैं, यानी प्रोटेक्टेड कंडीशंस में। अब प्रोटेक्टेड कंडीशंस के बारे में शायद किसान भाई जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूं कि प्रोटेक्टेड कंडीशन ऐसी एक जगह होती है जहां पर हम बारिश में या बहुत तरह के जैविक या अजैविक दबावों से बचने के लिए हम फसलों को एक संरचना के अंदर उगाते हैं, जिसको संरचना को पॉली हाउस भी बोला जाता है, अगर उसके अंदर पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल हुआ होता है, या शेड हाउस भी बोला जाता है जब उसके अंदर शेड नेट, ग्रीन शेड नेट का इस्तेमाल किया जाता है, या अलग अलग तरह के, अगर जो आप ग्लास हाउस बोलेंगे तो ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, या आजकल फाइबर रिजिड प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं तो उसको पॉलीकार्बोनेट शीट से जो पॉली हाउस बनते हैं उसके अंदर उगाया जाता है। तो इन पॉली हाउस के अंदर ही अगर बीज रहित खीरे को अगर हम किसान भाई उपजाते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा है वो मिलता है बाहर की अपेक्षा में। बाहर हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप इस खीरे को बाहर लगाइए। तो अब पॉली हाउस में कब लगाना है, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर हम सारी चीज़ों का कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल इस हिसाब से कि मौसम में अगर जो आप जो खीरा, बाहर वाला खीरा जो आप नॉर्मल किसान भाई खाते हैं या लगाते हैं, वो केवल 2 ही सीज़न में लगाते हैं, गर्मियों के मौसम में लगाते हैं, फरवरी मार्च में लगाते हैं या फिर जून जुलाई में लगाते हैं। इस बीज रहित खीरे को हम इन सीज़न के अलावा हम सर्दियों के सीज़न में भी पॉली हाउस में उगा सकते हैं। सर्दियों के सीज़न में आप लगाएंगे तो, क्योंकि पॉली हाउस से जब हम उसको ढकते हैं तो उसका तापमान जो है अंदर का, पॉली हाउस के अंदर का तापमान जो बढ़ जाता है, तो उस बढ़े हुए तापमान में हम खीरे को ले सकते हैं, इस बीज रहित खीरे को ले सकते हैं। और रही दूसरी बात कि किस किस महीने में लगाना चाहिए, और हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ अगर हम जनवरी फरवरी में एक फसल लेते हैं, दूसरी फसल जून जुलाई या जुलाई अगस्त में लेते हैं, या तीसरी फसल जो हमने लेनी है वो सितंबर अक्टूबर में लेते हैं, तो साल में तीन फसलें आप इस खीरे की पॉली हाउस के अंदर आराम से ले सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो पॉली हाउस है वो ऊंची जगह पर हो, बारिश के मौसम में उसके अंदर पानी ना जमा होता हो, और वेंटिलेशन यानी हवा का जो हवा जो निकलती है पॉली हाउस से, या वेंटिलेशन जिसको बोला जाता है, वो लगातार बनी रहे या होती रहे। तो ऐसी जगह पे, ऐसे पॉली हाउस में उसको अच्छे तरीके से किसान भाई उगा सकते हैं।
12: जी, तो ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से इसे उगा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, मिट्टी का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो किस प्रकार की मिट्टी इस बीज रहित खीरे के लिए ज़रूरी होता है, किस प्रकार हमें चयन करना चाहिए, और प्रभेद क्या क्या है इनके अच्छे बीज रहित खीरे के?
13: सबसे पहले हम प्रभेद की बात करते हैं। देखिए, प्रभेद एक्चुअली नॉर्मल खीरे की अपेक्षा में बीज रहित खीरा, इसके बीज के दाम की मैं बात करता हूँ, क्योंकि दाम इसका लगभग 6 रुपया प्रति बीज के आसपास पड़ता है। जो नॉर्मल खीरा होता है उसमें 1000 बीजों की कीमत आपको, अगर जो आप प्राइवेट कंपनी से लेते हैं, 250 से लेकर 600 रुपया तक पड़ती है। लेकिन जब हम बीज रहित खीरे की बात करते हैं तो कई जगह प्राइवेट कंपनीज़ के जो बीज आते हैं उसकी कीमत जो है 4 रुपया प्रति बीज से लेकर 10 रुपया 12 रुपया प्रति बीज तक हो जाती है। तो 1000 बीजों की कीमत जो है वो लगभग 4000 से लेकर 12000 रुपये तक की पड़ती है, जिसमें 1000 सीड आता है।
12: जी।
13: ये तो बीज के दाम की बात हो गई, क्योंकि हमें उत्पादन उतना मिलता है तो इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा है। दूसरा प्रभेद, अब प्रभेद अगर जो हम सरकारी उपक्रमों की बात करें कि जहाँ से रिलीज़ हुए हैं, तो भारतवर्ष में 2-3-4 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से ये प्रभेद रिलीज़ हुए हैं, जिसके अंदर पंतनगर विश्वविद्यालय है, वहाँ की 2 वेराइटी हैं, पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 2, पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 3, केरल विश्वविद्यालय है तो केरल विश्वविद्यालय में से एक हाइब्रिड रिलीज़ हुआ है, जो बीज रहित खीरे का हाइब्रिड है, जिसको बोला जाता है केरला पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर हाइब्रिड 1, तो उसको भी लगाया जा सकता है। सरकारी उपक्रमों में उसके बीज की कीमत जो है वो 1 से 2 रुपया पड़ती है, तो वो किसान भाई उगा सकते हैं, ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। तीसरा, दिल्ली से भी पीसा IRI दिल्ली से भी एक वैरायटी रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है पूसा सीडलेस कुकुम्बर 6, पूसा बीज रहित खीरा 6। ये तो कुछ सरकारी किस्में हैं, और प्राइवेट कंपनी के कई खीरे आते हैं, कई बीज रहित खीरों की किस्में हैं, जिसमें इन्फिनिटी हो गया, किया हो गया, हिल्टन हो गया, उसके बाद किंग स्टार है, वैली स्टार है, ऐसे कई, या मिनी एंजल है, या RS03602833 है। तो ऐसी कई तरह के प्रभेद बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनको किसान भाई लगा रहे हैं अपने पॉली हाउस में और खूब मुनाफा कमा रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि मिट्टी, क्योंकि पॉली हाउस एक ऐसी संरचना है जिसको आप बार बार बदल नहीं सकते, उसके अंदर जैसी मिट्टी है वो रहेगी। लेकिन खीरे की खेती के लिए ज़्यादातर लोग बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी का ही उपयोग करते हैं, जिसका पीएच मान लगभग 5.8 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। अगर इस पीएच मान में आप उगाते हैं खीरा तो उसकी फसल अच्छी होती है।
12: जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि किस प्रकार की मिट्टी आपको इस खीरे की खेती के लिए चाहिए, और साथ ही प्रभेद के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। नर्सरी की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इस पौधे की नर्सरी में हम कैसे तैयार करें?
13: देखिए, खीरे की नर्सरी अब पॉली हाउस में जब लगा रहे हैं और बीज की कीमत इतनी ज़्यादा है, तो पॉली हाउस में जब खीरा लगाते हैं और आप अगर जो सिंपल उसको ज़मीन के ऊपर उसके ये पौध तैयार करेंगे या डायरेक्ट बीज डालेंगे, तो उसके अंदर कई बार क्या होता है कि कई बीमारी आ जाती हैं सॉइल वाले मिक्सचर में, या फिर बीमारी से बच भी जाएं तो कई बार क्या होता है कि जब उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए यानी उसका बुआई करने के लिए जब पौधों को बिचड़े को निकाला जाता है तो उसकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाती है जिससे वो पौधा मर जाता है। तो इतना महंगा बीज और उसमें जो खर्चा होता है वो किसान भाई सह नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम किसानों को बताते हैं कि वो प्रो ट्रे यानी प्लास्टिक की ट्रे आती हैं उसके अंदर इन बीजों की पौध तैयार करें या बिचड़ा तैयार करें। अब उस बिचड़े को तैयार करने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक प्लास्टिक की ट्रे आती है 50 छिद्र वाली का जनरली हम उपयोग करते हैं, 50 से लेकर 95 छिद्र वाली, 100 छिद्र वाली, 120 छिद्र वाली, अलग अलग तरह के साइज़ की प्रोट्रे जो है वो बाज़ार से मिलती हैं, आप उसको ला सकते हैं। उसके बाद जो एक एक्सेलेंट मीडिया जो होता है, अब इसके अंदर बिना मिट्टी के इस्तेमाल किए हुए हम बीजों को कैसे उगाएं, तो उसको उगाने के लिए जो मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, तो कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट, ये तीन जो हैं ये आइडियल मिक्सचर है सीडलेस या विदाउट सॉइल ये नर्सरी ग्रो करने के लिए। अगर किसान भाइयों को ये भी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आजकल आपके पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है, हर जगह वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है और कोकोपीट जो नारियल का छिलका होता है वो भी अवेलेबल होता है। तो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का यानी 60% रेशियो बाय वॉल्यूम, मतलब एक बाल्टी अगर जो आप कोकोपीट की मिला रहे हैं तो 40% आप वर्मी कंपोस्ट एक बाल्टी यानी वॉल्यूम के हिसाब से उसके घनत्व के हिसाब से आप उसको उसका एक मिक्सचर तैयार करते हैं, उससे उन ट्रे को भरते हैं और प्रति छिद्र जो प्लास्टिक की ट्रे है प्रति छिद्र एक बीज उसके अंदर लगाते हैं। अब लगाने के बाद जैसे उसको लगा दिया, बीज को पहले उपचार करना ज़रूरी होता है, बीज को उपचार करने के बाद ही हम उसको ट्रे में लगाते हैं। ट्रे में लगाने के बाद उसको हम पॉलीथीन से ढक देते हैं, लगभग 2 से 3 दिन में उसके अंदर से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो पॉलीथीन को उस प्रोट्रे के ऊपर से हटा देते हैं। उसको हटाने के बाद हम लगातार उसके अंदर पानी का ध्यान रखते हैं, उसके अंदर इरिगेशन करते रहते हैं और गर्मियों के दिनों में देखा जाता है कि 15 से 18 दिन या मैक्सिमम 20 दिन तक उसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। और सर्दियों के दिनों में अगर जो आप कोई नर्सरी या बिचड़ा तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको 20 से 25 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। और जब वो नर्सरी तैयार हो जाती है तो उस प्लग को यानी उस प्लास्टिक ट्रे को हल्का सा नीचे से दबाकर जब आप उसको निकालते हैं तो उसकी जड़ें एकदम इंटैक्ट होती है यानी उसके साथ चिपकी हुई होती हैं और उनकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता और पौधा भी स्वस्थ होता है। और उस ट्रे को उखाड़ के उठाकर आप जहां पर आपने उसको लगाना है पौधों को आप आसानी से उठाकर ले भी जा सकते हैं और खेत में उसको लगा सकते हैं।
12: जी, तो ये बातें हो गई है नर्सरी की, और नर्सरी के बाद अब बारी आती है बेड तैयार करने की, तो उसे कैसे तैयार करें?
13: देखिए, पॉली हाउस में जो बेड तैयार करना होता है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और अगर जो आप बेड का सही तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप कोई भी फसल है उसको ठीक ढंग से उगा सकते हैं। तो पॉली हाउस में जब हम बेड तैयार करते हैं, अगर हम खीरे की बात करें तो इसका जो बेड तैयार करने के लिए हम गहरी जुताई करके जब पॉली हाउस के अंदर लगभग 1 महीना पहले से उसकी जुताई करके उसको छोड़ देते हैं। जब बेड तैयार करना होता है तो हम लगभग 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर चौड़ा बेड तैयार करते हैं, लेकिन वो ज़मीन से उठा हुआ बेड तैयार करते हैं। तो उसकी जो ऊंचाई है उस बेड की वो लगभग हम 15 से 30 सेंटीमीटर तक रखते हैं कि इतना ऊंचा आपका बेड होना चाहिए
12: जी।
13: और साथ में जो बेड से बेड की दूरी यानी एक मेड़ हम उसको बोल सकते हैं, 1 मीटर चौड़ा बेड, बेड से बेड की दूरी जो है 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं यानी आधे मीटर के करीब उसके अंदर चलने के लिए रास्ता रखते हैं और बेड को तैयार करते हैं। और बेड तैयार करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं कि जब हम बेड तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सड़ी गली गोबर की खाद है या उसको हम बेड तैयार करते समय मिला लेते हैं, जिसके अंदर लगभग 100 केजी के आसपास हम जो सड़ी गली खाद है उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 5 ग्राम नाइट्रोजन, 5 ग्राम फास्फोरस और 5 ग्राम ही पोटेशियम का इस्तेमाल हम बेड बनाते टाइम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा बेड ठीक ढंग से तैयार हो जाता है और जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसके अंदर हम ट्रांसप्लांटिंग करना चालू कर देते हैं।
12: जी, और डॉक्टर साहब आपने बताया था कि पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती हो की जा सकती है बीज रहित खीरे की, तो इसमें सिंचाई क्या कुछ अलग ढंग से किया जाता है कि, या फिर हम किस तरीके से सिंचाई कर सकते हैं?
13: देखिए, पॉली हाउस में जनरली कोई भी किसान भाई जब पॉली हाउस का की संरचना तैयार करता है तो उसके अंदर हम मैकेनिकल विधि से सिंचाई करते हैं, या हम उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई विधि, या उसको बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहा जाता है, उसको इंस्टॉल कराते हैं, उसको लगाते हैं पॉली हाउस के अंदर। जब आप ड्रिप इरिगेशन लगा लेते हैं तो ड्रिप इरिगेशन लगाने से फ़ायदा ये होता है कि पौधों की जड़ों के पास ही वो पाइप के ड्रिपर मौजूद होते हैं, वहाँ से बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। तो जनरली हम 10 से 15 मिनट वो उसके डिस्चार्ज रेट पे यानी उस बूंद का कितनी तेजी से वो गिर रही है, कितने टाइम के लिए कितना पानी गिरेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली जो हमारे पास होता है 2 लीटर प्रति घंटे का डिस्चार्ज रेट होता है, तो उसमें से अगर आप मान के चलें तो 10 से 20 मिनट के लिए आप एक बार चला देते हैं तो एक दिन के इरिगेशन की जो ज़रूरत होती है पौधे की वो पूरी हो जाती है। और गर्मियों में हम प्रतिदिन इसको चलाते हैं, और सर्दियों में हम एक दिन छोड़ के इसका इस्तेमाल करते हैं बारिश के दिनों में, और सर्दियों में जब तापमान जो होता है वो काफ़ी कम होता है तो हम एक दिन छोड़ के इसकी सिंचाई करते हैं। अब ड्रिप इरिगेशन का एक और फ़ायदा है कि इसके अंदर जो घुलनशील फर्टिलाइजर्स जो होते हैं यानी जो आपकी खाद होती है उसको भी हम पानी के अंदर पानी के साथ ही घोल कर सिंचाई के माध्यम से ही हम पौधों तक पहुंचा देते हैं। तो इस विधि का इस्तेमाल हम करते हैं पॉली हाउस के अंदर।
12: जी डॉक्टर साहब, और अंत में बारी आती है जब जो है वो खीरे की मजे तरीके से खेती कर रहे हैं तो बारी आती है तुड़ाई की, तो कब तुड़ाई करें इसकी भी जानकारी दें।
13: हाँ, तुड़ाई तो मैं इसको थोड़ी देर में बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसके बाद जब ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तो इसकी दूरी कितनी दूरी पर इसको लगाना है। बेड के ऊपर हम जो खीरा लगाते हैं तो 1 मीटर चौड़ा आपने बेड बनाया है तो हम पौधे से पौधे की दूरी जो है वो लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। जो हमारा बिचड़ा तैयार हो गया है उसको लेकर 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और बेड पे 2 लाइन लगाते हैं। एक बेड पे 2 लाइन पौधों की लगाते हैं यानी उसको डबल रो सिस्टम बोला जाता है। तो डबल रो पे हम उसकी बुआई करते हैं। अब बुआई करने के 7 से 8 दिन के बाद जब वो हो जाता है तब हम उसकी पहली जो है फर्टिगेशन या जिसको बोला जाता है खाद देने का कार्यक्रम चालू करते हैं। तो खाद देने में क्या होता है कि खाद हम घुलनशील पदार्थ घुलनशील फर्टिलाइजर के द्वारा ही दिया जाता है, तो जिसके अंदर हम 19-19-19 एनपीके का जलीय घुलनशील फर्टिलाइजर आता है, तो उसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल कर यानी उस हिसाब से 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम उसको ड्रिप के माध्यम से देते हैं पौधे को। और फ्लावरिंग यानी लगभग 1 महीने के बाद जब फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है खीरे के अंदर तो उस टाइम उसकी जो डोज है उसको बढ़ा देते हैं, तो 5 ग्राम 7 ग्राम तक हम उसको लेकर जाते हैं। और इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, कई सूक्ष्म खादें हैं जिसका पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन खादों का भी हम इस्तेमाल करते हैं जो ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। या फिर हम उसकी जगह स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम फोलियर स्प्रे यानी पौधों के ऊपर छिड़काव करके भी कई तरह के खादों का जो छिड़काव है वो पौधों के ऊपर कर सकते हैं। अब ये तो होगी ट्रांसप्लांटिंग की बात। पॉली हाउस के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो होता है कि इसकी जो ट्रेनिंग है उसकी जो बढ़वार है पौधे की उसको किस हिसाब से ट्रेन करें। अब किसान भाई बाहर जो खेती करते हैं खीरे की तो वो जनरली क्या करते हैं कि ज़मीन के ऊपर ही लत्तरों को छोड़ देते हैं और वो लत्तरें ज़मीन के ऊपर ही फैलती हैं
12: जी।
13: जब हम पॉली हाउस के अंदर इसको लगाते हैं तो पॉली हाउस का जितना एरिया है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम इस प्रकार से करते हैं कि हम पौधों को सीधा खड़ा ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। इन पौधों की ट्रेनिंग जो करते हैं वो वर्टिकली करते हैं यानी सीधे ऊपर चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि हम एक रस्सी का सहारा लेते हैं, प्रति पौधा हम एक रस्सी ऊपर से 9 से 10 फीट की ऊंचाई से बांध देते हैं और पौधे की जड़ के पास उसको बांध देते हैं और उसी के सहारे पौधे को ऊपर चढ़ाते हैं। सभी पौधों को उस हिसाब से चढ़ाया जाता है कि उसके फूलों को पत्तियों को ज़्यादा नुकसान ना हो और उसके रस्सी के चारों दोनों तरफ घुमा घुमा कर उसको ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है। और दूसरी बात ये रही, इसी के अंदर आती है प्रूनिंग, यानी कटाई या छटाई जो होती है। तो छटाई हम जनरली क्या करते हैं कि शुरू घुटने तक की ऊंचाई के बराबर, यानी लगभग 5 से 6 नोड के बराबर, जब जितने भी फूल आते हैं या पत्तियां आते हैं, जब जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है तो उनकी कटाई कर देते हैं हम। नीचे की नोड के फ्रूट नहीं लेते हैं, 5 से 6 नोड के बाद ही उसका फ्रूट लेना हम, यानी फल लेना चालू करते हैं। और जितनी पुरानी पत्तियां हैं या कई बार ऐसा होता है कि जो उसकी साइड ब्रांचेज होती हैं, जो उसकी शाखाएं होती हैं बहुत ज़्यादा निकलती हैं, तो उन शाखाओं को भी हम काट देते हैं ताकि पौधा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़े, उसकी शाखाएं जो हैं वो नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ ना जाएं। और रस्सी के सहारे से बांधते हैं, फोका नली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पौधे को उस रस्सी के साथ हम ठीक बांध के रखें, वो गिर ना जाए। तो ये तो कटाई छटाई ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिया है जो पॉली हाउस की खेती में हम करते हैं। लगभग सभी क्रॉपों सभी फसलों में इसको किया जाता है। अब रहती है तुड़ाई की बात। तुड़ाई फ्लावरिंग, जब फूल आ जाते हैं तो फूल आने के 7 से 14 दिन के बाद इसका फल तैयार हो जाता है। तो फल की जो लंबाई के हिसाब से हम उसको देख कर या छू कर हम पता लगाते हैं कि फल जो है वो तैयार हो चुका है, मार्केट में भेजने लायक है। तो 100 से 150 ग्राम तक का फल जो है हम तोड़ते हैं। तो तुड़ाई लगभग किस्मों के या प्रभेदों के आधार पे होता है, 35 से 40 दिन के अंदर भी ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप इसकी तुड़ाई करना चालू कर सकते हैं। और लगभग 3.5 से 4 महीने की ये क्रॉप होती है। तो आप लगा के चलिए कि अगले 2 महीने तक, यानी जब पहली तुड़ाई स्टार्ट करते हैं उससे 2 महीने तक आप लगातार निश्चित अंतराल पर आप अगर जो इसकी कटाई करते रहते हैं, मतलब फलों को तोड़ते रहते हैं, तो इसकी उपज बनी रहती है और आप काफ़ी उपज प्राप्त कर सकते हैं। और पौधों की संख्या जो है वो भी काफ़ी होती है, तो लगभग 3 से 4 गुना आपको जो है उत्पादन जो है सामान्य खीरे की तुलना में आपको ज़्यादा मिल पाता है।
12: जी, तो श्रोताओं आपने यहाँ पर बीज रहित खीरे की संरक्षित खेती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है। शुरू से लेकर अंत तक डॉक्टर साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है किस तरीके से आप इसकी खेती करें, किस मौसम में खेती करें, पॉली हाउस में आपको सिंचाई किस प्रकार करनी है, साथ ही बेड की तैयारी के बारे में बताया इन्होंने, नर्सरी की तैयारी के बारे में बताई। तो आशा करते हैं कि अगर आप इस खेती के बारे में सोच रहे हैं तो इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12

0: जिन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई

करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथीन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनिशाला में।
1: प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं उषा और आप आज एक मजेदार कहानी सुनेंगे जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि भालू फुटबॉल कैसे खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकते? जैसे आप गेंद को किक मारते हैं, पैर से उछालते हैं, ऐसे ही भालू ने भी अपने पैर से बॉल जैसी चीज को उछाल दिया। तो आप ये जानना तो जरूर चाहेंगे कि भालू ने सचमुच में फुटबॉल खेली या किसी को फुटबॉल की तरह देखा और एक किक लगाई, यानी कि पैर से उछाल दिया। तो आज हम इस कहानी में यही जानेंगे। तो सारे बच्चे तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ। तो हम आज एक कहानी सुनते हैं, भालू ने खेली फुटबॉल।
2: सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई।
3: फुटबॉल,
2: सोचा,
3: चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए।
2: आओ देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था।
4: और
2: एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था।
3: ओ, आ,

0: Marcus. Oh, fand mea, fasa.
1: बारहवीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा।
2: डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना।
3: शेर के बच्चे ने कहा,
4: जरा ठीक तो हो लूं।
1: माली ने कहा,
2: ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
1: माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा,
4: जान बची तो लाखों पाए।
5: सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, कुछ दिखाई नहीं देता था, धुंधी धुंध थी, अपना हाथ भी खुद को दिखाई न देता था, ऐसा कोहरा था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। उसे भी तो ठंड लग रही थी और ठंड की वजह से वो गुड़मुड़ गुड़मुड़ होकर सो गया। जैसे आप सारे बच्चे सर्दियों में कड़ाके की ठंड जब पड़ती है तो रजाई में गड़मड़ गड़मड़ होकर सो जाते हैं, ऐसे ही शेर का एक छोटा सा बच्चा गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पता है फिर क्या हुआ? इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आप देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया। किसे? शेर के बच्चे को। और हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब सोचो क्या हुआ होगा, सोचो कि शेर के बच्चे का क्या हुआ होगा और ये भी सोचो कि भालू का क्या हुआ होगा। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली थी मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए और पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर के बच्चे को यूं उछलने में मजा आ रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर यही बार बार होने लगा। यानी कि शेर के बच्चे को उछलने में बहुत मजा आ रहा था और भालू साहब जो थे वे बार बार शेर के बच्चे को उछाल रहे थे। न जाने कितनी बार उछाला, शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था लेकिन भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा। बारहवीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब सोचो कि शेर के बच्चे का क्या हुआ होगा। भालू ने तो शेर के बच्चे को उछाला और उसकी तरफ सरपट दौड़ लगाई अपने घर की तरफ। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, ला हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है तो मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। जानते हैं 9-2-11 होने का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक, यानी कि शेर का बच्चा भी अपने घर की तरफ दौड़ लिया, वह भी भाग गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो कैसी लगी आपको कहानी? भालू ने फुटबॉल खेली या कुछ और खेला? ये फुटबॉल नहीं थी, ये तो था शेर का बच्चा। कोहरे की वजह से भालू दादा को ये पता ही नहीं चला कि जिसे वे फुटबॉल समझ रहे हैं दरअसल वो शेर का बच्चा है, जो ठंड की वजह से गोल मटोल होकर सिकुड़ कर सिमट कर जामुन के पेड़ के नीचे बैठा था। तो अब कहानी में सबसे जो मजेदार बात हुई वो क्या थी? ये मजेदार बात मेरे लिए अलग हो सकती है, यही मजेदार बात रोहन के लिए अलग हो सकती है, रिद्धिमा के लिए अलग हो सकती है, झुमकी के लिए अलग हो सकती है और अमित के लिए अलग हो सकती है। यानी इस कहानी में हर बच्चे को कहानी के अलग अलग हिस्से बेहद पसंद आएंगे। तो आप अपना हिस्सा तय कीजिए कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा, और यही बात अपने दोस्तों से कहिए, अपने घर के सदस्यों से कहिए और उन्हें बताइए कि इस कहानी में आपको सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा। तो मैंने जब ये कहानी सुनाई तो कहानी सुनाते सुनाते दरअसल मुझे कहानी का वह हिस्सा सबसे अच्छा लगा जब भालू ने 12वीं बार शेर के बच्चे को उछाला और वे वहां से रफू चक्कर हो गए। भालू ने तो ये भी नहीं सोचा शेर का बच्चा बेचारा जब जमीन पे गिरेगा धड़ाम से तो उसे कितनी चोट आई होगी, लेकिन भालू को तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए उन्होंने शेर के बच्चे को उछाला और अपने घर की तरफ भाग गए। लेकिन पता है झुमकी को क्या पसंद आया? झुमकी ने बताया उसे इस कहानी का वह हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा जब माली शेर के बच्चे पर बरस पड़ा और खूब गुस्सा किया और कहा कि मेरे पेड़ की डाल तुमने तोड़ दी, लाओ हर्जाना। अब सोचिए भला एक शेर का बच्चा माली को क्या देगा हर्जाने में? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास ना तो पैसे हैं, ना उसके पास कोई सामान है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो भला शेर का बच्चा माली को हर्जाने में क्या देगा? तो झुमकी को यही बात तो पसंद आई कि माली दादा ने क्या सोचकर शेर से कहा कि लाओ मेरा हर्जाना, तो इससे अच्छा वो शेर से कुछ और मांग लेते। लेकिन उन्होंने तो शेर के बच्चे से हर्जाना मांगा। और तो और रोहन को कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया? तो रोहन को कौन सा पसंद आया हिस्सा? वही हिस्सा जिसमें शेर का बच्चा वहां से 9-2-11 हो गया। अब तो कोई भी बच्चा ये जान लेता है कि जब माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ, तो जाहिर से बात थी कि कोई भी वहां रुकेगा नहीं, माली के पलटते ही शेर का बच्चा भी अपने घर की तरफ को पलट लेगा। देखिए तो रोहन को कहानी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, लेकिन रिद्धिमा को कहानी का शुरू का हिस्सा बहुत पसंद आया। कौन सा हिस्सा? वही हिस्सा जिसमें कोहरा ही कोहरा था, जिसमें ठंड थी और सब लोग सिकुड़ मुकुड़ कर सो रहे थे, जाग रहे थे, घूम रहे थे और उसके बीच में भालू सैर को निकल आया था। भालू ने तो ये सोचा था कि चलो सुबह का वक्त है, ठंड का मौसम है, मैं कुछ सैर कर रहा हूं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इतना कोहरा होगा कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देगा। और ये जो पूरी कहानी में घटा है ना, ये सिर्फ कोहरे की वजह से घटा है। तो कोहरे की वजह से भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया और जोर से उसे पैर से उछाल दिया। अब सोचिए अगर कहानी में कोहरा नहीं होता तो क्या होता? ये तो बहुत ही सीधी सी बात है, अगर कहानी में कोहरा नहीं होता तो भालू साहब शेर के बच्चे को फुटबॉल नहीं समझते, शेर का बच्चा अपने आप को उछालने के लिए नहीं कहता, भालू साहब 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालकर अपने घर की तरफ नहीं भागते, शेर का बच्चा डाल नहीं पकड़ता तो डाल टूटती नहीं, और डाल टूटती नहीं तो फिर माली जो है वो शेर के बच्चे पे नाराज नहीं होता। तो कहानी में दरअसल ये सब जो कुछ घटा है, कहानी में जो कुछ हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कोहरे की वजह से हुआ है। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे मालूम है कि आप ये कहानी अब अपने दोस्तों को सुनाएंगे, घर में अपने बुजुर्गों को सुनाएंगे, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नानी, बुआ, ताऊ, मौसी, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, मुझे मालूम है आप ये कहानी उन्हें जरूर सुनाएंगे। और उतने ही मजे लेकर ये कहानी सुनाएंगे जैसे मजे से आपने कहानी सुनी है। तो जब आप ये कहानी अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे तो कुछ सवाल भी पूछ लीजिएगा। क्या हो सकता है, क्या पूछेंगे आप उनसे? यही कि आखिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? आपको पता है, मुझे मालूम है कि बच्चों को तो कहानी अच्छे से याद है, उन्हें कहानी समझ में आ गई है। तो आप बताएंगे कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? सीधा सा जवाब है, क्योंकि भालू ने उसे उछाला और फिर वे अपने घर की तरफ भाग लिया। तो इसका मतलब ये है कि शेर के बच्चे ने भालू को अपने घर की तरफ भागता हुआ देख लिया था। अगर ये न देखा होता तो क्या होता? तो भर यही होता कि वह डाल नहीं पकड़ता और भालू के हाथ में आ जाता और फिर भालू से बोलता कि अब मुझे एक बार और उछाल दो। तो शेर के बच्चे ने भालू को अपने घर की तरफ भागते हुए देख लिया था, इसलिए उसे लगा कि अगर मैंने पेड़ की डाल नहीं पकड़ी तो मैं ऊपर से नीचे टपक टपक जाऊंगा। तो इसलिए शेर के बच्चे ने डाल को पकड़ लिया। अच्छा, अब बच्चों ये बताओ कि शेर का बच्चा दहाड़ा क्यों? सोचो, समझ में आया? अच्छा, आप सोचोगे कि कौन सी बार दहाड़ा? भी हमारी कहानी में तो बच्चा एक ही बार दहाड़ा था। तो शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था? इसलिए क्योंकि भालू ने उसे फुटबॉल समझकर पैर से उछाल दिया था। अब जिसको भी पैर से उछाला जाएगा उसे दर्द तो होगा ना। अगर मान लीजिए कि हमें ही कोई पैर से धकिया दे, हमें ही कोई पैर से उछाल दे या पैर लग जाए जोर से, तकलीफ होती है ना। तो ठीक वही तकलीफ भालू के बच्चे को भी हुई, इसलिए वह जोर से दहाड़ा। अब सोचिए, शेर का बच्चा हमारे सामने है, शेर को तो हमने देखा ही है, शेर का बच्चा उससे 19-20 तो होगा नहीं, तो उम्र में कम होगा, साइज में कम होगा या आकार में कम होगा, लेकिन है तो शेर का बच्चा, हुंकार तो होगा और उसके दहाड़ने से हमें डर भी लग जाएगा। तो सोचिए कि जब शेर का बच्चा दहाड़ा होगा तो उसकी कितनी जोर से आवाज आई होगी पूरे जंगल में। तो उसकी दहाड़ को सुनकर भालू तो घबरा गया था, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और भरी ठंड में उसके माथे से पसीना बह रहा था। तो भालू साहब किस बात पे पछताए होंगे? इसी बात पर कि मैं तो सुबह सैर करने आया था, लेकिन इतना कोहरा कैसे हो गया? अगर ये कोहरा नहीं होता तो वे शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर नहीं उछालते। अच्छा सोचिए बच्चों, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? तो बच्चे कहेंगे कि उषा दीदी पहले आप ये बताइए कि ये आफत क्या है। तो आफत में आप लोगों की जान आफत में आ गई है। आफत का मतलब है मुसीबत। तो भालू ने ये क्यों कहा, ओह मैं किस मुसीबत में आ फंसा? बहुत सीधी सी बात है, उसे ये लगा कि शेर का बच्चा तो बार बार उछालने के लिए कह रहा है और मैं इसको कितनी बार उछालूं, उछालते उछालते मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। तो बस इसी उछालने को सोचकर भालू ने कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। अब बच्चों आप उस घटना के बारे में सोचिए जब आप किसी मुसीबत में फंसे हों और आपने उस मुसीबत से निकलने का क्या रास्ता अपनाया होगा। सब बच्चों के पास कोई ना कोई अनुभव तो जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर घटी होगी जब आपको लगा होगा और जब आपने भी भालू की तरह कहा होगा, ओह किस आफत में आ फंसा। अमित ने अपना एक किस्सा सुनाया, तो पता है अमित ने क्या बताया? अमित ने कहा कि एक दिन की बात थी, मैं अपने घर से स्कूल जा रहा था, मेरे बस्ते में कॉपी किताबें कम, कंकड़ पत्थर ढक्कन मोर के पंख और न जाने दुनिया जहां की चीजें उसके बस्ते में थी। अब वह बस्ता लेकर उसको हिलाता हुआ गुनगुनाता हुआ स्कूल की तरफ पहुंचा और वह गुनगुनाने में गाने में इतने मस्त हो गए थे अमित साहब कि स्कूल का टाइम उन्हें पता नहीं चला और वे स्कूल लेट पहुंचे। और जब स्कूल के गेट पर पहुंचे तो मालूम है क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब खड़े थे गेट पर और उन्होंने अमित को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखा। सोचिए अमित की क्या हालत हुई होगी, आप सब तो अब अमित की हालत को जान सकते हैं। अमित डर गए थे कि अब प्रिंसिपल साहब बहुत नाराज होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल साहब को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो अमित ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि सर जी, वो ऐसा हुआ कि जब मैं अपने घर से स्कूल आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक शेर का बच्चा मिल गया था, और फिर मैं शेर के बच्चे को मैंने पास जाके देखा तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी। मैंने उसकी मरहम पट्टी की, उसे उसके घर पहुंचाया और उसके बाद में आया। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या प्रिंसिपल साहब अमित साहब की इस कहानी में विश्वास करेंगे? भाई मैं तो नहीं करूंगी। झुमकी भी नहीं करेगी, रिद्धिमा भी नहीं करेगी और रोहन भी नहीं करेंगे। लेकिन अमित की इस बात पर प्रिंसिपल साहब को हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आप समय का ध्यान रखिए। तो अमित को लगा जब प्रिंसिपल साहब इतने नरम पड़े हैं, तो उन्होंने अमित ने भी प्रिंसिपल सर से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि सर, ऐसा हुआ कि मैं अपने घर से निकला था स्कूल के लिए, लेकिन मेरे बस्ते में बहुत सारा सामान है। मुझे तरह तरह के सुंदर गोल मटोल, अलग अलग तरह के कंकड़ पत्थर पंख, ये सब इकट्ठा करने का बहुत शौक है। तो बस मैं उन्हें इकट्ठा करता हुआ आ रहा था और मुझे आने में देर हो गई। तो प्रिंसिपल साहब ने अमित को अपने रूम में बुलाया और कहा, ये मेरी मेज है, अब इस मेज पर अपना बस्ता पलट दो। तो सोचिए अमित ने क्या किया होगा। अमित को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल साहब की वे बात माने या ना माने। तो अमित ने अपना पूरा बस्ता प्रिंसिपल साहब की टेबल पर पलट दिया। प्रिंसिपल साहब हैरान थे। हे भगवान, ये तरह तरह का सामान, इसमें ढक्कन है, इसमें पंख है, पंख भी तरह तरह के, यानी कि अमित सड़क पर रास्ते में गिरे हुए पंखों को उठाकर अपने बस्ते में रख लेता था। मोर का पंख, तोते का पंख, कबूतर का पंख, चील का पंख, हर तरह के पंख उसके बस्ते में मौजूद थे। और तो और कंचे, अलग अलग रंग के कंचे, अलग अलग आकार के कंचे, तो कंचों का पूरा संसार अमित के बस्ते में था। प्रिंसिपल साहब को लगा कि अमित को अगर ये सारा सामान इकट्ठा करने का शौक है तो क्यों ना इसकी एक एग्जीबिशन लगा दी जाए। तो उन्होंने रिसेस के समय, यानी कि जब भोजन का समय होता है, उस समय उन्होंने स्कूल के आंगन में अमित के बस्ते की एक नुमाइश लगाई कि देखिए अमित के बस्ते में क्या क्या सामान है। सारे बच्चे आते, अमित के बस्ते के सामान को देखते और खिलखिलाकर हंसते और फिर अपनी क्लास में चले जाते। फिर प्रिंसिपल साहब ने घोषणा कर दी, भाई जिन जिन बच्चों को जिन जिन चीजों को इकट्ठा करने का शौक है, वे सब उन सामानों को इकट्ठा कीजिए और हम अपने स्कूल में उस सामान की एक प्रदर्शनी लगाएंगे, ताकि बाकी बच्चे भी तो देख सके कि सामान किस किस तरह का है, पंख किस किस तरह के हैं, और पंखों में क्या फर्क है, पत्थरों में क्या फर्क है, क्यों ऐसा होता है कि कोई पत्थर बहुत चिकना होता है और क्यों ऐसा होता है कि कोई पत्थर चिकना नहीं होता, क्यों ऐसा होता है कि किसी पत्थर का रंग गहरा काला होता है और किसी पत्थर का रंग गुलाबी सा होता है, ऐसे कैसे हो जाता है कि कोई पंख हरे रंग का है और कोई पंख मटमैला है, और ये भी कैसे होता है कि किसी पंख में चांद के आकार की आकृति है, तरह तरह के रंग है, और किसी पंख में इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये प्रकृति है। तो आपको भी अलग अलग सामान इकट्ठा करने का शौक जरूर होगा। अक्सर हर बच्चे को ये शौक होता है, और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तो वो तरह तरह का सामान अपने पास एक झोले में इकट्ठा कर लेते हैं, और तो और उनकी ये आदत भी होती है कि वे उस झोले को लेकर सो जाते हैं। और पता है सुबह सबसे उठने पर उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वही अपना झोला चाहिए जिसमें उन्होंने उस सामान को इकट्ठा किया है। तो ये कहानी थी, भालू ने खेली फुटबॉल, और हमने कौन सी कहानी सुनी, हमने कहा कि अमित ने बटोरा सामान। तो अमित के सामान बटोरने की कहानी भी तो आपने सुन ली। आप भी ऐसे अपने मजेदार किस्से अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और अपने घर के सदस्यों के साथ साझा कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप सोचिए, इस कहानी में कौन सा ऐसा हिस्सा है कि अगर वह नहीं होता, कोहरे के अलावा, क्योंकि हम कोहरे के बारे में तो बात कर चुके हैं, तो कोहरे के अलावा इस कहानी में ऐसा कौन सा हिस्सा है कि अगर वह नहीं होता तो कहानी इस तरह से आगे नहीं बढ़ती। मुझे तो मालूम है अब बताना किसको है, बताना तो बच्चे को है, तो फिर मोहित क्या बताएंगे? तो मोहित ने पता है क्या बताया? मोहित ने कहा, मुझे तो पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जितने बच्चे इस कहानी को सुन रहे हैं, रेडियो के पास कान लगाए बैठे हैं, वे भी जानते होंगे कि इस कहानी में ऐसा कौन सा हिस्सा है, अगर वह नहीं होता तो कहानी यूं खत्म नहीं होती। पता है अमित ने क्या बताया? अमित ने कहा, मेरे हिसाब से अगर भालू 12वीं बार शेर के बच्चे को उछाल कर अपने घर नहीं भागते तो कहानी यूं समाप्त ना होती। तो फिर रिद्धिमा ने अमित से पूछा, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो अमित ने जवाब दिया, भाई ऐसा इसलिए क्योंकि शेर के बच्चे ने जब भालू को देखा कि वो भाग रहे हैं अपने घर की तरफ, तो शेर के बच्चे ने ये समझ लिया था कि अब वे जमीन पर ही गिरेंगे, तो जमीन पर न गिरे, चोट न लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत पेड़ की डाल को पकड़ लिया। लेकिन कहां बेचारी पेड़ की डाल, कहां शेर का बच्चा? वो पेड़ की डाल शेर के बच्चे का भार सहन नहीं कर सकी और पेड़ की डाल चटाक से टूट गई। अब अगर डाल टूटी हुई नहीं होती तो माली जो हैं वे शेर के बच्चे पे नाराज नहीं होते। अब जब वे शेर के बच्चे पे नाराज नहीं होते तो शेर को भी यूं सरपट होकर अपने घर नहीं भागना पड़ता। शायद हो सकता था कि शेर जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल होकर कुछ देर और सो लेता। तो आपके जैसे बच्चे जब बहुत ठंड होती है तो रजाई से बाहर नहीं आते, और तो और नहाने में भी कोताही बरतते हैं कि नहीं बहुत ठंड है, और कुछ बच्चे तो ऐसे जो कहते हैं पानी गीला है। अब सोचिए कि पानी गीला ही तो होगा, सूखा कैसे होगा, और ठंड में पानी ठंडा होगा तो गर्म कैसे होगा? तो रिद्धिमा ने तुरंत कहा, गीजर चला लेंगे। तो मान लीजिए अगर लाइट नहीं आई तो गीजर कैसे चलेगा? तो रोहन ने कहा कि हम गैस का गीजर लगा लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये भी नहीं है तो पानी कैसे गर्म होगा? तो फिर अमित ने कहा कि हम सूरज की रोशनी में रख देंगे। फिर मैंने कहा कि अगर कोहरा कोहरा होगा तो सूरज की रोशनी कहाँ से आएगी, वहां से कैसे गर्माहट मिलेगी? तो फिर सब बच्चे परेशान हो गए कि आप तो हर बात पर एक सवाल कह देती हैं, कहानी का सारा मजा ही खराब हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि आप सोचिए तो सही कि हम जो बात कह रहे हैं अगर वो सब चीजें न हो तो फिर हमारे पास क्या विकल्प बचता है? तो कहानी में ऐसी तमाम घटनाएं हैं, अगर वे नहीं होती तो कहानी का अंत यूं नहीं होता। तो ठीक है, आज हम इतनी ही बात करते हैं इस कहानी के बारे में, और अब मैं विदा लेती हूँ आप सभी से, और बहुत जल्दी हम इस कहानी के अगले हिस्से के साथ मिलते हैं। नमस्कार
6: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
7: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद।
6: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
12: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के, मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
13: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
12: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें। तथा गले की रस्सी लगी ना छोड़े ताकि डूबने या फंसने का खतरा ना हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे उचित स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
13: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
12: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
13: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
13: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
13: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
13: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
13: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आम का मौसम लगभग जा चुका है और फल तोड़ाई भी लगभग हो चुकी है, और फल तोड़ाई के बाद भी जरूरी होता है कि आप बागों का उचित प्रबंधन करें ताकि अगले वर्ष अधिक फल हो, अगले वर्ष भी आपको मुनाफा अच्छा हो। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि फल तोड़ाई उपरांत आम के बागों का प्रबंधन किस प्रकार करें। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर उद्यान विभाग फल से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद उमा।
13: मैम सबसे पहला सवाल यही है कि अभी आम के बागों से करीब सभी किस्मों के फल तोड़ाई हो चुकी है, तो अभी प्रबंधन कैसे करना चाहिए जिससे कि अगले वर्ष अधिक मात्रा में फल हो?
14: सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ कि फल तोड़ाई के बाद पौधों में खाद एवं उर्वरक का कमी हो जाता है एवं पौधों के समुचित विकास एवं फलन के लिए नियमित रूप से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर वृक्षों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनसे कम उपज प्राप्त होता है तथा फलों की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की हो जाती है। पानी के जरिए ही वृक्षों के अंदर पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जल जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन इत्यादि कामों में आवश्यक होता है। इसके बिना ये सब कार्य जो है अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के अभाव में वृक्षों की बढ़वार एवं फलत पर गहरा असर पड़ता है। पौधे भूमि से पोषण एवं जल के माध्यम से ही लेते हैं तथा यह जल पौधों को पाले से भी बचाता है। समुचित सिंचाई एवं उर्वरक से फलों का उपज, स्वाद, मिठास, गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। जल एवं पोषक प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि कब दी जाए, कहाँ दी जाए एवं कितनी मात्रा में दी जाए ताकि जल एवं पोषक का अधिकतम उपयोग तथा मिट्टी एवं पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जल एवं पोषक प्रबंधन के साथ साथ डालियों की हल्की कटाई छटाई भी आवश्यक है। यह कार्य भी फल तुराई के तुरंत बाद ही करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता युक्त फल एवं अधिक फलन के लिए आवश्यक है कि पौधे के मांग के अनुरूप उसका पोषण प्रबंधन किया जाए। पौधे की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए सभी 16 अनिवार्य पोषक तत्वों की पूर्ति आवश्यक है। सही समय पर सही उर्वरक एवं सही मात्रा का प्रयोग करके गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
13: तो मैम उचित समय क्या होता है जब आम के पौधों में पोषण की मात्रा देनी चाहिए?
14: आम में पोषण देने का उचित समय जुलाई अगस्त माह है, लेकिन पोषक तत्वों का अधिक वर्षा से होने वाली क्षति को देखते हुए कंपोस्ट की पूरी मात्रा एवं उर्वरक की 75% मात्रा जुलाई में और शेष मात्रा का प्रयोग अप्रैल के प्रथम माह में करना लाभप्रद है।
13: मैम जब हम एक वयस्क पौधे की बात करते हैं तो आम के एक वयस्क पौधे में कुल खाद की कितनी मात्रा होनी चाहिए?
14: आम के वयस्क पेड़ में अनुशंसित खाद एवं उर्वरक की मात्रा इस प्रकार है, जैसे प्रति पौधे खाद एवं उर्वरकों की मात्रा में 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 1.5 किलोग्राम म्यूरियट ऑफ पोटास एक वयस्क पेड़ के लिए अनुशंसित है। यह मात्रा 10 साल के बाद स्थिर हो जाता है। 10 साल के ऊपर जो पौधे हैं उसमें यही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ लगेगा। इस तरह से उर्वरक का डोज दिया जा सकता है।
13: अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन की। तो मैम, आम के बागों में जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
14: पौधों की सिंचाई के समय हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई कब करनी चाहिए और कितनी मात्रा में की जानी चाहिए। अब सबसे पहला है सिंचाई कब करें। उद्यान की सिंचाई की आवश्यकता स्थान विशेष की वर्षा के परिणाम एवं वितरण, मिट्टी के प्रकार एवं बनावट, वातावरण की आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करती है। चिकनी मिट्टी को बलुई मिट्टी की अपेक्षा एक बार में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, परंतु बलुई मिट्टी में लगे हुए बाग की सिंचाई कम अंतराल पे और कम मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। एक बार में इतना ही पानी दिया जाए जो संपूर्ण जल क्षेत्र को जड़ क्षेत्र को अच्छी तरह नम कर सके। जहां वर्षा कम होती है और इसका वितरण भी अनियमित हो तो सिंचाई की

0: इसलिए इस अवस्था में सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अवधि में सिंचाई करने से संभव है कि वृक्षों में मंजर कम आए या फूल आने के बाद झड़ जाए। अतः यह जान लें कि फलने वाले वृक्षों की सिंचाई, फल निकलने एवं स्पष्ट रूप से दाने लग जाने के बाद ही करना लाभकारी होता है। फलों के लगने तथा विकास के दौरान किसी भी अवस्था में पानी की कमी से फलों का विकास प्रभावित होता है तथा फल झड़ने की समस्या भी आती है। फल लगने के उपरांत 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि फल पूर्णतया विकसित ना हो जाए। एक बार की सिंचाई में इतना पानी अवश्य देना चाहिए कि वृक्षों का संपूर्ण जड़ क्षेत्र नम हो जाए। आम जैसे बहुवर्षीय वृक्षों की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है, परंतु प्रभावी रेशेदार जड़ों का अधिकांश भाग मिट्टी की सतह से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक होती है। सिंचाई इतनी अवश्य करनी चाहिए ताकि जड़ क्षेत्र में पर्याप्त पानी बना रहे और पौधे का विकास ठीक प्रकार से हो। आवश्यकता से ज़्यादा या कम सिंचाई पौधे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब सिंचाई किस प्रकार करें, तो सिंचाई करने का है जैसे कि पारंपरिक सिंचाई विधि है या आधुनिक सिंचाई विधि है। अब पारंपरिक सिंचाई की बात करें तो इसमें फ्लड इरिगेशन है या क्यारी विधि से है, नाली विधि से है और रिंग विधि से है, थाला विधि से जिसको बोलते हैं। इन सबों में थाला विधि सर्वोत्तम पाया गया है। इसके लिए वृक्ष के चारों तरफ 2 से 3 फीट की दूरी पर थाला बनाकर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। आधुनिक सिंचाई पद्धति में ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर मेथड से पौधे का सिंचाई किया जा सकता है। इस विधि से करने पर जो सिंचाई जल का बहुत सेव होता है, बचता है। इस तरह से किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं अपने बगीचे का।
1: तो किसान भाई बहनों जो बागवानी करते हैं और आम के फल की तुड़ाई हो चुकी है, तो इस प्रकार से आप अपने बगीचों का प्रबंधन जरूर करें तो अगले वर्ष भी अच्छी गुणवत्ता वाले और अधिक फल आएंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों

0: टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम
अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करने वाले हैं जो खूबसूरत तो होते ही है, साथ ही थोड़े लंबे समय तक टिकते भी हैं। जी हाँ, गेंदा के फूलों की खेती के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी। आप हैं मैम KVK सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गेंदा की खेती का महत्व क्या है।
1: धन्यवाद उमा, हमारे किसान भाइयों का सादर अभिनंदन है। गेंदा का महत्व बहुत ज्यादा है आज के डेट में। हर जगह इसकी उपयोगिता है। कभी यह मंदिर तक ही सीमित था, लेकिन मंदिर की बात करें, चाहे किसी कार्यक्रम की बात करें, या किसी के विजय होने की अवस्था में करें, या किसी के जन्म की बात करें, या किसी की मृत्यु की बात करें, हर जगह गेंदा का फूलों का महत्व है। और गेंदा का बाजार भी भागलपुर में काफी उपलब्ध है इसके लिए।
0: जी मैम, तो गेंदा के पौधों को लगाने का उचित समय क्या होता है?
1: गेंदा के पौधों को पूरे साल तक एक चक्र के अनुसार लगाते हैं, और उसके फूल खिलने की अवस्था को किसी खास आयोजन से जोड़ते हैं। गेंदा, जैसे जिन किसान भाइयों की गेंदा मुख्यतः हमारे यहाँ जाड़े में लगता है और इसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन आज बाजार के डिमांड पे, मांग पर इसको अलग अलग समयों में लगाया जाता है। और खास समय को, जैसे अभी हमारे किसान दशहरा, दिवाली, छठ, ये सबको फोकस करने के लिए, छठ उस समय बाजार में गेंदा की लड़ी को उपलब्ध कराने के लिए किसान भाई अभी हमारे गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। अभी लगाएंगे तो उनको अक्टूबर में प्रचुर मात्रा में फूल रहेगा, मिला उपलब्ध रहेगा, जिससे वो मार्केट में इसका व्यापार कर सकें।
0: जी मैम, तो ये तो हो गई बात की कब लगाएं, तो लगाने का सही तरीका क्या है गेंदा के पौधों को?
1: गेंदा मुख्यतः बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, और गेंदा का प्रवर्धन अगर आपके पास अच्छी प्रजातियां हैं तो उसके कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और अच्छी प्रजातियां की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी प्रजाति है, जैसे पुसार पिता है, पुसा नारंगी है, जो मुख्यतः लोग रवि के सीजन में लगाते हैं। ऐसे हमारे IIHR बैंगलोर के द्वारा कई अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें से अर्का सुबह है, अर्का अभी है, अर्का भानु है। ये किसान हमारे अगर एक बार मंगा लेते हैं, ये सारी हाइब्रिड प्रजाति की हैं, और किसान मंगा लेते हैं और इसे कटिंग के द्वारा भी प्रवर्धित करते रहते हैं, तो उनके पास अपना पौधा रहेगा और वो अपना पौधा और प्रवर्धित बहुत आसानी से हो जाता है। गेंदा के लिए एक बीज सैया बनाया जाता है जिसमें बालू की मात्रा रहनी चाहिए। बालू की मात्रा रहनी चाहिए क्योंकि जो गेंदे का तना का स्वभाव होता है वो सकुलेंट टाइप होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम मिट्टी में लगाएंगे या जिसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है। अतः कम पानी वाले बीज सैया बनाना है जिसमें बालू की मात्रा को दीजिए और उसको कटिंग के द्वारा लगाइए। कटिंग कैसे करें हमारे किसान, जैसे कि पौधा का ऊपरी भाग है जिसमें कली नहीं आया है, तो 3-4 गांठ को लेते हुए लगभग एक अंगुलिका की लंबाई का वो कटिंग करेंगे और एक गांठ को नीचे लगाएंगे, बीज सैया में लगाएंगे, और 2-3 गांठ को ऊपर रहने देंगे। और इस दौरान वो क्या करेंगे, जो सारी पत्तियां हैं, एपिकल पोर्शन, जिसको ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो टूसा कहते हैं, उसे छोड़ करके सारी पत्तियों को हटा दें और उसे जमीन में लगा दें। तो वो जो सफलता है, जो पौधों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जड़ पकड़ने की संभावना है, उसको बढ़ा देता है। तो ऐसे करके वो करेंगे तो लगभग 25 दिन में उनको गेंदा का पौधा तैयार हो जाता है और उसे पुनः वो भूमि में लगा सकते हैं।
0: जी मैम, तो आपने गेंदा के बाजार के बारे में भी बात की, तो गेंदा के बाजार के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए।
1: इसके पूर्व हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि गेंदा की खेती का सबसे खास पहलू ये है कि गेंदा की खेती में खर्च कम है और लागत कम है और मुनाफा ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर लें कि अगर एक किसान गेंदा की खेती करके 10 रुपया पा रहा है तो उसमें वो 3 रुपया और 4 रुपया ही खर्च कर रहा है, उसे शुद्ध मुनाफा 6 से 7 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से करेंगे क्योंकि गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। गेंदा की खेती में मिट्टी को हल्का कर लेना है जुताई करके, जुताई करने के समय ही उसमें गोबर का खाद मिला देना है, DAP की मात्रा को देना है और बहुत ज़्यादा उसमें और अन्य उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। तो किसान जुताई करके मिट्टी को हल्का कर लें, किसान जो उन्होंने प्रवर्धित किया है पौधा उससे 45-45 सेंटीमीटर पर लगाएं, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30-40 सेंटीमीटर वो रख सकते हैं। ये करने के बाद किसान उसमें हल्का हल्का सिंचाई करें, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। और पौधों में गेंदा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है पिंचिंग। गेंदा जब लगा देते हैं किसान भाई तो उसमें शाखाओं को बढ़ाना है, नंबर ऑफ ब्रांचेज को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब गेंदा लग गया है तो उसमें गेंदा लगने के बाद जब उसमें बढ़ने लगता है तो ऊपर के टूसा को आप तोड़ दीजिए, टूसा को तोड़िए, फिर पुनः टूसा को तोड़िए। तो अगर इस तरह से हमारे किसान टूसा को तोड़ते रहते हैं तो प्रारंभिक को तोड़ते हैं तो उन्हें 4-5 कल्ला प्राप्त होता है। 4-5 कल्लों को तोड़ते हैं तो हर एक कल्ला में अगर 4-4 कल्ले बनते हैं तो ऐसे करके अगर हमारे किसान करते हैं तो 4 चौके 16 कल्ला प्राप्त होते हैं, 16 से 32 कल्ला प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में कल्लों को बढ़ाना है और कल्लों को जब हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो पौधा एक गुंबद आकार का आकार प्राप्त करता है और उसमें पौधे का जो शारीरिक ये है वो भारीपन की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, 45 दिन के अंदर 45 दिन में किसान उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और इसमें हमारे किसान ज़्यादा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, कार्बनिक पदार्थों का ही उपयोग करें, इसमें जीवामृत का प्रयोग करें। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो लागत है उसको किसी प्रकार से हमारे किसान को कम करना है। और नाले में सिंचाई करें, नाले में सिंचाई करने से क्या होता है कि पौधे में बढ़वार भी अच्छा रहता है, पौधों के गिरने की संभावना भी कम रहती है और क्वालिटी भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हमारे किसान इसे लगाना प्रारंभ करें
0: जी मैम।
1: और हमारे भागलपुर में इसका बहुत ही संभावना है। बाजार की जहाँ तक आपने बात की तो बाजार यहाँ पर उपलब्ध है, लगभग फूल का बाजार यहाँ कई लोग करते हैं। और सबसे बड़ा इस पहलू, इसका जो सबसे कमज़ोर पहलू है हमारे किसान भाइयों के लिए और गेंदा की खेती में, कि यहाँ का जो बाज़ार है, भागलपुर का जो बाज़ार है फूलों का बाज़ार, कलकत्ता के द्वारा गवर्न किया जाता है। क्योंकि अगर कलकत्ता के मार्केट में गेंदा की खेती, गेंदा के फूलों की लड़ी का दाम कम है तो उसी के अनुसार भागलपुर में भी गेंदा की लड़ी का दाम घट जाता है। ये हमारे किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके पूर्व, हमारे किसान के उगाने के पूर्व ही हमारे भागलपुर के बाज़ार पर कलकत्ता के ही बाज़ार का कब्जा था और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसमें समस्या आ रही है। अब बहुत सारा परिवर्तन आया है, लगभग 10 हेक्टेयर में हमारे किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो समूह में परिवर्तित हो रहे हैं। जब समूह में परिवर्तित होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक संगठन आएगा, बाजार पे भी उन लोगों का एक नया रूप उभर करके आएगा और बाजार यहाँ उपलब्ध है, बाजार की कोई समस्या नहीं है
0: जी मैम। अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो गेंदा की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि 10 कट्ठे से वो प्रारंभ ना करें, 1 कट्ठे से प्रारंभ करें। क्योंकि किसान भाई को पहले समझना होगा कि हमको इससे क्या मुनाफा है, किस तरह से मुनाफा है। और किसान भाई को इसका वैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा कि गेंदा है क्या, गेंदा किस तरह से प्रवर्धित होता है, वो इसके लागत को कम कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा पहलू है कि हमारे बहुत सारे किसान आगे आए हैं, जैसे सकरामा में अरविंद जी हैं, कुशवाहा नगर में राहुल हैं, बगल में आपको लोदीपुर में राजकुमार है जो कि खेल गेंदा की खेती कर रहा है और वो अर्का भानु को प्रवर्धित करके लगा रहे हैं, IIHR से मंगा करके कृषि विज्ञान केंद्र। और उनको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आए, निजी तौर पर आए, बैठे, हमसे समझें
0: जी मैम।
1: और उसको करना प्रारंभ करने, और पैसे की कमी नहीं है इसमें
0: जी। तो किसान भाई बहनों, जैसे कि मैम ने बताया, आप गेंदे की खेती कीजिए, और ख़ास तौर से जब हमारे पास बाज़ार मौजूद है तो ज़रूर करनी चाहिए। और कोई परेशानी हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जाकर, जहां आपको मैम भी मिलेंगी, आप जाकर उनसे बात कीजिए, समझिए, और गेंदा की खेती आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू उमा।
0: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं।

0: ഉന്നത് കൃഷി. ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन पर. आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु को स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में. एक खास विषय एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आ गए हैं. जी हाँ, हम आज बात करेंगे एरोबिक धान की खेती के बारे में. मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती आप कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर. तो इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी इनसे. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एरोबिक धान की खेती ये तकनीक क्या है और परंपरागत धान की खेती से ये कैसे अलग है.
1: धन्यवाद. नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे एरोबिक धान, मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती के बारे में. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धान बिहार में पैदा की जाने वाली खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है. हमारे यहाँ परंपरागत रूप से धान की अच्छी फसल लेने वाले किसानों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. बिहार में धान की खेती बड़े पैमाने पर 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है. एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जितनी चावल की खपत हुई थी उसकी तुलना में 2035 में 25% ज़्यादा चावल की जरूरत होगी, जो बदलते हुए पर्यावरणीय परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है. और इस चुनौती को दूर करने के लिए हमारे किसान बंधु का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरोबिक धान की खेती, पानी उपलब्ध होने की परिस्थिति में धान उगाने की एक आधुनिक तकनीक है. यह कम पानी में भी अच्छी हम उपज ले सकेंगे. अनुसंधान परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि एरोबिक धान की जल उत्पादकता जो प्रचलित परंपरागत विधि से हम लोग जो धान उगाते हैं उसकी तुलना में अधिक होती है. एरोबिक विधि से धान उगाने के लिए अधिक पैदावार देने वाली एरोबिक धान की संस्तुत अधिक उपजशील प्रजाति को सीड ड्रिल या देसी हल से सीधे खेत से बुआई करते हैं तथा गेहूँ के भांति धान को उगाया जाता है. साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहते हैं. एरोबिक विधि से धान की खेती से बुआई में बुआई के समय जो पानी बहुत कम लगता है, जैसे 67% कम पानी लगती है, और जो मजदूर जो धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगती है उससे 90% कम मजदूर इसमें लगते हैं, और 30% तेल की बचत होती है तथा 60-70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जबकि उत्पादन लगभग समान धान जैसा होता है.
0: तो इस तरीके से ये अलग है. और डॉक्टर साहब, धान, इस एरोबिक धान की खेती से क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को, वो भी बता दें.
1: जैसे प्रारंभिक प्रचलित जो हमारे धान किसान भाई खेती करते हैं वो पानी भरी एवं वायु संचारित दशा में धान की खेती करते हैं. उसके सापेक्ष में जो वायु संचारित एरोबिक धान की खेती से बहुत सारे लाभ हैं. इस पद्धति से धान की खेती में हम लोग सीधी बुआई करते हैं तथा खेत में नमी बनाई रखी जाती है. जैसा लेकिन जैसे हम लोग जो परंपरागत हम लोग खेती करते हैं उसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखी जाती है, इसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसमें एक नमी केवल खेत में नमी बनाई रखी जाती है और खेत में लगातार पानी भरने रखने की आवश्यकता नहीं होती है. जैसा कि परंपरागत में नर्सरी लगानी पड़ती है तथा रोपाई की आवश्यकता होती है, एरोबिक धान में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग इसमें सीधी बुआई करते हैं. इसमें हम लोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं जिसके कारण बीज की कम मात्रा लगती है और जो लेबर जो परंपरागत में ज़्यादा लगता है इसमें बहुत 50% से ज़्यादा इसमें हम लोग को लेबर नहीं लगता है. और सिंचाई जल 60% सिंचाई जल की बचत होती है तथा पौधा उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है और कीट एवं बीमारियों के प्रकोप में भी कमी आती है. एरोबिक धान लगाने से पर्यावरण में हानि पहुंचाने वाले मीथेन गैस के उत्सर्जन में 80-85% कमी आती है. इसमें मजबूत जड़ तंत्र विकास होने के कारण फसल में गिरावट नहीं होती है. और ये सबसे बड़ी खूबी है कि

0: आप देखोगे कि फूल है, पत्तियां हैं, या तना देखोगे, तना भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चपटा हो गया है। तो ये सारे आप अगर देखोगे ना, तो ये लक्षण देखते के साथ ही पहचान जाना कि हमारे तिल को गुम्मा बीमारी हो गई है।
1: मैम, जो भी आपने लक्षण बताए उस हिसाब से हमारे किसान भाई बहन गुम्मा रोग की पहचान कर सकते हैं। साथ ही आपने बताया कि हरा तिला इस रोग का वाहक होता है, और आपने ये भी कहा कि जिस तरह का अभी मौसम है वो रोगों को हवा देता है, तो क्या मतलब मौसम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है?
0: हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा भूमिका है मौसम का। जैसे कि आप देखोगे, गर्मियों में आप जो तिल लगा रहे हो, खरीफ में लगा रहे हो, जो आप कह रहे हो कि पानी का तनाव या मॉइस्चर स्ट्रेस जिसको कह रहे हो, गर्मी में फील्ड पे ज्यादा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप देखोगे हरा तिला का पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि उसकी पैदावार कब ज्यादा होगी, तो खरीफ और समर की बात करें, जब गर्मा तिल की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो जो आपका खरीफ है उसमें हरा तिला का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप देखोगे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जा रही है। आप दिन और रात का तापमान देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंतर कितने का पड़ेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री का। लेकिन अगर आप अभी गर्मा सीजन की बात करोगे, तो दिन का टेम्परेचर देखोगे और रात के टेम्परेचर में कम से कम हमें 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये सारा जो हमारा आप कह लो जो तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई और बारिश हो गया, और बारिश भी किस तरीके का, गर्मी के सीजन में जैसे आपने तिल लगाया, तिल लगाने के 1-1.5 महीने के बाद हल्की फुल्की बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से तापमान एकदम पिक पे पहुंच गया, और इस तरीके का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उस केस में आप देखोगे कि हरा तिला का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको अपने पौधों पर नज़र आएगा। इसीलिए गर्मी में फाइलोडी ज़्यादा होता है, और खरीफ में आप देखोगे तो फाइलोडी का अटैक कम होता है।
1: यानी कि गर्मी और कम नमी, साथ ही अगर हरा तिला भी हो जाए, तो मतलब फाइलोडी रोग के लिए ये खतरे की घंटी होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मैम, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस रोग से किसान भाई बहन अपने फसल को कैसे बचा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप हम अलग अलग रोगों में क्या करते हैं, तो जैसे हम जब ये जो हमारा हरा तिला से होने वाला फाइलोडी बीमारी है, ये जो हरा तिला है ये तो हमारा सिर्फ वाहक है, इसको बीमारी को जो फैलाता है वो एक फाइटोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है, जिसको हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप में जा करके देखते हैं। तो अब एक तरह से ये एक आपका वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी का सबसे पहला बचाव यही होता है कि जहां आपने जिस पौधे को देखा, तुरंत उखाड़ करके उसको या तो जमीन में गाड़ दे या जला दे या कहीं दूसरी तरफ फेंक दे, आसपास में ना रहे, सबसे पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा, तो बीज उपचार की, ठीक है, अगर आप जैसे बीज लगा रहे हैं तो उस केस में आप 5 ग्राम इमिडा क्लोरोपिड या कुछ वैसे थायरो मिथॉक्सिम, इनको यूज़ करके आप बीज उपचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो हो गई हमारे बीज उपचार की बात, लेकिन अगर हम हरे तिले को कैसे नियंत्रण कर ले, क्योंकि हमारा मेन वाहक तो यही है हरा तिला, जिस पौधे पे जा करके बैठ रहा है बीमारी वाले पौधे से, जो हमारा स्वस्थ पौधा है उसको भी बीमार कर दे रहा है, तो उस केस में है कि आप कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोरोपिड आप लगा लो, आप उसको आधा मिलीलीटर पानी, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप बना सकते हो, या डाई मेथोएट से आप 1 से 1.5 लीटर डाई मेथोएट मिलीमीटर ले करके आप 1 लीटर पानी में घोल करके बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हरे तिले को नियंत्रण कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब बना लिया घोल, उसको छिड़कना कब है, ये भी बहुत मुख्य है। एकदम या तो आप सुबह सूर्योदय होने से पहले या आप सूर्यास्त के बाद, जनरली आप देखोगे कि हम किसान भाई, इवन हम जो वैज्ञानिक है, वो भी हमें छिड़काव करना रहता है, तो हम 4 बजे शाम के बाद ही करते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ता है बीमारियों का रोकथाम में।
1: तो मैम, यानी कि जब अधिक तापमान हो दोपहर हो तब छिड़काव नहीं करना चाहिए?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला कि जब मॉइस्चर स्ट्रेच हमारे फील्ड में बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे उसका नमी का तनाव बढ़ेगा ये बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उस केस में क्या है कि गर्मियों में आप देखोगे कि हर 4 दिन के बाद आपको महसूस होता है कि हमारा जो जमीन है उसको पानी की जरूरत है, फसल अब पानी मांग रहा है। तो बहुत ज्यादा नमी भी नहीं देना, जब जरूरत पड़े तो हल्का फुल्का

0: आप अपने जो खेत है उसको नमी से बनाए रखें उसके अंदर, ये भी बहुत जरूरी है।
1: जी मैम, तिल दो तरह के होते हैं, सफेद और काले तिल भी होते हैं, तो क्या दोनों ही तरह के तिल में ये बीमारी लगती है?
0: बिल्कुल, ये आपका काले तिल में भी लगती है और सफेद तिल में भी। जहां तक कि हम बात करें, अब जैसे किसानों की बात कर लो आप, काले तिल तो उगाते ही हैं किसान। जैसे आप कह लो कि फाइलोडी बीमारी की जिस तरीके से मैं सर्वे कर रही थी, तो मैंने खरीफ में भी और मैंने गर्मा में भी सर्वे किया। तो जैसे खरीफ में मैं आपका पूर्णिया गई, वहां पे आपका जो वैरायटी लगा रहे थे सफेद तिल की, GT5 लगा रहे थे, प्रगति लगा रहे थे, जिसको MTU 75 के नाम से मार्केट में मिलती है, काले वैरायटी कांके सफेद की भी वैरायटी लगा रहे थे, काले तिल में आपकी कृष्णा की वैरायटी लगाई जा रही थी। फिर इधर खरीफ में अरवल की तरफ गई, वहां पे भी ये लोग सेम सफेद की वैरायटी में GT5 वहां पे लगा रहे थे, वहां पे भी प्रगति MTU 75 लगा रहे थे, और आपका काले तिल में कृष्णा कुछ जगहों में लग रहा था। अब वही बात करें अगर हम गर्मा तिल की, तो गर्मा तिल में भी सेम GT5, क्योंकि GT5 जो एक ऐसा वैरायटी है आपके राजस्थान से रिलीज वैरायटी है और ये बहुत पॉपुलर है, और सफेद तिल तो वैसे भी आप गया जिला के बेल्ट में आप देख लो, जैसे गर्मा में हम गया और आपका सुपौल जा करके हमने सर्वे किया, तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा पे कृष्णा तो मुझे लगता है एक दो जगह पे लगाया, खरीफ में तो फिर भी लोगों ने लगाया था, ज्यादातर लोगों ने GT5 लगाया, और GT5 हो गया, GT6 हो गया, ठीक है, काले तिल में कहीं कहीं ये लोग GT10 भी लगाते हैं, जो कि मैंने खरीफ में देखा कृष्णा के साथ कुछ किसान के, लेकिन इन्होंने समर में मैक्सिमम इन्होंने GT5 GT6 लगाया था। इस पर्पज से लगाते हैं कि जैसे आपने सुना होगा तिल की, आपने खाई भी होगी, तिल पट्टी हो गई, फिर तिलकुट हो गई, जो गया के बेल्ट में बहुत प्रमुख मिठाई है, मशहूर मिठाई है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बीमारी जो मैंने सर्वे किया, तो काले तिल के अपेक्षा सफेद तिल में फाइलोडी का अटैक ज्यादा था। मतलब अगर आप देखोगे 5% से लेके 10-12% तक दिखे, वहीं काले तिल में मुझे 5% से कम, 2%, 3% इसी तरीके का बीमारी का मुझे प्रकोप दिखा।
1: मतलब काले तिल में बीमारी होती है पर थोड़ी कम,
0: हाँ, अपेक्षाकृत सफेद तिल के कम होती है।
1: जी मैम, तो मैम आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन जो तिल की खेती करते हैं उन्हें आज इस चर्चा से काफी कुछ जानने को समझने को मिला होगा। मैम आप अगर अंत में कोई संदेश देना चाहें हमारे किसान भाई बहनों को।
0: बिल्कुल, मैं उनसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से सर्वे के दौरान मैंने किसानों से बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे तो काले तिल में कोई बीमारी नहीं आती, सफ़ेद वाले तिल में बीमारी आती है, जिसमें भी ज़्यादा प्रकोप आपका गुम्मा बीमारी का है, जो कि इधर कुछ 4-5 सालों में ज़्यादा हो गया। क्योंकि आप यही 4-5 सालों में देखोगे ना, मौसम का जो उतार चढ़ाव है, कभी भी गर्मियों में भी अगर बारिश हो जा रही है तो उस तरीके का आपको टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो तीनों मिल करके आपको इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक बन रही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जैसे ही आपको फील्ड में कोई भी गुलदस्ते नुमा पौधा दिखे, उसको सीधे उखाड़ करके फेंक दीजिए, नियमित रूप से बीज उपचार करके ही खेतों में बीज लगाए, या अगर आपको दिख जाए बीज उपचार करके नहीं लगाया, आपके 10 दिन 15 दिन 25 दिन के बाद अगर खेतों में गुम्मा बीमारी दिख रही है, तो आप कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप हरा तिले की पॉपुलेशन को, मेन हमें हरा तिला का पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो इस बीमारी की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं।
1: मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों, गुम्मा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, और आज की चर्चा से हमने जाना कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जा सकता है और किस तरीके से अगर बीमारी हो जाए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए। जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के,
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
10: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो

0: तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल

0: तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते के बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: जुड़े हैं 90.8 FM ग्रीन से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। कहानी है सुधा चंद्रन की। मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया। 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी। शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। उनके गुरु के एस रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना लिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग। लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं। सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे। किस्मत में कुछ और भी लिखा था। 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन। 2 मई 1981, तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया। डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना। एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा, अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर पीके सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैर लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो सब संभव है। बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता। लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम, हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है, उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई, मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी, उसमें भी उन्होंने काम किया। कई सारे हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हालांकि मयूरी तेलुगु फिल्म थी, लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करें तो मालामाल वीकली, उसमें आपको वो ठकुराइन का किरदार याद तो होगा जो बड़ी कठोर थी। शोला और शबनम में गोविंदा की बहन बनी थी। रघुवीर में आरती वर्मा और मिलन फिल्म में जया। अंजाम में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। चश्मे बद्दूर, हीना, रिश्ते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम बिन जाऊं कहां, विष्णु पुराण, जमी से आसमां तक जैसी बहुत सारे धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। किस देश में मेरा दिल है, कस्तूरी में मासी का किरदार निभाया, माता की चौकी में श्वेता देवी का किरदार निभाया। तो उन्होंने अपने नृत्य के साथ साथ एक्टिंग भी की। वैसे आपको बता दूं, सुधा चंद्रन के पिताजी एक अभिनेता भी थे, साथ ही उन्होंने USIS कंपनी में काम भी किया था। और उनकी बेटी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और साथ ही उन्होंने अभिनय में भी अपना रंग जमाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम हार न माने, हम अपने हौसले को कभी टूटने ना दें, तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हमारे आपके सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि अब शायद हमसे और नहीं होगा, अब हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी, हमारा सपना हमसे रूठ गया। लेकिन जिंदगी में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार ना माने, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। और ध्यान रखें कि आप खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। किसान भाइयों को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज मैं लेकर चलती हूँ आपको धान में शीत ब्लाइट के प्रबंधन की ओर, और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एपी भगत, प्राध्यापक पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, जब बात आती है रोगों की और वो भी धान में, तो ये जो शीत ब्लाइट रोग है वो हमारे धान की फसलों के लिए एक प्रमुख रोग बनकर रह गया है, और ऐसे में हम सभी देख रहे हैं कि पहले के चार पाँच साल से धान की फसल में 60% तक गिरावट आई है, और ऐसे में किसान भाइयों के लिए शीत ब्लाइट का प्रबंधन करना एक चुनौती बन गया है। तो सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शीत ब्लाइट नाम क्यों पड़ा इस रोग का?
10: आप किसान भाई जानते होंगे कि आप जब धान लगाते हैं अपने उत्पादन के लिए अपने, तो क्या होता है कि आप जब फसल हमारा 30 से 40 दिन का हो जाता है रोपने से, जिसमें हम लोग घास उसमें खेत से निकालने के लिए तैयार होते हैं, उस समय देखते हैं कि बहुत हमारा खेत स्वस्थ होता है, और उस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि घास निकालने के बाद जब खेत में घूमने जाते हैं कुछ दिन के बाद, देखते हैं कभी कभी कि हमारे खेत में धब्बा लग जाता है। यह जो धब्बा है शीत ब्लाइट कहलाता है, जो आप लोकल भाषा में जो हमारा क्षेत्र यह है इसमें हम लोग गलसा गलसा कहते हैं। यह गलसा क्यों होता है, हाँ, गलसा जैसे है, सिथ बाला ब्लाइट, उसको हम लोग आवरण झुलसा भी कहते हैं। आवरण झुलसा मतलब हुआ कवर, जैसे आपके धान के पत्ती को खींचते हैं तो एक कवर होता है नीचे में, पत्ती के नीचे, उसी आवरण पर यह लक्षण सबसे पहले दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसको सीत ब्लाइट बोलते हैं और उसका हिंदी में आवरण झुलसा बोलते हैं।
5: अच्छा, आवरण झुलसा।
10: जी हाँ।
5: और इसके बाद सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि शीत ब्लाइट वैसे तो रोग हानि ही पहुंचाता है, चाहे वो मनुष्य हो या धान हो या फसल हो, जो भी हो। तो रोग की बात कर लेते हैं, शीत ब्लाइट रोग की, तो ये धान की फसलों को कहाँ तक हानि पहुंचाता है?
10: आप किसान भाई जानते होंगे यह शीत ब्लाइट जो हमारा है, यह जो गलसा रोग है, आपको अगर शुरू अवस्था में लगा तो देखेंगे कि उग्रता के हिसाब से, उग्र जब रोग होता है पूरे बाली तक आ जाता है, झुलसा ये हमारा पूरे बाली तक आ जाएगा, तो हमारा जो भोजन बनाने की क्रिया है पत्ती द्वारा वह समाप्त हो जाता है। लगभग हमें यह रोग 50% तक हानि हो जाता है। आधा जो फसल हमें 10 क्विंटल होना चाहिए उस खेत से हमको 5 क्विंटल होगा, मतलब 50% तक का हानि को देखा गया है इसमें।
5: यानी कि 50% तक की गिरावट हो सकती है फसलों में, धान की फसलों में, या फिर यूँ कहें कि धान की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी होता है कि हम जाने कि हमारे इस धान की फसल को शीत ब्लाइट रोग लग चुका है, और इसके लिए ज़रूरी है पहचान। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इस रोग का पहचान कैसे किया जाए?
10: आप किसान भाई देखेंगे कि जब आपका पौधा 50 से 60 दिन हो जाएगा तो आपके जो आवरण है, जो जहाँ पर पानी की सतह है, पानी की सतह से 1-2 इंच ऊपर देखेंगे आवरण पर या शीत पर भूरा रंग का धब्बा बनता है। यह भूरा रंग का धब्बा जब बढ़ता है तो यह पत्ती की ओर चला आता है। जब पत्ती पर आता है तो हम पत्ती पर देखते हैं भूरा से चिकता नेमा, सांप का जो इस धब्बा होता है सांप के ऊपर, भरकदार चमकदार, उस तरह के पत्ती पर अनियमित आकार का, कोई निश्चित नहीं है कि गोल होगा, वो अनियमित आकार का धब्बा दिखाई पड़ता है, बहुत चमकीला होता है। और उसके बाद यह धब्बा जो है आपके पूरे पत्ती को झुलसा देता है और धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाता है। इसका पहचान यही है, जिसको आप लोग बाद में क्या कहते हैं कि झुलस गया, गलस गया, आप लोग बहुत देर से देखते हैं, अगर शुरू अवस्था में देखेंगे तो आवरण पर भूरा रंग का धब्बा बनेगा, जहां पानी से 1-2 इंच ऊपर जो हमारा धान का पौधा है, जो पत्ती के नीचे जो कवर किया हुआ है डंटल, वो आवरण जो है, वह शीत जो है, उसको उस पर धब्बा दिखाई पड़ता है। बाद में यह क्या होता है कि पूरे पत्ती पर झुलस जाता है।
5: तो डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की आवरण पर भूरे रंग का धब्बा अगर आपको दिखाई दिया जाए तो आप समझ लें कि वो प्रारंभिक अवस्था है शीत ब्लाइट रोग का, और अगर आप उसका उपचार करते हैं उसी समय तो आप इससे बच पाएंगे, इस रोग से अपने धान के फसलों को बचा पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शीत ब्लाइट रोग है ये हमारे धान की फसलों में फैलता कैसे है?
10: किसान भाई आप जानते होंगे कि आप जब भी खेती बाड़ी करते हैं तो हम स्वस्थ बीज का उपयोग करते हैं। जब स्वस्थ बीज का उपयोग किए, बिचरा लगाए, तो क्या करता है कादो करने के समय जो शीत ब्लाइट का जो बीज है, इस रोग, यह रोग जो है फफूंद के कारण होता है। इस फफूंद का नाम है राजेक्टोनिया सोलना है। यह फफूंद जब अपनी पूर्ण अवस्था करके फिर यह जो बीज को छोड़ देता है, उसका गोल गोल बीज होता है, जो सरसों का दाना आप जानते हैं जो बहुत छोटा होता है, उस तरह का बीज इसका होता है जो जमीन में पड़ा हुआ मिलता है। जब आप कादो करते हैं तो यह बीज तैर करके ऊपर आ जाता है, सो ऊपरी सतह पर। जब आप कादुआ करते हैं उसके बाद हम वह बीज दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसका भी रंग भूरा होता है, मिट्टी में गंदा पानी होता, नहीं दिखाई पड़ता है। बाद में आप देखेंगे कि जब यह दाना, यह जो आपका फफूंद रोग कारक जो है, इसका जो बीज है वह पौधे से चिपक जाता है, जैसे सट जाता है तो वह अपना आपस में वह अंकुरण हो जाता है, क्यों उससे कुछ संबंध है कि उसके साथ जैसे चिपकेगा वह अपना बीज जो है अंकुरण अंकुरित करके पौधे में प्रवेश कर जाता है, पौधे की पत्ती में। जब प्रवेश करता है तो वह अंदर में पौधों के आवरण में, जहाँ से पानी की सतह से चिपक गया हमारे आवरण पर, शीत पर, उसके बाद वह मल्टीप्लाई करता है, अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, उसके बाद वो धब्बा का रूप में हमको उभर कर आता है। तो यह जो बीज है किसी एक पौधे में लगेगा, किसी एक एक धान के पौधे में, फिर दूसरे पौधे में कैसे कंटामिनेट होगा कैसे, तो एक पत्ती के द्वारा जब वृद्धि हो गया, पत्ती में जब यह लक्षण आता, दूसरे हमारे पौधे में जो पत्ती है उससे चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, आपस में मिला हुआ रहता है, तो उस पत्ती में चला जाता है, उस पत्ते से उस पौधे में चला जाता है, फिर यह इसका वृद्धि जो होता है उसी पौधे से, आक्रांत पौधे जहाँ पर हम लगाए हैं, आक्रांत पौधे से अगल बगल फैलेगा। यह हवा द्वारा नहीं फैलता है, यह कंटेक्ट से फैलता, आपस में संपर्क से फैलता है। एक एक लक्षण ये है फैलने का, यह पूरे खेत में नहीं फैलेगा, जहाँ लगा है, जहाँ यह लक्षण दिखाई पड़ा उसी के आसपास यह दिखाई पड़ेगा। दूसरा बात क्या होता है कि हमारे किनारे जो घास है, हमारे आर जो बंद है, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, उस पर घास बहुत होते हैं, उस घास में भी ये पलते हैं, और वह घास आक्रांत होता है। घास हमारा जो है पौधे से सटा हुआ रहेगा तो वहाँ जल्दी जल्दी फैला जाता है, जिसको आर के किनारे फैलता है। उसमें भी एक देखते हैं, आर का जो पूर्वी आर है वहाँ पर कम दिखाई पड़ता है, जो पश्चिमी आर है उसके तरफ जो पौधे हैं उस पर ज़्यादा होता दिखाई पड़ता है यह रोग। क्यों ऐसा होता है कि 9 से 10 बजे तक पश्चिमी किनारे में हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलता है, और पूर्वी किनारा जो होता है हमारे प्लॉट का, वहाँ धूप जल्दी उग जाता है, मॉइस्चर कम देर रहता है, इसलिए वहाँ कम दिखाई पड़ता है। जबकि हमारा पश्चिमी किनारा जो होता है, कोई भी बंड के किनारे जो पौधे हैं वहाँ पर यह रोग ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यह रोग जो किनारे में दिखाई पड़ता है ड्यू टू घास, जैसे घास का अगर हम सफाई सुथरा करते रहें तो हमें यह रोग पश्चिमी किनारे की ओर नहीं बढ़ता है। और यह खेत के अगर 10 हमारा एक बीघा खेत है, या 10 कट्ठा खेत है, या 5 कट्ठा, जो भी हमारा खेत का क्षेत्र है, वहाँ यूनिफॉर्मली सब जगह नहीं दिखाई पड़ेगा। जहाँ तहाँ आपका पौधे से संसर्ग में जहाँ बीज लग गया इसका, आपके फफूंद का, वहीं पर यह रोग फैलता है। यह किसान भाई इस लक्षण यही है, अगर यह जब आप पहचानेंगे तो एक डंटल तोड़ लें बीच बीच से, और उसके डंटल को आवरण पर देखें भूरा रंग का है कि नहीं।
5: अच्छा, तो ये बातें हो गई है कि यहाँ पर ये कैसे फैलता है ये रोग, और इसके बाद डॉक्टर साहब जब रोग फैल जाता है तो ज़रूरी होता है उसका उपचार करना, और कहीं ना कहीं ये देखा भी जा रहा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए शीत ब्लाइट का उपचार करना, या फिर इसे स्थायी रूप से इसे बंद करना, या फिर इसे छुटकारा पाना, एक चुनौती भरी जो समस्या है वो उभर कर आ चुकी है। तो इसलिए डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इससे कैसे बचे और इस रोग का उपचार कैसे किया जाए।
10: किसान भाई, आप जानते हैं कि जब भी रोग लगता है तो हमें उपचार करना चाहिए, या हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए, तभी तो हम उत्पादन पूरा पूरा ले सकते हैं। तो होता है क्या है कि हमारे किसान भाई उसको पहले तो अपने जब वह खाद बीज घास निकालने के बाद, जैसे 30 से 35 दिन में घास निकालते हैं हम लोग रोपाई के बाद, उसके बाद हमें 15 से 20 रोज जो है में खेत घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे डंटल पर जो आवरण जमीन जो पानी की सतह से जो हमारा डंटल है वहाँ उसको निचोड़ करके तोड़ करके देखिए कि उस पर धब्बा हुआ तो नहीं पड़ा है। अगर भूरे रंग का धब्बा आप देखते हैं और अधिक संख्या में देखते हैं तब खेत में हमें दवा छिड़कने की ज़रूरत है, अगर भूरा धब्बा नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि वह आप खेत जो है रोपनी से 60 दिन के बाद जाते हैं देखने के लिए, जब वह आक्रांत थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो जब किसान भाई यह धब्बा देखते हैं पत्ती पर तो क्या कहते हैं कि हमें खेत में रोग लग गया, लगता है वही गलसा है। सही, गलसा तो है, अगर हम जैसे पत्ती पर जो लक्षण बताए भूरा रंग का चमकीला भड़कदार धब्बा दिखाए पत्ता पत्ती पर, तो नीचे की ओर से होता है ना कि ऊपर की ओर से होता है, तो आपको झुक कर देखना पड़ेगा हमारे पत्ती में क्या क्या लक्षण आया है कि नहीं आया। तो उस अवस्था में अगर धब्बा हमें दिखाई पड़े तो किसान भाई दवाई का छिड़काव करेंगे। इसमें हमें दवाई का छिड़काव करने के जिस खेत में बार होता है, इसकी हम लोग ये भी कहते हैं जहाँ जिस क्षेत्र में बार बार हो, साल में हमेशा होता हो, आता रहे यह रोग, तो आप पौधे की रोपाई जो है थोड़ा सा दूरी बढ़ाकर करें, जितना सघन करेंगे उतना रोग फैलेगा, उतना रोग ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम रोप की बढ़ा देंगे, दूरी बढ़ा देंगे एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच में, तो हमें हवादार मिलेगा। जब हवादार मिलेगा तो वहाँ पर मॉइस्चर जो है, वातावरण जो ये है, वो पानी की मात्रा उस धान के आसपास कम होगा, जहाँ पर वो लगा हुआ नीचे जमीन के सतह पर, तो वहाँ ह्यूमिडिटी कम हुआ तो वहाँ रोग नहीं होगा। जहाँ सघन रोपाई किए आपने तो वहाँ ह्यूमिडिटी जो पानी की मात्रा है वहाँ ज़्यादा देर तक टिका रहा, तो वहाँ पर रोग फैलने की ज़्यादा संभावना होता है। इसलिए रोपाई उस खेत में थोड़ा दूरी दूरी करें, जिससे कि लाइट रोशनी जल्दी जाए, और लाइन स्विंग करना जरूरी है। जैसे आप पूरा पश्चिम लाइन स्विंग किए तो आपको फायदा क्या है कि धूप सभी पौधे में बराबर पड़ेगा और वहाँ पानी की मात्रा जल्दी से उड़ जाएगा, उस वजह पानी की मात्रा कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, वाष्प वहाँ पर कम रहेगा, तो रोग कम होगा। अगर रोग लग ही जाता है, लग गया है, तब उपचार करने के लिए हम लोगों को वहाँ पर दो दवाई बाजार में, हम लोग ज़्यादा ये दवाई एक है और उस बाजार में दो नाम से सीथमार, आप लोग सुने होंगे, सीथ मतलब है सीथ ब्लाइट से नाम रख के रखा उन्होंने, सीथ मार बोलते हैं मारने वाला। तो इस सीथ मार जो दवाई है बहुत, यह केमिकल नाम अलग है, वैलिडामाइसिन कहते हैं हम लोग इसको, वैलिडामाइसिन। ये वैलिडामाइसिन जो केमिकल है, इस वैलिडामाइसिन का उपयोग करना चाहिए। बाजार में भिन्न भिन्न तरह का, पहले तो मैं जानता था दो ही दवाई, राजोसिन नाम करके एक दवाई आता था, इसी का नाम है केमिकल, बाजारू नाम राजोसिन है। तो कहने का मतलब ये तरह का वैलिडामाइसिन का उपयोग करना है। वैलिडामाइसिन का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें 2 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसी जगह छिड़कना है जहां हमें रोग दिखाई पड़ता है, और सभी जगह नहीं। अगर ये हवा वाली रहती, हवा द्वारा फैलता, तो हम पूरे बोलते हैं पूरे प्लॉट में छिड़क दीजिए, पूरे खेत में छिड़किए, लेकिन यह छिड़काव इसलिए हम लोकलाइज करते हैं, उसी जगह करते हैं कि जहाँ उससे बढ़ेगा नहीं
9: जी।
10: हाँ, किसान भाई के साथ कंसेप्ट यह है कि कोई भी दवा को पूरे खेत में छिड़क देते हैं, तो हमको उसी जगह छिड़कना है दवाई, सभी जगह नहीं, जहाँ हो वहाँ छिड़केंगे तो वह बढ़ेगा नहीं।
5: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जब आप रोपाई करते हैं तो समय समय पर आकर आप देखें कि कहीं धब्बे तो, यानी कि भूरे रंग के धब्बे तो नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आप अगर पौधों की रोपाई करते हैं तो थोड़ी दूरी बनाकर करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि पौधों को रोशनी मिल पाएगी। और इसके बाद डॉक्टर साहब ने शीत मार एक दवा बताई है, वो भी आप बाजार से लेकर जो फसलों हैं, धान की फसलों पर दे सकते हैं। हाँ, वैलिडामाइसिन जिसे कहा भी जाता है, यानी कि शीत मार को वैलिडामाइसिन भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, आप सभी से आशा करते हैं कि आज जो भी सुझाव मिले हैं आपको डॉक्टर एपी भगत जी से, आप उसे अपनाएंगे और उसे अपनाकर अपने धान के फसलों को शीत ब्लाइट से बचा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर से मुलाकात होगी किसान भाइयों आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
11: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो, नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
12: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
12: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
13: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
14: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
13: क्या क्या क्या?
12: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
13: अच्छा,
14: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
12: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
15: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
12: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
15: 11 दोस्त?
12: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
15: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
12: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
15: लेकिन ऐसा क्यों?
12: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
15: टीकी, तो इसका हल क्या है?
12: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
15: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
16: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
17: हर घर सूर्य घर।
18: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
19: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
20: IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग एक के पाठ रसोई घर के अभ्यास पर आधारित ये कार्यक्रम बर्तन बोलते हैं।
21: मुन्ना और मुन्नी रसोई घर की खिड़की के पास खड़े थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मुन्ना मुन्नी से बोला,
22: मुन्नी यह किसकी आवाज आ रही है?
23: हाँ, मुझे भी आ रही है, कौन बोल रहा है?
22: चलो देखते हैं।
23: हाँ हाँ।
21: मुन्ना और मुन्नी खिड़की से अंदर झांकने लगे तो क्या देखा, चकला और बेलन आपस में बातें कर रहे हैं। चकला बेलन से बोला,
24: अरे बेलन भाई, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। घर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं हूँ, पता है, हर रोज रोटी बनाने के लिए माँ मुझे उठाती है।
25: हाँ हाँ चकला भाई, पर रोटी तो मैं ही बेलता हूँ।
24: और इसीलिए तो हम दोनों साथी हैं, साथी।
25: बिल्कुल सही कहा आपने चकला भाई।
21: तभी चाकू बोला,
26: नहीं नहीं नहीं नहीं, माँ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो मैं हूँ चाकू। मैं ही तो फल सब्जी काटता हूँ, टुकड़े बनाता हूँ, गाजर मूली प्याज टमाटर सब काटता हूँ।
21: इसी बीच थाली बोल उठी,
27: और मुझे तो देखो, मैं हूँ थाली, हर रोज सभी मुझ में ही तो सब्जी रोटी लेकर खाते हैं, मुझे तो बजा भी सकते हैं। मैं ना हूँ तो माँ खाना किसमें परोसेगी? इसलिए मैं सबसे जरूरी हूँ।
21: तभी मुन्ना मुन्नी से बोल उठा,
22: बाबा रे, हमें तो लग रहा था कि बस हम ही बोलते हैं, यहाँ तो बर्तन भी आपस में बोल रहे हैं।
23: हाँ देखो ना।
20: बर्तन बोलते हैं, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आचार्य शिक्षा शास्त्र CIET NCERT, विषय संयोजन सह आचार्य डॉक्टर रमेश कुमार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग NCERT, आलेख डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा, कलाकार किशोर सहजानी, ममता मलकानी, कीमती आनंद, तारक और आकाश आहूजा, ध्वनिंकन बटिलैंग लिंगडो और मयंक कुमार, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
0: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
3: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
0: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
3: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से, अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
0: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी, उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
3: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो, बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहां जहां पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहां बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियां हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
19: जी सर। सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया, तो बुआई का उचित समय क्या है?
3: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें दो तीन तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भुट्टे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भुट्टा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भुट्टा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
19: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
3: बीज दर जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
19: और बुआई की विधि क्या?
3: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है तो हमारा, और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
19: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में।
3: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो

0: एसकेएम 1 है, डीएचएम 121 है, डीएचएम 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है, ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
1: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि डीएपी दे रहे हैं तो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है, तो जो आपका डीएपी से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें, तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या डीएपी से दें या एनपीके से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप डीएपी से दें या जो भी सोर्स है उससे दें और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले, और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
1: सर, बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
0: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है, तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास, क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े, और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है, तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए, तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं, कॉब बोरर आता है बाद में भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं उससे भी बच जाता है, तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
1: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
0: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, यदि समय समय पे बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है तो एक हल्की सिंचाई करें, चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन के होते हैं उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है, तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है, तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी

0: उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं, तो पानी निकल ही जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है। नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है। उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है। और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है। उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है, और इस एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वेराइटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदे, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदे, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदे, खुला हुआ बीज नहीं खरीदे। बीज पैकेट खरीदे, उसका रैपर देखें, और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए, और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेड़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना

0: काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भूटा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जीपीएस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन पीएच, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया, उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस तकनीक इत्यादि का यूज़ करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी ये चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के ज़माने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
12: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
14: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
15: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
16: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
15: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
16: आपकी सेहत की बातें,
15: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
16: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
15: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
16: वो कहाँ पर?
15: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
16: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
15: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हिम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियां लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स है बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें यह नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएँ लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं, तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खासतौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खासतौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, या आपका जेंडर नहीं देखेगा, तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें, और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएँ, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
5: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आज

मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान में, धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना मात्रा में है, और ये सुविधा हमारा किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व कम है और कौन सा पोषक तत्व उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, आप लोग ज्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपको जितना जरूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डाले तो कितना डाले, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वेराइटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर और अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके, मिट्टी को परीक्षा करके, परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे अगर धान में सबसे ज़्यादा जरूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा जरूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले, सबसे ज़्यादा जरूरी है जिस जो पोषक तत्व, उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं, धान के रोपाई कर रहे हैं, तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए। और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टिलरिंग होता है, टिलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए। और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय, उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट या DAP से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय, उसके पहले, बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, मतलब पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए, इसको अगर हम लोग इसका निदान करें तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए।

0: ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसके इसको देना बहुत जरूरी है। जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इन सब का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फॉस्फोरस पोटास दे देना चाहिए और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत जरूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है, जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं। इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में, जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60 से 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को एक हेक्टर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसका एक सोर्स है, जो कि हरी खाद में। और एक हुआ, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पोटास भी मिल सकता है, जैसे हुआ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जो है फॉस्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज़ करेंगे तो हमारा फॉस्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम, जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा, जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जैसे हुआ कि नाइट्रोजन बोले हैं कि 3 बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम 3 बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका 3 हफ्ता या 4 हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टीलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिकल इनिशिएशन, उसका पहले एक बार। तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फॉस्फोरस और पोटास, फॉस्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फॉस्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए। लेकिन पोटास को अगर हम 2 बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ पीआई या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा जहाँ पर धान के बाद हुईट, धान के बाद गेहूँ, धान के बाद गेहूँ करते हैं वहाँ पर जिंक की कमी महसूस होता है। तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहाँ पर उसी फील्ड में यूज़ करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
9: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक खास विषय को लेकर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा सर हैं, और आज का जो टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है रबी फसलों की जैविक खेती। तो आज इससे संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद
9: डॉक्टर साहब। जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले ये जैविक खेती होता क्या है उसके बारे में जान लें।
10: बिल्कुल सही। ऐसा है कि जैविक खेती का अभिप्राय होता है विषमुक्त खेती, यानी ऐसी खेती जिसमें है किसी तरह के ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एक्चुअली देखिए, हरित क्रांति के बाद हम उत्पादन निश्चित रूप से हमारा बढ़ा है, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अन्य फसलें हैं, उसमें हमारा उत्पादन बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा रासायनिक उर्वरक है या कीटनाशी है या व्याधिनाशक रसायन है, इनका प्रयोग भी काफ़ी बढ़ा है, और इसके चलते हुआ ये है कि हम बीमारियों का बड़ा ही प्रकोप बढ़ा है। यहाँ पर मैं बताऊँ कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी इन रसायनों के कारण होता है। यहाँ से पंजाब से एक ट्रेन चलती है, लोग उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, क्योंकि वहां पर रसायनों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो रसायन के ज्यादा प्रयोग के कारण उसके जो हमारे खाद्यान्न हैं, या यहां तक कह लें कि जो चारा है, जो जानवर हमारा खाता है, उसमें उसकी काफी मात्रा आ जाती है, काफी अंश आ जाता है, और उसको जब हम खाते हैं तो कई तरह की बीमारियां, चाहे नस संबंधी बीमारी हो, मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो, हृदय संबंधी हो, किडनी संबंधी हो, बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए आज एक बार पुनः लोगों को को ध्यान इस बार आया है कि क्यों नहीं हम रसायन विहीन खेती करें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कि हमें बीमार न होना पड़े। अब मैं बताऊं कि हमारे देश में तो ठीक है आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं जैविक के उत्पाद पर, लेकिन आज जो हमारे दूसरे देश हैं जहां पर पैसा है वह चाहते हैं कि हमें काफी मिले। तो जो किसान हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें उतने ही उत्पादन करके, तो वह यदि जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप में उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अब मैं, आपका प्रश्न था कि जैविक खेती है क्या, तो हम इसको बड़ा संक्षेप में किसान की भाषा में ये कहें कि जो रसायन विहीन या विषविहीन खेती है, यानी हम उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन भी करेंगे तो ऐसे चीजों के माध्यम से करेंगे कि जिससे कि किसी तरह का उसको हानि ना पहुंचे। हम कीट का भी प्रबंधन करेंगे तो ऐसे ही चीजों के माध्यम से करेंगे जिससे हमें हानि ना पहुंचे। साथ ही साथ हम यदि कीट प्रबंधन भी करते हैं तो उसी ढंग से करेंगे। यदि हम खरपतवार नियंत्रण ही करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण भी चाहे मैनुअल करें चाहे ऐसे विधि से करेंगे जिससे कि उसका दुष्प्रभाव, उस रसायन का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं हो। क्योंकि आप जानती हैं आजकल खरपतवार नाश करने के लिए बहुत तरह के रसायन का प्रयोग होता है, कीट के नियंत्रण के लिए, व्याधि के नियंत्रण के लिए बहुत तरह के रसायन बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है।
9: जी, तो अगर इसके वैश्विक बाजार की हम बात करें तो जैविक खेती का वैश्विक बाजार अभी कितना बड़ा है और आगे इसके बढ़ने की कितनी संभावना है?
10: बहुत समसामयिक आपने प्रश्न किया। ऐसा है, देखिए कि यदि वैश्विक बाजार की बात करें तो ये अभी लगभग 64 खरब रुपए का बाजार यहाँ पर है वैश्विक बाजार, और उम्मीद ये की जाती है कि 2025 तक 164 खरब रुपए का बाजार हो जाएगा। अच्छा। यानी कि काफी स्कोप है कि हम अपने उत्पाद को बेच सकें और उससे हम पैसा कमा सकें। देखिए यदि आप सिंपल एक लौकी की ही बात ले लें, कद्दू की बात ले लें, तो लौकी कद्दू यदि आप सीधे रासायनिक विधि से पैदा करते हैं, यदि उसका 10 रुपया कीमत है, तो उसी को यदि आप जैविक विधि से उत्पादन करते हैं तो आप उसका 2 गुना 3 गुना यहां तक 10 गुने तक आप उसका फायदा कमा सकते हैं। लेकिन अब दो तरह से आप बेचते हैं, एक तो लोकल बाजार में बेचते हैं तो वहां पर उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप सर्टिफिकेशन करवा लिए हुए हैं कि आपको यह है कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है, जैसे एपडा या बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको इसका सर्टिफिकेशन करती है, तो आपको सर्टिफिकेशन यदि हो गया हुआ है तो उससे आप और ज्यादा कमाई प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप काफी ज्यादा इसका वैश्विक बाजार है। यदि हम 15-16 की बात करें तो हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो 2.63 लाख टन जैविक उत्पाद निर्यात किया गया और जिसकी कीमत लगभग 298 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हम अभी ही इतना ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। यदि 2017-18 की बात करें तो 35.6 लाख हेक्टेयर पर हमारी जैविक खेती होती थी जिससे लगभग 17 लाख टन जैविक उत्पाद पैदा होता था और यह दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं तो किसानों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, किसान भाइयों एक चीज बताओ कि यदि एक मिठाई का दुकानदार है, वह जलेबी और समोसा बनाता है, यदि उसका पूरा नहीं बिकता है तो दूसरे दिन यदि उसको अपने परिवार के लिए ले जाना होगा तो ले जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वह भी जानता है कि यदि बासी हम अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उसे वो बीमार हो सकते हैं। लेकिन हम किसान भाई कितने समझदार हैं कि हम यदि जानते हैं कि रसायन खाने से हम इतना ज्यादा हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसी रसायन को पैदा करके हम अपने लिए भी उत्पादन कर लेते हैं।
9: बिल्कुल।
10: और उत्पादन करके उसको अपनी पत्नी से, एक किसान कहता है कि मेरी पत्नी जाओ जरा इस जहर को मसालेदार बना करके ले आओ, और जब मसालेदार बना करके लाती है तो वह अपने बच्चों को बुलाता है कि आ मेरा बेटा, आ मेरा नाती, आ मेरा पोता, मेरे हाथों से इस जहर को खा करके जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाओ। इसीलिए किसान भाइयों आपसे मेरी एक सलाह है, एक मेरा निवेदन है कि भाइयों आप दूसरे के लिए भलो ही पैदा करें ना करें, आप यह चिन्हित कर लीजिए कि 10 कट्ठा जमीन जो है क्या कहते हैं हम इसी के लिए रखेंगे कि हम अपने लिए रसायन विहीन उत्पाद पैदा करेंगे और हम अपने बच्चों को बीमार नहीं होने देंगे। क्योंकि एक टाटा बिरला भी यदि कहता है कि हम जैविक उत्पाद खा रहे हैं तो उनको कोई कहता है कि जैविक उत्पाद है तब, लेकिन आप तो पैदा करते हैं, आप तो जानते हैं कि यह जैविक है या नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अपने लिए 10 कट्ठा, अरे कितना आप धान खाते हैं, चावल खाते होंगे 2-3 क्विंटल खाते होंगे, गेहूं 3-4 क्विंटल खाते होंगे, दलहन तिलहन 1-1 क्विंटल खाते होंगे, आलू 1-2 क्विंटल 4 क्विंटल की जरूरत होती होगी। आप यदि 10 कट्ठा जमीन यदि आप चिन्हित कर लीजिए और उसमें आप बर्मी कंपोस्ट या दूसरे जो जैविक पदार्थ हैं उसी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूपेण आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा और कम से कम आपके बच्चे तो बीमार नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मेरा निवेदन है किसान भाइयों कि आप अपने लिए ये प्रण बना लीजिए, प्रण कर लीजिए कि हमको अपने परिवार में जैविक उत्पाद ही प्रयोग करना है, जैविक उत्पाद ही खाएंगे
9: जी। अगर डॉक्टर साहब अगर रवि फसलों की बात करें, उसमें दलहनी फसलों की हम बात करें, तो कैसे पोषक तत्व प्रबंधन हम कर सकते हैं?
10: बहुत आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया, क्योंकि देखिए जो जैविक खेती की बात करते हैं, फसल चक्र की बात यदि करें तो उसमें दलहनी फसल यदि आप उत्पादित करते हैं अपने फसल चक्र में, तो आपकी मिट्टी की उत्पादकता, उसकी उर्वरता स्वतः ही बढ़ती जाती है। और दलहनी फसल हम चूंकि वो बैलेंस का नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नत्रजन का स्थिरीकरण करता है, और नत्रजन का स्थिरीकरण करने के कारण ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वह ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जो पौधों के लिए वह पोषक तत्व उपलब्ध हो। धान आप नहीं खाते हैं, आप धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं तब खाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल में है लेकिन ये पौधे के लिए किसी काम का नहीं है। तो यदि हम देखें तो उस नाइट्रोजन को यदि ऐसे रूप में बदल दें, नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में, तो वह पौधों को उपलब्ध होने लगता है। तो अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि यहाँ यदि हम रबी की बात करें तो दलहन तिलहन ये सब ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की आपने बात किया। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए देखिए आप गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए, जो हमारा विश्वविद्यालय बनाता है वो इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट बनाता है।
9: जी जी।
10: उसमें फास्फोरस भी ज्यादा है, उसमें गंधक भी ज्यादा है, और मैं आपको बताऊं सिर्फ गंधक वाला वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो 10-15% तो दलहन और तिलहन का उत्पादन स्वतः बढ़ जाता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आप वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते हैं खास करके इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट, तो मुश्किल से 2.5 से लेकर 5 टन प्रति हेक्टेयर का आपको प्रयोग करना है। साथ ही साथ यदि आपने अजोला का प्रयोग भी किया है तो इसमें नाइट्रोजन भी काफी मात्रा में रहता है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करें। अब ये जो है जैव उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट, और साथ ही साथ कुछ बायोडायनेमिक खाद भी आया है, जैसे कि पंचगव्य का प्रयोग कर सकते हैं, काउपेट पिट का प्रयोग कर सकते हैं, नैपेड कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वर्मी कंपोस्ट में पोषक मान ज्यादा होता है, यानी कम मात्रा डाल करके आप उत्पादन कर सकते हैं, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, आप जैव उर्वरक का प्रयोग निश्चित रूपेण करें, साथ ही साथ जो जैविक खाद है जैविक खाद का प्रयोग करके उसके पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं।
9: जी, तो इस प्रकार आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं दलहनी फसलों में। और जैव उर्वरक की बात अभी कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो जैविक खेती में हम इसका कैसे प्रयोग करें? अभी आपने थोड़ी सी बातें बताई तो और कुछ हम जानना चाहेंगे।
10: देखिए ऐसा है, जैव उर्वरक यानी ऐसा जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए एक तो दलहन फसल में आप राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, आप गेहूं में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहां एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो एजोटोबैक्टर है या एजोस्पाइरिलम है, ये सब जो है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। और यदि फास्फोरस भी आपकी मिट्टी में कम है तो आप पीएसबी का प्रयोग कर सकते हैं, कई नाम से आता है फास्फेट का और कई नाम से आता है, तो पीएसबी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पीएसबी ये फास्फोरस देने का काम करता है, और ये जो हमने बताया राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरम, यह सब सब नाइट्रोजन देने का काम करता है। इसी तरह से अब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसकी भी आपूर्ति बढ़ाने के लिए, जैसे जिंक का है, जिंक ZMB करके, जिंक मोबिलाइजर के नाम से आता है, बाजार में आने लगा है, तो वह यदि आप करते हैं तो जिंक सबकी भी आपूर्ति कर सकता है। लेकिन अभी मैं मुख्य बात करता हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। पोटेशियम के लिए भी KMB आया है, पोटेशियम मोबिलाइजर। तो यदि इस सब का प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यह सब आपकी आपूर्ति वहां पर हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसका प्रयोग कैसे करें हम? जैसे देखिए यदि आप इसका प्रयोग करते हैं राइजोबियम का, तो राइजोबियम जैसे 200 ग्राम राइजोबियम ले लीजिए और 250 ग्राम गुड़ को 500 ml पानी में आप उसको घोल दीजिए, गर्म करके घोल लीजिए, फिर ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो गया उसके बाद 200 ग्राम उसमें राइजोबियम कल्चर डाल दिया, राइजोबियम कल्चर डाल करके 10 kg बीज के ऊपर उसको डाल दीजिए और ठंडे हाथ मतलब उसको आपने डाल दिया, डाल देने के बाद हल्के हाथ से उस बीज को मिला दीजिए, यानी कि उसको पर एक कोटिंग चढ़ जाए। ये कोटिंग चढ़ गया उसके बाद आप उसकी बुआई 2-3 घंटा पहले रखिए और उसके बाद छाए में ही उसकी बुआई कर लीजिए। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर एक और है, मान लीजिए कोई आदमी है जो कि इसका भी प्रयोग करता है, राइजोबियम का भी प्रयोग करता है और पीएसबी का भी प्रयोग करता है, और मान लीजिए सीड के उपचारित होने के लिए फफूंदनाशी वगैरह वगैरह नहीं लगे उसके लिए ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर रहा है, तो उसको कैसे प्रयोग करें? तो सबसे पहले इसमें FIR का प्रिंसिपल याद रखिए, यानी पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम, और सबसे राइजोबियम को सबसे लास्ट में, उसके पहले आपको पीएसबी का उपचार करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ट्राइकोडर्मा को उपचारित करना है तो ट्राइकोडर्मा को आप पहले उपचारित कीजिए, उसके बाद आप फॉस्फेट सोल्वराइजर से कीजिए, सबसे लास्ट में आप राइजोबियम से उपचारित कीजिए, और उपचारित करके हर एक के बीच में 1-1.5 घंटा का आप अंतराल रखिए। तो यह तो हो गया कि यदि आप बीज उपचार करते हैं तब, लेकिन बहुत आदमी है कि बीज उपचार नहीं करते हैं, इसमें बहुत सारी आपकी सब्जी की फसल भी है, जो सब्जी की फसल आप उसमें क्या कहते हैं, या तो कंद उपचारित करते हैं या आप उसका पिछड़ा उपचारित करते हैं, तो वहां पर क्या है कि यदि आप कंद का उपचार करना चाहते हैं तो वहां पर आप 2 kg राइजोबियम कल्चर ले लें, या जो भी एजोटोबैक्टर ही करना चाहते हैं तो एजोटोबैक्टर ले लें, और एजोटोबैक्टर या राइजोबियम कल्चर ले रहे हैं उसको लेकर के उसमें आपने कंद को भिगा दिया और उसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद आप निकाल करके 1.5 घंटा बाहर में रखिए, फिर छाए में उसका बुआई कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपको बिचड़ा उपचारित करना है तो बिचड़ा उपचारित करने के लिए आप 2 kg राइजोबियम कल्चर या जो भी आपका बायोफर्टिलाइजर है उसको 15 लीटर पानी में घोल लीजिए और घोल करके उसके बिचड़ा का जो जड़ है उसको डुबा करके छोड़ दीजिए। अब 10-15 मिनट आप उसमें भिगा करके रखें, उसके बाद आप खेत में उसकी रुपाई कर देते हैं। बहुत किसान ऐसे हैं कि ये सब नहीं कर पाए, मान लीजिए वो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं, तो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा लगभग 5-6 किलो आपको कल्चर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उतना तो मान लीजिए किसान के पास नहीं होगा, तो उसका तरीका ये है कि आप 1-2 किलो आप उसमें कल्चर ले लीजिए, जो भी राइजोबियम कल्चर कर रहे हैं या एजोटोबैक्टर कल्चर कर रहे हैं तो वह आप कल्चर कर लीजिए, और उसमें आप 50 kg गोबर की खाद मिला दीजिए, और गोबर की खाद मिला करके इसको ढक करके रख दीजिए, उस पर हल्की सिंचाई कर दीजिए, और जो जूट का बोरा है उसे आप ढक दीजिए। ढक देने के बाद उसके बाद आप ढक करके कुछ दिन रखें, और उसके बाद आप क्या करेंगे तो उसको 5-10-15 दिन पर अंतर 5-10 दिन के अंतराल पर उसको पलट दीजिए थोड़ा बहुत और सिंचाई कर दीजिए, और 15 दिन के बाद जब आपका बन गया तो वो जितना आपका कल्चर था वह पूरे में फैल गया, उसमें है क्या जीवाणु है ना, तो वो जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरे में बढ़ गया। अब बढ़ करके उसके बाद आप खेत में प्रयोग कर दिए, तो यानी जो 2 ही किलो आपने कल्चर लिया था उसी से आपको 1 हेक्टेयर जमीन में हो जाएगा। तो इस ढंग से आप चाहे ट्राइकोडर्मा में प्रयोग करना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर करना चाहते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर करना चाहते हैं, चाहे पीएसबी करना चाहते हैं, तो ये इस ढंग से आप उसको फैला करके बढ़ा करके आप पूरे खेत में आप प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा उसकी लगेगी। तो ये तरीका है जिस ढंग से आप जो बायोफर्टिलाइजर है जैव उर्वरक है उसका प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं, चाहे बीज उपचार, लेकिन बीज उपचार सबसे बढ़िया है, बीज उपचार सबसे बढ़िया है, तो बीज उपचार करके कीजिए वो सबसे बढ़िया है
9: जी। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि रबी फसलों में जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और वैश्विक बाज़ार में कितनी इसकी मांग है वो बढ़ती जा रही है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो जैविक खेती करें, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि आप उसमें रासायनिक जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो अगर जानबूझकर आप ये गलती ना करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
11: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
12: जी
11: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
12: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
11: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: नमस्कार। आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ, अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं, वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओ, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
3: श्रोताओ, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओ, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओ, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया, उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
3: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
3: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियां, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओ, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
2: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
3: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई।

कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काय काय करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: और आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम। शीर्षक है द रेस।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के सारे पशुओं की एक मजेदार दौड़ के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें प्रतियोगिता को खेल भाव से स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
2: You must have heard of the race between the rabbit and the tortoise. Have you heard of the race between a rat and a rabbit? Let me tell the story of the race. Every evening, the animals of Machlipatti used to sit under the banyan tree. One day, Coco, the rabbit, was feeling bored. He said, "Let's run a race."
3: "Who will run a race with you? No one can run faster than you," said Bhalu, the bear, eating a mango.

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम, हर हर गंगे हर गंगे हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा।

0: हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
1: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई,

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
9: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद।
9: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
10: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
9: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
10: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी ना छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा ना हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
9: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
10: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से

0: बिस बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के

0: क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक की प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बाल कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे डॉक्टर अरुण कुमार झा सर से कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपना कर हमारे किसान भाई बहन मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि अपनी सेहत को भी वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा सर का, और उनसे जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। सर, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट BAU सबौर से, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी परिभाषा क्या है।
1: ऐसा है कि जो प्राकृतिक खेती है, कृषि की एक ऐसी प्राचीन और रसायन मुक्त पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन या रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या बाहरी खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति के नियमों और स्थानीय संसाधनों, जैसे देसी गाय या देसी गाय के गोमूत्र, जो भी उनके गोबर या गोमूत्र होते हैं, उस पर आधारित होती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो उसी के प्रयोग के द्वारा हम इसकी खेती करते हैं।
0: जी सर। सर, अब दूसरा सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या महत्वपूर्ण अंतर है?
1: बहुत आपने एक समचीन प्रश्न पूछा, क्योंकि इसके लिए इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो देखिए, बाहरी इनपुट के संदर्भ में मैं कहूं तो जैविक खेती में बाजार से खरीदे गए जैविक खाद, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहर से किसी भी प्रकार के खाद या दवा का प्रयोग उसमें अनुशंसित नहीं है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। जो भी आपका फार्म है, उस फार्म पे जो कुछ आपको पैदा हो रहा है, उसी से आपको खेती करनी है। यह दोनों, एक तो महत्वपूर्ण इसमें अंतर है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है उसमें बाहर से भी जो रसायन मुक्त पदार्थ है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट कहीं और बनाते हैं तो उसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन जैविक खेती में नहीं। जैविक खेती में जो कुछ भी वहां पर बनता है, मान लीजिए वहां जो आपका देसी गाय है उसका जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उसी के उत्पाद हम बनाते हैं, जो भी जीवामृत, घन जीवामृत या जो कुछ भी उसके हैं, तो उसी का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि लागत की बात करें तो जैविक खेती में बाहर के खाद खरीदने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहरी चीजों पर कोई खर्च ही नहीं होता, कोई प्रयोग ही नहीं करना है तो उस पर खर्च शून्य होता है, जिससे किसानों का लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। तीसरी बात, मिट्टी की जुताई की बात करें, जैविक खेती में खेत की जुताई, निराई, अन्य पारंपरिक कृषि कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में मिट्टी को जोतने, पलटने या खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मल्चिंग और प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें आपको मिट्टी ज्यादा बढ़िया रहता है। और चौथी बात, प्रमाणीकरण की बात करें तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा सर्टिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है, तो आप प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं। तो यही मुख्य रूप से है, तो कई अंतर, लेकिन मुख्य रूप से यही अंतर है जैविक और प्राकृतिक खेती में। यदि किसान भाइयों को बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूं तो यही आप समझिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से जो उत्पाद बन रहा है, जो रसायन मुक्त है, जिसमें रसायन का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, उसका प्रयोग आप वहां कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है उसका प्रयोग कर सकते हैं बाहर से भी खरीद करके, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो आपका फार्म है, जो आपका क्षेत्र है, वहां पर जो कुछ आपने पैदा किया है उसी का प्रयोग करके उसकी खेती करते।
0: जी सर। सर, प्राकृतिक खेती के आधार क्या हैं?
1: देखिए, इसके मुख्य आधार दो ही हैं। एक तो देसी गाय के जो भी उत्पाद होते हैं उसी से हम इसकी खेती करते हैं, और दूसरी बात, देसी बीज पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। अब देसी गाय की यदि हम बात करें तो देसी गाय में अब उससे जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उससे हम कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ या बीजामृत हुआ या दशपर्णी अर्क हुआ या नीमास्त्र हुआ या ब्रह्मास्त्र हुआ। तो यह सब जो आपके विभिन्न प्रकार के आपके जो उत्पाद होते हैं, अब जैसे बीजामृत है तो बीज के ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं बीजामृत, लेकिन जो जीवामृत है और घन जीवामृत है ये उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो हमने जैसे बताया दशपर्णी यार क्या नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र ये सब कीड़ा और बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन बनता किससे है, ये बनता है जो हमारे पौधे होते हैं जो हमने अपने फार्म में लगाए उससे, और जो गोमूत्र है या जो कुछ वहां पर है तो उसी सब का प्रयोग करके हम इसका निर्माण करते हैं। तो यह मुख्य रूप से हमने कहा कि देसी गाय या उसके उत्पाद जो है उसका हम प्रयोग करते हैं, और इसमें प्राकृतिक खेती में हम देसी बीजों पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि आज देखते होंगे कि बहुत सारा सेंट हमारा वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा, बराबर लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो बहुत सारी हमारी ऐसी धरोहर बीजें हैं जो कि काफी अच्छी हैं लेकिन उसका हम कह लीजिए कि उपयोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो देसी बीजों पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है।
0: जी सर, आधार के बाद अब स्तंभ के बारे में बताइए सर कि प्राकृतिक खेती के कौन कौन से स्तंभ हैं।
1: हाँ बिल्कुल, इसके मुख्य चार स्तंभ है, एक तो देसी गाय के गोबर या गोमूत्र से बनने वाले उत्पाद जिसके विषय में अभी हमने आपको कहा, दूसरी बात सह फसली खेती की जाती है, सह फसली इसमें जो खेती की जाती है जैसे कि मान लीजिए एक बड़े ऊंचाई वाला पौधा है जैसे मान लीजिए मक्का ही है या धान गेहूं ही है, तो उसमें उसके बगल में जो हमारी दलहनी वाली फसल है उसको भी हम साथ साथ खेती करते हैं। उससे दो फायदे हैं, एक फायदा तो यह कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं वो दलहनी फसलें वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, तो उससे जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है जो कि हमारे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है लेकिन जब वह उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे फसल के लिए काफी अच्छा होता है और काफी फायदा दे जाता है। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो यह जो हमारी फसल है वह फसल खास करके दलहनी फसलें, वो दलहनी फसलें नाइट्रोजन भी देती हैं, तो एक यदि हमने धान फसल लगाया उसी के साथ साथ सह फसली के रूप में हमने दलहनी फसल लगा दिया, तो एक तो पहली बात हमने कहा कि सह फसली का इसमें ज्यादा वल होता है, सह फसली पद्धति का हम उपयोग करते हैं। तीसरी बात है वापसा, वापसा का भी हम प्रयोग करते हैं और आच्छादन का भी करते हैं। अब वापसा के विषय में मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि इसमें क्या है कि यदि आप मिट्टी को देखेंगे तो इसमें क्या है 25% एयर होता है, हवा होता है, और 25% इसमें ये पानी भरा रहता है, और 50% सॉलिड पार्ट होता है, यानी दोनों को यदि मिला दीजिए हवा पानी को तो लगभग 50% हो जाता है। तो अब क्या है कि इसमें हम मोटे तौर पर जो हमारी प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें हम मेड़ बनाते हैं और उसकी जो मेड़ की ऊंचाई है मेड़ के ऊपर हम फसल लगाते हैं और बीच में नाली में हम पानी का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है इसका वायु संचार ठीक ठाक रहता है, तो वायु संचार भी ठीक ठाक रहेगा, साथ ही साथ इस आच्छादन से जो सॉइल इरोजन हो रहा है सॉइल इरोजन भी हमारा कम होगा, और साथ ही साथ जो हमारे लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनकी भी संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो यह सब इसके फायदे हैं, इसलिए वापसा करने की बात है। वापसा कहने का मतलब यह है कि उसमें वायु संचार ठीक ठाक है। अब देखिए जो वायु है नीचे में यदि गया तो वायु संचार यदि ठीक ठाक है तो जो पौधे की जड़ें हैं उसका भी विकास ठीक ठाक होगा। बहुत सारे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन चाहती हैं तो उसमें वायु का संचार ठीक ठाक है तो वहां पर वह उसका भी विकास अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें फायदा है, इसीलिए वापसा करने की जरूरत है। और चौथी चीज हमने आपको बताया आच्छादन, तो चौथा पॉइंट है आच्छादन, तो आच्छादन पर भी हम बल देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बताइए आच्छादन क्या होता है और कितने तरह के आच्छादन होते हैं।
1: देखिए आच्छादन का पहली तो बात हम बताएंगे कि आच्छादन से फायदे क्या है। आच्छादन से पहली बात है कि नमी का संरक्षण होता है, दूसरी बात कि खरपतवार का नियंत्रण भी इससे हो जाता है, तीसरी बात है कि मृदा अपरदान जो सॉइल इरोजन है उसका नियंत्रण होता है, और जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि हम मुख्य रूप से तीन तरह के आच्छादन की बात हम प्राकृतिक खेती में करते हैं, एक तो मृदा के द्वारा आच्छादन, दूसरा है सजीव आच्छादन, और तीसरा है काष्ठ द्वारा आच्छादन। मृदा आच्छादन में क्या है कि ऊपर के जो 4-5 इंच की मिट्टी है उसको हम हल्की जुताई करते हैं तो उससे उसका आच्छादन हो गया, तो वह आच्छादन हो गया तो इसमें वायु का संचार और सारी चीजें हो गई, तो उससे नमी का संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण इसमें थोड़ा सा ये योगदान करता है। जहां सजीव आच्छादन की बात है तो जो हम पौधा ऐसा लगाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ढक करके रखे, और जब मिट्टी को ढक करके रखेगा तो वहां से जो हमने बताया सॉइल इरोजन और सारी चीजें, तो ये सॉइल इरोजन वगैरह वगैरह नहीं होगा, और साथ ही साथ इस आच्छादन के चलते वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं, चाहे बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक हैं, फंजाई हैं, एक्टोमाइसिट्स हैं या हमारे केचुए हैं, तो वह सब उस कम टेम्परेचर में बढ़िया से विकास कर पाएंगे, तो ये सजीव आच्छादन हो गया। और तीसरी बात हो गया कास्ट द्वारा आच्छादन, इवन जो आपके जो पुआल वगैरह वगैरह हैं या जो फसल के अवशेष हैं उसके द्वारा हम आच्छादन कर देते हैं, तो उससे भी जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनका विकास बढ़ेगा और बढ़िया से हो पाएगा, तो यह हम आच्छादन करने से भी करते हैं। तो यह तो मुख्य मुख्य बातें हैं जो कि आपको नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में ध्यान देना चाहिए, और यह यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय में, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, 3-4 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में जो वहां लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा, लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, फास्फोरस आपके मिट्टी में बहुत है लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या है कि वहां पर यदि फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया तो वह जो मिट्टी के फॉस्फोरस है उसको घुलनशील बना दिए, पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से पोटैश मोबिलाइजर है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक मैं ताजुब की बात बताऊं कि जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर या पीएसवी कल्चर इस सबका प्रयोग किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे मिट्टी में कार्बन भी था और साथ ही साथ वहां पर नमी भी थी, जिसके चलते वह खुद ब खुद बढ़ रहे थे, तो इसको हम अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूप से जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ेगी, और उससे फिर हम अपनी जो खाद्य सुरक्षा की बात है या पोषण सुरक्षा की बात है वह उसकी अवधारणा को हम संतुष्ट कर सकते हैं।
0: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमें बताया प्राकृतिक खेती क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें, और एक और खास बात जो सर ने बताई कि कुछ जो हमारे देसी बीज हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे आप सुनते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो जी हाँ, आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ज़रूरी बातें लेकर

0: साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक, ये जो आपने बताया कि पोषक तत्व, ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं ये?
1: नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ और जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक है किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो इसकी कमी को पूरा करने से पहले हम जानना चाहेंगे ये पोषक तत्व हैं तो किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी कमी के बिना जो हमारे पौधे हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे किसान बहनों एवं भाइयों, आप जानते होंगे, जैसे आप खेती बाड़ी करते होंगे, अपने खेत पर जाते होंगे तो आप बीज को लगाते हैं, बीज फिर अंकुरित होता है, फिर वो छोटे पौधे का रूप लेता है, फिर वो बीज वाले स्तर में आता है, फिर वो फल फूल देता है। तो अगर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मृदा में, अगर मिट्टी में कमी आती है तो ये अपना जीवन चक्र जो होता है, जहाँ मीन्स अंकुरित होकर होने से लेकर अपना फल फूल देने तक ये जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए पोषक तत्व तो बहुत पौधे के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है, इसका ये मुख्य प्राइमरी मीन्स प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। इसका अगर इसकी कमी होती है तो पौधे जो हैं अपना ऊर्जा जो अपने लिए फूड बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, लाइक भोजन बनाते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। पौधे का जो जो सीडलिंग होता है, लाइक जो अपना बीज का अंकुरण होके अपने पौधे का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है, जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ बनाते हैं आप लोगों को भी ये पता होगा, पत्तियों में बनाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा प्रकाश लेते हैं तो उसमें अपना भोजन बनाते हैं, और उसी का ये इसमें ये जो है पोषक तत्व वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, और वो सूर्य की ऊर्जा को लेकर, सूर्य के प्रकाश को लेकर भोजन बनाता है, जिसकी कमी से अपना जो पौधे हमारे हैं भोजन नहीं बना पाते हैं। इसकी ये कमी होगी नाइट्रोजन की कमी से, ये पौधे में इसके असर पड़ेंगे। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पौधे का जो है जो हमारा उसका रंग होता है, हरे रंग का होता है, हरे रंग ना होके पीलापन पे जाने लगता है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे जो होते हैं जो सीधे खड़े ना होकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वो जो उनका स्टैंडिंग होता है ना पोजिशन, वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके कारण कमी होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और पोषक तत्व कमी और ये उत्पन्न कर देते हैं। और बात करेंगे हम फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में भी ये प्राथमिक पोषक तत्व है। मीन्स इसकी कमी के बिना भी जो हमारे पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधे बेसिकली आपको जो फॉस्फोरस है, अगर फॉस्फोरस अगर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहेगा पौधे में, तो पौधे का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा से होता है। और इसके साथ साथ जो फॉस्फोरस हमें बीज का जो विमोचन होता है उसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को ऊर्जा संश्लेषण में हेल्प करता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, एवं इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं हमारे उसमें भी ये फॉस्फोरस जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारे जो जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना हमारे जीन, हमारे डीएनए, तो पौधे भी तो सजीव है ना, उसमें भी होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं। ये अनुवांशिक गुण जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उसको फॉस्फोरस गवर्न करता है, उसको उसके लिए ये महत्वपूर्ण है जी। और तीसरी हमारी यहाँ पर पोषक तत्व जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसको किसान भाइयों एंड बहनों हमारे, आप लोग इसको हम बहुत अपने स्पेशली, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मिट्टी में हम इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। इसको मुख्य पोषक तत्व ना है, ठीक है, नहीं है, बहुत सारे पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, ये भी हमारे अनुवांशिक स्तर, हमारा अनुवांशिक गुण है, उसको ये कंट्रोल करता है। इसका नाम है ये पोषक तत्व का जिंक। जिंक मुख्य पोषक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का कहने का मतलब हुआ हमारे किसानों, किसान बहनों, भाइयों, इसकी ठीक है, इसकी मात्रा पौधों को बहुत कम में जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े में ही पौधे जो इसको लेकर अपने जीवन चक्र को अच्छे से अपना निभा लेते, अपने उनका जीवन चक्र अच्छे से चल जाता है, और अपने लाइक इनिशियल स्टेज से लेके वेजिटेटिव स्टेज से होते ही होते अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक अच्छे से ये अपने जीवन चक्र, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ये जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में, जहाँ पौधे जो अपने होते हैं भोजन बनाते हैं,

0: उसके निर्माण में ये मदद करता है, अनुवांशिक गुण को भी ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हमारे पौधे में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव स्टेज में समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाते हैं कुछ पोषक तत्व की कमी में। तो ये जो जिंक है, ये बहुत सारे इंजाइम्स जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। कुछ इंजाइम्स की मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे ऑक्जिन, ये पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर जिंक की कमी होती है हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में, तो ये जो हमारे कुछ इंजाइम्स जो पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो उस लेवल पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इस पोषक तत्व की कमी के कारण। और या जिंक प्रचुर मात्रा में पौधों को अवेलेबल हो पाता है तो जो भी एंजाइम्स हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और पौधे में पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं।
1: और ये तो बातें हो गई कि ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। अब हम बात करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व है इनका।
0: जी, जैसे मैंने आपको बताया ये पोषक तत्व के क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपकी आपकी जो दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल का भी मैंने इसका उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही मैंने दिया है। मैंने जैसे बताया, आपने पूछा किस तरह का पोषक तत्व है, तो मैंने बताया दो जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व है, और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर हम जानना चाहेंगे तो क्या है, मुख्य पोषक तत्व के बिना जो हमारे पौधे हैं अपन जीवन चक्रों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और उनको वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, बट उनको चाहिए होता है, उसका भी रोल है, उसका भी। जैसे मैंने बताया, जैसे जिंक ही है, जिंक भी अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको एक्टिवेट करता है। लाइकवाइज इसी प्रकार मैंने आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी बताया, इसके पौधे की दृष्टि से क्या इनका योगदान है। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो पौधे अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान बहनों एवं भाइयों, आपको ये पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी अपने खेत में, इतना मुझे तो भी जानकारी है, आप अपने खेत में कुछ नहीं डालते होंगे, तीन जो पोषक तत्व तो जरूर डालते हैं हर फसल, मतलब बात करें तो बहुत सारे फसलों के लिए आप ये पोषक तत्व का उपयोग जरूर करते हैं। ये पोषक तत्व हैं आपके, यूरिया आप जरूर डालते होंगे, उर्वरक की बात करें तो आप DAP जरूर डालते होंगे, आप MOP जरूर डालते होंगे। तो आपको ये पता है यूरिया किसका सोर्स है, यूरिया किसका स्रोत है, ये नाइट्रोजन जो मैं बोल रही हूँ ये नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जो DAP है इसका पूरा नाम हो गया डाइअमोनियम फॉस्फेट, ये आपको नाइट्रोजन का भी नाइट्रोजन भी हमको प्रदान करता है और फास्फोरस भी प्रदान करता है, ये दोनों भी मुख्य पोषक तत्व हैं। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको ये भी किसका है, ये पोषक तत्व है पोटास का, पोटासियम जिसको हम कहते हैं, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं और इनका जो पौधे का जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके इसके बिना पौधे अपना अपने वृद्धि को, उनकी वृद्धि जो होती है उतनी सक्रियता से नहीं हो पाती है, पौधे का जो हमारा रंग होता है हरे रंग का वो नहीं हो पाता है, और हमारे जो बीज है, जो बीज अंकुरण है फास्फोरस की कमी हो तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, ऊर्जा का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है। जो उनके अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है लाइक DNA RNA ATP जो ऊर्जा में प्रोवाइड करता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
1: और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन पोषक तत्वों की कमी की, तो क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: धन्यवाद मैडम ये प्रश्न के लिए। ये प्रश्न किसी की कमी को पूरा करने, जैसे ये पोषक तत्व हैं हमारा, जैसे हमारा टॉपिक था आज का नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक की कमी को, पोषक तत्व कमी को कैसे पूरा करें। तो किसी कमी पूरा करने से पहले हमें तो ये जानना पड़े ये कमी हो क्यों रही है। और ये किसान बहनों एवं भाइयों, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे जगह हैं, हर जगह की अपनी अपनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज़ कमी के लिए, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते यही फैक्टर है जिसके कारण ये कमी हो रही है, नहीं, बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें बताते हैं कि इसके कारण कमी होते हैं। अगर हम बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बहुत सारे हमारे प्रकार हो सकते, बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं कुछ तात्कालिक स्थिति के कारण भी ये कमियाँ आ सकती हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो हमारा कुछ एरिया है क्षेत्र है वहीं पर ये कमी आ रही है, और किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो कमी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको कहना चाहूँगी प्राकृतिक गुणवत्ता, मीन्स प्राकृतिक विशेषताएँ और जो गुणवत्ता जो मिट्टी वहाँ की है, जो विशेष पर्टिकुलर जगह की जो है, पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है वहाँ पर की प्रकृतिक गुणवत्ता क्या है मिट्टी की, उसके कारण भी एक कमी आ सकती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपको फसल का प्रबंधन कैसे आपने करा है। अगर कभी फसल का प्रबंधन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी फसल को एक ही क्षेत्र पे बार बार आप उसी फसल को उगाएंगे तो जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है, ये फसल का प्रबंधन। इसलिए हम कहते हैं ना एक ही क्षेत्र पर एक ही फसल को कई सालों तक हम नहीं उगाना चाहिए। हम इसलिए बोलते हैं हम क्रॉप चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं ना, फसल चक्र की हम बात करते हैं। हम क्यों सारे वैज्ञानिक हो गए हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी लोग हैं आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीसरा कारण हो सकता है वहाँ का टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का बोलने का तात्पर्य यह है वहाँ का स्थलाकृतियाँ कैसी हैं। मीन्स कुछ आप देखते होंगे कहीं भी हमारी मिट्टियाँ कहीं उच्च स्तर पर रहती हैं, कहीं निम्न स्तर पर हैं, कहीं मिट्टियाँ हमारे दलदल स्थिति में होती हैं, ये हमारी टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत समतल स्तर पर हैं, कहीं की मिट्टियाँ ऊँची परत हैं उनकी जो है लाइक जो होती है ना ऊपर ऊपर वाले परत पे होती हैं, कोई निचले वाले परत पे होती हैं। तो ये जो हमारे हैं ना मिट्टियों का प्रकार हैं जिसको बोलते हैं लो लैंड, हाई लैंड, मिड लैंड में प्रेजेंट हैं, उसके भी प्रकार इस टोपोग्राफी इस स्थलाकृतियाँ के कारण भी हमारे पोषक तत्व तो प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी अगर जो हमारे भूमि के ऊपर वाले परत हैं आप वहाँ पर देखेंगे उसकी कंपेरिजन आप लोअर जो हमारे निचली परत वाली है मृदि मिट्टी उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे जो ऊपरी वाली भूमि है हमारी वहाँ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है कंपैरिजन टू आपके जो निचले स्तर वाले मिट्टी हैं। और चौथा पांचवा कारण आपका हो सकता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पोषक तत्व के बताने के लिए कि वहाँ पोषक तत्व की किस लेवल में प्रेजेंट है, किस रेंज में प्रेजेंट है। जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारे पानी में हमारे वर्षा के पानी में घुल कर वो बह जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। अगर बारिश जितनी हमारे मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो रही है तो हमारे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे मात्रा में हमारे मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और पौधे वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं। और पांचवा कारण आपका हो सकता है हमारे किसी तकनीक, आप कौन सी कृषि प्रथाएं को जो हमारे पहले जमाने की प्रथाएं हैं जो अभी जो हम तकनीक को उसका उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का किसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे डिपेंड्स करते हैं कि वो जो हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को मिट्टी में उपलब्धता को डिसाइड करता है। जैसे कि ये कृषि तकनीक अगर बात करें तो आप फसल का जीवन शैली कैसा है, फसल कौन सा चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पर कौन सा मुख्य पौधा मुख्य फसल कौन सा आपका है, और मुख्य फसल के अलावा आपका सब जिसको बोलते हैं सब क्रॉपिंग कौन सा आपने उसका चयन किया है वो भी बहुत डिसाइड करता है कि हमारा पोषक तत्व के वो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को वो बरकरार रखता है कि नहीं रखेगा। और पांच छठा कारण हो सकता है आधुनिक कृषि तकनीक, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें आधुनिक कृषि तकनीक ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे, क्योंकि हम आधुनिक कृषि तकनीक में क्या कर रहे हैं हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लास्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेतियों की तरफ जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी बोले तो ज़्यादा हमें उपज, हमें किसी फसल का उपज ज़्यादा पाने के लिए कम समय में ज़्यादा उपज पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एक ना एक टाइम पे जाकर ये हमारे मृदा में हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लाएगा। तो उसको भी हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी हम खेती बाड़ी करें, कोई भी हमारा मौसम है हमारा सीजन हो और अगर फसल की आप चयन कर रहे हैं इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है जिससे हम अपनी मिट्टी में हमारे जो नेटिव हमारे पोषक तत्व हैं अगर हम डालें या न डालें हमारे मृदा में हमारी जो धरती माँ है उसमें बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बस उसको हम बर्बाद हम कर रहे हैं हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं जरूरी है, ज़रूरी है, बट उसको किस लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप जानते होंगे हर फसल के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक की तरफ से या कृषि अधिकारी की तरफ से आपको एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बताया जाता है, मतलब किस फसल के लिए कितना उर्वरक रासायनिक उर्वरक जाएंगे या जैविक उर्वरक जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों आप क्या करते हैं अपने जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम जब प्रैक्टिकल खेती बाड़ी की बात करें, जब हम अपने किसान भाई खेत बाड़ी पर जाते हैं तो जितनी मात्रा में आपको डालना था, सपोज आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती के लिए आपको बता दिया गया कि 120 60 40 मीन्स NPK डालें, मीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम डालें। आपने इसका स्रोत रखा, इस उर्वरक का स्रोत रखा, यूरिया रख लिया, डीएपी रख लिया और एमओपी रख लिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश रख लिया, लेकिन इतना ना डालकर आप ज्यादा डाल देते हैं कि आपको लगता है कि इस साथ ज्यादा डालने से चाहे वहां पर आपको कमी महसूस हो रही है, पौधों का विकास अच्छा से नहीं हो रहा, पौधों की वृद्धि अच्छी से नहीं हो रही है, तो आप इसका ज्यादा मात्रा में डाल दे रहे हैं। तो ज्यादा मात्रा में डालने से आपको लगता है कि अगर मैं ज्यादा मात्रा में डाल दे रहा हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी आएंगे, मेरी उपज बहुत ज्यादा होगी, जिससे हमें उच्च आय में आपको मुनाफा होगा। लेकिन क्या होता है, पौधों को जितना उनको जितना उनको पोषक तत्वों की जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, हमें जितना भूख लगता है, हमारे पेट में जितनी जगह होती है, हम उतना ही खाते हैं ना। कभी कभी होता है हम ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर हम ज्यादा खाते तो आपको भी ज्यादा खाने का भी देखे होंगे दुरुपयोग क्या होता है, हमारे सर स्वास्थ्य पे क्या उसका मतलब हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। वैसे ही हमारे पौधे भी हैं, उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे। ज्यादा डालने से क्या होता है, वो जो हमारे पोषक तत्व हैं पानी में मिलकर घुलनशील होकर वो लीच आउट हो जाते हैं और हमारे पोषक तत्व वो उनको पौधों को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये सभी चीज़ें हमें अपने अपने दिमाग में ये बातों को रखने हैं। और पांचवा कारण जैसे हो सकता है, छठा कारण मैं बोलूं, पीएच। आप जानते हैं पीएच हम करते हैं, जैसे आप मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं ना, जिससे हमें मृदा में मिट्टी में पोषक तत्व क्या है, उसका पीएच का लेवल क्या है वो हम जान पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारा कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट है, उपस्थित है, नहीं है, किसकी कमी है, कौन हमें प्रचुर मात्रा में है, किसकी उसके लिए हमें प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है, अगर कमी है तो उसके प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर पीएच का लेवल आप देखेंगे अगर ज़्यादा जाता है, तो आप देखे होंगे पीएच का लेवल ज़्यादा होने से वहाँ पर जिंक की कमी हमें दिखने लगती है, जिंक की कमी हो जाती है उसमें मिट्टी में। और रासायनिक उर्वरक का भी मैं बता रही हूँ, जैसे रासायनिक उर्वरक आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमें हमारे जो हमारे नेटिव पोषक तत्व हैं, जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसकी कमी आने लगती है।
1: तो जी हाँ, ये कुछ लक्षण थे जिससे कि आपको पता लगता है और कि कैसे इसकी कमी हो रही है मिट्टी में, और अब इसकी कमी को हम पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दीजिए।
0: हाँ, अब ये इसी कमी, अभी तो हम लोगों ने जाना है किसान बहनों एवं भाइयों कि इसकी कमी क्यों हो रही है, और ये जितनी कमी मैं बताई आपको बिहार की दृष्टिकोण से बताई हूँ, और बिहार की ही दृष्टिकोण से अपनी मट्टियों की इसमें जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आ रही है, उस पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकें। किसान भाइयों, हमारे जो आपके हैं, आपके जो लोकल रिसोर्सेस हैं, जिस लोकल हमारे जो स्रोत हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और आप उससे अवेयर भी हैं। बस वही होता है कि जैसे हम कुछ कामों को टालते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, जिसके कारण हमारे जो मृदा है, हमारा मृदा की उर्वरता चली जा रही है। मृदा की अगर उर्वरता जाएगी तो वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा, पौधों को प्राप्त नहीं होता तो पौधे की फसल अच्छे नहीं होंगी, उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। अगर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारे फसल जो है, फसल के जो हमारे उपज आते हैं वो हमें उसमें वृद्धि नहीं हमारी होगी। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए। जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक की, इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। पहले किसी उपाय को मैं इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके खेत पर ही अवेलेबल है, आपके घर में ही अवेलेबल है, उसी चीज़ का आप पहले उसका करें। जैसे किसान भाइयों बहनों, आप करते होंगे अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, सपोज आपने कोई सब्जी ही उगाया, सब्जी उगाने का गोभी जैसे सबसे जो आपने उगाया, गोभी का फल तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, उसको उसका जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, चारे को भी उपयोग कर लेते हैं। चारा करते सही है, जिसके पास हम मवेशी है उसको चारा के रूप में प्रयोग करें वो भी सही है, क्योंकि चारा हमारे जो मवेशी है चारा खाएंगे तभी तो गोबर करेगा, गोबर भी हमारा बहुत अच्छा एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है हमारा। अगर आप नहीं करते हैं, जिनके पास मवेशी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अगर सब्जियाँ जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका जो अपना आपका मेन पार्ट है आपने उसको तोड़ लिया और जो उसका रेस्ट पार्ट बचा हो तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में आप इसको काट लें, और उसको काटने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिला दें, मिट्टी में लाइक प्लाविंग करते हैं ना, हम ट्रैक्टर से प्लाविंग करते हैं या कुदाल लेके फावड़ा ले लिया उसको मिट्टी में मिला देते हैं। और ये क्या हमारे सारे चीज़ क्या है, ये हमारे इसके बहुत जल्दी डिकम्पोज मीन्स वो विघटित हो जाता है मिट्टी में, हमारे जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम बोले ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन आप देखे होंगे उसमें केचुआ बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियां उसमें रहती हैं, जो क्या करती है, ये जो चाहते हैं ना उनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड मीन्स भोजन का स्रोत होता है और उसको खाते हैं, और जिसके कारण ये जो कि हमारे सब्जियां के जो सब्जियों या कुछ और फसल है ना उसके कारण उसको विघटित कर देते हैं, और ये जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, उपाय इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे कहीं गोबर गैस का प्लांट हो, नहीं भी हो, जहाँ भी है, तो गोबर गैस बनने से गैस हम जब बना लेते हैं तो बहुत सारे उसके जो बाय प्रोडक्ट पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ जैविक खाद के रूप में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक और बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसको भी हम अपने मृदा में, मट्टी में मिला सकते हैं और इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चौथा कारण आपका हो सकता है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो आप कवर, जो कवर हम करते हैं ना, कवर क्रॉपिंग का बोलने का तात्पर्य है, कवर मीन्स जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर हमारे मिट्टी का, उसको अच्छे से कवर कर सके, जिससे हमारा जो पानी का भी होता है, जहाँ पानी कमी है तो क्या होता है, जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी कमी होने लगती है। बहुत सारे हमारे जो फसल नहीं है, जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वो उगने लगते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और जैसे और बहुत सारे ये जो हमारे कवर क्रॉपिंग है, नाइट्रोजन के जो उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं, ये हमारे कवर क्रॉपिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन कमी के लिए ये कौन से कवर क्रॉपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रह्मासी है, आप ईयर, होल द ईयर मीन्स आप साल भर इसको उगा सकते हैं इस फसल को, और आपके नाइट्रोजन की कमी को आपकी मिट्टी में नहीं होने देता है। ये जो हमारे हैं, जो हमारे सालों भर उगते हैं फसल है, इनका नाम है गोल्ड हेम्प। आप गोल्ड हेम्प ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ढांचा लेते हैं, ये सब हमारे क्या है, कवर क्रॉप है। ये कवर क्रॉप को आप एक बार लगा दिए, ये ब्रह्मर्षि है, इसको थोड़ा आप प्रबंधन करते रहें, और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मीन्स जो नाइट्रोजन का इनका जो रूट पार्ट है ना, वातावरण में जो हमारे नाइट्रोजन है उसका ये प्रबंधन, उससे हुए फिक्स करते हैं अपने जड़ में, इनमें नोडल्स बनते हैं और का फिक्सेशन करते हैं हमारे मिट्टी में, और जिसके नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस कमी को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी है, अगर इससे भी आपकी कमी नहीं पूरा हो पा रही है, जहाँ आपकी नाइट्रोजन की अगर कमी बहुत लो लेवल पर है, प्रेजेंट है आपकी मिट्टी में, तो वहाँ पर और भी आप चाह सकते हैं, इंटीग्रेटेड में जा सकते हैं। अगर जैविक खाद के प्रयोग से आपकी नाइट्रोजन कमी पूरा नहीं हो पा रही है तो आप जा सकते हैं रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा ना करें आप, मेरा यही आप मानना है, उससे ज़्यादा प्रयोग हम ना करें। जैसे आप नाइट्रोजन कमी है तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उर्वरक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जैसे यूरिया करते हैं, जो भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड होता है उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे जो फसल चक्र आप अपनाते हैं, एक ही फसल को बार बार ना उगाकर फसल चक्र का अपनाएं। जैसे आपने धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, उसके बाद कोई दलहनी पौधों का आप उगाएं, या कोई हमारे तेलहन पौधे का उगाएं, दलहन पौधे का उगाने से क्या होता है, उसके जो हमारा जड़ होता है ना, उसमें जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जो हम रासायनिक खाद से डाल के जितना करेंगे ना, जो मान लो सपोज आप कहीं 120 केजी यूरिया डाल रहे हो पर हेक्टेयर, 120 केजी यूरिया पर हेक्टेयर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो और वहाँ दलहनी पौधा आपने लगा दिया, तो नाइट्रोजन हमारा जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है अपने जड़ में और उस कमी को वहाँ तक उसको मिनिमाइज कर देता है जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 120 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर डाला है, अगर दलहन पौधे का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप फसल चक्र का जरूर अपने, और उस फसल चक्र में आप दलहनी पौधों का जरूर साल में एक बार या दो बार जरूर प्रयोग करें, और यही है इसके लिए। और जैविक खाद कंपोस्ट का प्रयोग करें, जो हमारे गोबर खाद उसका प्रयोग करें, हमारे केचुआ खाद का प्रयोग करें, जो भी आपके पास सब्जियों के, जो भी आपके फसल के कट्टे छिटे पार्ट होते हैं उसका आप उससे कंपोस्ट बनाएं और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें। ये सब इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के तरीके हो गए हैं। दूसरा हो सकता है फॉस्फोरस की कमी आती है, तो फॉस्फोरस कमी की भी पूरा करने के लिए आप जैविक खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद, उसमें भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सब डाल सकते हैं। कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो हमारा केचुआ खाद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस की कमी अगर ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक उर्वरक जो हैं, वो आपने नाम सुना होगा, माइक्रो जो होता है हमारा, माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स होते हैं। ये माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स क्या करता है, जो हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में जो हमारे नेटिव फॉस्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है। वो जो मतलब जो हमारे मिट्टी में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको लेने में पौधा जो है असक्षम हो रहा है, तो ये क्या करता है, उसको जो मतलब जहाँ वो उसको क्या करता है, जिस जहाँ वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है, तो इसको ये जो है हमारा माइक्रोराइजा, ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करता है, मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म से एक्सचेंजेबल फॉर्म में लाता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मीन्स मोबिलाइजेशन का तरीका, मीन्स बोलने का मतलब यही है, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने कहीं एक जगह मैं बैठी हूँ और मैं बहुत स्थिर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक डोरमेंट स्टेज में चली गई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कोई मुझे आया, मुझे कुछ ऐसा बात वाला मोटिवेशनल बात कहा चाहे कुछ भी कहा और मुझे एक्टिव स्टेज में ला दिया है। तो जस्ट लाइक इसी जैसा है हमारा जो माइक्रोलाइजा इनोक्लेंट्स है, क्या करता है ये फॉस्फोरस जहाँ हमारे नेटिव पूल में प्रेजेंट है और वो नॉन एक्सेप्टेबल फॉर्म में है जहाँ से हम पौधे उसको उपलब्ध नहीं ले पा रहे, पौधे वहाँ से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करता है उसको मोबिलाइज करके एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। और तरीके हैं पौधे के लिए और फॉस्फोरस की कमी के पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं, आप इसके लिए आप बहुत सारे रासायनिक खाद भी यहाँ प्रयोग करते ही हैं, जैसे मैंने डीएपी का नाम बताया। इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी कर सकते हैं, अमोनियम फॉस्फेट के भी प्रयोग से क्या होगा आपको नाइट्रोजन का भी उपलब्धता मिलता है, फॉस्फोरस का भी मिलता है। और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, इसकी भी हम प्रयोग करते हैं अपने फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। और मिट्टी में अगर फॉस्फोरस की कमी ज़्यादा आ रही है तो बोन मील, आपने इस नाम सुना होगा, बोन मील में भी जानने से क्या होता है हमारे मिट्टी में फॉस्फोरस कमी को ये पूरा करता है। और अब जिंक की बात करें, जैसे जैविक सामग्री जो भी हमारे होते हैं जैविक खाद होते हैं, जैसे मैंने बोला गोबर खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो, बहुत प्रकार के हम जो खाद बनाते हैं हमारे उसको डालने से क्या हो जाता है जो फॉस्फोरस हमारे अनलॉक स्टेज, अनलॉक बोले तो जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होते हैं उसको भी क्या करता है एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेता आता है और पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है ये जैविक जो हमारे खाद होते हैं। और जिंक की भी कमी है, जिंक की कमी के भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका भी आप समझे तो प्रकार ऐसा ही है बट कुछ सोर्स अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ आपको बताया गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, केचुआ खाद डालो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। तो गोबर खाद या केचुआ खाद या कोई और भी कोई खाद हुआ तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैविक खाद में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोटासियम ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है ये खाद डाल रहे हैं तो इस खाद ये खाद भी उस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं गोबर खाद में, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी जिंक की कमी आ रही है, आप ना पोल्ट्री से बनी जो खाद होती है, जो हमारे मतलब जो भी पोल्ट्री जहाँ फार्म होती है उसके जो स्क्रेटा होते हैं, जो उसके गोबर खाद जो उसके गोबर होते हैं, जो उसके मल मूत्र होते हैं, उससे आप खाद बनाएं, उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक की कमी को वो पूरा करता है। इसके अलावा नीम केक, नीम तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम जो होता है जो हमारे नीम के पेड़ होते हैं, इस नीम से इनके लिप से इनके ट्यूब से इनके फली से क्या करना है केक टाइप का बनाया जाता है और इसका डाला जाता है मृदा में, ये नीम केक भी जिंक की कमी को पूरा करता है। जैविक उर्वरक जैसे मैं बताई हूँ वर्मी कंपोस्ट, ये सभी प्रचुर मात्रा में आपकी जिंक को कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अजैविक अगर प्रबंधन की मैं बात करूँ, मिस कौन सा हम रासायनिक उर्वरक का डालें जहाँ अगर ज़्यादा कमी आ गई है, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जैविक प्रबंधन कर रहे हैं फिर भी आप जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है किसान बहनों भाइयों, आपको अजैविक खेती की तरफ भी अजैविक प्रबंधन की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने फसल हमने जो लगाया उसकी उपज अच्छी से लेनी है। और हमारे जितनी हमारी लाइक हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है भारत की, बिहार की, बिहार की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमें उनको भी हमें भोजन प्रदान कराना है, तो उस लेवल पे हमें अपनी खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी, फसल की उपज लेनी ही पड़ेगी, तो उस केस में हमें क्या होता है जैविक अगर जैविक की बात करेंगे जैविक प्रबंधन की बात करें तो नहीं हो पाता है, तो उसमें हमें क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोले तो आपको अजैविक प्रबंधन भी करने पड़ते हैं, जैविक प्रबंधन भी करने होते हैं। तो जिंक की जो कमी आ रही है तो उसके लिए अजैविक प्रबंधन के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, एक ये जिंक का बहुत अच्छा अजैविक स्रोत है, जो मिट्टी में जिंक की कमी आती है तो उसको ये पूरा करता है। और भी बहुत सारे जिंक खाद है हमारे, जैसे जिंक चिलेट्स के आते हैं, ये जिंक चिलेट्स भी एक अजैविक खाद है जो जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और पौधे को ये सीधा जिंक प्रदान करता है और पौधे को सीधा जिंक ग्रहण करने में या प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक की अगर कमी आ रही है तो पौधे पे आप डायरेक्ट जो जिंक जैविक जिंक का जो अच्छा अजैविक स्रोत है उसका फोलियर स्प्रे करते हैं, मीन्स उसका आप जिंक को आप पानी में घोल कर डायरेक्ट आप अपने पौधे के ऊपर पौधे के पत्तियों पे या पौधे के ऊपर डाल सकते हैं जो जिंक की कमी को पूरा करता है। और यही सब जो हमारे हैं फसल चक्र तो आपको सभी में अपनाने हैं इस कमी को पूरा करने के लिए, जहाँ जरूरत पड़े आप जैविक खेत जैविक प्रबंधन करें, अगर इससे ज़्यादा इसकी कमी पूरा आप जैविक प्रबंधन से नहीं कर पाते हैं तो आप अजैविक प्रबंधन भी करें।
1: तो श्रोताओं अभी आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे, तो अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं। और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: भी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव की। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें बरतनी है हमारे पशुपालक भाइयों को उनके पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए इस समय, ताकि वो रोग बीमारियों से दूर रहे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जो पशुओं को देखभाल और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के लिए, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
5: जी, सबसे पहली बात है कि बारिश के मौसम हमारे किसानों के लिए, बारिश के साथ साथ चारों ओर हरियाली आती है जिससे हमारे किसानों का जो है मन प्रफुल्लित रहता है। लेकिन पशुपालकों के लिए बारिश का मौसम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र में खास करके बारिश के मौसम में हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे अगर आपके पशुशाला की छत की में पानी टपकता है तो उसका रिपेयरिंग पहले करवा लें। खास करके जल जमाव वाले क्षेत्रों में अगर निकासी की, जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले से आपको कर लेनी है। तथा अगर आपके आसपास जल जमाव होता है तो कोशिश करें अपने पशुओं को ऊंचे स्थान पर रखें, या जल जमाव बारिश में जब जल जमाव होता है उस, ताकि कीचड़ नहीं हो और आपके पशुओं को आप भींगने से बचाएं। अगर लगातार आपके पशु भींगते रहेंगे तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ आप अपने पशुओं को खिलाने के लिए जो भी आप सूखा चारा या जो दाना रखते हैं उसको रखने की जगह को भी सूखा रखना है, क्योंकि अगर नमी अधिक होगी, भींगेगा तो उसमें फफूंदी लगेगा, फंगस लगेगा, जिससे उसमें कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है जिससे कई प्रकार की पशुओं में बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। और खास करके बरसात के पहले जो पशुओं में बचाव के लिए जो टीकाकरण सरकारी स्तर पर या अपने स्तर पर होता है उसको आपको लगवाना आवश्यक होगा।
3: जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में अपने आसपास या घर में पानी जमा नहीं होने देते, क्योंकि उससे मच्छर या अन्य बैक्टीरिया जो है वो पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार पशुपालक भाइयों को भी चाहिए कि पशु जहां पर रखते हैं आप उस जगह को साफ़ सुथरा रखें, पानी जमाव ना होने दें, जल जमाव ना होने दें।

और खास करके अगर आपके पशुओं को आहार प्रबंधन में दिक्कत होगा, उनका इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होगा, तो ये बीमारियां होती हैं। और ऐसे भी ये बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं। तो एक पशु में होने के बाद इनका संक्रमण दूसरे में होता है और ये तेजी से फैलती भी हैं। इसलिए बरसात के मौसम में खास करके जो बीमारियां हैं HS या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बीमारी, और एंथ्रेक्स या पिलबढ़वा जिसमें कि आपके पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, खास करके पशु लंगड़ाने लगते हैं।

उनके जितने भी नाक से, कान से, मुंह से, मल द्वार से बिना जमा हुआ खून निकलता है, ये उसकी पहचान है कि इसमें एंथ्रेक्स हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको खास करके

0: बीमारियों के होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए आप अपने खास करके बाछे बाछियों में और पाड़ियों में इस तीनों बीमारियों से HS, BQ और एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीकाकरण करवा लें
1: जी।
0: इसके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में, जैसे जैसे आपने बताया कि चारों ओर जल जमाव होता है जिससे मक्खी का, मच्छर का, और ऐसे भी जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में नमी और गर्मी दोनों की अधिकता के चलते जो आपके पशुओं में चमोकन है, अठाइल है, किलनी है, जू है, मक्खी है, मच्छर है, इसके प्रकोप से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो परजीवी के चलते होती हैं या प्रोटोजोआ के चलते, जिसमें थलेरियसिस है, बेबेसियसिस है, या ट्रिप्नोसोमियसिस या सर्रा, लाल पेशाब, इन बीमारियों की भी काफी अधिकता होती है। तो खास करके अपने, जैसा आपने बताया कि जल जमाव नहीं होने देना है, शाम के समय अपने पशुशाला में चारों ओर धुआं अवश्य करें जिससे कि मच्छर का प्रकोप नहीं हो, और समय समय पर अपने पशुशाला में पशुओं के शरीर पर जो बाह्य परजीवी से बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन या एमिट्राज नामक दवा का प्रयोग, एक लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा देके अपने पशुओं के शरीर पर इसको से धुलाई करें और इसका छिड़काव अपने पशुशाला में भी करें, तो इससे आपके पशुओं में बीमारियां कम होंगी। और अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो ये जो संक्रामक बीमारियां हैं इनसे आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं
1: जी। तो ये कुछ रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया और टीकाकरण से आप कैसे बचा सकते हैं और दवाइयों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अत्यधिक बारिश और जल जमाव या बाढ़ आने पर पशुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुपालक भाई क्या करें, क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें रखनी चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही वाइटल प्रश्न है, क्योंकि ये जो भागलपुर और आसपास के क्षेत्र हैं, खास करके इन गंगा नदी के किनारे, और फिर जो हमारा उस पार का क्षेत्र है जहाँ की कोसी और गंगा, इन दोनों नदियों के चलते इस क्षेत्र में, और इसके अलावा जो लोकल नदियां हैं इनके, इनका जो जब अत्यधिक बारिश होती है या गंगा के पानी में या कोसी के पानी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, तो जल जमाव के चलते, या जो काफी देखा गया है कि नेशनल हाईवे पर भी पानी ऊपर आ जाता है और गांव में प्रत्येक घर में करीब करीब पानी घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो चारा दाना की समस्या है। तो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ स्थान, ऊंचा स्थान चिन्हित कर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि अगर अत्यधिक बारिश है या बाढ़ आने की संभावना है तो प्रखंड कार्यालय स्तर से या अंचल स्तर से इस चीज की सूचना प्रत्येक जगह, प्रत्येक, आजकल मुखिया भी हैं, वार्ड परिषद के सदस्य हैं, तो सबके माध्यम से सभी गांव में ये सूचना रहती है कि कौन सा उच्च स्थान चिन्हित किया गया है जहां अपने पशुओं को ले जाएं, और वहां पर अगर आपके पास जो चारा है उसको ले जा सकते हैं, या फिर सरकार के स्तर से भी बाढ़ की स्थिति में पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाती है, सूखा चारा की व्यवस्था की जाती है, चोकर की दाना की व्यवस्था की जाती है, और अगर वैकल्पिक स्रोत के रूप में आप देखते हैं तो पेड़ की टहनी है या फिर जो कुछ फसल अवशेष हैं उसको, या फीड ब्लॉक एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आजकल हम लोग पशु जो फसल अवशेष है उसका, उसको कंप्रेस्ड करके उसमें उसके साथ दाना और अलग से मिश्रित करके कंप्लीट फीड ब्लॉक बना के उसको सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखते हैं, और स्कार्सिटी के समय, बाढ़ के समय उनको पशुओं जहाँ पर ऊंचा स्थान जो सरकार के स्तर से चिन्हित है वहाँ पर, वहाँ हम लोग फीड ब्लॉक भी देके और पशुओं के लिए चारा दाना की व्यवस्था करवाते हैं। साथ ही साथ वहाँ हेल्थ सेंटर भी खुलता है पशुओं के लिए जहाँ टीकाकरण की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था रहती है। इसलिए निश्चित रूप से जब भी अत्यधिक बारिश हो और बाढ़ की संभावना हो तो सरकारी स्तर से या अंचल के स्तर से जो भी ऊंचा स्थान चिन्हित करके जहां पशु कैंप बनाया जाता है वहां अपने पशुओं को ले जाकर रखें, और जो सरकार की सुविधाएं हैं या जो व्यक्तिगत रूप से आप सुविधा दे सकते हैं उसका लाभ लेके अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस समय बरसात के समय में पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रोग पनप सकते हैं आपके पशुओं में, तो इसका ख्याल रखें और जो भी बातें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं उनका अनुसरण ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
13: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद
13: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
14: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
13: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
14: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
13: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
14: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पर ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
13: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
15: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
16: जी
15: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
16: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
15: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम
पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 4 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है कि आप इस समय हमारे कार्यक्रम को सुनने का आनंद ले रहे होंगे। मजा आ रहा है कार्यक्रम सुनने में? मुझे भी बहुत मजा आता है ये सारे कार्यक्रम सुनने में। आज मैं उषा दीदी आपको एक कविता सुनाऊंगी। मालूम है उस कविता का नाम क्या है? आपकी ही पसंद का नाम है। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कविता का नाम क्या होगा? सोचिए। इस कविता का नाम आजकल के मौसम के ऊपर है। और आजकल मौसम कौन सा चल रहा है? बारिश का मौसम। सावन का महीना है, बादल नजर आते हैं आसमान में और फिर जब तब बरसने लगते हैं। तो हमारी आज की कविता इन्हीं बादलों के ऊपर है। तो हमारी कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कल्पना की दुनिया में ले जाती हूँ। ये कुछ बच्चों के लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये हकीकत हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि उषा दीदी ऐसे कौन से सवाल लेकर आई हैं आज? कविता सुनाना तो दूर, हमें सवालों में उलझा रही हैं। ना ना, ऐसा नहीं है, सवालों में नहीं उलझा रही मैं, आपको मजा आएगा। आपने आसमान में तरह तरह के बादल देखे होंगे। कुछ सलेटी रंग के बादल हैं, कुछ गहरे काले बादल हैं और कुछ बादलों में आपने तरह तरह की आकृति देखी होगी। कभी कोई बादल ऐसा लगता होगा कि जैसे हाथी सूंड उठाकर सलाम कर रहा है, तो कभी ऐसा देखा होगा कि कोई जोकर तोन फुलाकर बैठा है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये बादल नहीं बल्कि चिड़िया है। तो हमारी इस कविता में ऐसे ही बादलों की कल्पना की गई है। तो अब आप बताइए कि मैंने आपको सवालों में उलझाया है या आपको कल्पना की दुनिया में घुमाया है। तो चलिए हम अपनी आज की कविता शुरू करते हैं, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल।

आपको ये कविता कैसी लगी? समझ में आई? एक और बार सुनते हैं। ठीक है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में नाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। कैसी लगी आपको कविता? मजा आया आपको? तो इस कविता को सुनते समय आप भी बादलों में कहीं खो गए होंगे। कैसे बादल? कुछ ऊंट जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ हाथी जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ जोकर दिखने जैसे बादल। तो इन बादलों में तरह तरह की आकृतियां आपको नजर आती होंगी। बच्चों, यह कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने, और आप इस कविता को पढ़ भी सकते हैं। अभी तो आपने कविता सुनी है, और अगर आप इस कविता को पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की साइट पर जाइए और इस कविता को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, कविता सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बादल को जिद्दी क्यों कहा गया है? कविता की पंक्तियां मैं दोहरा देती हूँ और फिर आप सोचिए कि बादलों को जिद्दी क्यों कहा है। तो मैं शुरू करूं? ठीक है। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो सोचा आपने यहाँ बादलों को जिद्दी क्यों कहा गया है? बादलों को जिद्दी इसलिए कहा है कि सबने बहुत मना किया कि बादलों इतना मत बरसो, इतना मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। पानी तो उतना ही बरसना अच्छा लगता है जितना हम उसमें आनंद ले सकें, लेकिन अगर यही पानी बहुत बढ़ जाए तो नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ से जो नुकसान होता है वो बहुत भयंकर नुकसान होता है। तो इसलिए सबने बादलों को समझाया कि बादल बरसो तो सही, लेकिन इतना भी मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। लेकिन बादल है कि मानता ही नहीं है, और इसलिए बादलों को जिद्दी कहा गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल किसी की बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्या कोई है जो बादलों को कुछ समझा रहा है, लेकिन बादल हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे? कविता की पंक्ति को आप दोबारा सुनिए। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब बादल तो आए और बरस कर चले गए, लेकिन बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? कभी सोचा है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। बादल जब आते हैं आसमान में बरसने के लिए, तो खूब गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। बस इसी गड़गड़ की आवाज को कहा गया है ढोल बजाना। तो पता चला आपको कि बादल ढोलक कैसे बजाते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी ढोलक लेकर, अपनी ढपली, अपना राग करके ढोलक बजाते रहते हैं और गाना गाते रहते हैं। तो हमारी ढोलक और बादल की ढोलक में क्या फर्क है? सोचो। बिल्कुल सही। हमारी ढोलक तो सामने नजर आती है, ठीक है, लेकिन बादल की ढोलक तो सामने नजर आती ही नहीं है, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। तो बस इसी से पता चल जाता है कि बादल जो हैं, वे गड़गड़गड़ की आवाज कर रहे हैं, यानी कि ढोलक बजा रहे हैं। अब सोचिए कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? हम तो ढोल बजाते हैं या ढोलकी बजाते हैं हाथों से, लेकिन बादल कैसे ढोल बजाते होंगे? ये सवाल आपके लिए है। आप सोचते रहिए और जब जवाब मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, बादलों के बारे में एक और खास बात कही है, और ये खास बात आप सभी बच्चों से मिलती जुलती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ऐसी कौन सी बात है जो बादलों में भी है। है एक बात तो है जो आप में भी है और बादल में भी है। कुछ अंदाजा लगाया आपने? चलिए मैं आपको एक संकेत दे देती हूँ। बस इस संकेत के सहारे आप ये समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे और बादलों के बीच में एक जैसी है। तो तैयार है आप सब कविता की वे पंक्तियां सुनने के लिए? ठीक है, तो सुनिए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। यानी कि आप सारे बच्चे जिस तरह से शैतानियां करते हैं, बादल भी वैसे ही शैतानी करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हम तो शैतानी करते हैं किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उसमें मजा आता है, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये बादल क्यों शैतानी करते होंगे और बादल क्या शैतानी करते होंगे? तो बादल शैतानी में क्या करते होंगे, वे अभी एक जगह हैं तो उड़कर दूसरी जगह पहुंच गए, अब दूसरी जगह हैं तो उड़कर तीसरी जगह पहुंच गए। अब अगर बादलों की अम्मा बादलों से कहे कि बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, भोजन कर लो, मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है, लेकिन बादल है कि हाथ नहीं आने वाले, अभी यहाँ पर है, और बादलों की अम्मा उनके पीछे पीछे पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़े चली जा रही हैं। तो बादल कभी यहाँ है तो कभी उड़कर वहां चले गए। अम्मा अब दूसरी जगह पहुंची तो बादल तीसरी जगह पहुंच गए। अब अम्मा तीसरी जगह पहुंची तो बादल वापस अपनी जगह पर दरवाजे के पीछे छिप गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में दरवाजा कहाँ? तो आसमान में बादल भी अपना दरवाजा, अपना घर खोज लेते हैं। उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पूरा आसमान उनका घर है। तो बस यही बादल शैतानी करते हैं और अम्मा उनके पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़ती फिरती हैं। फिर क्या करती हैं अम्मा? अम्मा फिर थक हार कर बैठ जाती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हें खीर खानी है तो खाओ और नहीं खानी तो मत खाओ। लेकिन बादल अब समझ जाते हैं कि अम्मा नाराज हो गई हैं। लेकिन ये अम्मा का झूठ मूठ का गुस्सा है। हमारी माँ भी तो ऐसे झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती है हमें, ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं और आराम से भोजन कर लें। तो जब अम्मा थक हार कर बैठ जाती हैं, तो फिर बादल चुपके से आता है, अपनी अम्मा के गले में बाहें डालकर झूलने लगता है और कहता है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है। तो अम्मा कहती है, खीर ये रखी है और अब तुम खा लो। तो बस बादल भी ऐसे ही शैतानी करते हैं। और बादलों को तूफानी क्यों कहा है? हाँ, बच्चे भी तो अफलातून हैं, खूब बड़े तूफान हैं। तूफान मतलब जिनके आने से घर में धमा चौकड़ी मच जाती है, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे पहुंच जाती है, यानी कि सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है। बादल भी ऐसे ही तूफानी हैं, खूब तेज गति से आते हैं और बारिश करते हैं खूब जोरों की, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। और कुछ रह रह करते शैतानी, यानी कि बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बस यही रुक रुक कर बरसना जो है बादलों की शैतानी हम कह सकते हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? पसंद आई कविता? मेरे पास एक और कविता है और यह कविता भी बादलों के ऊपर है। इस कविता को जब आप सुनेंगे ना, तो आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे, इतनी शर्त तो मैं लगाती हूँ। बच्चों, ये कविता लिखी है राजेश जोशी जी ने। राजेश जोशी जी भोपाल में रहते हैं और आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। तो हम सुनते हैं राजेश जोशी जी की एक कविता बादलों के ऊपर। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट्टी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? एक और बार सुनते हैं। ठीक है। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए,
जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए। जेब उलटी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? समझ में तो ये आया कि बादल को क्या कहा गया है, बुद्धू। क्यों? क्योंकि वह अपनी जेब में पानी भर के ले आए थे। और बादल के पापा ने क्या समझाया कि जेब में पानी भर के लाओगे तो वो ठहर पाएगा। तो बादल को लगा कि उसने ये बेवकूफी की है, ये उसने अपना बुद्धूपना दिखाया है। तो उसने क्या किया, उसने झट से अपनी जेब उलट दी। और जब जेब उलट दी तो सारा पानी बारिश के रूप में नीचे गिरने लगा, टप टप टप टप टप टप। कैसी लगी कविता? आप जब ये कविता सुन रहे होंगे तो यकीनन आप बादल, जेब उलटना, बारिश और बादल के पापा, इन सबको देख पा रहे होंगे। ठीक है, कभी अपनी जेब में भी पानी डाल के देखिएगा कि पानी ठहरता है या नहीं ठहरता। और

ये करके देखिएगा कि हमारी जेब में पानी ठहरता है या नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जेब में तो पानी ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए, सही? आप कहेंगे नहीं, उषा दीदी हमें बुद्धू बना रही हैं। नहीं, मैं बुद्धू बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। अगर मैं पानी को जमा कर लूँ, यानी कि बर्फ की तरह जमा दूँ उसे, ठीक है, जैसे हमारे फ्रिज में बर्फ जम जाती है, अगर वैसे आइस क्यूब या जो जमी हुई बर्फ है, अगर मैं बर्फ के छोटे छोटे गोले बना लूँ या आइस क्यूब, जो ठोस बर्फ होती है, ठीक है, उसे जेब में रखूँ।

0: अब क्या होगा, ओले टपके टप टप टप, क्योंकि अब बारिश की बूंदे नहीं है, अब क्या है, ओले। ओले भी तो ठोस बर्फ जैसे दिखते हैं। तो अब उसने अपनी जेब में से बर्फ जब उलट दी तो ये किस रूप में नीचे आई, ओलों की तरह से। तो बस हमारी कविता में जब पानी है तो बारिश है और ओले हैं तो ओले हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? यकीनन आपको इस कविता को सुनकर बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया और मैं अपने बचपन में लौट गई जब सारा आंगन ओलों से पट जाता था। पटने का मतलब आप पूछेंगे, अब पटने का मतलब है कि आंगन में ओले ही ओले थे, ओले ही ओले थे, और हमें ये देखकर बहुत मजा आता था। लगता था कि हमारे घर में भी बर्फ पड़ी है, इतना मजा आता था। लेकिन ये जब किसी गाड़ी पर या टीन की छत पर गिरते हैं, टप टप टप टप टप टप, बहुत तेज आवाज आती है, तो ओलों की आवाज सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे बच्चे तो ओले खाते भी हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कविता खुद बना सकते हैं। तो हमारे पास कौन से शब्द हैं? आपने अभी दो कविताएं सुनी, ठीक है। तो बच्चों, क्या आप अपनी कविता बनाना चाहेंगे? ठीक है, तो हम आपकी मदद करते हैं आपकी अपनी कविता बनाने में। अब आपको सोचना क्या है? कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ याद करना है मौसम। मौसम में जो कुछ भी होता है उसे गौर से सोचने समझने की जरूरत है। मौसम में क्या है, अगर हम बारिश का मौसम लेते हैं तो इसमें क्या है, इसमें बादल है, ठीक, इसमें बारिश है, ये भी ठीक है, इसमें हवा सनसन चलती है, ये भी ठीक है, इसमें बिजली चमकती है, वेरी गुड, और बादल गड़गड़ गड़गड़ गरजते हैं। तो यानी कि आपने बारिश से जुड़े हुए तमाम शब्द इकट्ठे कर लिए। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस इन शब्दों को जोड़ तोड़ के एक ऐसी लय ताल में बांध दीजिए और कविता अपने आप बन जाएगी। तो हम इन्हीं शब्दों से बनी हुई एक कविता सुनते हैं और आप कोशिश कीजिएगा अपनी खुद की कविता बनाने की। तो चले सुनते हैं एक और कविता। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। तो इसमें हमने क्या किया, हमने कहा बादल गरज रहा है गड़गड़, तो हमने बादल शब्द लिया और गड़गड़ शब्द लिया। अब बिजली के साथ क्या है, बिजली चमकती है, तो चमकने के लिए हमने चमचम शब्द का इस्तेमाल किया और लाइन क्या बनाई हमने, बिजली चमक रही है चमचम। फिर जब बिजली चमकती है तो पानी बरसता है और पानी के बरसने की आवाज क्या है, झमझम। तो हमने बस यही पंक्ति बना दी, झमझम बरस रहा है पानी। अब पानी की लय में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? पानी की लय में आ सकते हैं आनी, जानी, मानी, नानी। तो क्यों ना हम नानी शब्द को ले आएं? झमझम बरस रहा है पानी और अंतिम शब्द में हमारे पास कौन सा शब्द है, नानी। अब हमें करना क्या है, हमें नानी से पहले वाले शब्द खोजने हैं। तो झमझम बरस रहा है पानी, नानी, तो क्या हो सकता है, अब कैसे आएगी नानी। है ना मजेदार कविता? तो एक बार और दोहरा लेते हैं इस कविता को। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। कैसी लगी कविता? अपनी नानी को तो आप ये कविता जरूर सुनाइएगा। बस आपको करना इतना है, खूब सारे शब्द इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस तरह से संजो कर रखिए कि एक लय एक ताल में ये पंक्तियां बनती चली जाएं। बस जैसे जैसे पंक्तियां बनती चली जाएंगी वैसे वैसे आपकी कविता भी बनती चली जाएगी। तो अपनी नानी को ये कविता सुनाना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं, जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में गरीब एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें, तो परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूँ मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादा अधिकतर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ वर्षों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यावसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधाराएं ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा ज़मीन है, तो आप कुछ ज़मीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास ज़मीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं, पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है, लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके, मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी ज़मीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है, और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री, आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यावसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
11: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
10: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है, फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए, कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है, तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था, आप बोल सकते हैं, आज वहाँ पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे, जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, अब वही धान गेहूं पर आश्रित हैं, तो कैसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं? जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गांव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज़्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
11: तो सर अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
10: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं। आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं कोई भी काम उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही। जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
11: और सर अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
10: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है, उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसे योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके लिए जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है। तो इसलिए सरकारी योजनाएं, उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों, नई फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है। फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे। आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा, आपको लकड़ी के हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है। तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
11: जी, यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाए।
10: जी जी हाँ।
11: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
10: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट, प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी, आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
11: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
10: देखिए एक एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उससे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, इसी सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाद में बोलते हैं बाद बोलते हैं खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाद में है, पश्चिम बाद में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है, तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है। और छोटे खेत में आप एक एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं या, तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
11: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं जो पारंपरिक खेती से व्यवसायिक खेती की ओर जा रहे हैं उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
10: जी ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती, क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है, अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाई है और वो 10 लोग मिलके एक जगह मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए, तो इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
11: जी तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
10: जी देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए खाना हो जाए सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें वो हो गया, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है हमारा लाभ कमाना आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है पारंपरिक खेती क्या है उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए, तो यही सब अंतर है। पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
11: तो सर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
10: देखिए बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत महाराष्ट्र हो गया गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा, व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे मैंने बताया, वही एक बीघा में धान लगाइए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उससे भी ज्यादा, हम दो गुना की बात करें, दो गुना से बहुत ज्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियां, जैसे हमने बात किया तो उस चुनौतियां, सब जगह चुनौतियां हैं, जीवन में चुनौतियां हैं, खेती में आप किसी भी चीज में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौतियां उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो जो आखिरी जो है निष्कर्ष, ये है सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी,
11: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है सर, आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि,
12: नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
13: जी
12: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
13: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
12: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: एक जरूरी काम करो, कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते के बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अल्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं मक्का के फसलों में लगने वाले कीटों के बारे में. दोस्तों, यूं तो मक्का की जो फसल होती है वो काफी फायदा देती है हमारे किसान भाई बहनों को, लेकिन अगर कीट लग जाते हैं तो बहुत नुकसान होता है. किस प्रकार से आप कीटों की पहचान कर सकते हैं और किस प्रकार से आप कीटों से मक्का के फसल को बचा सकते हैं, आइए उस बारे में जानते हैं विस्तार से डॉक्टर किरण कुमारी से. मैम है कीट विज्ञान विभाग से, मैम है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: मैम. सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मक्का के फसल को कौन कौन से कीट होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं.
1: जी, मक्का फसल जो है वो हमारे बिहार के कंडीशन में सालों भर लगाए जाते हैं, यानी खरीफ, रबी और गर्मा, तीनों मौसम में जो मक्का है वो उगाया जाता है. और लगभग तीनों सीजन में मक्का को कीट जो है वो खाकर उसको हानि पहुंचाते हैं. और इन हानि पहुंचाने वाले कीड़ों में मक्का का तना छेदक कीट, कटुआ पिल्लू, सफेद ग्रब, लाही, फॉल आर्मी वर्म एवं कॉब बोरर कीट हैं.
0: जी मैम, तो जैसे कि अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो आप हमें सबसे पहले बताइए मैम कि तना छेदक कीट, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है.
1: मक्का का तना छेदक कीट जो है, इसका वयस्क पतंग, जो पतंगा जिसको कहते हैं, जैसे वो मौत भी कहते हैं इसको, जैसे बटरफ्लाई होता है दिन में उड़ता है तो वो रात में उड़ता है, तो ये वयस्क जो है इसका पंख का जो रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है. ये पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देते हैं और इन अंडों से फिर पिल्लू जो भूरे रंग के होते हैं वो निकलते हैं. और ये जो पिल्लू हैं उनको लार्वा भी कहते हैं, इल्ली भी कहते हैं. और इन पिल्लुओं के शरीर के ऊपर चार धारियां होती हैं और इनका सिर जो होता है, हेड, वो काला होता है. ये जो लार्वा या पिल्लू हैं ये पत्तियों के गाभा को खाते हैं. और पहले तो जो पत्तियां हैं उनको, चूंकि इनका जो जो लार्वा है, शिशु हैं पिल्लू, इनके जो शुरुआत में ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और इनका मुखांग जो होता है, माउथ पार्ट, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होता है. और ये पत्तियां चूंकि गाभा में ही मुड़कर रहते हैं और इन पर ये पिन, इनका माउथ छोटा होता है इसलिए पिन के बराबर छेद करके खाते हैं. और जब ये पत्तियां थोड़ा बाहर आती हैं तो ये पिन बराबर छेद जो हमारे वो दिखते हैं वो समानांतर रूप में दिखते हैं. फिर जब यही थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो छेद थोड़े बड़े भी दिखते हैं और वो एकदम समानांतर में रहते हैं, क्योंकि वो गाभा के अंदर ही काट कर उसको खाते हैं. फिर ये लार्वा जो है पूरे अंदर तने में प्रवेश करके नीचे तने तक, जो जमीन का लेवल, वहाँ तक भी चले जाते हैं और इस तरह से तनों को खाते हैं. और जिससे कि बीच वाली जो फुनगी होती है वो सूख जाती है और जब इसे खींचते हैं तो आसानी से खींचा जाता है, जिसे डेड हर्ट कहा जाता है. चूंकि ये बीच में, बीच की पत्ती सूखती है, बीच में खाते ही हैं वो, तो इसलिए वो जो है उसको डेड हर्ट कहते हैं या मृत कल्ला भी कहा जाता है.
0: जी मैम,
1: इसके कीट जो, ये जो है इसके बचाव के लिए जो हार्वेस्टिंग करते हैं कटनी के बाद, खेतों के सारे जो भी अवशेष ठूंठ होते हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इसी में इसके जो पिल्लू होते हैं या एक पीपा होता है जिससे कि फिर वयस्क निकलते हैं, वो ये दोनों अवस्था, लार्वा पीपा, ये उन ठूठों में ही पाए जाते हैं और जमीन के अंदर वो घुस के रहते हैं. मई और जून के महीने में इसके खेत की जो है जुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि ये जो मिट्टी में पड़े हुए इसके लार्वा हैं, पिल्लू हैं, वो जो सूर्य की रोशनी में एक्सपोज हो जाते हैं और या तो चिड़ियां भी खा जाती हैं. और इसके नियंत्रण के लिए या मॉनिटरिंग के लिए भी हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, तो फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए. और जब फिर भी अधिक प्रकोप हो जाए तो रासायनिक कीट में फ्लुवेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या डेल्टा मेथ्रिन 1% का प्लस ट्राइजोफॉस 35 EC का मिक्सचर, ये कीटनाशी है, इसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, ये तो बात हो गई तना छेदक कीट के बारे में। मैम, कटवा पिल्लू भी लगते हैं मक्का के फसलों में, तो उसे कैसे पहचाने और उसके बचाव के लिए क्या करें किसान भाई बहन?
1: जो कटवा पिल्लू है, इसको कजरा कीट भी कहा जाता है, क्योंकि ये काले भूरे रंग का होता है और इसका शरीर बहुत ही चिकना और मुलायम होता है। इसे जो है, ये मक्का के अलावा अन्य फसलों जैसे चना, मसूर, मटर, गेहूँ, गोभी के जो छोटे पौधे रहते हैं नर्सरी में, उनको भी वो जमीन की सतह से वो काट देते हैं या पत्तियों को भी खा जाते हैं। और इसके जो पिल्लू होते हैं, जो लार्वा कहा जाता है, वो दिन के समय में मिट्टी के ढेलों में या जो दरार हैं उसमें छिपके रहते हैं, और रात के समय या जैसे ही अंधेरा होता है वो बाहर निकलकर फिर पौधों को काटकर खाते हैं। ये खाते कम हैं और पौधों को काटकर गिरा देते हैं, यानी बर्बाद ज़्यादा करते हैं। और इस कीट से बचाव हेतु खेत की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे इसके पिल्लू मर जाते हैं। और जब इसका प्रकोप कम हो तो सिंचाई करने से ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और खेत में लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए, जो लाइट में इसके जो वयस्क होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और इसके जो लाइट ट्रैप हैं उसके नीचे पानी भर के रख देने से उस पानी में सारे वो कीट गिर भी जाते हैं और जिससे कि वो मर जाते हैं। इस तरह से इसका ये एक जो लाइट ट्रैप है वो प्रबंध करता है इस कीट का। और अगर ये जो रासायनिक कीट में, इसका सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए, क्योंकि क्लोरपाइरीफॉस कीटनाशी का 3 ml प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर इसका प्रकोप हो जाता है तो क्लोरपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% मिक्सचर कीटनाशी का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 g प्रति 5 L पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम। मैम, अब आप हमें सफ़ेद ग्रव कीट के बारे में बताइए।
1: सफ़ेद ग्रव कीट, इसे अंग्रेजी में वाइट ग्रव भी कहते हैं, और इसका जो वयस्क है वो बिटल व्रिंग होता है, भौरा जिसे कहते हैं उस टाइप का होता है, और ये मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं, और जो इसके वयस्क हैं वो तो ऊपर पत्तियों को काट कर खाते हैं। और इन अंडों से जब जो मिट्टी में अंडे देते हैं तो इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं वो पौधों की जड़ों को खाते हैं, और इनका आकार जो होता है वो अंग्रेजी का सी जैसा मुड़ा हुआ होता है, सिर इसका भूरा रंग का होता है। और इस कीट के प्रबंधन हेतु जो इसके वयस्क कीट हैं, जो ऊपर में पत्तियों पर रहते हैं, काट कर खाते हैं, छेद बनाकर पत्तियों पर खाते हैं, उनको हाथ से या जाल जो नेट होता है, नेट उससे पकड़ के उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए। बीज बुआई के पहले जो क्लोरपाइरीफॉस से इसकी बीजोपचार भी करना चाहिए, और मिट्टी में भी क्लोरपाइरीफॉस 2% डस्ट फॉर्म में जो क्लोरपाइरीफॉस है 2% का, उसका 25 kg प्रति हेक्टर की दर से खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए। और खरी फसल में जब इसका प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन मिक्सचर का 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से इसके छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम। मैम, फॉल आर्मी कीट की क्या पहचान होती है और उसके प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
1: फॉल आर्मी वर्म कीट जो है, इसका वयस्क मौत होता है, यानी पतंगा होता है, और नर मौत जो इसका होता है उसका अगला पंख जो होता है मटमैले पीले रंग का धब्बे लिए होता है, और

0: और ये काफी हानि पहुंचाता है। कभी कभी तो ये लगता है कि खेत में कुछ भी नहीं है और अचानक से एक दो दिन के अंदर में पूरे खेत का सफाया कर देता है, क्योंकि ये फॉल आर्मी वर्म किट सबसे पहले 2019 में देखा गया था और अब ये जो है 2020-21 में इसका जो है बहुत ज़्यादा वो पूरे फैल गया था। अब धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पाया जा सका है। तो अगर ये किट आ जाए तो इसके बचाव के लिए जो है, और ये जो है ना गाभा को अंदर से भी काट कर खाता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चूहे ने काट कर खा रखा है। और इसके बचाव के लिए जब ये चूंकि ग्रुप में रहता है इसलिए इसको, और इसके पिल्लू शुरू में बहुत छोटे होते हैं और पत्तियों के ऊपर भी दिख जाते हैं, तो पत्ती सहित तोड़कर इसको नष्ट कर देना चाहिए। और बुआई के 15-20 दिनों के बाद फेरोमोन ट्रैप, जो स्पोडोप्टेरा फ्रूजी पर्दा ल्यूर जो आता है, उसको लगाना चाहिए इसमें, और 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। और फिर भी 3% अगर क्षति दिखाई दे शुरू में तो नीम आधारित कोई भी कीटनाशी जैसे निम्बिसिडी नीमाजल का 5 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और यदि 5% क्षति दिखाई दे तो गाभा में बालू और राख का 1:1 ratio, मतलब आधा बालू आधा राख मिलाकर के गाभा में देने से जो है ये कीट मर जाता है, क्योंकि ये कीट रात में बाहर निकलता है। और जब बालू और राख गाभा में दिया जाता है तो उसके बॉडी में घर्षण से उसके जो स्किन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाता है, इसलिए वो मर जाता है। इसके बावजूद भी अगर क्षति हो दिखाई दे तो रासायनिक कीटनाशी में इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 gram प्रति 5 liter पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे भी और अधिक अगर क्षति दिखाई दे और पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो बालू और राख का जो गाभा में देते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है और पौधे बड़े हो जाते हैं, तब थायमेथेक्सम 12.6% और प्लस लैम्बडा साइहैलोथ्रिन 9.5% ये मिक्सचर है, उसका आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, कभी कभी मक्का के फसलों में लाही भी लग जाते हैं, तो लाही की क्या पहचान होती है और प्रबंधन कैसे करें?
0: तो ये लाही जो है इसको मेचा भी कहते हैं, माहू भी बोलते हैं, और ये हरे काले रंग का होता है और कभी कभी ये खरीफ में भी दिख जाता है, सितंबर माह में कभी कभी बहुत ज़्यादा इसका अटैक हो जाता है। ऐसे तो रबी मक्का पर भी दिखाई देता है और फरवरी माह में, और ये जो लाही होते हैं वो पत्तियों से, इसके वयस्क और शिशु दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे ऊपर की पत्ती सूखना शुरू कर देते हैं और पौधे बीमार जैसे लगते हैं। और लाही कीट के प्रबंधन हेतु जगह जगह येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, यानी जो येलो स्टिक की ट्रैप है या तो कोई जो डब्बा है उसको पीला से पेंट कर उस पर ग्रीस लगा कर और डब्बे को एक छड़ी के सहारे उल्टा लटका दें, नहीं तो वो जो कार्टून होता है उसको पीले रंग से रंग के उस पर ग्रीस लगा दें और वो तख्ती जैसा वो रहेगा और उसको लकड़ी के सहारे खेतों में लगा दें, जिससे कि ये लाही कीट जो उसमें मूवमेंट होता है तो उस पर जाके सट जाते हैं और मर जाते हैं। फिर बायोपेस्टिसाइड में निम्बी चूर्ण और 5% घोल का 2 बार छिड़काव करना चाहिए। और अधिक प्रकोप हो जाए तो कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL कीटनाशी का 1 ml प्रति 3 liter पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: और अब आप हमें को बोरर के बारे में बताइए कि ये किस प्रकार से फसलों को हानि पहुंचाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या करें?
0: ये कॉप बोरर जब भुट्टा बनने लगता है तब ये हानि पहुंचाता है, और ये बहुभक्षी कीट है, यानी ये बहुत से फसलों को खाकर हानि पहुंचाता है। और जब मक्का में भुट्टा लगने लगता है तो ये जो है इसको मक्का को हानि पहुंचाता है। और इस कीट का जो पिल्लू होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है, इस कीट का वयस्क जो होता है वो भी पतंगा होता है और पीले भूरे रंग का होता है। ये पतंगा जो है वो हल्का अंधेरा जब होने लगता है या सूर्यास्त के बाद तभी वो दिखाई देता है, और फिर रात में भी पूरे रात

0: जो है ये उड़ता रहता है फसलों के ऊपर, और फसलों के ऊपर वो जब भुट्टा है उसके ऊपर भी अंडे दे देता है, जिससे पिल्लू निकलकर भुट्टे के अंदर घुस जाते हैं और भुट्टे को फिर खाकर बर्बाद कर देते हैं। और इसका प्रकोप नवंबर से अप्रैल माह तक बहुत ही अधिक रहता है। तो कॉप बोरर कीट का प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए, लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए, और जो बायोपेस्टिसाइड है उसमें NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसका 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, और इसका 2 छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए, या कोई भी नीम आधारित कीटनाशी का 3 छिड़काव 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। एक और बायोपेस्टिसाइड जो स्पिनोसाइड, इसका भी छिड़काव करना चाहिए, 45 स्पिनोसाइड 45 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने हर एक कीट के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया और इनका किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए। अगर किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपके मक्का के फसलों को बहुत कम नुकसान होगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, खुश रहिए स्वस्थ रहिए, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी।

0: आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं फूलों के बारे में। दोस्तों, सर्दियां आने वाली है और सर्दियों के मौसम आते ही हम सभी को लगता है कि हमारे घर के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हो, गेंदे के फूल हो, पिटूनिया के रंग हो या फिर डहेलिया के बड़े बड़े फूल, बगीचा देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन खूबसूरत फूलों की शुरुआत होती है एक अच्छे स्वस्थ पौध से। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं शीत ऋतु में फूलों की पौध कैसे तैयार करें, बीज कब बोए और पौध की देखभाल किस प्रकार करें। और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परमवीर सिंह। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद उमा जी। 90.8 एफएम ग्रीन के सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसा कि अभी समय जो आ रहा है, सर्दियां धीरे धीरे सर्दियां आएंगी और जैसे जैसे तापमान डिक्रीज होगा उस समय हमको फूलों की पौध तैयार करनी होती है और अपने बगीचे को महके। आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फूलों की वेराइटी जो है इसी मौसम में हमको चारों ओर दिखाई देती है। चारों तरफ जो गार्डन्स है वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। घर में गमलों में आपके खूब सारे खूबसूरत फूलों की बगिया जो है इसी समय महकती है। तो इस तरह से हम आज बात, ये मेरा विश्वास है कि आज की बातचीत के बाद हम अच्छे से फूलों की पौध तैयार कर सकेंगे और अपने बागान को महका सकेंगे।
0: जी सर, तो सर्दियों में कौन कौन से फूल लगाए जा सकते हैं? सर,
4: सर्दियों में फूलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम मेरीगोल्ड लगा सकते हैं। उसमें भी दो तरह के मेरीगोल्ड होते हैं। एक आप देखते हैं फ्रेंच मेरीगोल्ड होता है जो छोटी साइज में होता है, एक होता है बड़ा मेरीगोल्ड जो बड़े बड़े फूल आते हैं, एक होता है हाइब्रिड जो छोटे होते हैं इंका जिसको बोलते हैं, छोटे से गमले में बहुत सारे फूल आते हैं वो लगा सकते हैं। पिटूनिया लगा सकते हैं, डहेलिया लगा सकते हैं, इसके अलावा पेंजी लगा सकते हैं, कैलेंडुला लगा सकते हैं। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा हैं इसमें 100 से भी ऊपर आप लोगों की जो है अलग अलग तरह के फूल इस समय लगा सकते हैं। सबसे सुटेबल टाइम जो है सर्दियों में ही फूलों के लिए हमारे यहाँ पे होता है।
0: जी सर, तो सर इन फूलों को लगाने की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए?
4: हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में है, क्योंकि जैसे आपका सितंबर का अंत और अक्टूबर के महीने के दौरान हम इस फूलों की तैयारी कर जो पौध की तैयारी करेंगे और उसको उसके बाद हम गमलों में या जो हमारा मेन फील्ड है उसके अंदर लगाते हैं। तो सबसे अच्छा समय जो है आपका अंतिम सितंबर का सप्ताह और अक्टूबर का पूरा महीना, और कुछ वैरायटी जो है जो आप नवंबर 15 तक भी लगा सकते हैं। तो पौध लगाने का समय यही सबसे उचित समय है जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा।
0: सर, अब सवाल ये आता है कि जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
4: हाँ, ये हमारे फूलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं बहुत से आपके अलग अलग फ्लावर के कलर्स के दिखाते हैं फूल के, परंतु जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसके बाद जब उसको सोइंग करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है। ये खास समस्या होती है फूलों के बीज के साथ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका जानकार है, प्रमाणिक है, वहीं से सीड लेना चाहिए। उसके बाद जो सीड लेते हैं तो उसमें आपको ये खास ध्यान रखना है उसका किस्म, जो आप ले रहे हैं वो किस्म उस पर लिखा हुआ है कि नहीं है पैकेट के ऊपर, उसमें आपका डेट लिखा हुआ है कि नहीं, कब तक ये वैलिड है। और दूसरा आपको ये देखना है उसमें अंकुरण परसेंट, जर्मिनेशन परसेंट कितना है, यानी कि आपका 70% से 98% तक का जर्मिनेशन अलग अलग वेराइटीज के अकॉर्डिंग उस पर लिखा होता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रमाणिक जगह से ही सीड खरीदना है, उसके अलावा आपका उसको डेट देखना है, एक्सपायरी डेट जो है और कब तक

0: परसेंट ये वैलिड है वो देखना है, उसके बाद जो किस्म ले रहे हैं वो है, और उसके बाद अंकुरण परसेंट, ये आपको खासकर इसमें ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी सर। सर अगर मीडिया की बात करें तो क्या फूलों के लिए कुछ विशेष किस्म के मीडिया का इस्तेमाल करना होता है?
0: हाँ, इसमें आप जो ग्रोइंग मीडिया है, नॉर्मली जो लोग हम क्या करते हैं कि घर में मिट्टी होती है उसी में डालते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं। अगर व्रत बड़े स्केल पे करना हो तो छोटा अगर उठी हुई नर्सरी बनाते तो ठीक है, पर मैं इसके अलावा आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मिट्टी में नहीं लगा कर आप इसमें जो फूल, क्योंकि इसके कॉस्टली सीड आते हैं, आप देखेंगे 3,000-5,000 के सीड आता है 10 ग्राम का, बहुत छोटे मतलब 1000 सीड्स जो है, तो सीड कॉस्टली होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ट्रे आते हैं आजकल मड के ट्रे, जो मिट्टी के ट्रे आते हैं, उसमें आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब कोकोपीट है, कोकोपीट को आपको ब्रिक्स आता है 5 kg का, उसको 24 आवर्स के लिए उसको भिगो देना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है 8-10 आवर्स के लिए। उसके बाद उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट दोनों को बराबर मात्रा में, जैसे आपने बराबर मात्रा का मतलब वेट से नहीं लेना है आपको, उसको बाई वॉल्यूम लेना है। मान लीजिए आपने एक तगारा वर्मी कंपोस्ट लिया है तो एक तगारा आप उसमें कोकोपीट लेंगे। इस तरह से दोनों को मिक्स करके आपका जो ट्रे है, प्रो ट्रे में भी कर सकते हैं अगर बोल्ड सीड बड़ा सीड है तो, नहीं तो आप छोटा बहुत माइन्यूट सीड होता है, इसलिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप वो मड का जो ट्रे आता है आजकल, वो चौकोर में भी आता है, राउंड में भी आता है, डिफरेंट शेप में आपको मार्केट में मिलता है, तो उसमें आप उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद उसमें आप जो सीड लिए हैं जो भी वेराइटी का है वो सीड को सोइंग करना ऊपर से, फिर हल्का सा पर्थ फिर ऊपर से डाल देना है उसके अंदर। इस तरह से आप उसका सीड सोइंग कर सकते हैं। और ये मीडिया, मेनली मीडिया जो है आप सोयल को अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा।
1: सर बीज बोने की तो बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि बीज बोने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ, बीज बोने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो ट्रे में अगर आप लगा रहे हैं सीड को, तो आप 2-3 दिन के लिए उसमें आपका न्यूज़पेपर जो आता है उसको कवर कर दीजिए और हल्का सा उसी पे पानी दीजिए। मॉइस्चर मतलब पानी, आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है उसको, रोज कैन से देना है, बिल्कुल कम वाटर देना है और कवर करके जब उसमें छोटा अंकुरण होने लग जाए तब आप उसको पेपर को उसको सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
1: जी सर। सर जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तब भी विशेष ध्यान रखना होता है उन पौधों का, तो वो उस वक्त
0: हाँ, ये सबसे बड़े उस टाइम का ध्यान रखने की बात यही है कि आप उसमें वाटरिंग ज्यादा नहीं करें, पानी ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि जब हम डालते हैं तो उसमें पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना उसमें पानी कम देना है और पानी रुकना नहीं चाहिए उसके अंदर। और दूसरा उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा धूप और हवा, फ्रेश हवा के अंदर उसको रखना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, अंकुरण हो गया है तो उसमें अगर कोई ज़्यादा आपको लग रहा है कि डेंस है तो उसमें हल्का सा निकाल दे ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके, तो ये आपको अंकुरण के बाद उसमें ध्यान रखना है।
1: और सर अगर हम बात करें गमले में लगाने की तो कब लगाना चाहिए, इसे क्यारी या गमले में?
0: हाँ, जैसे आपका अंकुरण हो गया उसके बाद आपने देख लिया कि नॉर्मली जो है आपका 20 से 25 दिन और 30 दिन के अंदर आपका सीडलिंग तैयार हो जाता है, डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सीडलिंग का जो आपका है वो 4 से 6 लीफ आ जाए, उसमें पत्ते आ जाए, तो उसको आपको मेन फील्ड में जहाँ आपको लगाना है या क्यारी लगाना है, बेड में लगाना है, वहाँ लगा दें। अगर आपको गमले में लगाना है तो उसको उस समय पे गमले में लगा सकते हैं।
1: जी सर।
0: तो यही ध्यान रखना आपको कि उसको 4 से 6 पत्ती उसके अंदर आ जाए तो सीडलिंग को ट्रांसफर कर दें।
1: सर हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो कि बस फूलों को अपने घर में लगाते हैं बालकनी में या छतों पे, तो उनके लिए क्या कोई विशेष सलाह है?
0: हाँ, इसमें ये है जैसे आपके पास मान लीजिए स्पेस की कमी है, आपके पास जगह बालकनी है, छोटा जगह है या रूफ टॉप है जगह है, तो आप उसमें पोट में लगा सकते हैं। तो पोट भी आपके डिफरेंट टाइप के पोट्स आते हैं, मड के पोट्स आते हैं, आजकल प्लास्टिक के पोट्स भी आते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं करें तो आजकल ग्रो बैग आते हैं, तो छोटे छोटे स्पेस में आप ग्रो बैग में भी प्लांटिंग कर सकते हैं फूलों की और अपने बगिया को सजा सकते हैं।
1: जी सर। सर जाते जाते कोई हमारे किसान भाई बहनों के लिए एवं अन्य श्रोताओं के लिए भी कोई संदेश?
0: महत्वपूर्ण संदेश यही है कि इसमें जो सर्दियों की जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है, ना तो इसमें जल्दी करना है और ना देर करना है, क्योंकि जल्दी करते हैं तो भी आपका सीडलिंग अच्छा नहीं होगा और अगर ज़्यादा लेट कर देते हैं तो भी सीडलिंग तैयार नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ना जल्दी करना है ना देर करना है, सही समय पर पौध का रोपण करना है। उसके बाद आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, उसको आपका वाटरिंग है, आपका फर्टिलाइजर या न्यूट्रिशन का है, उसको ध्यान रखना है, यही मेन इसमें देखने की चीज़ है।
1: जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों और हमारे जो भी अन्य श्रोता हैं जो अपने घर में फूलों को लगाते हैं, और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का दिल होता है और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का मन होता है कि हम फूलों से अपने घर को सजाएं, तो सर के द्वारा बातें जो बताई गई उन बातों का आप ध्यान रखें, और अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रख के पौध की तैयारी शुरू करें, और उम्मीद है कि इन सर्दियों में आपके घर बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे, या बगिया है तो बगिया भी बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
4: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
6: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान न देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
4: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
6: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
4: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
6: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
7: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
8: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन
गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हमारा विषय है मसूर में उत्पादन बढ़ाने की तकनीक और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हैं डॉक्टर दिव्या महतो। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। आप दलहनी फसलों पर शोध कर रही हैं और किसानों को व्यवहारिक तकनीकें उपलब्ध कराने में सक्रिय हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उमा। उमा, जैसे कि मसूर हमारे देश की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो न केवल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखती है। यदि सही तकनीकों को अपनाया जाए तो किसान भाई अपनी पैदावार और आय दोनों को बढ़ा सकते हैं। मसूर की खेती सामान्यतः तीन पद्धतियाँ इसमें प्रचलित हैं। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग विधि, जिसमें बीजों को खेत में छिड़क कर बो दिया जाता है। यह सरल और कम लागत वाली विधि है, परंतु बीज समान गहराई पर नहीं गिरते, पौधा संख्या असंतुलित रहता है इसमें और खरपतवार नियंत्रण काफ़ी कठिन होता है तथा उपज अपेक्षाकृत कम मिलती है। इसके बाद जो आता है वो है शून्य जुताई, जिसे हम जीरो टिलेज पद्धति भी कहते हैं, जिसमें बिना जुताई के मशीन द्वारा सीधी कतार वृद्ध बुआई की जाती है। इससे मिट्टी की नमी व संरचना सुरक्षित रहती है, समय व लागत की बचत भी होती है और ब्रॉडकास्टिंग की तुलना में समान गहराई पर बुआई होने से अंकुरण व उत्पादन बेहतर होता है। हालांकि इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी पर निर्भरता बढ़ सकती है, तो अंततः हम वैज्ञानिक खेती जिसे हम सबसे प्रभावशाली पद्धति मानते हैं, जिसमें कि उन्नत किस्में, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, बीज उपचार, उचित दूरी पर कतार वृद्ध बुआई, समय पर सिंचाई, खरपतवार व कीट प्रबंधन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। इससे पौधों की संतुलित वृद्धि, अधिक फलियां, उच्च उपज तथा बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होता है। इसलिए अधिक उत्पादन और लाभ की दृष्टिकोण से मसूर की वैज्ञानिक खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है।
0: मैम, जैसे कि आपने बताया कि मसूर की जो खेती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो अब आप ये बताइए कि हम किस तरीके से मसूर की वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं और किस तरीके से वैज्ञानिक खेती से हम अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ पा सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरीके से खेत का चयन करेंगे और तैयारी कैसी करनी चाहिए।
1: देखिए, मसूर दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, लेकिन हल्की मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। खरीफ फसल या धान की कटाई के बाद गहरी जुताई करें, कल्टीवेटर से मिट्टी को भुरभुरी बनाकर पाटा लगाएं, खेत समतल और नमी युक्त होनी चाहिए ताकि अंकुरण अच्छा हो सके।
0: और मैम, बुआई का सही समय क्या होता है?
1: बुआई का सही समय, जैसे असिंचित क्षेत्रों में बुआई का जो सही समय है वो है 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और सिंचित क्षेत्रों में बुआई का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। और देर से बुआई करने पर दाने छोटे रह जाते हैं और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सही समय पर बुआई जरूरी है।
0: मैम, सही समय के साथ उन्नत किस्म भी बहुत जरूरी होता है, तो कौन कौन सी उन्नत किस्म है जिसे किसानों को अपनाना चाहिए?
1: छोटे बीज वाली किस्में जैसे पूसा अगेती मसूर, जिसे हम L4717 के नाम से भी जानते हैं, और IPL 316 और Hull 57, अब बड़े बीज वाली किस्में जैसे IPL 220, ये सारी किस्में रोगरोधी हैं और अधिक उत्पादन भी देती हैं।
0: तो किसान भाई बहन बीज की क्या मात्रा लें और किस विधि से बुआई करें?
1: देखिए, छोटे बीज वाली जो किस्में हैं, इसमें जो बीज मात्रा है या बीज दर है वो होना चाहिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर बड़े बीज वाली किस्में हैं तो उसमें जो बीज दर होना चाहिए वो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, और अगर विलंबित बुआई हो रही है तो उसमें कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें, और बीज गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
0: मैम, कृषि वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि बीजोपचार बहुत ज़रूरी है, तो मसूर में बीजोपचार कैसे करें और ये क्यों ज़रूरी होता है?
1: मसूर में बीजोपचार अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाता है तथा फसल को प्रारंभिक अवस्था में मृदा एवं बीज जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले बीजों का रासायनिक उपचार करना चाहिए जिसमें थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या साफ जो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण होता है जिसे हम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करते हैं। ध्यान रखें कि कार्बेंडाजिम का प्रयोग अकेले ना करें, केवल अनुशंसित मिश्रण का ही उपयोग करें। रासायनिक उपचार के बाद बीजों को छाया में सुखाकर जैविक उपचार करें, जिससे राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज के दर से, और इसमें हम PSB कल्चर का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु बोलते हैं, समान मात्रा में प्रयोग करें, जिससे PSB यूज़ करने से इससे ये मदद मिलती है जिससे फॉस्फेट पौधों को आसानी से उपलब्ध हो सकता है, और साथ ही मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। इन उपायों से उकटा रोग सहित अन्य बीमारियों से बचाव मिल सकता है और बेहतर अंकुरण प्राप्त होता है, मजबूत पौध स्थापना तथा अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है।
0: मैम, किसान भाई बहनों के मन में एक और सवाल होता है, एक और परेशानी होती है कि खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें, तो आप ये बताइए।
1: इसके लिए हम 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं, साथ ही 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, और अगर सल्फर की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम सल्फर दे सकते हैं, और जिंक और बोरॉन की कमी होने पर 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट और उसके साथ 10 किलोग्राम बोरेक्स मिक्स करके दे सकते हैं।
0: और सिंचाई कब करनी चाहिए?
1: मसूर प्रायः ही असिंचित क्षेत्रों में होती है, बुआई से पहले हल्की सिंचाई देना लाभकारी है। नमी की कमी होने पर 40 से 45 दिन बाद एक सिंचाई करें, अधिक सिंचाई या जल भराव से फसल को नुकसान भी हो सकता है।
0: मैम, फसल के साथ अक्सर खरपतवार उगाते हैं, तो मसूर के फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
1: इसके लिए समय वृद्ध निराई गुड़ाई और रसायन प्रयोग किया जाए तो खरपतवार नियंत्रण संभव है। प्रमुख जो इसमें खरपतवार हैं वो हैं मोथा, दूब, बथुआ, मीसिया, वन प्याजी। इसके लिए पेंडीमेथिलीन 30% EC 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के अगले दिन 400 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बुआई के बाद 50 दिन तक खेत खरपतवार मुक्त रखें, और हाथ से निराई गुड़ाई भी उपयोगी है।
0: और मैम, किसान भाई बहन मसूर के फसल में रोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और इसके क्या उपाय हैं?
1: इसमें जो मुख्यतः रोग हैं जैसे रतुआ रोग, उकटा रोग और शुष्क मूल विगलन, तो इसके लिए रतुआ रोग के लिए जो प्रबंधन है कर सकते हैं वो है मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करें, और उकटा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करें, और शुष्क मूल विगलन के लिए समय पर बुआई और उचित नमी खेतों में रहना लाभकारी हो सकता है।
0: मैम, और भी कोई अन्य तकनीक जो किसान भाई बहन अपना सकते हैं?
1: जैसे फसल चक्र अगर इसका इस्तेमाल करें तो मसूर में मोस्टली तीसी या अलसी या अन्य फसलों के साथ मिलाकर बौना रोग प्रबंधन में ये बहुत सहायक है, सहायता मिल सकती है। और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे खेत में अविघटित कार्बनिक पदार्थ ना छोड़ें, और जब फलियां पक जाएं तभी भूरे रंग की हो जाएं तभी कटाई करें।
0: तो ये कुछ चीज़ें अपनाकर किसान भाई बहन अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन और तो किसान भाइयों और बहनों, यदि आप समय पर बुआई करते हैं, उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और बीजोपचार करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और खाद का सही ढंग से प्रबंधन करते हैं, तो मसूर की पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि आप पा सकते हैं। तो ये केवल न आपकी आय बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखता है। मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू उमा।
0: दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए बने रहें। हम हैं क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती

यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसा ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है। ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन pH, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है। साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया, उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, GPS तकनीक इत्यादि का यूज़ करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर

0: विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 19 कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
6: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
12: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
14: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य

0: www.radiohar.gov.in पर।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखे, वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: लेडीज फर्स्ट।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियां लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, इसमें ये नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएँ लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उससे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से यह नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, या आपका जेंडर नहीं देखेगा, तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं। लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें, और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएँ, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
0: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है, और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आजकल क्या करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग नाइट्रोजन जो नेत्रजन या यूरिया के हिसाब में आप लोग देते हैं उसका तो प्रयोग भरपूर करते हैं, लेकिन फॉस्फोरस, पोटास या सल्फर की मात्रा में कम डालते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है, मिट्टी में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी भी कमज़ोर होता है और आपका पौधा भी कमज़ोर होता है। आप जो उपज आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धान में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, संतुलित पोषक तत्व मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना मात्रा में है और ये सुविधा हमारा किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण परीक्षण प्रयोगशाला वहां पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व तो कम है और कौन सा पोषक तत्व तो उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व तो देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, आप लोग ज्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपको जितना जरूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास डाले तो कितना डाले, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वेराइटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर और अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके, मिट्टी को परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे अगर धान में सबसे ज़्यादा जरूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा जरूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है जिस जो पोषक तत्व, उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं, धान के रोपाई कर रहे हैं तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए। और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टीलरिंग होता है, टीलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए। और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय, उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट या DAP से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय, उसके पहले बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, माने पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए, इसको अगर हम लोग इसका निदान करें तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसको देना बहुत जरूरी है, जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, ये सब का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फॉस्फोरस पोटास दे देना चाहिए, और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है, और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत जरूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है, जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर भर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन भर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं, इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में, जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60 से 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को एक हेक्टर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसका एक सोर्स है जो कि हरी खाद में। और एक हुआ सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पोटास भी मिल सकता है, जैसे हुआ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है, और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है फॉस्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज करेंगे तो हमारा फॉस्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जैसे हुआ कि नाइट्रोजन बोले हैं कि 3 बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम 3 बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका 3 हफ्ता या 4 हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टिलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिक इनिशिएशन, उसका पहले एक बार। तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फास्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए, लेकिन पोटास को अगर हम 2 बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ PIE या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा जहाँ पर धान के बाद व्हीट, धान के बाद गेहूँ, धान के बाद गेहूँ करते हैं वहाँ पर जिंक की कमी महसूस होता है। तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहाँ पर उसी फील्ड में यूज़ करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में, सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद,
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
9: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक खास विषय को लेकर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा सर हैं, और आज का जो टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है रबी फसलों की जैविक खेती। तो आज इससे संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद
9: डॉक्टर साहब। जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले ये जैविक खेती होता क्या है उसके बारे में जान लें।
10: बिल्कुल सही। ऐसा है कि जैविक खेती का अभिप्राय होता है विषमुक्त खेती, यानी ऐसी खेती जिसमें हम किसी तरह के ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एक्चुअली देखिए, हरित क्रांति के बाद हम उत्पादन निश्चित रूप से हमारा बढ़ा है, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अन्य फसलें हैं, उसमें हमारा उत्पादन बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा रासायनिक उर्वरक है या कीटनाशी है या व्याधिनाशक रसायन है, इनका प्रयोग भी काफ़ी बढ़ा है, और इसके चलते हुआ ये है कि हम बीमारियों का बड़ा ही प्रकोप बढ़ा है। यहाँ पर मैं बताऊँ कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी इन रसायनों के कारण होता है। यहाँ से पंजाब से एक ट्रेन चलती है, लोग उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, क्योंकि वहां पर रसायनों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो रसायन के ज्यादा प्रयोग के कारण उसके जो हमारे खाद्यान्न हैं, या यहां तक कह लें कि जो चारा है, जो जानवर हमारा खाता है, उसमें उसकी काफी मात्रा आ जाती है, काफी अंश आ जाता है, और उसको जब हम खाते हैं तो कई तरह की बीमारियां, चाहे नस संबंधी बीमारी हो, मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो, हृदय संबंधी हो, किडनी संबंधी हो, बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए आज एक बार पुनः लोगों को ध्यान इस बार आया है कि क्यों नहीं हम रसायन विहीन खेती करें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कि हमें बीमार न होना पड़े। अब मैं बताऊं कि हमारे देश में तो ठीक है आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं जैविक के उत्पाद पर, लेकिन आज जो हमारे दूसरे देश हैं जहां पर पैसा है वह चाहते हैं कि हमें काफी मिले। तो जो किसान हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें उतने ही उत्पादन करके, तो वह यदि जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अब मैं, आपका प्रश्न था कि जैविक खेती है क्या, तो हम इसको बड़ा संक्षेप में किसान की भाषा में ये कहें कि जो रसायन विहीन या विष विहीन खेती है, यानी हम उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन भी करेंगे तो ऐसे चीजों के माध्यम से करेंगे कि जिससे कि किसी तरह का उसको हानि ना पहुंचे। हम कीट का भी प्रबंधन करेंगे तो ऐसे ही चीजों के माध्यम से करेंगे जिससे हमें हानि ना पहुंचे। साथ ही साथ हम यदि कीट प्रबंधन भी करते हैं तो उसी ढंग से करेंगे। यदि हम खरपतवार नियंत्रण ही करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण भी चाहे मैनुअल करें चाहे ऐसे विधि से करेंगे जिससे कि उसका दुष्प्रभाव, उस रसायन का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं हो। क्योंकि आप जानती हैं आजकल खरपतवार नाश करने के लिए बहुत तरह के रसायन का प्रयोग होता है, कीट के नियंत्रण के लिए, व्याधि के नियंत्रण के लिए बहुत तरह के रसायन बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है।
9: जी, तो अगर इसके वैश्विक बाजार की हम बात करें तो जैविक खेती का वैश्विक बाजार अभी कितना बड़ा है और आगे इसके बढ़ने की कितनी संभावना है?
10: बहुत समसामयिक आपने प्रश्न किया। ऐसा है, देखिए कि यदि वैश्विक बाजार की बात करें तो ये अभी लगभग 64 खरब रुपए का बाजार यहाँ पर है, वैश्विक बाजार। और उम्मीद ये की जाती है कि 2025 तक 164 खरब रुपए का बाजार हो जाएगा। यानी कि काफी स्कोप है कि हम अपने उत्पाद को बेच सकें और उससे हम पैसा कमा सकें। देखिए, यदि आप सिंपल एक लौकी की ही बात ले लें, कद्दू की बात ले लें, तो लौकी कद्दू यदि आप सीधे रासायनिक विधि से पैदा करते हैं, यदि उसका 10 रुपया कीमत है, तो उसी को यदि आप जैविक विधि से उत्पादन करते हैं तो आप उसका 2 गुना 3 गुना यहां तक 10 गुने तक आप उसका फायदा कमा सकते हैं। लेकिन अब दो तरह से आप बेचते हैं, एक तो लोकल बाजार में बेचते हैं तो वहां पर उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप सर्टिफिकेशन करवा लिए हुए हैं कि आपको यह है कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है, जैसे एपडा या बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको इसका सर्टिफिकेशन करती है, तो आपको सर्टिफिकेशन यदि हो गया हुआ है तो उससे आप और ज्यादा कमाई प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप काफी ज्यादा इसका वैश्विक बाजार है। यदि हम 15-16 की बात करें तो हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो 2.63 लाख टन जैविक उत्पाद निर्यात किया गया और जिसकी कीमत लगभग 298 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हम अभी ही इतना ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। यदि 2017-18 की बात करें तो 35.6 लाख हेक्टेयर पर हमारी जैविक खेती होती थी जिससे लगभग 17 लाख टन जैविक उत्पाद पैदा होता था और यह दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं तो किसानों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, किसान भाइयों एक चीज बताओ कि यदि एक मिठाई का दुकानदार है, वह जलेबी और समोसा बनाता है, यदि उसका पूरा नहीं बिकता है तो दूसरे दिन यदि उसको अपने परिवार के लिए ले जाना होगा तो ले जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वह भी जानता है कि यदि बासी हम अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उसे वो बीमार हो सकते हैं। लेकिन हम किसान भाई कितने समझदार हैं कि हम यदि जानते हैं कि रसायन खाने से हम इतना ज्यादा हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसी रसायन को पैदा करके हम अपने लिए भी उत्पादन कर लेते हैं।
9: बिल्कुल।
10: और उत्पादन करके उसको अपनी पत्नी से, एक किसान कहता है कि मेरी पत्नी जाओ जरा इस जहर को मसालेदार बना करके ले आओ, और जब मसालेदार बना करके लाती है तो वह अपने बच्चों को बुलाता है कि आ मेरा बेटा, आ मेरा नाती, आ मेरा पोता, मेरे हाथों से इन जहर को खा करके जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाओ। इसीलिए किसान भाइयों, आपसे मेरी एक सलाह है, एक मेरा निवेदन है कि भाइयों, आप दूसरे के लिए भलो ही पैदा करें ना करें, आप यह चिन्हित कर लीजिए कि 10 कट्ठा जमीन जो है क्या कहते हैं हम इसी के लिए रखेंगे कि हम अपने लिए रसायन विहीन उत्पाद पैदा करेंगे और हम अपने बच्चों को बीमार नहीं होने देंगे। क्योंकि एक टाटा बिरला भी यदि कहता है कि हम जैविक उत्पाद खा रहे हैं तो उनको कोई कहता है कि जैविक उत्पाद है तब, लेकिन आप तो पैदा करते हैं, आप तो जानते हैं कि यह जैविक है या नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अपने लिए 10 कट्ठा, अरे कितना आप धान खाते हैं, चावल खाते होंगे 2-3 क्विंटल खाते होंगे, गेहूं 3-4 क्विंटल खाते होंगे, दलहन तिलहन 1-1 क्विंटल खाते होंगे, आलू 1-2 क्विंटल 4 क्विंटल की जरूरत होती होगी। आप यदि 10 कट्ठा जमीन यदि आप चिन्हित कर लीजिए और उसमें आप बर्मी कंपोस्ट या दूसरे जो जैविक पदार्थ हैं उसी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूपेण आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा और कम से कम आपके बच्चे तो बीमार नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मेरा निवेदन है किसान भाइयों कि आप अपने लिए ये प्रण

0: और दलहनी फसल चूंकि वो बैलेंस का नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के कारण ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वह ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जो पौधों के लिए वह पोषक तत्व उपलब्ध हो। धान आप नहीं खाते, आप धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, तब खाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल में है लेकिन ये पौधे के लिए किसी काम का नहीं है। तो यदि हम देखें तो उस नाइट्रोजन को यदि ऐसे रूप में बदल दें, नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में, तो वह पौधों को उपलब्ध होने लगता है। तो अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यहां यदि हम रबी की बात करें तो दलहन तिलहन ये सब ज्यादा प्रयोग करते हैं, और उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की आपने बात किया। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए देखिए आप गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए। जो हमारा विश्वविद्यालय बनाता है वो इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट बनाता है, उसमें फास्फोरस भी ज्यादा है, उसमें गंधक भी ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ गंधक वाला वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो 10-15% तो दलहन और तिलहन का उत्पादन स्वतः बढ़ जाता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आप वर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते खास करके इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट, तो मुश्किल से 2.5 से लेकर 5 टन प्रति हेक्टेयर का आपको प्रयोग करना है। साथ ही साथ यदि आपने अजोला का प्रयोग भी किया है तो इसमें नाइट्रोजन भी काफी मात्रा में रहता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करें। अब ये जो है जैव उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट, और साथ ही साथ कुछ बायोडायनेमिक खाद भी आया है, जैसे कि पंचगव्य का प्रयोग कर सकते हैं, काउपेट पिट का प्रयोग कर सकते हैं, नैपेड कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वर्मी कंपोस्ट में पोषक मान ज्यादा होता है, यानी कम मात्रा डाल करके आप उत्पादन कर सकते हैं, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, आप जैव उर्वरक का प्रयोग निश्चित रूप में करें, साथ ही साथ जो जैविक खाद है, जैविक खाद का प्रयोग करके उसके पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं।
1: जी, तो इस प्रकार आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं दलहनी फसलों में। और जैव उर्वरक की बात अभी कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो जैविक खेती में हम इसका कैसे प्रयोग करें? अभी आपने थोड़ी सी बातें बताई, तो और कुछ हम जानना चाहेंगे।
0: देखिए, ऐसा है, जैव उर्वरक यानी ऐसा जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए एक तो दलहन फसल में आप राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, आप गेहूं में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहां एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो एजोटोबैक्टर है या एजोस्पाइरिलम है, ये सब जो है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। और यदि फास्फोरस भी आपकी मिट्टी में कम है तो आप पीएसबी का प्रयोग कर सकते हैं, कई नाम से आता है फास्फेट का और कई नाम से आता है, तो पीएसबी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पीएसबी ये फास्फोरस देने का काम करता है, और ये जो हमने बताया राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरम, यह सब सब नाइट्रोजन देने का काम करता है। इसी तरह से अब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसकी भी आपूर्ति बढ़ाने के लिए, जैसे जिंक का है, जिंक ZMB करके, जिंक मोबिलाइजर के नाम से आता है, बाजार में आने लगा है, तो वह यदि आप करते हैं तो जिंक सबकी भी आपूर्ति कर सकता है। लेकिन अभी मैं मुख्य बात करता हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। पोटेशियम के लिए भी KMB आया है, पोटेशियम मोबिलाइजर। तो यदि इस सब का प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यह सब आपकी आपूर्ति वहां पर हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसका प्रयोग कैसे करें हम। जैसे देखिए, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं राइजोबियम का, तो राइजोबियम जैसे 200 ग्राम राइजोबियम ले लीजिए और 250 ग्राम गुड़ को 500 ml पानी में आप उसको घोल दीजिए, गर्म करके घोल लीजिए, फिर ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो गया, उसके बाद 200 ग्राम उसमें राइजोबियम कल्चर डाल दिया, राइजोबियम कल्चर डाल करके 10 kg बीज के ऊपर उसको डाल दीजिए, और ठंडे हाथ, मतलब उसको आपने डाल दिया, डाल देने के बाद हल्के हाथ से उस बीज को मिला दीजिए, यानी कि उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाए। ये कोटिंग चढ़ गया, उसके बाद आप उसकी बुआई 2-3 घंटा पहले रखिए और उसके बाद छाए में ही उसकी बुआई कर लीजिए। लेकिन अब प्रश्न यहां पर एक और है, मान लीजिए कोई आदमी है जो कि इसका भी प्रयोग करता है, राइजोबियम का भी प्रयोग करता है और पीएसबी का भी प्रयोग करता है, और मान लीजिए सीड के उपचारित होने के लिए फफूंदनाशी वगैरह वगैरह नहीं लगे उसके लिए ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर रहा है, तो उसको कैसे प्रयोग करें? तो सबसे पहले इसमें FIR का प्रिंसिपल याद रखिए, यानी पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम, और सबसे राइजोबियम को सबसे लास्ट में, और उसके पहले आपको पीएसबी का उपचार करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ट्राइकोडर्मा को उपचारित करना है तो ट्राइकोडर्मा को आप पहले उपचारित कीजिए, उसके बाद आप फॉस्फेट सॉल्वराइजर से कीजिए, सबसे लास्ट में आप राइजोबियम से उपचारित कीजिए, और उपचारित करके हर एक के बीच में 1-1.5 घंटा का आप अंतराल रखिए। तो यह तो हो गया कि यदि आप बीज उपचार करते हैं तब, लेकिन बहुत आदमी है कि बीज उपचार नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी आपकी सब्जी की फसल भी है, जो सब्जी की फसल आप उसमें

0: क्या कहते हैं, या तो कंध उपचारित करते हैं या आप उसका पिछड़ा को उपचारित करते हैं, तो वहां पर क्या है कि यदि आप कंध का उपचार करना चाहते हैं तो वहां पर आप 2 kg राइजोबियम कल्चर ले लें, या जो भी एजोटोबैक्टर ही करना चाहते हैं तो एजोटोबैक्टर ले लें, और एजोटोबैक्टर या राइजोबियम कल्चर ले रहे हैं उसको लेकर के उसमें आपने कंध को भिगा दिया और उसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद आप निकाल करके आधा एक घंटा बाहर में रखिए, फिर छाया में उसका बुआई कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपको बिचड़ा उपचारित करना है तो बिचड़ा उपचारित करने के लिए आप 2 kg राइजोबियम कल्चर या जो भी आपका बायो फर्टिलाइजर है उसको 15 लीटर पानी में घोल लीजिए और घोल करके उसके बिचड़ा का जो जड़ है उसको डुबा करके छोड़ दीजिए। अपना 10-15 मिनट आप उसमें भिगा करके रखें, उसके बाद आप खेत में उसकी रुपाई कर देते हैं। बहुत किसान ऐसे हैं कि ये सब नहीं कर पाए, मान लीजिए वो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं, तो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा लगभग 5-6 kg आपको कल्चर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उतना तो मान लीजिए किसान के पास नहीं होगा, तो उसका तरीका ये है कि आप 1-2 kg आप उसमें कल्चर ले लीजिए, जो भी राइजोबियम कल्चर कर रहे हैं या एजोटोबैक्टर कल्चर कर रहे हैं तो वह आप कल्चर कर लीजिए, और उसमें आप 50 kg गोबर की खाद मिला दीजिए, और गोबर की खाद मिला करके इसको ढक करके रख दीजिए, उस पर हल्की सिंचाई कर दीजिए और जो जूट का बोरा है उसे आप ढक दीजिए। ढक देने के बाद उसके बाद आप ढक करके कुछ दिन रखें और उसके बाद आप क्या करेंगे तो उसको 5-10 दिन के अंतराल पर उसको पलट दीजिए थोड़ा बहुत और सिंचाई कर दीजिए, और 15 दिन के बाद जब आपका बन गया तो वो जितना आपका कल्चर था वह पूरे में फैल गया, उसमें है क्या जीवाणु है ना, तो वो जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरे में बढ़ गया, अब बढ़ करके उसके बाद आप खेत में प्रयोग कर दिए, तो यानी जो 2 ही किलो आपने कल्चर लिया था उसी से आपको 1 हेक्टेयर जमीन में हो जाएगा। तो इस ढंग से आप चाहे ट्राइकोडर्मा में प्रयोग करना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर करना चाहते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर करना चाहते हैं, चाहे पीएसवी करना चाहते हैं, तो ये इस ढंग से आप उसको फैला करके बढ़ा करके आप पूरे खेत में आप प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी लगेगी। तो ये तरीका है जिस ढंग से आप जो बायो फर्टिलाइजर है जैव उर्वरक है उसका प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं, चाहे बीज उपचार, लेकिन बीज उपचार सबसे बढ़िया है, बीज उपचार सबसे बढ़िया है, तो बीज उपचार करके कीजिए वो सबसे बढ़िया है
1: जी। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि रवि फसलों में जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और वैश्विक बाज़ार में कितनी इसकी मांग है वो बढ़ती जा रही है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो जैविक खेती करें, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि आप उसमें रासायनिक जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो अगर जानबूझकर आप ये गलती ना करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: भी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
3: हर घर सूर्यघर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम साबेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं। वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में
2: जी।
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में ये समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओं, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
3: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
3: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियाँ, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
2: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
3: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिल

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर गंगे, हर गंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे।
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता।

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई,

लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: क्या कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
9: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद
9: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
10: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
9: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
10: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी ना छोड़े ताकि डूबने या फंसने का खतरा ना हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
9: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
10: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स

0: और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें, वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बाल कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे डॉक्टर अरुण कुमार झा सर से कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपना कर हमारे किसान भाई बहन मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि अपनी सेहत को भी वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा सर का, और उनसे जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। सर, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट BAU सबौर से, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी परिभाषा क्या है।
1: ऐसा है कि जो प्राकृतिक खेती है, कृषि की एक ऐसी प्राचीन और रसायन मुक्त पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन या रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या बाहरी खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति के नियमों और स्थानीय संसाधनों, जैसे देसी गाय या देसी गाय के गोमूत्र, जो भी उनके गोबर या गोमूत्र होते हैं, उस पर आधारित होती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो उसी के प्रयोग के द्वारा हम इसकी खेती करते हैं।
0: जी सर। सर, अब दूसरा सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या महत्वपूर्ण अंतर है?
1: बहुत आपने एक समचीन प्रश्न पूछा, क्योंकि इसके लिए इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो देखिए, बाहरी इनपुट के संदर्भ में मैं कहूं तो जैविक खेती में बाजार से खरीदे गए जैविक खाद, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहर से किसी भी प्रकार के खाद या दवा का प्रयोग उसमें अनुशंसित नहीं है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। जो भी आपका फार्म है, उस फार्म पे जो कुछ आपको पैदा हो रहा है, उसी से आपको खेती करनी है। यह दोनों एक तो महत्वपूर्ण इसमें अंतर है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, उसमें बाहर से भी जो रसायन मुक्त पदार्थ है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट कहीं और बनाते हैं तो उसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन जैविक खेती में नहीं। जैविक खेती में जो कुछ भी वहां पर बनता है, मान लीजिए वहां जो आपका देसी गाय है, उसका जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उसी के उत्पाद हम बनाते हैं। जो भी जीवामृत, घन जीवामृत या जो कुछ भी उसके हैं, तो उसी का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि लागत की बात करें तो जैविक खेती में बाहर के खाद खरीदने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहरी चीजों पर कोई खर्च ही नहीं होता, कोई प्रयोग ही नहीं करना है तो उस पर खर्च शून्य होता है, जिससे किसानों का लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। तीसरी बात, मिट्टी की जुताई की बात करें, जैविक खेती में खेत की जुताई, निराई, अन्य पारंपरिक कृषि कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में मिट्टी को जोतने, पलटने या खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मल्चिंग और प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें आपको मिट्टी ज्यादा बढ़िया रहता है। और चौथी बात, प्रमाणीकरण की बात करें तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा सर्टिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है। तो आप प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं। तो यही मुख्य रूप से है, तो कई अंतर, लेकिन मुख्य रूप से यही अंतर है जैविक और प्राकृतिक खेती में। यदि किसान भाइयों को बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूं तो यही आप समझिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से जो उत्पाद बन रहा है, जो रसायन मुक्त है, जिसमें रसायन का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, उसका प्रयोग आप वहां कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है उसका प्रयोग कर सकते हैं बाहर से भी खरीद करके, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो आपका फार्म है, जो आपका क्षेत्र है, वहां पर जो कुछ आपने पैदा किया है उसी का प्रयोग करके उसकी खेती करते।
0: जी सर। सर, प्राकृतिक खेती के आधार क्या हैं?
1: देखिए, इसके मुख्य आधार दो ही हैं। एक तो देसी गाय के जो भी उत्पाद होते हैं उसी से हम इसकी खेती करते हैं, और दूसरी बात, देसी बीज पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। अब देसी गाय की यदि हम बात करें तो देसी गाय में अब उससे जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उससे हम कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ या बीजामृत हुआ या दशपर्णी अर्क हुआ या नीमास्त्र हुआ या ब्रह्मास्त्र हुआ। तो यह सब जो आपके विभिन्न प्रकार के आपके जो उत्पाद होते हैं, अब जैसे बीजामृत है तो बीज के ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं बीजामृत, लेकिन जो जीवामृत है और घन जीवामृत है ये उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो हमने जैसे बताया दशपर्णी या नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र ये सब कीड़ा और बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन बनता किससे है, ये बनता है जो हमारे पौधे होते हैं जो हमने अपने फार्म में लगाए हैं उससे, और जो गोमूत्र है या जो कुछ वहां पर है तो उसी सब का प्रयोग करके हम इसका निर्माण करते हैं। तो यह मुख्य रूप से हमने कहा कि देसी गाय या उसके उत्पाद जो है उसका हम प्रयोग करते हैं, और इसमें प्राकृतिक खेती में हम देसी बीजों पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि आज देखते होंगे कि बहुत सारा सेंट हमारा वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा, बराबर लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो बहुत सारी हमारी ऐसी धरोहर बीजें हैं जो कि काफी अच्छी हैं लेकिन उसका हम कह लीजिए कि उपयोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो देसी बीजों पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है।
0: जी सर, आधार के बाद अब स्तंभ के बारे में बताइए सर कि प्राकृतिक खेती के कौन कौन से स्तंभ हैं।
1: हाँ बिल्कुल, इसका मुख्य चार स्तंभ है, एक तो देसी गाय के गोबर या गोमूत्र से बनने वाले उत्पाद जिसके विषय में अभी हमने आपको कहा, दूसरी बात सहफसली खेती की जाती है, सहफसली इसमें जो खेती की जाती है जैसे कि मान लीजिए एक बड़े ऊंचाई वाला पौधा है, जैसे मान लीजिए मक्का ही है या धान गेहूं ही है, तो उसमें उसके बगल में जो हमारी दलहनी वाली फसल है उसको भी हम साथ साथ खेती करते हैं। उससे दो फायदे हैं, एक फायदा तो यह कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं वो दलहनी फसलें वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, तो उससे जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है जो कि हमारे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है लेकिन जब वह उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे फसल के लिए काफी अच्छा होता है और काफी फायदा दे जाता है। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो यह जो हमारी फसल है वह फसल खास करके दलहनी फसलें, वह दलहनी फसलें नाइट्रोजन भी देती हैं, तो एक यदि हमने धान फसल लगाया उसी के साथ साथ सहफसली के रूप में हमने दलहनी फसल लगा दिया, तो एक तो पहली बात हमने कहा कि सहफसली का इसमें ज्यादा वल होता है, सहफसली पद्धति का हम उपयोग करते हैं। तीसरी बात है वापसा, वापसा का भी हम प्रयोग करते हैं और आच्छादन का भी करते हैं। अब वापसा के विषय में मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि इसमें क्या है कि यदि आप मिट्टी को देखेंगे तो इसमें क्या है 25% एयर होता है, हवा होता है, और 25% इसमें ये पानी भरा रहता है, और 50% सॉलिड पार्ट होता है, यानी दोनों को यदि मिला दीजिए हवा पानी को तो लगभग 50% हो जाता है। तो अब क्या है कि इसमें हम मोटे तौर पर जो हमारी प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें हम मेड़ बनाते हैं, और उसकी जो मेड़ की ऊंचाई है मेड़ के ऊपर हम फसल लगाते हैं और बीच में नाली में हम पानी का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है इसका वायु संचार ठीक ठाक रहता है, तो वायु संचार भी ठीक ठाक रहेगा, साथ ही साथ इस आच्छादन से जो सॉइल इरोजन हो रहा है सॉइल इरोजन भी हमारा कम होगा, और साथ ही साथ जो हमारे लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनकी भी संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो यह सब इसके फायदे हैं, इसलिए वापसा करने की बात है। वापसा कहने का मतलब यह है कि उसमें वायु संचार ठीक ठाक है। अब देखिए जो वायु है नीचे में यदि गया तो वायु संचार यदि ठीक ठाक है तो जो पौधे की जड़ें हैं उसका भी विकास ठीक ठाक होगा। बहुत सारे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन चाहती हैं तो उसमें वायु का संचार ठीक ठाक है तो वहां पर वह उसका भी विकास अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें फायदा है, इसीलिए वापसा करने की जरूरत है। और चौथी चीज हमने आपको बताया आच्छादन, तो चौथा पॉइंट है आच्छादन, तो आच्छादन पर भी हम बल देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बताइए आच्छादन क्या होता है और कितने तरह के आच्छादन होते हैं।
1: देखिए आच्छादन का पहली तो बात हम बताएंगे कि आच्छादन से फायदे क्या है। आच्छादन से पहली बात है कि नमी का संरक्षण होता है, दूसरी बात कि खरपतवार का नियंत्रण भी इससे हो जाता है, तीसरी बात है कि मृदा अपरदान जो सॉइल इरोजन है उसका नियंत्रण होता है, और जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि हम मुख्य रूप से तीन तरह के आच्छादन की बात हम प्राकृतिक खेती में करते हैं, एक तो मृदा के द्वारा आच्छादन, दूसरा है सजीव आच्छादन, और तीसरा है काष्ठ द्वारा आच्छादन। मृदा आच्छादन में क्या है कि ऊपर के जो 4-5 इंच की मिट्टी है उसको हम हल्की जुताई करते हैं तो उससे उसका आच्छादन हो गया, तो वह आच्छादन हो गया तो इसमें वायु का संचार और सारी चीजें हो गई तो उससे नमी का संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण, इसमें थोड़ा सा ये योगदान करता है। जहां सजीव आच्छादन की बात है, तो जो हम पौधा ऐसा लगाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ढक करके रखे, और जब मिट्टी को ढक करके रखेगा तो वहां से जो हमने बताया सॉइल इरोजन और सारी चीजें, तो ये सॉइल इरोजन वगैरह वगैरह नहीं होगा। और साथ ही साथ इस आच्छादन के चलते वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं, चाहे बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक हैं, फंजाई हैं, एक्टोमाइसिट्स हैं, या हमारे केचुए हैं, तो वह सब उस कम टेम्परेचर में बढ़िया से विकास कर पाएंगे। तो ये सजीव आच्छादन हो गया। और तीसरी बात हो गया कास्ट द्वारा आच्छादन। इवन जो आपके जो पुआल वगैरह वगैरह हैं या जो फसल के अवशेष हैं उसके द्वारा हम आच्छादन कर देते हैं, तो उससे भी जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनका विकास बढ़ेगा और बढ़िया से हो पाएगा। तो यह हम आच्छादन करने से भी करते हैं। तो यह तो मुख्य बातें हैं जो कि आपको नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में ध्यान देना चाहिए। और यह यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय में, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, 3-4 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में जो वहां लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा, लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, फास्फोरस आपके मिट्टी में बहुत है लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या है कि वहां पर यदि फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया तो वह जो मिट्टी के फॉस्फोरस है उसको घुलनशील बना दिए, पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से पोटैश मोबिलाइजर है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक मैं ताजुब की बात बताऊं कि जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर या पीएसवी कल्चर इस का प्रयोग किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे मिट्टी में कार्बन भी था और साथ ही साथ वहां पर नमी भी थी, जिसके चलते वह खुद ब खुद बढ़ रहे थे, तो इसको हम अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूप से जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ेगी, और उससे फिर हम अपनी जो खाद्य सुरक्षा की बात है या पोषण सुरक्षा की बात है वह उसकी अवधारणा को हम संपुष्ट कर सकते हैं।
0: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमें बताया प्राकृतिक खेती क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें। और एक और खास बात जो सर ने बताई कि कुछ जो हमारे देसी बीज हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे आप सुनते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो जी हाँ, आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ज़रूरी बातें लेकर आए हैं, और मिट्टी की बात करते हैं हम हमेशा, और हमें अपनी मिट्टी को सेव करना है, उन्हें बचाना है तो उनके पोषक तत्वों का ख्याल भी रखना होगा। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के आते हैं इसके जानकारी के लिए कि कैसे इस कमी को पूरा करें, कैसे पता चलेगा कि ये कमी हो गई है। तो इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपना विषय रखा है मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को पूरा कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
10: धन्यवाद मैडम।
5: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक, ये जो आपने बताया कि पोषक तत्व, तो ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं ये?
10: नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ, और जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक है किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो इसकी कमी को पूरा करने से पहले हम जानना चाहेंगे ये पोषक तत्व हैं तो किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी कमी के बिना जो हमारे पौधे हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे किसान बहनों और भाइयों, आप जानते होंगे, जैसे आप खेती बाड़ी करते होंगे, अपने खेत पर जाते होंगे तो आप बीज को लगाते हैं, बीज फिर अंकुरित होता है, फिर वो छोटे पौधे का रूप लेता है, फिर वो बीज वाले स्तर में आता है, फिर वह फल फूल देता है। तो अगर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मृदा में, अगर मिट्टी में कमी आती है तो ये अपना जीवन चक्र जो होता है, जहाँ मीन्स अंकुरित होकर होने से लेकर अपना फल फूल देने तक ये जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए पोषक तत्व बहुत पौधे के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है इसका ये मुख्य प्राइमरी मीन्स प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। इसका अगर इसकी कमी होती है तो पौधे जो हैं अपने अपना ऊर्जा जो ऊर्जा जो अपने लिए फूड बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, लाइक भोजन बनाते हैं जो सूर्य का प्रकाश है, वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। पौधे का जो जो सीडलिंग होता है, लाइक जो अपना बीज का अंकुरण होके अपने पौधे का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ बनाते हैं आप लोगों को भी ये पता होगा, पत्तियों में बनाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा प्रकाश लेते हैं तो उसमें अपना भोजन बनाते हैं, और उसी का ये इसमें ये जो है पोषक तत्व वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, और वो सूर्य की ऊर्जा को लेकर, सूर्य के प्रकाश को लेकर भोजन बनाता है, जिसकी कमी से अपना जो पौधे हमारे हैं भोजन नहीं बना पाते हैं। इसकी ये कमी हो गई नाइट्रोजन की कमी से, ये पौधे में इसके असर पड़ेंगे। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पौधे का जो है जो हमारा उसका रंग होता है हरे रंग का होता है, हरे रंग ना होके पीलापन पे जाने लगता है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे जो होते हैं जो सीधे खड़े ना होकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वो जो उनका स्टैंडिंग होता है ना पोजिशन, वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके कारण कमी होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और पोषक तत्व कमी और ये उत्पन्न कर देते हैं। और बात करेंगे हम फास्फोरस की, फास्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में भी ये प्राथमिक पोषक तत्व है, मीन्स इसकी कमी के बिना भी जो हमारे पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधे बेसिकली आपको जो फास्फोरस है, अगर फास्फोरस अगर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहेगा पौधे में, तो पौधे का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा से होता है। और इसके साथ साथ जो फास्फोरस हमें बीज का जो विमोचन होता है उसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को ऊर्जा संश्लेषण में हेल्प करता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, एवं इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं हमारे उसमें भी ये फास्फोरस जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारे जो जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हमारे जीन, हमारे डीएनए, तो पौधे भी तो सजीव है ना, उसमें भी होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं। ये अनुवांशिक गुण जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उसको फास्फोरस गवर्न करता है, उसको उसके लिए ये महत्वपूर्ण है जी। और तीसरी हमारी यहाँ पर पोषक तत्व जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसको किसान भाइयों एंड बहनों हमारे आप लोग, इसको हम बहुत अपने स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मिट्टी में हम इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। इसको मुख्य पोषक तत्व ना है, ठीक है, नहीं है, बहुत सारे पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, ये भी हमारे अनुवांशिक स्तर, हमारा अनुवांशिक गुण है, उसको ये कंट्रोल करता है। इसका नाम है ये पोषक तत्व का जिंक। जिंक मुख्य पोषक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का कहने का मतलब हुआ हमारे किसानों, किसान बहनों भाइयों, इसकी ठीक है, इसकी मात्रा पौधों को बहुत कम में जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े में ही पौधे जो इसको लेकर अपने जीवन चक्र को अच्छे से अपना निभा लेते, अपने उनका जीवन चक्र अच्छे से चल जाता है, और अपने लाइक इनिशियल स्टेज से लेके वेजिटेटिव स्टेज से होते ही होते अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक अच्छे से ये अपना जीवन चक्र, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ये जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में, जहाँ पौधे जो अपने होते हैं भोजन बनाते हैं उसके निर्माण में ये मदद करता है, अनुवांशिक गुण को भी ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हमारे पौधे में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव स्टेज में समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाते हैं कुछ पोषक तत्व की कमी में, तो ये जो जिंक है ये बहुत सारे इंजाइम्स जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। कुछ इंजाइम्स की मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे ऑक्जिन, ये पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर जिंक की कमी होती है हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में, तो ये जो हमारे कुछ इंजाइम्स जो पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो उस लेवल पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इस पोषक तत्व की कमी के कारण। और यह जिंक प्रचुर मात्रा में पौधों को अवेलेबल हो पाता है तो जो भी इंजाइम्स हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं।
11: और ये तो बातें हो गई कि ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, अब हम बात करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व है इनका।
10: जी, जैसे मैंने आपको बताया ये पोषक तत्व के क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपकी आपकी जो दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल का भी मैंने इसका उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही मैंने दिया है। मैंने जैसे बताया, आपने पूछा किस तरह का पोषक तत्व है, तो मैंने बताया दो जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व है, और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर हम जानना चाहेंगे। तो क्या है, मुख्य पोषक तत्व के बिना जो हमारे पौधे हैं अपन जीवन चक्रों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और उनको वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, बट उनको चाहिए होता है, उसका भी रोल है, उसका भी। जैसे मैंने बताया, जैसे जिंक ही है, जिंक भी अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको एक्टिवेट करता है। लाइकवाइज इसी प्रकार मैंने आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी बताया, इसके पौधे की दृष्टि से क्या इनका योगदान है। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो पौधे अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान बहनों एवं भाइयों, आपको ये पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी अपने खेत में, इतना मुझे तो भी जानकारी है, आप अपने खेत में कुछ नहीं डालते होंगे, तीन जो पोषक तत्व जरूर डालते हैं हर फसल, मतलब बात करें तो बहुत सारे फसलों के लिए आप ये पोषक तत्व का उपयोग जरूर करते हैं। ये पोषक तत्व हैं आपके, यूरिया आप जरूर डालते होंगे, उर्वरक की बात करें तो आप DAP जरूर डालते होंगे, आप MOP जरूर डालते होंगे। तो आपको ये पता है यूरिया किसका सोर्स है, यूरिया किसका स्रोत है। ये नाइट्रोजन जो मैं बोल रही हूँ, ये नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जो DAP है, इसका पूरा नाम हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको नाइट्रोजन का भी नाइट्रोजन भी हमको प्रदान करता है और फास्फोरस भी प्रदान करता है। ये दोनों भी मुख्य पोषक तत्व हैं। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको ये भी किसका है, ये पोषक तत्व है पोटास का, पोटासियम जिसको हम कहते हैं। ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं और इनका जो पौधे का जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके इसके बिना पौधे अपना अपने वृद्धि को, उनकी वृद्धि जो होती है उतनी सक्रियता से नहीं हो पाती है, पौधे का जो हमारा रंग होता है हरे रंग का वो नहीं हो पाता है, और हमारे जो बीज है, जो बीज अंकुरण है फास्फोरस की कमी हो तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, ऊर्जा का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है। जो उनके अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है लाइक DNA RNA ATP जो ऊर्जा में प्रोवाइड करता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
11: और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन पोषक तत्वों की कमी की, तो क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
10: धन्यवाद मैडम ये प्रश्न के लिए। ये प्रश्न किसी की कमी को पूरा करने, जैसे ये पोषक तत्व हैं हमारा, जैसे हमारा टॉपिक था आज का नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक की कमी को, पोषक तत्व कमी को कैसे पूरा करें। तो किसी कमी पूरा करने से पहले हमें तो ये जानना पड़े ये कमी हो क्यों रही है। और ये किसान बहनों एवं भाइयों, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे जगह हैं, हर जगह की अपनी अपनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज़ कमी के लिए, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते यही फैक्टर है जिसके कारण ये कमी हो रही है, नहीं, बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें बताते हैं कि इसके कारण कमी होती है। अगर हम बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बहुत सारे हमारे प्रकार हो सकते, बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं कुछ तत्कालिक स्थिति के कारण भी ये कमियाँ आ सकती हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो हमारा कुछ एरिया है क्षेत्र है वहीं पर ये कमी आ रही है, और किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो कमी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको कहना चाहूँगी प्राकृतिक गुणवत्ता, मीन्स प्राकृतिक विशेषताएँ और जो गुणवत्ता जो मिट्टी वहाँ की है, जो विशिष्ट पर्टिकुलर जगह की जो है, पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है वहाँ पर की प्राकृतिक गुणवत्ता क्या है मिट्टी की, उसके कारण भी ये कमी आ सकती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपको फसल का प्रबंधन कैसे आपने करा है। अगर कभी फसल का प्रबंधन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी फसल को एक ही क्षेत्र पे बार बार आप उसी फसल को उगाएंगे तो जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। ये फसल का प्रबंधन इसलिए हम कहते हैं ना कि एक ही क्षेत्र पर एक ही फसल को कई सालों तक हम नहीं उगाना चाहिए, हम इसलिए बोलते हैं हम क्रॉप चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं ना, फसल चक्र की हम बात करते हैं। हम क्यों सारे वैज्ञानिक हो गए हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी लोग हैं आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीसरा कारण हो सकता है वहाँ का टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का बोलने का तात्पर्य यह है वहाँ का स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, मीन्स कुछ आप देखते होंगे कहीं भी हमारी मिट्टियाँ कहीं उच्च स्तर पर रहती हैं, कहीं निम्न स्तर पर हैं, कहीं मिट्टियाँ हमारे दलदल स्थिति में होती हैं, ये हमारी टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत समतल स्तर पर हैं, कहीं की मिट्टियाँ ऊँची परत उनकी जो है लाइक जो होती है ना ऊपर ऊपर वाले परत पे होती हैं, कोई निचली वाले परत पे होती हैं। तो ये जो हमारे हैं ना मिट्टियों का प्रकार हैं जिसको बोलते हैं लो लैंड, हाई लैंड, मिड लैंड में प्रेजेंट हैं, उसके भी प्रकार इस टोपोग्राफी, इस स्थलाकृतियाँ के कारण भी हमारे पोषक तत्व प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जो हमारे भूमि के ऊपर वाले परत हैं आप वहाँ पर देखेंगे, उसकी कंपैरिजन आप लोअर जो हमारे निचली परत वाली है मृदी मिट्टी उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे जो ऊपरी वाली भूमि हमारी वहाँ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है कंपैरिजन टू आपके जो निचले स्तर वाले मिट्टी हैं। और चौथा पांचवा कारण आपका हो सकता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ये आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पोषक तत्व के बताने के लिए कि वहाँ पोषक तत्व की किस लाइक किस लेवल में प्रेजेंट है, किस रेंज में प्रेजेंट है। जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं, जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारे पानी में हमारे वर्षा के पानी में घुलकर वो बह जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। अगर बारिश जितनी हमारे मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो रही है तो हमारे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे मात्रा में हमारे मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और पौधे वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं। और पांचवा कारण आपका हो सकता है हमारे किसी तकनीक, आप कौन सी कृषि प्रथाएं को जो हमारे पहले जमाने की प्रथाएं हैं जो अभी जो हम तकनीक को उसका उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का कृषि तकनीक आप उपयोग कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे डिपेंड्स करते हैं कि वो जो हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को मिट्टी में उपलब्धता को डिसाइड करता है। जैसे कि ये कृषि तकनीक अगर बात करें तो आप फसल का जीवन शैली कैसा है, फसल कौन सा चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पर कौन सा मुख्य पौधा मुख्य फसल कौन सा आपका है, और मुख्य फसल के अलावा आपका सब जिसको बोलते हैं सब क्रॉपिंग कौन सा आपने उसका चयन किया है वो भी बहुत डिसाइड करता है कि हमारा पोषक तत्व के वो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को वो बरकरार रखता है कि नहीं रखेगा। और छठा कारण हो सकता है आधुनिक कृषि तकनीक, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें आधुनिक कृषि तकनीक, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे, क्योंकि हम आधुनिक कृषि तकनीक में क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लास्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेतियों की तरफ जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी बोले तो ज़्यादा हमें उपज, हमें किसी फसल का उपज ज़्यादा पाने के लिए कम समय में ज़्यादा उपज पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एक ना एक टाइम पे एक जाकर ये हमारे मृदा में हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लाएगा। तो उसको भी हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी हम खेती बाड़ी करें, कोई भी हमारा मौसम है हमारा सीजन हो और अगर फसल की आप चयन कर रहे हैं, इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है जिससे हम अपनी मिट्टी में हमारे जो नेटिव हमारे पोषक तत्व हैं अगर हम डालें या न डालें हमारे मृदा में हमारी जो धरती माँ है उसमें बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बस उसको हम बर्बाद हम कर रहे हैं हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं जरूरी है, ज़रूरी है, बट उसको किस लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप जानते होंगे हर फसल के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक की तरफ से या कृषि अधिकारी की तरफ से आपको एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बताया जाता है, मतलब किस फसल के लिए कितना उर्वरक रासायनिक उर्वरक जाएंगे या जैविक उर्वरक जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों आप क्या करते हैं, अपने जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम जब प्रैक्टिकल खेती बाड़ी की बात करें, जब हम अपने किसान भाई खेत बाड़ी पे जाते हैं तो जितनी मात्रा में आपको डालना था, सपोज आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती के लिए आपको बता दिया गया कि 120/60/40 मीन्स NPK डालें, मीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम डालें। आपने इसका स्रोत रखा, इस उर्वरक का स्रोत रखा, यूरिया रख लिया, DAP रख लिया और MOP रख लिया, म्यूरेट ऑफ पोटास रख लिया, लेकिन इतना ना डालकर आप ज़्यादा डाल देते हैं कि आपको लगता है कि इस साथ ज़्यादा डालने से चाहे वहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही है, पौधों का विकास अच्छा से नहीं हो रहा, पौधों की वृद्धि अच्छी से नहीं हो रही है, तो आप इसका ज़्यादा मात्रा में डाल दें। तो ज़्यादा मात्रा में डालने से आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा मात्रा में डाल दे रहा हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी आएंगे, मेरी उपज बहुत ज़्यादा होगी जिससे हमें उच्च आय में आपको मुनाफा होगा। लेकिन क्या होता है, पौधों को जितना उनको उर्वरक जितना उनको पोषक तत्वों की जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, हमें जितना भूख लगता है, हमारे पेट में जितनी जगह होती है, हम उतना ही खाते हैं ना। कभी कभी होता है हम ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर हम ज़्यादा खाते तो आपको भी ज़्यादा खाने का भी देखे होंगे दुरुपयोग क्या होता है, हमारे सर स्वास्थ्य पर क्या उसका हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, वैसे ही हमारे पौधे भी हैं, उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे। ज़्यादा डालने से क्या होता है, वो जो हमारे पोषक तत्व हैं पानी में मिलकर घुलनशील होकर वो लीच आउट हो जाते हैं और हमारे पोषक तत्व वो उनको पौधे को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये सभी चीज़ें हमें अपने अपने दिमाग में ये बातों को रखने हैं। और पांचवा कारण है, जैसे हो सकता है छठा कारण मैं बोलूं, पीएच। आप जानते हैं पीएच हम करते हैं, जैसे आप मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं ना, जिससे हमें मृदा में मिट्टी में पोषक तत्व क्या है, उसका पीएच का लेवल क्या है वो हम जान पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारा कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट है, उपस्थित है, नहीं है, किसकी कमी है, कौन हमें प्रचुर मात्रा में है, किसकी उसके लिए हमें प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है, अगर कमी है तो उसके प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर पीएच का लेवल आप देखेंगे अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप देखे होंगे पीएच का लेवल ज़्यादा होने से वहाँ पर जिंक की कमी हमें दिखने लगती है, जिंक की कमी हो जाती है उसमें मिट्टी में। और रासायनिक उर्वरक का भी मैं बता रही हूँ, जैसे रासायनिक उर्वरक आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमें हमारे जो हमारे नेटिव पोषक तत्व हैं, जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसकी कमी आने लगती है।
11: तो जी हाँ, ये कुछ लक्षण थे जिससे कि आपको पता लगता है और कि कैसे इसकी कमी हो रही है मिट्टी में, और अब इसकी कमी को हम पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दीजिए।
10: हाँ, अब ये इसी कमी, अभी तो हम लोगों ने जाना है किसान बहनों एवं भाइयों कि इसकी कमी क्यों हो रही है, और ये जितनी कमी मैं बताई आपको बिहार की दृष्टिकोण से बताई हूँ, और बिहार की ही दृष्टिकोण से अपनी मिट्टियों की, इसमें जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आ रही है, उस पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकें। किसान भाइयों, हमारे जो आपके हैं, आपके जो लोकल रिसोर्सेस हैं, जिस लोकल हमारे जो स्रोत हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और आप उससे अवेयर भी हैं। बस वही होता है कि जैसे हम कुछ कामों को टालते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, जिसके कारण हमारे जो मृदा है, हमारा मृदा की उर्वरता चली जा रही है, मृदा की अगर उर्वरता जाएगी तो वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा, पौधों को प्राप्त नहीं होता तो पौधे की फसल अच्छे नहीं होंगी, उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी, अगर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारे फसल जो है, फसल के जो हमारे उपज आते हैं वो हमें उसमें वृद्धि नहीं हमारी होगी। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक की, इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। पहले किसी उपाय को मैं इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके खेत पर ही अवेलेबल है, आपके घर में ही अवेलेबल है, उसी चीज़ का पहले उसका करें। जैसे किसान भाइयों बहनों, आप करते होंगे अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, सपोज आपने कोई सब्जी ही उगाया, सब्जी उगाने का गोभी जैसे सबसे जो आपने उगाया, गोभी का फल तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, उसको उसका जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, चारे को भी उपयोग कर लेते हैं, चारा करते सही है, जिसके पास मवेशी है उसको चारा के रूप में प्रयोग करें वो भी सही है, क्योंकि चारा हमारे जो मवेशी है चारा खाएंगे तभी तो गोबर करेंगे, गोबर भी हमारा बहुत अच्छा एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है हमारा। अगर आप नहीं करते हैं, जिनके पास मवेशी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अगर सब्जियां जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका जो अपना आपका मेन पार्ट है आपने उसको तोड़ लिया, और जो उसका रेस्ट पार्ट बचा हो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में आप इसको काट लें, और उसको काटने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिला दें, मिट्टी में लाइक प्लाविंग करते हैं ना, हम ट्रैक्टर से प्लाविंग करते हैं या कुदाल लेके फावड़ा ले लिया उसके वो मिट्टी में मिला देते हैं, और ये क्या हमारे सारे चीज़ क्या है, ये हमारे इसके बहुत जल्दी डिकम्पोज मीन्स वो विघटित हो जाता है मिट्टी में, हमारे जो हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम बोले ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन आप देखे होंगे उसमें केचुआ बहुत प्रकार प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियां उसमें रहती हैं, जो क्या करती है, ये जो चाहते हैं ना उनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड मीन्स भोजन का स्रोत होता है और उसको खाते हैं, और जिसके कारण ये जो क्या हमारे सब्जियां के जो सब्जियों या कुछ और फसल है ना उसके कारण उसको विघटित कर देते हैं, और ये जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो उपाय इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कहीं गोबर गैस का प्लांट हो, नहीं भी हो, जहां भी है तो गोबर गैस बनने से गैस हम जब बना लेते हैं तो बहुत सारे उसके जो बाय प्रोडक्ट पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ जैविक खाद के रूप में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसको भी हम अपने मृदा में मिट्टी में मिला सकते हैं और इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चौथा कारण आपका हो सकता है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो आप कवर, जो कवर हम करते हैं ना, कवर क्रॉपिंग का बोलने का तात्पर्य है, कवर मीन्स जो जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर हमारे मिट्टी का, उसको अच्छे से कवर कर सके, जिससे हमारा जो पानी का भी होता है, जहाँ पानी कमी है तो क्या होता है जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी कमी होने लगती है, बहुत सारे हमारे जो फसल नहीं है जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वो उगने लगते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और जैसे और बहुत सारे ये जो हमारे कवर क्रॉपिंग है, नाइट्रोजन के जो उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं, ये हमारे कवर क्रॉपिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन कमी के लिए ये कौन से कवर क्रॉपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्रह्मासी है आप ईयर होल द ईयर मीन्स आप साल भर इसको उगा सकते हैं इस फसल को, और आपके नाइट्रोजन की कमी को आपकी मिट्टी में नहीं होने देता है, ये जो हमारे सालों भर उगते हैं फसल है, इनका नाम है गोल्ड हेम्प। आप गोल्ड हेम्प ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ढांचा लेते हैं, ये सब हमारे क्या है, कवर क्रॉप है। ये कवर क्रॉप को आप एक बार लगा दिए, ये भ्रमरसी है, इसको थोड़ा आप प्रबंधन करते रहें। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मीन्स जो नाइट्रोजन का इनका जो रूट पार्ट है ना वातावरण में, जो हमारे नाइट्रोजन है उसका ये प्रबंध उससे हुए फिक्स करते हैं अपने जड़ में, इनमें नोड्यूल्स बनते हैं और इनका फिक्सेशन करते हैं हमारे मिट्टी में, और जिसके नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस कमी को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी है, अगर इससे भी आपकी कमी नहीं पूरा हो पा रही है, जहाँ आपकी नाइट्रोजन की अगर कमी बहुत लो लेवल पर है, प्रजेंट है आपकी मिट्टी में, तो वहाँ पर और भी आप चाह सकते हैं, इंटीग्रेटेड में जा सकते हैं। अगर जैविक खाद से, जैविक खाद के प्रयोग से आपकी नाइट्रोजन कमी पूरा नहीं हो पा रही है, तो आप जा सकते हैं रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा ना करें आप, मेरा यही आप मानना है, उससे ज़्यादा प्रयोग हम ना करें। जैसे आप नाइट्रोजन कमी है तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उर्वरक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जैसे यूरिया करते हैं, जो भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड होता है उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे जो फसल चक्र आप अपनाते हैं, एक ही फसल को आप बार बार ना उगाकर फसल चक्र का अपनाएं। जैसे आपने धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, उसके बाद कोई दलहनी पौधों का आप उगाएं, या कोई हमारे तिलहन पौधे का उगाएं, दलहन तिलहन पौधे का उगाएं। दलहन पौधे का उगाने से क्या होता है, उसके जो हमारा जड़ होता है ना उसमें जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जो हमारे जो हम रासायनिक खाद से डाल के जितना

कट्टे छिटे पार्ट होते हैं उसका आप उससे कंपोस्ट बनाएं और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें। ये सब इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के तरीके हो गए हैं। दूसरा हो सकता है फास्फोरस की कमी आती है, तो फास्फोरस कमी की भी पूरा करने के लिए आप जैविक खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद, उसमें भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सब डाल सकते हैं। कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो हमारा केचुआ खाद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस की कमी अगर ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक खाद हमारे से जैविक खाद है हमारे, जैविक उर्वरक जो है वो आपने नाम सुना होगा, माइक्रो जो होता है हमारा, माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स होते हैं। ये माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स क्या करता है, जो हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में जो हमारे नेटिव फास्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है। वो जो मतलब जो हमारे मिट्टी में जो फास्फोरस प्रेजेंट है उसको लेने में पौधा जो है असक्षम हो रहा है, तो ये क्या करता है उसको, जो मतलब जहाँ वो उसको क्या करता है, जिस जहाँ वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है, तो इसको ये जो है हमारा माइक्रोराइजा ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करता है, मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म से एक्सचेंजेबल फॉर्म में लाता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मीन्स मोबिलाइजेशन का तरीका, मीन्स बोलने का मतलब यही है, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने कहीं एक जगह मैं बैठी हूँ और मैं बहुत स्थिर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक डॉर्मेंट स्टेज में चली गई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कोई मुझे आया, मुझे कुछ ऐसा बात बोला, मोटिवेशनल बात कहा चाहे कुछ भी कहा, और मुझे एक्टिव स्टेज में ला दिया, तो जस्ट लाइक इसी जैसा है हमारा जो माइक्रोराइजा इनोकुलेंट्स है, क्या करता है ये फास्फोरस जहां हमारे नेटिव पूल में प्रेजेंट है और वो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, जहां से हम पौधे उसको उपलब्ध नहीं ले पा रहे, पौधे वहां से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करता है उसको मोबिलाइज करके एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। और तरीके हैं पौधे के लिए और फास्फोरस की कमी के पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं, आप इसके लिए बहुत सारे रासायनिक खाद भी यहाँ प्रयोग करते ही हैं, जैसे मैंने DAP के नाम बताया, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी कर सकते हैं। अमोनियम फॉस्फेट के भी प्रयोग से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन का भी उपलब्धता मिलता है, फॉस्फोरस का भी मिलता है, और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, इसकी भी हम प्रयोग करते हैं अपने फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। और मिट्टी में अगर फॉस्फोरस की कमी ज़्यादा आ रही है तो बोन मिल, आपने इस नाम सुना होगा, बोन मिल में भी जानने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में फॉस्फोरस कमी को ये पूरा करता है। और अब जिंक की बात करें, जैसे जैविक सामग्री जो भी हमारे होते हैं, जैविक खाद होते हैं, जैसे मैंने बोला गोबर खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो, बहुत प्रकार के हम जो खाद बनाते हैं हमारे, उसको डालने से क्या हो जाता है, जो फास्फोरस हमारे अनलॉक स्टेज, अनलॉक बोले तो जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होते हैं उसको भी क्या करता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेता आता है और पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है, ये जैविक जो हमारे खाद होते हैं। और जिंक की भी कमी है, जिंक की कमी के भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका भी आप समझे तो प्रकार ऐसा ही है, बट कुछ सोर्स अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ आपको बताया गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, केचुआ खाद डालो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। तो गोबर खाद या केचुआ खाद या कोई और भी कोई खाद हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैविक खाद में सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटासियम ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है, ये खाद डाल रहे हैं, तो इस खाद ये खाद भी उस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गोबर खाद में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी, जिंक की कमी आ रही है, आप ना पोल्ट्री से बनी जो खाद होती है, जो हमारे मतलब जो भी पोल्ट्री जहाँ फार्म होती है उसके जो स्क्रेटा होते हैं, जो उसके गोबर खाद हो, जो उसके गोबर होते हैं, जो उसके मल मूत्र होते हैं, उससे आप खाद बनाएं, उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक की कमी को वो पूरा करता है। इसके अलावा नीम केक, नीम तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम जो होता है, जो हमारे नीम के पेड़ होते हैं, इस नीम से, इनके लिप से, इनके ट्यूब से, इनके फली से क्या करना है, केक टाइप का बनाया जाता है और इसका डाला जाता है मृदा में, ये नीम केक भी जिंक की कमी को पूरा करता है। जैविक उर्वरक जैसे मैं बताई हूँ, वर्मी कंपोस्ट, ये सभी प्रचुर मात्रा में आपकी जिंक को कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अजैविक अगर प्रबंधन की मैं बात करूँ, मीन्स कौन सा हम रासायनिक उर्वरक का डालें जहाँ अगर ज़्यादा कमी आ गई है, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जैविक प्रबंधन कर रहे हैं फिर भी आप जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है किसान बहनों और भाइयों, आपको अजैविक खेती की तरफ भी, अजैविक प्रबंधन की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने फसल हमने जो लगाया है उसकी उपज अच्छी से लेनी है, और हमारे जितनी हमारी लाइक हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है भारत की, बिहार की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमें, उनको भी हमें भोजन प्रदान कराना है, तो उस लेवल पे हमें अपनी खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी, फसल की उपज लेनी ही पड़ेगी, तो उस केस में हमें क्या होता है, हम जैविक, अगर जैविक की बात करेंगे, जैविक प्रबंधन की बात करें तो नहीं हो पाता है, तो उसमें हमें क्या, इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोले तो आपको जैविक प्रबंधन भी करने पड़ते हैं, जैविक प्रबंधन भी करने होते हैं,
तो जिंक की जो कमी आ रही है तो उसके लिए अजैविक प्रबंधन के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक ये जिंक का बहुत अच्छा अजैविक स्रोत है, जो मिट्टी में जिंक की कमी आती है।

0: चाहिए तो उसको ये पूरा करता है। और भी बहुत सारे जिंक जिंक खाद है हमारे, जैसे जिंक चिलेट्स की आते हैं, ये जिंक चिलेट्स भी एक अजैविक खाद है जो जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और पौधे को ये सीधा जिंक प्रदान करता है और पौधे को सीधा जिंक ग्रहण करने में या प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक की अगर कमी आ रही है तो पौधे पे आप डायरेक्ट जो जिंक जैविक जिंक का जो अच्छा अजैविक स्रोत है उसका फोलियर स्प्रे करते हैं, मीन्स उसका आप जिंक को आप पानी में घोल कर डायरेक्ट आप अपने पौधे के ऊपर, पौधे के पत्तियों पे या पौधे के ऊपर डाल सकते हैं जो जिंक की कमी को पूरा करता है। और यही सब जो हमारे हैं फसल चक्र तो आपको सभी में अपनाने हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। जहाँ जरूरत पड़े आप जैविक खेत जैविक प्रबंधन करें, अगर इससे ज़्यादा इसकी कमी पूरा आप जैविक प्रबंधन से नहीं कर पाते हैं तो आप अजैविक प्रबंधन भी करें।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। तो अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: खतरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के।
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरियां जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं। और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है, वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव की। आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें बरतनी है हमारे पशुपालक भाइयों को, उनके पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए इस समय, ताकि वो रोग बीमारियों से दूर रहे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जो पशुओं को देखभाल और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के लिए, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
5: जी, सबसे पहली बात है कि बारिश के मौसम हमारे किसानों के लिए, बारिश के साथ साथ चारों ओर हरियाली आती है जिससे हमारे किसानों का जो है मन प्रफुल्लित रहता है। लेकिन पशुपालकों के लिए बारिश का मौसम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र में खास करके बारिश के मौसम में हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे अगर आपके पशुशाला की छत की में पानी टपकता है तो उसका रिपेयरिंग पहले करवा लें। खास करके जल जमाव वाले क्षेत्रों में अगर निकासी की, जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले से आपको कर लेनी है। तथा अगर आपके आसपास जल जमाव होता है तो कोशिश करें अपने पशुओं को ऊंचे स्थान पर रखें, या जल जमाव बारिश में जब जल जमाव होता है उस, ताकि कीचड़ नहीं हो और आपके पशुओं को आप भींगने से बचाएं। अगर लगातार आपके पशु भींगते रहेंगे तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ आप अपने पशुओं को खिलाने के लिए जो भी आप सूखा चारा या जो दाना रखते हैं उसको रखने की जगह को भी सूखा रखना है, क्योंकि अगर नमी अधिक होगी, भींगेगा तो उसमें फफूंदी लगेगा, फंगस लगेगा, जिससे उसमें कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जिससे कई प्रकार की पशुओं में बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। और खास करके बरसात के पहले जो पशुओं में बचाव के लिए जो टीकाकरण सरकारी स्तर पर या अपने स्तर पर होता है उसको आपको लगवाना आवश्यक होगा।
3: जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में अपने आसपास या घर में पानी जमा नहीं होने देते, क्योंकि उससे मच्छर या अन्य बैक्टीरिया जो है वो पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार पशुपालक भाइयों को भी चाहिए कि पशु जहां पर रखते हैं आप, उस जगह को साफ़ सुथरा रखें, पानी जमाव ना होने दें, जल जमाव ना होने दें। डॉक्टर साहब, अब रोगों की बात करते, तो इस मौसम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं पशुओं को और क्या बचाव का तरीका है?
5: खास करके यंग जो पशुओं में, वैसे पशु जो 3 साल तक के बाछी हैं, पाड़ी हैं, या जो गाय का बच्चा है जो तंदुरुस्त है, उनमें खास करके ऐसा देखा जाता है कि प्रायः 3 साल तक के उम्र के पशुओं में गलघोंटू या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, लंगड़ी या BQ, एंथ्रैक्स या पिलभड़वा, ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में होती हैं। और ख़ास करके अगर आपके पशुओं को आहार प्रबंधन में दिक्कत होगा, उनका इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होगा, तो ये बीमारियां होती हैं। और ऐसे भी ये बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं। तो एक पशु में होने के बाद इनका संक्रमण दूसरे में होता है और ये तेज़ी से फैलती भी हैं। इसलिए बरसात के मौसम में ख़ास करके जो बीमारियाँ हैं, HS या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बीमारी, और एंथ्रेक्स या पिलभड़वा, जिसमें कि आपके पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, खास करके पशु लंगड़ाने लगते हैं, और जो एंथ्रेक्स है जिसमें कि बिना कोई खास लक्षण दिखाए बहुत तीव्र ज्वर होता है, और जब तक आपको कुछ समझ में आएगा तब तक आपके पशुओं की मृत्यु हो जाएगी, और जब मरने के पश्चात उनके जितने भी नाक से, कान से, मुंह से, मल द्वार से बिना जमा हुआ खून निकलता है, ये उसकी पहचान है कि इसमें एंथ्रेक्स हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको खास करके इन तीनों रोगों से बचाव के लिए हमको इन तीनों बीमारियों में खासकर HSBQ या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर का और एंथ्रेक्स का ये टीका सरकारी स्तर से या अपने व्यक्तिगत स्तर से भी हर एक जगह उपलब्ध है। इसकी टीका मॉनसून शुरू होने के पहले, अर्थात हमारे यहाँ जनरली 15 जून के बाद मॉनसून आउटब्रेक होता है, तो मई महीना के से लेके और जून के 15 तारीख के पहले आपको इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अपने पशुओं में अवश्य करवा लेना है, ताकि खास करके जो यंग पशु हैं, जो 3 साल तक के उम्र के बाछी हैं, बाछियां हैं, बछड़े हैं, उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आप अपने खास करके बाछे बाछियों में और पाड़ियों में इस तीनों बीमारियों से, HSBQ और एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीकाकरण करवा लें
3: जी।
5: इसके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में, जैसे जैसे आपने बताया कि चारों ओर जल जमाव होता है जिससे मक्खी का, मच्छर का, और ऐसे भी जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में नमी और गर्मी दोनों की अधिकता के चलते जो आपके पशुओं में चमोकन है, अठाइल है, किलनी है, जू है, मक्खी है, मच्छर है, इसके प्रकोप से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो परजीवी के चलते होती हैं या प्रोटोजोआ के चलते, जिसमें थलेरियसिस है, बेबेसियसिस है, या ट्रिप्नोसोमियसिस, या सर्रा, लाल पेशाब, इन बीमारियों की भी काफ़ी अधिकता होती है। तो खास करके अपने, जैसा आपने बताया कि जल जमाव नहीं होने देना है, शाम के समय अपने पशुशाला में चारों ओर धुआं अवश्य करें जिससे कि मच्छर का प्रकोप नहीं हो, और समय समय पर अपने पशुशाला में पशुओं के शरीर पर जो बाह्य परजीवी से बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन या एमिट्राज नामक दवा का प्रयोग, एक लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा देके अपने पशुओं के शरीर पर इसको से धुलाई करें, और इसका छिड़काव अपने पशुशाला में भी करें, तो इससे आपके पशुओं में बीमारियां कम होंगी। और अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो ये जो संक्रामक बीमारियां हैं इनसे आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं
3: जी। तो ये कुछ रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, और टीकाकरण से आप कैसे बचा सकते हैं, और दवाइयों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अत्यधिक बारिश और जल जमाव या बाढ़ आने पर पशुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुपालक भाई क्या करें, क्या कुछ सावधानियाँ उन्हें रखनी चाहिए?
5: देखिए, ये बहुत ही वाइटल प्रश्न है, क्योंकि ये जो भागलपुर और आसपास के क्षेत्र हैं, खास करके इन गंगा नदी के किनारे, और फिर जो हमारा उस पार का क्षेत्र है जहाँ की कोसी और गंगा, इन दोनों नदियों के चलते इस क्षेत्र में, और इसके अलावा जो लोकल नदियां हैं इनके, इनका जो जब अत्यधिक बारिश होती है या गंगा के पानी में या कोसी के पानी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, तो जल जमाव के चलते, या जो काफ़ी देखा गया है कि नेशनल हाईवे पर भी पानी ऊपर आ जाता है और गाँव में प्रत्येक घर में करीब करीब पानी घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो चारा दाना की समस्या है। तो सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कुछ स्थान, ऊंचा स्थान चिन्हित कर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि अगर अत्यधिक बारिश है या बाढ़ आने की संभावना है तो प्रखंड कार्यालय स्तर से या अंचल स्तर से इस चीज़ की सूचना प्रत्येक जगह, प्रत्येक आजकल मुखिया भी हैं, वार्ड परिषद के सदस्य हैं, तो सबके माध्यम से सभी गांव में ये सूचना रहती है कि कौन सा उच्च स्थान चिन्हित किया गया है जहां अपने पशुओं को ले जाएं, और वहां पर अगर आपके पास जो चारा है उसको ले जा सकते हैं, या फिर सरकार के स्तर से भी बाढ़ की स्थिति में पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की जाती है, सूखा चारा की व्यवस्था की जाती है, चोकर की दाना की व्यवस्था की जाती है, और अगर वैकल्पिक स्रोत के रूप में आप देखते हैं तो पेड़ की टहनी है या फिर जो कुछ फसल अवशेष हैं उसको, या फीड ब्लॉक एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आजकल हम लोग पशु जो फसल अवशेष है उसका, उसको कंप्रेस्ड करके उसमें उसके साथ दाना और अलग से मिश्रित करके कंप्लीट फीड ब्लॉक बना के उसको सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखते हैं, और स्कार्सिटी के समय, बाढ़ के समय उनको पशुओं जहाँ पर ऊंचा स्थान जो सरकार के स्तर से चिन्हित है वहाँ पर, वहाँ हम लोग फीड ब्लॉक भी देके और पशुओं के लिए चारा दाना की व्यवस्था करवाते हैं। साथ ही साथ वहाँ हेल्थ सेंटर भी खुलता है पशुओं के लिए, जहाँ टीकाकरण की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था रहती है। इसलिए निश्चित रूप से जब भी अत्यधिक बारिश हो और बाढ़ की संभावना हो तो सरकारी स्तर से या अंचल के स्तर से जो भी ऊंचा स्थान चिन्हित करके जहां पशु कैंप बनाया जाता है वहां अपने पशुओं को ले जाकर रखें, और जो सरकार की सुविधाएं हैं या जो व्यक्तिगत रूप से आप सुविधा दे सकते हैं उसका लाभ लेके अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस समय बरसात के समय में पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रोग पनप सकते हैं आपके पशुओं में, तो इसका ख्याल रखें और जो भी बातें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं उनका अनुसरण ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
0: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
9: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
11: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
9: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
12: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
9: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
13: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं।
9: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
14: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
15: धन्यवाद
14: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
15: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे, मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
14: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
15: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
14: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
15: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहाँ पर ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
14: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए।

0: नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन।
0: हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है।

है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 4 की ध्वनिशाला में।
1: प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है कि आप इस समय हमारे कार्यक्रम को सुनने का आनंद ले रहे होंगे। मजा आ रहा है कार्यक्रम सुनने में? मुझे भी बहुत मजा आता है ये सारे कार्यक्रम सुनने में। आज मैं उषा दीदी आपको एक कविता सुनाऊंगी। मालूम है उस कविता का नाम क्या है? आपकी ही पसंद का नाम है। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कविता का नाम क्या होगा? सोचिए। इस कविता का नाम आजकल के मौसम के ऊपर है। और आजकल मौसम कौन सा चल रहा है? बारिश का मौसम। सावन का महीना है, बादल नजर आते हैं आसमान में और फिर जब तब बरसने लगते हैं। तो हमारी आज की कविता इन्हीं बादलों के ऊपर है। तो हमारी कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कल्पना की दुनिया में ले जाती हूँ। ये कुछ बच्चों के लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये हकीकत हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि उषा दीदी ऐसे कौन से सवाल लेकर आई हैं आज? कविता सुनाना तो दूर, हमें सवालों में उलझा रही हैं। ना ना, ऐसा नहीं है, सवालों में नहीं उलझा रही मैं, आपको मजा आएगा। आपने आसमान में तरह तरह के बादल देखे होंगे। कुछ सलेटी रंग के बादल हैं, कुछ गहरे काले बादल हैं और कुछ बादलों में आपने तरह तरह की आकृति देखी होगी। कभी कोई बादल ऐसा लगता होगा कि जैसे हाथी सूंड उठाकर सलाम कर रहा है, तो कभी ऐसा देखा होगा कि कोई जोकर तोन फुलाकर बैठा है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये बादल नहीं बल्कि चिड़िया है। तो हमारी इस कविता में ऐसे ही बादलों की कल्पना की गई है। तो अब आप बताइए कि मैंने आपको सवालों में उलझाया है या आपको कल्पना की दुनिया में घुमाया है। तो चलिए हम अपनी आज की कविता शुरू करते हैं, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल।

आपको ये कविता कैसी लगी? समझ में आई? एक और बार सुनते हैं। ठीक है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में नाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कैसी लगी आपको कविता? मजा आया आपको? तो इस कविता को सुनते समय आप भी बादलों में कहीं खो गए होंगे। कैसे बादल? कुछ ऊंट जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ हाथी जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ जोकर दिखने जैसे बादल। तो इन बादलों में तरह तरह की आकृतियां आपको नजर आती होंगी। बच्चों, यह कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने, और आप इस कविता को पढ़ भी सकते हैं। अभी तो आपने ये कविता सुनी है, और अगर आप इस कविता को पढ़ना चाहते हैं तो NCERT की साइट पे जाइए और इस कविता को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, कविता सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बादल को जिद्दी क्यों कहा गया है? कविता की पंक्तियां मैं दोहरा देती हूँ और फिर आप सोचिए कि बादलों को जिद्दी क्यों कहा है। तो मैं शुरू करूं? ठीक है। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो सोचा आपने यहाँ बादलों को जिद्दी क्यों कहा गया है? बादलों को जिद्दी इसलिए कहा है कि सबने बहुत मना किया कि बादलों इतना मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। पानी तो उतना ही बरसना अच्छा लगता है जितना हम उसमें आनंद ले सकें, लेकिन अगर यही पानी बहुत बढ़ जाए तो नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ से जो नुकसान होता है वो बहुत भयंकर नुकसान होता है। तो इसलिए सबने बादलों को समझाया कि बादल बरसो तो सही, लेकिन इतना भी मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। लेकिन बादल है कि मानता ही नहीं है, और इसलिए बादलों को जिद्दी कहा गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल किसी की बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्या कोई है जो बादलों को कुछ समझा रहा है, लेकिन बादल हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे? कविता की पंक्ति को आप दोबारा सुनिए। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब बादल तो आए और बरस कर चले गए, लेकिन बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? कभी सोचा है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। बादल जब आते हैं आसमान में बरसने के लिए, तो खूब गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। बस इसी गड़गड़ की आवाज को कहा गया है ढोल बजाना। तो पता चला आपको कि बादल ढोलक कैसे बजाते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी ढोलक लेकर, अपनी ढपली अपना राग करके ढोलक बजाते रहते और गाना गाते रहते हैं, तो हमारी ढोलक और बादल की ढोलक में क्या फर्क है? सोचो। बिल्कुल सही, हमारी ढोलक तो सामने नजर आती है, ठीक है, लेकिन बादल की ढोलक तो सामने नजर आती ही नहीं है, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। तो बस इसी से पता चल जाता है कि बादल जो हैं, वे गड़गड़गड़ की आवाज कर रहे हैं, यानी कि ढोलक बजा रहे हैं। अब सोचिए कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? हम तो ढोल बजाते हैं या ढोलकी बजाते हैं हाथों से, लेकिन बादल कैसे ढोल बजाते होंगे? ये सवाल आपके लिए है। आप सोचते रहिए और जब जवाब मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, बादलों के बारे में एक और खास बात कही है, और ये खास बात आप सभी बच्चों से मिलती जुलती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ऐसी कौन सी बात है जो बादलों में भी है। है, एक बात तो है जो आप में भी है और बादल में भी है। कुछ अंदाजा लगाया आपने? चलिए मैं आपको एक संकेत दे देती हूँ। बस इस संकेत के सहारे आप ये समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे और बादलों के बीच में एक जैसी है। तो तैयार है आप सब कविता की वे पंक्तियां सुनने के लिए? ठीक है, तो सुनिए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। यानी कि आप सारे बच्चे जिस तरह से शैतानियां करते हैं, बादल भी वैसे ही शैतानी करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हम तो शैतानी करते हैं किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उसमें मजा आता है, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये बादल क्यों शैतानी करते होंगे और बादल क्या शैतानी करते होंगे? तो बादल शैतानी में क्या करते होंगे, वे अभी एक जगह हैं तो उड़कर दूसरी जगह पहुंच गए, अब दूसरी जगह हैं तो उड़कर तीसरी जगह पहुंच गए। अब अगर बादलों की अम्मा बादलों से कहे कि बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, भोजन कर लो, मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है, लेकिन बादल है कि हाथ नहीं आने वाले, अभी यहाँ पर है, और बादलों की अम्मा उनके पीछे पीछे पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़े चली जा रही हैं। तो बादल कभी यहाँ है तो कभी उड़कर वहां चले गए, अम्मा अब दूसरी जगह पहुंची तो बादल तीसरी

जगह पहुंच गए। अब अम्मा तीसरी जगह पहुंची तो बादल वापस अपनी जगह पर दरवाजे के पीछे छिप गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में दरवाजा कहाँ, तो आसमान में बादल भी अपना दरवाजा, अपना घर खोज लेते हैं। उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पूरा आसमान उनका घर है। तो बस यही बादल शैतानी करते हैं और अम्मा उनके पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़ती फिरती है। फिर क्या करती हैं अम्मा? अम्मा फिर थक हार कर बैठ जाती हैं और कहती हैं, ये लो, तुम्हें खीर खानी है तो खाओ और नहीं खानी तो मत खाओ। लेकिन बादल अब समझ जाते हैं कि अम्मा नाराज हो गई हैं। लेकिन ये अम्मा का झूठ मूठ का गुस्सा है। हमारी माँ भी तो ऐसे झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती है हमें, ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं और आराम से भोजन कर लें। तो जब अम्मा थक हार कर बैठ जाती हैं, तो फिर बादल चुपके से आता है, अपनी अम्मा के गले में बाहें डालकर झूलने लगता है और कहता है, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी खीर कहाँ है? मेरी प्यारी अम्मा, मेरी खीर कहाँ है? तो अम्मा कहती है, खीर ये रखी है और अब तुम खा लो। तो बस बादल भी ऐसे ही शैतानी करते हैं। और बादलों को तूफानी क्यों कहा है? हाँ, बच्चे भी तो अफलातून हैं, खूब बड़े तूफान हैं। तूफान मतलब जिनके आने से घर में धमाचौकड़ी मच जाती है, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे पहुंच जाती है, यानी कि सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है। बादल भी ऐसे ही तूफानी हैं, खूब तेज गति से आते हैं और बारिश करते हैं खूब जोरों की, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। और कुछ रह रह करते शैतानी, यानी कि बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बस यही रुक रुक कर बरसना जो है बादलों की शैतानी हम कह सकते हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? पसंद आई कविता? मेरे पास एक और कविता है और यह कविता भी बादलों के ऊपर है। इस कविता को जब आप सुनेंगे ना, तो आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे, इतनी शर्तों में लगाती हूँ। बच्चों, ये कविता लिखी है राजेश जोशी जी ने। राजेश जोशी जी भोपाल में रहते हैं और आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। तो हम सुनते हैं राजेश जोशी जी की एक कविता बादलों के ऊपर। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलटी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? एक और बार सुनते हैं, ठीक है। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया दैया दैया दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलटी उसने झटपट, पानी बरसा टप टप टप टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? समझ में तो ये आया कि बादल को क्या कहा गया है? बुद्धू। क्यों? क्योंकि वह अपनी जेब में पानी भर के ले आए थे। और बादल के पापा ने क्या समझाया कि जेब में पानी भर के लाओगे तो वो ठहर पाएगा? तो बादल को लगा कि उसने ये बेवकूफी की है, ये उसने अपना बुद्धूपना दिखाया है। तो उसने क्या किया, उसने झट से अपनी जेब उलट दी, और जब जेब उलट दी तो सारा पानी बारिश के रूप में नीचे गिरने लगा, टप टप टप टप टप टप। कैसी लगी कविता? आप जब ये कविता सुन रहे होंगे तो यकीनन आप बादल, जेब उलटना, बारिश और बादल के पापा, इन सबको देख पा रहे होंगे, ठीक है। कभी अपनी जेब में भी पानी डाल के देखिएगा कि पानी ठहरता है या नहीं ठहरता, और आपको इतना मौका मिलता है कि आप अपनी जेब पलटकर सारा पानी बाहर कर दें, नहीं मिलेगा, आप आजमा के देखिएगा। लेकिन जेब अपनी हो, किसी और की नहीं हो, वरना उसके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो आप भी ये करके देखिएगा कि हमारी जेब में पानी ठहरता है या नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जेब में तो पानी ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए, सही? आप कहेंगे, नहीं उषा दीदी हमें बुद्धू बना रही हैं। नहीं, मैं बुद्धू बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। अगर मैं
पानी को जमा कर लूं, यानी कि बर्फ की तरह जमा दूं उसे। ठीक है, जैसे हमारे फ्रिज में बर्फ जम जाती है, अगर वैसे आइस क्यूब

0: या जो जमी हुई बर्फ है, अगर मैं बर्फ के छोटे छोटे गोले बना लूं या आइस क्यूब, जो ठोस बर्फ होती है, ठीक है, उसे जेब में रखूं, तो बताइए ये जो बर्फ है ये पानी में टिकेगी या नहीं टिकेगी? टिकेगी, थोड़ी देर के लिए तो टिकेगी, हालांकि वो टप टप टप टप टप टप गिरती चली जाएगी पानी की बूंदें, क्योंकि गर्मी से बर्फ पिघलने लगती है और वह जो बर्फ है वह पानी के रूप में बहने लगती है। तो मेरी जेब में तो पानी ठहर सकता है, लेकिन किस तरह से? ठोस रूप में, यानी कि जो बर्फ है, बर्फ के तौर पर हमारी जेब में ये पानी ठहर सकता है थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन बाद में शरीर की गर्मी से, गर्माहट से, ये पूरी की पूरी बर्फ पानी बन जाती है और टप टप टप टप टप टप शुरू हो जाता है। तो आप भी ये करके देखिएगा कि पानी, हमने नल से एक गिलास में पानी भरा, थोड़ा सा पानी भरा, अपनी जेब में डाला, तो पानी कहाँ गया? पानी सर से नीचे चला गया। अब हम अपनी जेब में बर्फ डालेंगे और आप देखें कि बर्फ हमारी जेब में ठहरती है या नहीं। अगर यही बर्फ बादल ने अपनी जेब में डाली होती और उसके पापा इससे कहते कि जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, पापा जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट दी उसने झटपट। अब क्या होगा? ओले टपके टप टप टप, क्योंकि अब बारिश की बूंदे नहीं है, अब क्या है? ओले। ओले भी तो ठोस बर्फ जैसे दिखते हैं। तो अब उसने अपनी जेब में से बर्फ जब उलट दी तो ये किस रूप में नीचे आई? ओलों की तरह से। तो बस हमारी कविता में जब पानी है तो बारिश है और ओले हैं तो ओले हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? यकीनन आपको इस कविता को सुनकर बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया और मैं अपने बचपन में लौट गई, जब सारा आंगन ओलों से पट जाता था। पटने का मतलब आप पूछेंगे, अब पटने का मतलब है कि आंगन में ओले ही ओले थे, ओले ही ओले थे, और हमें ये देखकर बहुत मजा आता था, लगता था कि हमारे घर में भी बर्फ पड़ी है, इतना मजा आता था। लेकिन ये जब किसी गाड़ी पर या टीन की छत पर गिरते हैं, टप टप टप टप टप टप, बहुत तेज आवाज आती है, तो ओलों की आवाज सुनना भी मुझे बहुत पसंद है, और बहुत सारे बच्चे तो ओले खाते भी हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कविता खुद बना सकते हैं। तो हमारे पास कौन से शब्द हैं? आपने अभी दो कविताएं सुनी, ठीक है। तो बच्चों, क्या आप अपनी कविता बनाना चाहेंगे? ठीक है, तो हम आपकी मदद करते हैं आपकी अपनी कविता बनाने में। अब आपको सोचना क्या है? कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ याद करना है मौसम। मौसम में जो कुछ भी होता है उसे गौर से सोचने समझने की जरूरत है। मौसम में क्या है? अगर हम बारिश का मौसम लेते हैं तो इसमें क्या है? इसमें बादल है, ठीक, इसमें बारिश है, ये भी ठीक है, इसमें हवा सनसन चलती है, ये भी ठीक है, इसमें बिजली चमकती है, वेरी गुड, और बादल गड़गड़ गड़गड़ गरजते हैं। तो यानी कि आपने बारिश से जुड़े हुए तमाम शब्द इकट्ठे कर लिए। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस इन शब्दों को जोड़ तोड़ के एक ऐसी लय ताल में बांध दीजिए और कविता अपने आप बन जाएगी। तो हम इन्हीं शब्दों से बनी हुई एक कविता सुनते हैं और आप कोशिश कीजिएगा अपनी खुद की कविता बनाने की। तो चले सुनते हैं एक और कविता। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। तो इसमें हमने क्या किया? हमने कहा बादल गरज रहा है गड़गड़, तो हमने बादल शब्द लिया और गड़गड़ शब्द लिया। अब बिजली के साथ क्या है? बिजली चमकती है, तो चमकने के लिए हमने चमचम शब्द का इस्तेमाल किया और लाइन क्या बनाई हमने? बिजली चमक रही है चमचम। फिर जब बिजली चमकती है तो पानी बरसता है, और पानी के बरसने की आवाज क्या है? झमझम। तो हमने बस यही पंक्ति बना दी, झमझम बरस रहा है पानी। अब पानी की लय में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? पानी की लय में आ सकते हैं आनी, जानी, मानी, नानी। तो क्यों ना हम नानी शब्द को ले आएं? झमझम बरस रहा है पानी, और अंतिम शब्द में हमारे पास कौन सा शब्द है? नानी। अब हमें करना क्या है? हमें नानी से पहले वाले शब्द खोजने हैं। तो झमझम बरस रहा है पानी, नानी। तो क्या हो सकता है? अब कैसे आएगी नानी? है ना मजेदार कविता? तो एक बार और दोहरा लेते हैं इस कविता को। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। कैसी लगी कविता? अपनी नानी को तो आप ये कविता जरूर सुनाइएगा। बस आपको करना इतना है, खूब सारे शब्द इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस तरह से संजो कर रखिए कि एक लय एक ताल में ये पंक्तियां बनती चली जाएं। बस जैसे जैसे पंक्तियां बनती चली जाएंगी वैसे वैसे आपकी कविता भी बनती चली जाएगी। तो अपनी नानी को ये कविता सुनाना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं, जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ही ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में, गरीब, एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें, तो परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूं मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादा ज्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ वर्षों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यवसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधारा ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा ज़मीन है, तो आप कुछ ज़मीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं। उस कंडीशन में अगर जिनके पास ज़मीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं, पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है। लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके, मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी ज़मीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है। और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री, आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज

0: जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यावसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
1: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
0: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है, फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए, कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था आप बोल सकते हैं, आज वहां पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, अब वही धान गेहूँ पर आश्रित है, तो ऐसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज़्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
1: तो सर, अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
0: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं, आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं कोई भी काम उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही, जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
1: और सर, अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
0: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसी योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है, तो इसलिए सरकारी योजनाएं उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों, नई फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है, फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है, तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे, आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा, आपको लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है।

0: तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
1: यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
0: जी जी हाँ।
1: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
0: जी देखिए हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में। उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
1: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
0: देखिए एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उसे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाद में बोलते हैं, बाद बोलते हैं, खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाद में है, पश्चिम बाद में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है। तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है, और छोटे खेत में आप एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं, या तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
1: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं, जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं, उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
0: जी ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती। क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पर जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है। अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो 10 लोग मिल के एक टाइप का फसल उगाई है और वो 10 लोग मिल के एक जगह आप मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए। इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
1: जी तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
0: जी जी, देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उस उतना उगा लें वो हो गया। लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए। तो यही सब अंतर है, पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
1: तो सर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
0: देखिए बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है, हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधाएं हैं और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे मैंने बताया वही एक बीघा में धान लगाइए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियां जैसे हमने बात किया तो उस चुनौतियां सब जगह चुनौतियां हैं, जीवन में चुनौतियां हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौतियां उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी
1: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते के बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही

0: बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अल्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन सेहत सही लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं मक्का के फसलों में लगने वाले कीटों के बारे में. दोस्तों, यूं तो मक्का की जो फसल होती है वो काफी फायदा देती है हमारे किसान भाई बहनों को, लेकिन अगर कीट लग जाते हैं तो बहुत नुकसान होता है. किस प्रकार से आप कीटों की पहचान कर सकते हैं और किस प्रकार से आप कीटों से मक्का के फसल को बचा सकते हैं, आइए उस बारे में जानते हैं विस्तार से डॉक्टर किरण कुमारी से. मैम है कीट विज्ञान विभाग से, मैम है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मक्का के फसल को कौन कौन से कीट होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं.
1: जी, मक्का फसल जो है वो हमारे बिहार के कंडीशन में सालों भर लगाए जाते हैं, यानी खरीफ, रबी और गर्मा, तीनों मौसम में जो मक्का है वो उगाया जाता है. और लगभग तीनों सीजन में मक्का को कीट जो है वो खाकर उसको हानि पहुंचाते हैं. और इन हानि पहुंचाने वाले कीड़ों में मक्का का तना छेदक कीट, कटुआ पिल्लू, सफेद ग्रब, लाही, फॉल आर्मी वर्म एवं कॉब बोरर कीट हैं.
0: जी मैम, तो जैसे कि अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो आप हमें सबसे पहले बताइए मैम कि तना छेदक कीट, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है.
1: मक्का का तना छेदक कीट जो है, इसका वयस्क पतंग, जो पतंगा जिसको कहते हैं, जैसे वो मौथ भी कहते हैं इसको, जैसे बटरफ्लाई होता है, दिन में उड़ता है तो रात में उड़ता है, तो ये वयस्क जो है इसका पंख का जो रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का होता है. ये पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देते हैं और इन अंडों से फिर पिल्लू जो भूरे रंग के होते हैं वो निकलते हैं. और ये जो पिल्लू है उनको लार्वा भी कहते हैं, इल्ली भी कहते हैं. और इन पिल्लुओं के शरीर के ऊपर चार धारियां होती हैं और इनका सिर जो होता है, हेड, वो काला होता है. ये जो लार्वा या पिल्लू हैं ये पत्तियों के गाभा को खाते हैं. और पहले तो जो पत्तियां हैं उनको, चूंकि इनका जो जो लार्वा है, शिशु हैं पिल्लू, इनके जो शुरुआत में ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और इनका मुखांग जो होता है, माउथ पार्ट, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होता है. और ये पत्तियां चूंकि गाभा में ही मुड़कर रहते हैं और इन पर ये पिन, इनका माउथ छोटा होता है इसलिए पिन के बराबर छेद करके खाते हैं. और जब ये पत्तियां थोड़ा बाहर आती हैं तो ये पिन बराबर छेद जो हमारे वो दिखते हैं वो समानांतर रूप में दिखते हैं. फिर जब यही थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो छेद थोड़े बड़े भी दिखते हैं और वो एकदम समानांतर में रहते हैं क्योंकि वो गाभा के अंदर ही काट कर उसको खाते हैं. फिर ये लार्वा जो है पूरे अंदर तने में प्रवेश करके नीचे तने तक, जो जमीन का लेवल, वहाँ तक भी चले जाते हैं और इस तरह से तनों को खाते हैं. और जिससे कि बीच वाली जो फुनगी होती है वो सूख जाती है और जब इसे खींचते हैं तो आसानी से खींचा जाता है, जिसे डेड हर्ट कहा जाता है. चूंकि ये बीच में, बीच की पत्ती सूखती है, बीच में खाते ही हैं वो, तो इसलिए वो जो है उसको डेड हर्ट कहते हैं या मृत कल्ला भी कहा जाता है.
0: जी मैम,
1: इसके कीट जो, ये जो है इसके बचाव के लिए जो हार्वेस्टिंग करते हैं कटनी के बाद, खेतों के सारे जो भी अवशेष ठूंठ होते हैं उनको हटा देना चाहिए क्योंकि इसी में इसके जो पिल्लू होते हैं या एक पीपा होता है जिससे कि फिर वयस्क निकलते हैं, वो ये दोनों अवस्था, लार्वा पीपा, ये उन ठूठों में ही पाए जाते हैं और जमीन के अंदर वो घुस के रहते हैं. मई और जून के महीने में इसके खेत की जो है जुताई कर देनी चाहिए जिससे कि ये जो मिट्टी में पड़े हुए इसके लार्वा हैं, पिल्लू हैं, वो जो सूर्य की रोशनी में एक्सपोज हो जाते हैं और या तो चिड़ियाँ भी खा जाती हैं. और इसके नियंत्रण के लिए या मॉनिटरिंग के लिए भी हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, तो फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए. और जब फिर भी अधिक प्रकोप हो जाए तो रासायनिक कीट में फ्लुवेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या डेल्टा मेथ्रिन 1% का प्लस ट्राइजोफॉस 35 EC का मिक्सचर, ये कीटनाशी है, इसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, ये तो बात हो गई तना छेदक कीट के बारे में। मैम, कटुआ पिल्लू भी लगते हैं मक्का के फसलों में, तो उसे कैसे पहचाने और उसके बचाव के लिए क्या करें किसान भाई बहन?
1: जो कटुआ पिल्लू है, इसको कजरा कीट भी कहा जाता है, क्योंकि ये काले भूरे रंग का होता है और इसका शरीर बहुत ही चिकना और मुलायम होता है। इसे जो है, ये मक्का के अलावा अन्य फसलों जैसे चना, मसूर, मटर, गेहूं, गोभी के जो छोटे पौधे रहते हैं नर्सरी में, उनको भी वो जमीन की सतह से वो काट देते हैं या पत्तियों को भी खा जाते हैं। और इसके जो पिल्लू होते हैं, जो लार्वा कहा जाता है, वो दिन के समय में मिट्टी के ढेलों में या जो दरार हैं उसमें छिपके रहते हैं, और रात के समय या जैसे ही अंधेरा होता है वो बाहर निकलकर फिर पौधों को काटकर खाते हैं। ये खाते कम हैं और पौधों को काटकर गिरा देते हैं, यानी बर्बाद ज़्यादा करते हैं। और इस कीट से बचाव हेतु खेत की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे इसके पिल्लू मर जाते हैं। और जब इसका प्रकोप कम हो तो सिंचाई करने से ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और खेत में लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए, जो लाइट में इसके जो वयस्क होते हैं वो आकर्षित होते हैं, और इसके जो लाइट ट्रैप हैं उसके नीचे पानी भर के रख देने से उस पानी में सारे वो कीट गिर भी जाते हैं और जिससे कि वो मर जाते हैं। इस तरह से इसका ये एक जो लाइट ट्रैप है वो प्रबंध करता है इस कीट का। और अगर ये जो रासायनिक कीट में, इसका सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए, जिनकी क्लोरपाइरीफॉस कीटनाशी का 3 ml प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर इसका प्रकोप हो जाता है तो क्लोरपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% मिक्सचर कीटनाशी का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, मैम अब आप हमें सफ़ेद ग्रव कीट के बारे में बताइए।
1: सफ़ेद ग्रव कीट, इसे अंग्रेजी में वाइट ग्रव भी कहते हैं, और इसका जो वयस्क है वो बिटल व्रिंग होता है, भौरा जिसे कहते हैं उस टाइप का होता है, और ये मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं, और जो इसके वयस्क हैं वो तो ऊपर पत्तियों को काट कर खाते हैं। और इन अंडों से जब जो मिट्टी में अंडे देते हैं तो इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं वो पौधों की जड़ों को खाते हैं, और इनका आकार जो होता है वो अंग्रेजी का सी जैसा मुड़ा हुआ होता है, सिर इसका भूरा रंग का होता है। और इस कीट के प्रबंधन हेतु जो इसके वयस्क कीट हैं, जो ऊपर में पत्तियों पर रहते हैं, काट कर खाते हैं, छेद बनाकर पत्तियों पर खाते हैं, उनको हाथ से या जाल जो नेट होता है, नेट उससे पकड़ के उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का भी प्रबंध करना चाहिए। बीज बुआई के पहले जो क्लोरपाइरीफॉस से इसकी बीज उपचार भी करना चाहिए, और मिट्टी में भी क्लोरपाइरीफॉस 2% डस्ट फॉर्म में जो क्लोरपाइरीफॉस है 2% का, उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए। और खरी फसल में जब इसका प्रकोप हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन मिक्सचर का 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से इसके छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, मैम फॉल आर्मी कीट की क्या पहचान होती है और उसके प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
1: फॉल आर्मी वर्म कीट जो है, इसका वयस्क मौत होता है, यानी पतंगा होता है, और नर मौत जो इसका होता है उसका अगला पंख जो होता है मटमैले पीले रंग का धब्बे लिए होता है, और जो मादा मौत है उसके उसका जो अगला पंख है वो फीके धब्बे रंग का होता है, यानी थोड़ा ये डल कलर का होता है मादा, और नर थोड़ा ब्राइट कलर में होता है। पिछले पंख दोनों के ही उजले रंग के होते हैं, और मादा मौत जो होती है वो मक्का के पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती हैं और इन अंडों से जो पिल्लू निकलते हैं उन पिल्लू के शरीर पर, पहले तो ये कलर बता दूं कि ये जो पिल्लू है वो पीले रंग का होता है और ये इसके शरीर पर तीन धारियां होती हैं। जो तना छेदक होता है उसके शरीर पर चार धारियां होती हैं और इसके शरीर पर तीन धारियां होती हैं और सिर पर उल्टे वाई आकार का निशान भी होता है। इसका जो उदर भाग होता है, पिल्लू का जो उदर भाग होता है अंतिम भाग, उस पर चार धब्बे होते हैं और वो धब्बे वर्गाकार में अरेंज होते हैं। तो इस तरह से इसकी पहचान है और ये काफ़ी हानि पहुंचाता है। कभी कभी तो ये लगता है कि खेत में कुछ भी नहीं है और अचानक से एक दो दिन के अंदर में पूरे खेत का सफाया कर देता है, क्योंकि ये फॉल आर्मवर्म किट सबसे पहले 2019 में देखा गया था और अब ये जो है 2020-21 में इसका जो है बहुत ज़्यादा वो पूरे फैल गया था। अब धीरे धीरे इस पर नियंत्रण पाया जा सका है। तो अगर ये किट आ जाए तो इसके बचाव के लिए जो है, और ये जो है ना गाभा को अंदर से भी काट कर खाता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चूहे ने काट कर खा रखा है। और इसके बचाव के लिए जब ये चूंकि ग्रुप में रहता है इसलिए इसको, और इसके पिल्लू शुरू में बहुत छोटे होते हैं और पत्तियों के ऊपर भी दिख जाते हैं, तो पत्ती सहित तोड़कर इसको नष्ट कर देना चाहिए। और बुआई के 15-20 दिनों के बाद फेरोमोन ट्रैप, जो स्पोडोप्टेरा फ्रूजी पर्दा ल्यूर जो आता है उसको लगाना चाहिए इसमें, और 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। और फिर भी 3% अगर क्षति दिखाई दे शुरू में तो नीम आधारित कोई भी कीटनाशी जैसे निम्बिसिडी नीमाजल का 5 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और यदि 5% क्षति दिखाई दे तो गाभा में बालू और राख का 1:1 रेशियो, मतलब आधा बालू आधा राख मिला करके गाभा में देने से जो है ये कीट मर जाता है, क्योंकि ये कीट रात में बाहर निकलता है और जब बालू और राख गाभा में दिया जाता है तो उसके बॉडी में घर्षण से उसके जो स्किन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाता है, इसलिए वो मर जाता है। इसके बावजूद भी अगर क्षति हो दिखाई दे तो रासायनिक कीटनाशी में इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे भी और अधिक अगर क्षति दिखाई दे और पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो बालू और राख का जो गाभा में देते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है और पौधे बड़े हो जाते हैं, तब थायामिथेक्सम 12.6% और प्लस लैम्बडा साहेलोथ्रिन 9.5% ये मिक्सचर है, उसका आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, कभी कभी मक्का के फसलों में लाही भी लग जाते हैं, तो लाही की क्या पहचान होती है और प्रबंधन कैसे करें?
1: तो ये लाही जो है इसको मेचा भी कहते हैं, माहू भी बोलते हैं, और ये हरे काले रंग का होता है और कभी कभी ये खरीफ में भी दिख जाता है, सितंबर माह में कभी कभी बहुत ज़्यादा इसका अटैक हो जाता है। ऐसे तो रबी मक्का पर भी दिखाई देता है और फरवरी माह में, और ये जो लाही होते हैं वो पत्तियों से, इसके वयस्क और शिशु दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे ऊपर की पत्ती सूखना शुरू हो कर देते हैं और पौधे बीमार जैसे लगते हैं। और लाही कीट के प्रबंधन हेतु जगह जगह येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, यानी जो येलो स्टिक की ट्रैप है या तो कोई जो डब्बा है उसको पीला से पेंट कर उस पर ग्रीस लगा कर और डब्बे को एक छड़ी के सहारे उल्टा लटका दें, नहीं तो वो जो कार्टून होता है उसको पीले रंग से रंग के उस पर ग्रीस लगा दें और वो तख्ती जैसा वो रहेगा और उसको लकड़ी के सहारे खेतों में लगा दें, जिससे कि ये लाही कीट जो उसमें मूवमेंट होता है तो उस पर जाके सट जाते हैं और मर जाते हैं। फिर बायोपेस्टिसाइड में निम्बी चूर्ण और 5% घोल का 2 बार छिड़काव करना चाहिए, और अधिक प्रकोप हो जाए तो कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL कीटनाशी का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: और अब आप हमें को बोरर के बारे में बताइए कि ये किस प्रकार से फसलों को हानि पहुंचाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या करें।
1: ये कॉब बोरर जब भुट्टा बनने लगता है तब ये हानि पहुंचाता है और ये बहुभक्षी कीट है, यानी ये बहुत से फसलों को खाकर हानि पहुंचाता है। और जब मक्का में भुट्टा लगने लगता है तो ये जो है इसको मक्का को हानि पहुंचाता है। और इस कीट का जो पिल्लू होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है। इस कीट का वयस्क जो होता है वो भी पतंगा होता है और पीले भूरे रंग का होता है। ये पतंगा जो है वो हल्का अंधेरा जब होने लगता है या सूर्यास्त के बाद तभी वो दिखाई देता है, और फिर रात में भी पूरे रात जो है ये उड़ता रहता है फसलों के ऊपर, और फसलों के ऊपर वो जब भुट्टा है उसके ऊपर भी अंडे दे देता है जिससे पिल्लू निकलकर भुट्टे के अंदर घुस जाते हैं और भुट्टे को फिर खाकर बर्बाद कर देते हैं। और इसका प्रकोप नवंबर से अप्रैल माह तक बहुत ही अधिक रहता है। तो कॉब बोरर कीट का प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए, और जो बायोपेस्टिसाइड है उसमें NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसका 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और इसका 2 छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए, या कोई भी नीम आधारित कीटनाशी का 3 छिड़काव 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। एक और बायोपेस्टिसाइड जो स्पिनोसाइड, इसका भी छिड़काव करना चाहिए। 45 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
0: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हर एक कीट के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया और इनका किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए, अगर किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपके मक्का के फसलों को बहुत कम नुकसान होगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी तो ही जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं फूलों के बारे में। दोस्तों, सर्दियां आने वाली है और सर्दियों के मौसम आते ही हम सभी को लगता है कि हमारे घर के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हो, गेंदे के फूल हो, पिटूनिया के रंग हो या फिर डहेलिया के बड़े बड़े फूल, बगीचा देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन खूबसूरत फूलों की शुरुआत होती है एक अच्छे स्वस्थ पौध से। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं शीत ऋतु में फूलों की पौध कैसे तैयार करें, बीज कब बोए और पौध की देखभाल किस प्रकार करें। और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परमवीर सिंह। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद उमा जी। 90.8 FM ग्रीन के सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसा कि अभी समय जो आ रहा है, सर्दियां धीरे धीरे सर्दियां आएंगी और जैसे जैसे तापमान डिक्रीज होगा उस समय हमको फूलों की पौध तैयार करनी होती है और अपने बगीचे को महके। आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फूलों की वेराइटी जो है इसी मौसम में हमको चारों ओर दिखाई देती है। चारों तरफ जो गार्डन्स है वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। घर में गमलों में आपके खूब सारे खूबसूरत फूलों की बगिया जो है इसी समय महकती है। तो इस तरह तरह से हम आज बात, ये मेरा विश्वास है कि आज की बातचीत के बाद हम अच्छे से फूलों की पौध तैयार कर सकेंगे और अपने बागान को महका सकेंगे।
6: जी सर, तो सर्दियों में कौन कौन से फूल लगाए जा सकते हैं सर?
10: सर्दियों में फूलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम आप मेरीगोल्ड लगा सकते हैं। उसमें भी दो तरह के मेरीगोल्ड होते हैं, एक आप देखते हैं फ्रेंच मेरीगोल्ड होता है जो छोटी साइज में होता है, एक होता है बड़ा मेरीगोल्ड जो बड़े बड़े फूल आते हैं, एक होता है हाइब्रिड जो छोटे होते हैं इंका जिसको बोलते हैं, छोटे से गमले में बहुत सारे फूल आते हैं वो लगा सकते हैं। पिटूनिया लगा सकते हैं, डहलिया लगा सकते हैं, इसके अलावा पेंजी लगा सकते हैं, कैलेंडुला लगा सकते हैं। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा हैं इसमें हंड्रेड से भी ऊपर आप लोगों की जो है अलग अलग तरह के फूल इस समय लगा सकते हैं। सबसे सूटेबल टाइम जो है सर्दियों में ही फूलों के लिए हमारे यहाँ पे होता है।
6: जी सर, तो सर इन फूलों को लगाने की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए?
10: हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में है, क्योंकि जैसे आपका सितंबर का अंत और अक्टूबर के महीने के दौरान हम इस फूलों की तैयारी करेंगे, जो पौध की तैयारी करेंगे और उसको उसके बाद हम गमलों में या जो हमारा मेन फील्ड है उसके अंदर लगाते हैं, तो सबसे अच्छा समय जो है आपका अंतिम सितंबर का सप्ताह और अक्टूबर का पूरा महीना, और कुछ वेराइटी जो है जो आप नवंबर 15 तक भी लगा सकते हैं। तो पौध लगाने का समय यही सबसे उचित समय है जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा।
6: सर अब सवाल ये आता है कि जब हम बीज खरीदने जाते हैं तो इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
10: हाँ, ये हमारे फूलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं बहुत से आपके अलग अलग फ्लावर के कलर्स के दिखाते हैं फूल के, परंतु जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसके बाद जब उसको सोइंग करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है, ये खास समस्या होती है फूलों के बीज के साथ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका जानकार है, प्रमाणिक है, वहीं से सीड लेना चाहिए। उसके बाद जो सीड लेते हैं तो उसमें आपको ये खास ध्यान रखना है, उसका किस्म जो आप ले रहे हैं वो किस्म उस पर लिखा हुआ है कि नहीं है पैकेट के ऊपर, उसमें आपका डेट लिखा हुआ है कि नहीं, कब तक ये वैलिड है, और दूसरा आपको ये देखना है उसमें अंकुरण परसेंट, जर्मिनेशन परसेंट कितना है, यानी कि आपका 70% से 98% तक का जर्मिनेशन अलग अलग वेराइटीज के अकॉर्डिंग उस पर लिखा होता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रमाणिक जगह से ही सीड खरीदना है, उसके अलावा आपका उसको डेट देखना है, एक्सपायरी डेट जो है और कब तक ये वैलिड है वो देखना है, उसके बाद जो किस्म ले रहे हैं वो है, और उसके बाद अंकुरण परसेंट, ये आपको खासकर इसमें ध्यान रखने की जरूरत है।
6: जी सर, सर अगर मीडिया की बात करें तो क्या फूलों के लिए कुछ विशेष किस्म के मीडिया का इस्तेमाल करना होता है?
10: हाँ, इसमें आप जो ग्रोइंग मीडिया है, नॉर्मली जो लोग हम क्या करते हैं कि घर में मिट्टी होती है उसी में डालते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं। अगर व्रत बड़े स्केल पे करना हो तो छोटा अगर उठी हुई नर्सरी बनाते तो ठीक है, पर मैं इसके अलावा आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मिट्टी में नहीं लगा कर आप इसमें जो फूल, क्योंकि इसके कॉस्टली सीड आते हैं, आप देखेंगे 3,000-5,000 के सीड आता है 10 ग्राम का, बहुत छोटे मतलब 1000 सीड्स जो है, तो सीड कॉस्टली होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ट्रे आते हैं आजकल मड के ट्रे, जो मिट्टी के ट्रे आते हैं, उसमें आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब कोकोपीट है, कोकोपीट को आपको ब्रिक्स आता है 5 kg का, उसको 24 आवर्स के लिए उसको भिगो देना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है 8-10 आवर्स के लिए, उसके बाद उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट दोनों को बराबर मात्रा में, जैसे आपने बराबर मात्रा का मतलब वेट से नहीं लेना है आपको, उसको बाय वॉल्यूम लेना है। मान लीजिए आपने एक तगारा वर्मी कंपोस्ट लिया है तो एक तगारा आप उसमें कोकोपीट लेंगे, इस तरह से दोनों को मिक्स करके आपका जो ट्रे है, प्रो ट्रे में भी कर सकते हैं अगर बोल्ड सीड बड़ा सीड है तो, नहीं तो आप छोटा बहुत माइन्यूट सीड होता है, इसलिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप वो मड का जो ट्रे आता है आजकल, वो चौकोर में भी आता है, राउंड में भी आता है, डिफरेंट शेप में आपको मार्केट में मिलता है, तो उसमें आप उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद उसमें आप जो सीड लिए हैं जो भी वेराइटी का है वो सीड को सोइंग करना, ऊपर से फिर हल्का सा पर्थ फिर ऊपर से डाल देना है उसके अंदर, इस तरह से आप उसका सीड सोइंग कर सकते हैं। और ये मीडिया, मेनली मीडिया जो है आप सोइल को अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा।
6: सर बीज बोने की तो बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि बीज बोने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
10: हाँ, बीज बोने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप जो ट्रे में अगर आप लगा रहे हैं सीड को, तो आप 2-3 दिन के लिए उसमें आपका न्यूज़पेपर जो आता है उसको कवर कर दीजिए और हल्का सा उसी पे पानी दीजिए, मॉइस्चर मतलब पानी, आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है उसको, रोज कैन से देना है, बिल्कुल कम वाटर देना है और कवर करके जब उसमें छोटा अंकुरण होने लग जाए तब आप उसको पेपर को उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
6: जी सर। सर जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तब भी विशेष ध्यान रखना होता है उन पौधों का, तो वो उस वक्त
10: हाँ, ये सबसे बड़े उस टाइम का ध्यान रखने की बात यही है कि आप उसमें वाटरिंग ज्यादा नहीं करें, पानी ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि जब हम डालते हैं तो उसमें पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना उसमें पानी कम देना है और पानी रुकना नहीं चाहिए उसके अंदर। और दूसरा उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा धूप और हवा फ्रेश हवा के अंदर उसको रखना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है अंकुरण हो गया है तो उसमें अगर कोई ज़्यादा आपको लग रहा है कि डेंस है तो उसमें हल्का सा निकाल दे ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके, तो ये आपको अंकुरण के बाद उसमें ध्यान रखना है।
6: और सर अगर हम बात करें गमले में लगाने की तो कब लगाना चाहिए, इसे क्यारी या गमले में?
10: हाँ, जैसे आपका अंकुरण हो गया उसके बाद आपने देख लिया कि नॉर्मली जो है आपका 20 से 25 दिन और 30 दिन के अंदर आपका सीडलिंग तैयार हो जाता है, डिपेंड करता है वेराइटी टू वेराइटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सीडलिंग का जो आपका है वो 4 से 6 लीफ आ जाए, उसमें पत्ते आ जाए, तो उसको आपको मेन फील्ड में जहां आपको लगाना है या क्यारी लगाना है, बेड में लगाना है, वहां लगा दें। अगर आपको गमले में लगाना है तो उसको उस समय पे गमले में लगा सकते हैं।
6: जी सर,
10: तो यही ध्यान रखना आपको कि उसको 4 से 6 पत्ती उसके अंदर आ जाए तो सीडलिंग को ट्रांसफर कर दें।
6: सर हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो कि बस फूलों को अपने घर में लगाते हैं बालकनी में या छतों पे, तो उनके लिए क्या कोई विशेष सलाह है?
10: हाँ, इसमें ये है जैसे आपके पास मान लीजिए स्पेस की कमी है, आपके पास जगह बालकनी है, छोटा जगह है या रूफ टॉप है जगह है, तो आप उसमें पोट में लगा सकते हैं। तो पोट भी आपके डिफरेंट टाइप के पोट्स आते हैं, मड के पोट्स आते हैं, आजकल प्लास्टिक के पोट्स भी आते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं करें तो आजकल ग्रो बैग आते हैं, तो छोटे छोटे स्पेस में आप ग्रो बैग में भी प्लांटिंग कर सकते हैं फूलों की और अपने बगिया को सजा सकते हैं।
6: जी सर। सर जाते जाते कोई हमारे किसान भाई बहनों के लिए एवं अन्य श्रोताओं के लिए भी कोई संदेश?
10: महत्वपूर्ण संदेश यही है कि इसमें जो सर्दियों की जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है, ना तो इसमें जल्दी करना है और ना देर करना है, क्योंकि जल्दी करते हैं तो भी आपका सीडलिंग अच्छा नहीं होगा और अगर ज्यादा लेट कर देते हैं तो भी सीडलिंग तैयार नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ना जल्दी करना है ना देर करना है, सही समय पर पौध का रोपण करना है, उसके बाद आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, उसको आपका वाटरिंग है, आपका फर्टिलाइजर या न्यूट्रिशन का है उसको ध्यान रखना है, यही मेन इसमें देखने की चीज है।
6: जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों और हमारे जो भी अन्य श्रोता हैं जो अपने घर में फूलों को लगाते हैं, और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का दिल होता है और सर्दी के मौसम में तो हम सभी का मन होता है कि हम फूलों से अपने घर को सजाएं, तो सर के द्वारा बातें जो बताई गई उन बातों का आप ध्यान रखें, और अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रख के पौध की तैयारी शुरू करें, और उम्मीद है कि इन सर्दियों में आपके घर बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे या बगिया है तो बगिया भी बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
11: उन्नत कृषि
12: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
13: जी
12: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
13: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
12: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
4: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
6: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
4: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
6: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
4: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
6: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
4: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो

किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हमारा विषय है मसूर में उत्पादन बढ़ाने की तकनीक और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हैं डॉक्टर दिव्या महतो। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। आप दलहनी फसलों पर शोध कर रही हैं और किसानों को व्यवहारिक तकनीकें उपलब्ध कराने में सक्रिय हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उमा। उमा, जैसे कि मसूर हमारे देश की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो न केवल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखती है। यदि सही तकनीकों को अपनाया जाए तो किसान भाई अपनी पैदावार और आय दोनों को बढ़ा सकते हैं। मसूर की खेती सामान्यतः तीन पद्धतियाँ इसमें प्रचलित हैं। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग विधि, जिसमें बीजों को खेत में छिड़क कर बो दिया जाता है। यह सरल और कम लागत वाली विधि है, परंतु बीज समान गहराई पर नहीं गिरते, पौधा संख्या असंतुलित रहता है इसमें और खरपतवार नियंत्रण काफ़ी कठिन होता है तथा उपज अपेक्षाकृत कम मिलती है। इसके बाद जो आता है वो है शून्य जुताई, जिसे हम जीरो टिलेज पद्धति भी कहते हैं, जिसमें बिना जुताई के मशीन द्वारा सीधी कतार वृद्ध बुआई की जाती है। इससे मिट्टी की नमी व संरचना सुरक्षित रहती है, समय व लागत की बचत भी होती है और ब्रॉडकास्टिंग की तुलना में समान गहराई पर बुआई होने से अंकुरण व उत्पादन बेहतर होता है। हालांकि इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी पर निर्भरता बढ़ सकती है, तो अंततः हम वैज्ञानिक खेती जिसे हम सबसे प्रभावशाली पद्धति मानते हैं, जिसमें कि उन्नत किस्में, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, बीज उपचार, उचित दूरी पर कतार वृद्ध बुआई, समय पर सिंचाई, खरपतवार व कीट प्रबंधन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। इससे पौधों की संतुलित वृद्धि, अधिक फलियां, उच्च उपज तथा बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होता है। इसलिए अधिक उत्पादन और लाभ की दृष्टिकोण से मसूर की वैज्ञानिक खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है।
0: मैम, जैसे कि आपने बताया कि मसूर की जो खेती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो अब आप ये बताइए कि हम किस तरीके से मसूर की वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं और किस तरीके से वैज्ञानिक खेती से हम अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ पा सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरीके से खेत का चयन करेंगे और तैयारी कैसी करनी चाहिए।
1: देखिए, मसूर दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, लेकिन हल्की मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। खरीफ फसल या धान की कटाई के बाद गहरी जुताई करें, कल्टीवेटर से मिट्टी को भुरभुरी बनाकर पाटा लगाएं। खेत समतल और नमी युक्त होनी चाहिए ताकि अंकुरण अच्छा हो सके।
0: और मैम, बुआई का सही समय क्या होता है?
1: बुआई का सही समय, जैसे असिंचित क्षेत्रों में बुआई का जो सही समय है वो है 10 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और सिंचित क्षेत्रों में बुआई का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। और देर से बुआई करने पर दाने छोटे रह जाते हैं और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए सही समय पर बुआई ज़रूरी है।
0: मैम, सही समय के साथ उन्नत किस्म भी बहुत ज़रूरी होता है, तो कौन कौन सी उन्नत किस्म है जिसे किसानों को अपनाना चाहिए?
1: छोटे बीज वाली किस्में जैसे पूसा अगेती मसूर, जिसे हम L4717 के नाम से भी जानते हैं, और IPL 316 और Hull 57, अब बड़े बीज वाली किस्में जैसे IPL 220, ये सारी किस्में रोग रोधी हैं और अधिक उत्पादन भी देती हैं।
0: तो किसान भाई बहन बीज की क्या मात्रा लें और किस विधि से बुआई करें?
1: देखिए, छोटे बीज वाली जो किस्में हैं, इसमें जो बीज मात्रा है या बीज दर है वो होना चाहिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर बड़े बीज वाली किस्में हैं तो उसमें जो बीज दर होना चाहिए वो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसमें कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और अगर विलंबित बुआई हो रही है तो उसमें कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें और बीज गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
0: मैम, कृषि वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि बीजोपचार बहुत ज़रूरी है, तो मसूर में बीजोपचार कैसे करें और ये क्यों ज़रूरी होता है?
1: मसूर में बीजोपचार अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाता है तथा फसल को प्रारंभिक अवस्था में मृदा एवं बीज जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले बीजों का रासायनिक उपचार करना चाहिए जिसमें थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या साफ जो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण होता है जिसे हम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करते हैं। ध्यान रखें कि कार्बेंडाजिम का प्रयोग अकेले ना करें, केवल अनुशंसित मिश्रण का ही उपयोग करें। रासायनिक उपचार के बाद बीजों को छाया में सुखाकर जैविक उपचार करें जिससे जैसे कि राइजोबियम कल्चर 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज के दर से, और इसमें हम PSB कल्चर का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु बोलते हैं, समान मात्रा में प्रयोग करें जिससे PSB यूज़ करने से इससे ये मदद मिलती है जिससे फॉस्फेट पौधों को आसानी से उपलब्ध हो सकता है, और साथ ही मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। इन उपायों से उकटा रोग सहित अन्य बीमारियों से बचाव मिल सकता है और बेहतर अंकुरण प्राप्त होता है, मजबूत पौध स्थापना तथा अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है।
0: मैम, किसान भाई बहनों के मन में एक और सवाल होता है, एक और परेशानी होती है कि खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें, तो आप ये बताइए।
1: इसके लिए हम 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं, साथ ही 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, और अगर सल्फर की कमी वाले क्षेत्रों में 20 किलोग्राम सल्फर दे सकते हैं, और जिंक और बोरॉन की कमी होने पर 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट और उसके साथ 10 किलोग्राम बोरेक्स मिक्स करके दे सकते हैं।
0: और सिंचाई कब करनी चाहिए?
1: मसूर प्रायः ही असिंचित क्षेत्रों में होती है, बुआई से पहले हल्की सिंचाई देना लाभकारी है। नमी की कमी होने पर 40 से 45 दिन बाद एक सिंचाई करें, अधिक सिंचाई या जल भराव से फसल को नुकसान भी हो सकता है।
0: मैम, फसल के साथ अक्सर खरपतवार उगाते हैं, तो मसूर के फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है?
1: इसके लिए समय वृद्ध निराई गुड़ाई और रसायन प्रयोग किया जाए तो खरपतवार नियंत्रण संभव है। प्रमुख जो इसमें खरपतवार हैं वो हैं मोथा, दूब, बथुआ, मिसिया, वन प्याजी। इसके लिए पेंडीमेथिलीन 30% EC 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई के अगले दिन 400 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बुआई के बाद 50 दिन तक खेत खरपतवार मुक्त रखें, और हाथ से निराई गुड़ाई भी उपयोगी है।
0: और मैम, किसान भाई बहन मसूर के फसल में रोग प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और इसके क्या उपाय हैं?
1: इसमें जो मुख्यतः रोग हैं जैसे रतुआ रोग, उकटा रोग और शुष्क मूल विगलन, तो इसके लिए रतुआ रोग के लिए जो प्रबंधन है कर सकते हैं वो है मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करें, और उकटा रोग के लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करें, और शुष्क मूल विगलन के लिए समय पर बुआई और उचित नमी खेतों में रहना लाभकारी हो सकता है।
0: मैम, और भी कोई अन्य तकनीक जो किसान भाई बहन अपना सकते हैं?
1: जैसे फसल चक्र अगर इसका इस्तेमाल करें तो मसूर में मोस्टली तीसी या अलसी या अन्य फसलों के साथ मिलाकर बौना रोग प्रबंधन में ये बहुत सहायक है, सहायता मिल सकती है। और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे खेत में अविघटित कार्बनिक पदार्थ ना छोड़ें, और जब फलियां पक जाएं तभी भूरे रंग की हो जाएं तभी कटाई करें।
0: तो ये कुछ चीज़ें अपनाकर किसान भाई बहन अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन और तो किसान भाइयों और बहनों, यदि आप समय पर बुआई करते हैं, उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और बीजोपचार करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और खाद का सही ढंग से प्रबंधन करते हैं, तो मसूर के पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि आप पा सकते हैं। तो ये केवल न आपकी आय बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखता है। मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू उमा।
0: दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए बने रहें। हम हैं क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन पीएच, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया, उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस तकनीक इत्यादि का यूज़ करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी ये चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के ज़माने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ज़मीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
12: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
14: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
15: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
16: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
15: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
16: आपकी सेहत की बातें,
15: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
16: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
15: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
16: वो कहाँ पर?
15: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
16: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
15: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हिम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियाँ लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें यह नहीं होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएं लगातार आम तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है, आमतौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है, तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं, तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो, आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खास तौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है। और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खास तौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना।
तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखेगा। तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे, तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा

0: तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएँ, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैविक।
5: या है आप चिंतित अपने फसल

0: की सुरक्षा को लेकर।
1: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
2: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आजकल क्या करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग नाइट्रोजन जो नेत्रजन या यूरिया के हिसाब में आप लोग देते हैं उसका तो प्रयोग भरपूर करते हैं, लेकिन फास्फोरस, पोटास या सल्फर की मात्रा में कम डालता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, मिट्टी में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी भी कमज़ोर होता है और आपका पौधा भी कमज़ोर होता है। आप जो उपज आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धान में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, संतुलित पोषक तत्व मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना मात्रा में है, और ये सुविधा हमारा किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व तो कम है और कौन सा पोषक तत्व तो उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व तो देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है आप लोग ज्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है आपको जितना जरूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डाले तो कितना डाले, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वेराइटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर और अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके मिट्टी को परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे अगर धान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस जो पोषक तत्व उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं धान के रोपाई कर रहे हैं तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए। और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टीलरिंग होता है, टीलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए। और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट या DAP से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय उसके पहले बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, मतलब पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए इसको अगर हम लोग इसका निदान करें तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसको देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, ये सब का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फॉस्फोरस पोटास दे देना चाहिए और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत ज़रूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है, जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर भर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन भर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं, इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60 से 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को एक हेक्टर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसका एक सोर्स है जो कि हरी खाद में। और एक हुआ सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पोटाश भी मिल सकता है, जैसे हुआ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है फास्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज करेंगे तो हमारा फास्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट भर्मी कंपोस्ट इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जैसे हुआ कि नाइट्रोजन बोले हैं कि 3 बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम 3 बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका 3 हफ्ता या 4 हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टिलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिक इनिशिएशन, उसका पहले एक बार, तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फास्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए, लेकिन पोटास को अगर हम 2 बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ पीआई या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा जहाँ पर धान के बाद व्हीट, धान के बाद गेहूँ, धान के बाद गेहूँ करते हैं वहाँ पर जिंक की कमी महसूस होता है, तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहाँ पर उसी फील्ड में यूज करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
9: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक खास विषय को लेकर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा सर हैं, और आज का जो टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है रबी फसलों की जैविक खेती। तो आज इससे संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद
9: डॉक्टर साहब। जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले ये जैविक खेती होता क्या है उसके बारे में जान लें।
10: बिल्कुल सही। ऐसा है कि जैविक खेती का अभिप्राय होता है विषमुक्त खेती, यानी ऐसी खेती जिसमें है किसी तरह के ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एक्चुअली देखिए, हरित क्रांति के बाद हम उत्पादन निश्चित रूप से हमारा बढ़ा है, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अन्य फसलें हैं, उसमें हमारा उत्पादन बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा रासायनिक उर्वरक है या कीटनाशी है या व्याधिनाशक रसायन है, इनका प्रयोग भी काफ़ी बढ़ा है। और इसके चलते हुआ ये है कि हम बीमारियों का बड़ा ही प्रकोप बढ़ा है। यहाँ पर मैं बताऊँ कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी इन रसायनों के कारण होता है। यहाँ से पंजाब से एक ट्रेन चलती है, लोग उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रसायनों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो रसायन के ज़्यादा प्रयोग के कारण उसके जो हमारे खाद्यान्न हैं, या यहाँ तक कह लें कि जो चारा है, जो जानवर हमारा खाता है, उसमें उसकी काफ़ी मात्रा आ जाती है, काफ़ी अंश आ जाता है। और उसको जब हम खाते हैं तो कई तरह की बीमारियाँ, चाहे नस संबंधी बीमारी हो, मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो, हृदय संबंधी हो, किडनी संबंधी हो, बहुत तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इसीलिए आज एक बार पुनः लोगों को ध्यान इस बार आया है कि क्यों नहीं हम रसायन विहीन खेती करें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कि हमें बीमार ना होना पड़े। अब मैं बताऊं कि हमारे देश में तो ठीक है आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं जैविक के उत्पाद पर, लेकिन आज जो हमारे दूसरे देश हैं जहां पर पैसा है वह चाहते हैं कि हमें काफी मिले। तो जो किसान हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें उतने ही उत्पादन करके, तो वह यदि जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप में उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अब मैं, आपका प्रश्न था कि जैविक खेती है क्या, तो हम इसको बड़ा संक्षेप में किसान की भाषा में ये कहें कि जो रसायन विहीन या विषविहीन खेती है, यानी हम उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन भी करेंगे तो ऐसे चीजों के माध्यम से करेंगे कि जिससे कि किसी तरह का उसको हानि ना पहुंचे, हम कीट का भी प्रबंधन करेंगे तो ऐसे ही चीजों के माध्यम से करेंगे जिससे हमें हानि ना पहुंचे, साथ ही साथ हम यदि कीट प्रबंधन भी करते हैं तो उसी ढंग से करेंगे, यदि हम खरपतवार नियंत्रण ही करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण भी चाहे मैनुअल करें चाहे ऐसे विधि से करेंगे जिससे कि उसका दुष्प्रभाव, उस रसायन का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं हो, क्योंकि आप जानती हैं आजकल खरपतवार नाश करने के लिए बहुत तरह के रसायन का प्रयोग होता है, कीट के नियंत्रण के लिए, व्याधि के नियंत्रण के लिए बहुत तरह के रसायन बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है।
9: जी, तो अगर इसके वैश्विक बाजार की हम बात करें तो जैविक खेती का वैश्विक बाजार अभी कितना बड़ा है और आगे इसके बढ़ने की कितनी संभावना है?
10: बहुत समसामयिक आपने प्रश्न किया। ऐसा है, देखिए यदि वैश्विक बाजार की बात करें तो ये अभी लगभग 64 खरब रुपए का बाजार यहाँ पर है वैश्विक बाजार, और उम्मीद ये की जाती है कि 2025 तक 164 खरब रुपए का बाजार हो जाएगा। अच्छा। यानी कि काफी स्कोप है कि हम अपने उत्पाद को बेच सकें और उससे हम पैसा कमा सकें। देखिए यदि आप सिंपल एक लौकी की ही बात ले लें, कद्दू की बात ले लें, तो लौकी कद्दू यदि आप सीधे रासायनिक विधि से पैदा करते हैं, यदि उसका 10 रुपया कीमत है, तो उसी को यदि आप जैविक विधि से उत्पादन करते हैं तो आप उसका 2 गुना 3 गुना यहां तक 10 गुने तक आप उसका फायदा कमा सकते हैं। लेकिन अब दो तरह से आप बेचते हैं, एक तो लोकल बाजार में बेचते हैं तो वहां पर उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप सर्टिफिकेशन करवा लिए हुए हैं कि आपको यह है कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है, जैसे एपडा या बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको इसका सर्टिफिकेशन करती है, तो आपको सर्टिफिकेशन यदि हो गया हुआ है तो उससे आप और ज्यादा कमाई प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप काफी ज्यादा इसका वैश्विक बाजार है। यदि हम 15-16 की बात करें तो हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो 2.63 लाख टन जैविक उत्पाद निर्यात किया गया और जिसकी कीमत लगभग 298 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हम अभी ही इतना ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। यदि 2017-18 की बात करें तो 35.6 लाख हेक्टेयर पर हमारी जैविक खेती होती थी जिससे लगभग 17 लाख टन जैविक उत्पाद पैदा होता था और यह दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं तो किसानों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, किसान भाइयों एक चीज बताओ कि यदि एक मिठाई का दुकानदार है, वह जलेबी और समोसा बनाता है, यदि उसका पूरा नहीं बिकता है तो दूसरे दिन यदि उसको अपने परिवार के लिए ले जाना होगा तो ले जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वह भी जानता है कि यदि बासी हम अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उसे वो बीमार हो सकते हैं। लेकिन हम किसान भाई कितने समझदार हैं कि हम यदि जानते हैं कि रसायन खाने से हम इतना ज्यादा हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसी रसायन को पैदा करके हम अपने लिए भी उत्पादन कर लेते हैं।
9: बिल्कुल।
10: और उत्पादन करके उसको अपनी पत्नी से, एक किसान कहता है कि मेरी पत्नी जाओ जरा इस जहर को मसालेदार बना करके ले आओ, और जब मसालेदार बना करके लाती है तो वह अपने बच्चों को बुलाता है कि आ मेरा बेटा, आ मेरा नाती, आ मेरा पोता, मेरे हाथों से इन जहर को खा करके जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाओ। इसीलिए किसान भाइयों आपसे मेरी एक सलाह है, एक मेरा निवेदन है कि भाइयों आप दूसरे के लिए भलो ही पैदा करें ना करें, आप यह चिन्हित कर लीजिए कि 10 कट्ठा जमीन जो है क्या कहते हैं हम इसी के लिए रखेंगे कि हम अपने लिए रसायन विहीन उत्पाद पैदा करेंगे और हम अपने बच्चों को बीमार नहीं होने देंगे। क्योंकि एक टाटा बिरला भी यदि कहता है कि हम जैविक उत्पाद खा रहे हैं तो उनको कोई कहता है कि जैविक उत्पाद है तब, लेकिन आप तो पैदा करते हैं, आप तो जानते हैं कि यह जैविक है या नहीं है, तो इसीलिए मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अपने लिए 10 कट्ठा, अरे कितना आप धान खाते हैं, चावल खाते होंगे 2-3 क्विंटल खाते होंगे, गेहूं 3-4 क्विंटल खाते होंगे, दलहन तिलहन 1-1 क्विंटल खाते होंगे, आलू 1-2 क्विंटल 4 क्विंटल की जरूरत होती होगी। आप यदि 10 कट्ठा जमीन यदि आप चिन्हित कर लीजिए और उसमें आप बर्मी कंपोस्ट या दूसरे जो जैविक पदार्थ हैं उसी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूपेण आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा और कम से कम आपके बच्चे तो बीमार नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए मेरा निवेदन है किसान भाइयों कि आप अपने लिए ये प्रण बना लीजिए, प्रण कर लीजिए कि हमको अपने परिवार में जैविक उत्पाद ही प्रयोग करना है, जैविक उत्पाद ही खाएंगे
9: जी। अगर डॉक्टर साहब अगर रवि फसलों की बात करें, उसमें दलहनी फसलों की हम बात करें, तो कैसे पोषक तत्व प्रबंधन हम कर सकते हैं?
10: बहुत आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया, क्योंकि देखिए जो जैविक खेती की बात करते हैं, फसल चक्र की बात यदि करें तो उसमें दलहनी फसल यदि आप उत्पादित करते हैं अपने फसल चक्र में, तो आपकी मिट्टी की उत्पादकता, उसकी उर्वरता स्वतः ही बढ़ती जाती है। और दलहनी फसल हम चूंकि वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नत्रजन का स्थिरीकरण करता है, और नत्रजन का स्थिरीकरण करने के कारण ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वह ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जो पौधों के लिए वह पोषक तत्व उपलब्ध हो। धान आप नहीं खाते हैं, आप धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं तब खाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल में है लेकिन ये पौधे के लिए किसी काम का नहीं है। तो यदि हम देखें तो उस नाइट्रोजन को यदि ऐसे रूप में बदल दें, नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में, तो वह पौधों को उपलब्ध होने लगता है। तो अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि यहाँ यदि हम रबी की बात करें तो दलहन तिलहन ये सब ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की आपने बात किया। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए देखिए आप गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए, जो हमारा विश्वविद्यालय बनाता है वो इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट बनाता है।
9: जी जी।
10: उसमें फास्फोरस भी ज्यादा है, उसमें गंधक भी ज्यादा है, और मैं आपको बताऊं सिर्फ गंधक वाला बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो 10-15% तो दलहन और तिलहन का उत्पादन स्वतः बढ़ जाता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आप बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते हैं खास करके इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट, तो मुश्किल से 2.5 से लेकर 5 टन प्रति हेक्टेयर का आपको प्रयोग करना है। साथ ही साथ यदि आपने अजोला का प्रयोग भी किया है तो इसमें नाइट्रोजन भी काफी मात्रा में रहता है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करें। अब ये जो है जैव उर्वरक, बर्मी कंपोस्ट, और साथ ही साथ कुछ बायोडायनेमिक खाद भी आया है, जैसे कि पंचगव्य का प्रयोग कर सकते हैं, काउपेट पिट का प्रयोग कर सकते हैं, नैपेड कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बर्मी कंपोस्ट में पोषक मान ज्यादा होता है, यानी कम मात्रा डाल करके आप उत्पादन कर सकते हैं, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, आप जैव उर्वरक का प्रयोग निश्चित रूपेण करें, साथ ही साथ जो जैविक खाद है जैविक खाद का प्रयोग करके उसके पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं।
9: जी, तो इस प्रकार आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं दलहनी फसलों में। और जैव उर्वरक की बात अभी कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो जैविक खेती में हम इसका कैसे प्रयोग करें? अभी आपने थोड़ी सी बातें बताई तो और कुछ हम जानना चाहेंगे।
10: देखिए ऐसा है, जैव उर्वरक यानी ऐसा जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए एक तो दलहन फसल में आप राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, आप गेहूं में प्रयोग करना चाहते हैं तो हाँ एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो एजोटोबैक्टर है या एजो स्पाइरेलम है, ये सब जो है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। और यदि फास्फोरस भी आपकी मिट्टी में कम है तो आप पीएसबी का प्रयोग कर सकते हैं, कई नाम से आता है फास्फेट का और कई नाम से आता है, तो पीएसबी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पीएसबी ये फास्फोरस देने का काम करता है, और ये जो हमने बताया राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरम, यह सब सब नाइट्रोजन देने का काम करता है। इसी तरह से अब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसकी भी आपूर्ति बढ़ाने के लिए, जैसे जिंक का है, जिंक ZMB करके, जिंक मोबिलाइजर के नाम से आता है, बाजार में आने लगा है, तो वह यदि आप करते हैं तो जिंक सबकी भी आपूर्ति कर सकता है। लेकिन अभी मैं मुख्य बात करता हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। पोटेशियम के लिए भी KMB आया है, पोटेशियम मोबिलाइजर। तो यदि इस सब का प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यह सब आपकी आपूर्ति वहां पर हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसका प्रयोग कैसे करें हम? जैसे देखिए यदि आप इसका प्रयोग करते हैं राइजोबियम का, तो राइजोबियम जैसे 200 ग्राम राइजोबियम ले लीजिए और 250 ग्राम गुड़ को 500 ml पानी में आप उसको घोल दीजिए, गर्म करके घोल लीजिए, फिर ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो गया उसके बाद 200 ग्राम उसमें राइजोबियम कल्चर डाल दिया, राइजोबियम कल्चर डाल करके 10 kg बीज के ऊपर उसको डाल दीजिए और ठंडे हाथ मतलब उसको आपने डाल दिया, डाल देने के बाद हल्के हाथ से उस बीज को मिला दीजिए, यानी कि उसको पर एक कोटिंग चढ़ जाए। ये कोटिंग चढ़ गया उसके बाद आप उसकी बुआई 2-3 घंटा पहले रखिए और उसके बाद छाए में ही उसकी बुआई कर लीजिए। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर एक और है, मान लीजिए कोई आदमी है जो कि इसका भी प्रयोग करता है, राइजोबियम का भी प्रयोग करता है और पीएसबी का भी प्रयोग करता है, और मान लीजिए सीड के उपचारित होने के लिए फफूंदनाशी वगैरह वगैरह नहीं लगे उसके लिए ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर रहा है, तो उसको कैसे प्रयोग करें? तो सबसे पहले इसमें FIR का प्रिंसिपल याद रखिए, यानी पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम, और सबसे राइजोबियम को सबसे लास्ट में, उसके पहले आपको पीएसबी का उपचार करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ट्राइकोडर्मा को उपचारित करना है तो ट्राइकोडर्मा को आप पहले उपचारित कीजिए, उसके बाद आप फॉस्फेट सोल्वराइजर से कीजिए, सबसे लास्ट में आप राइजोबियम से उपचारित कीजिए, और उपचारित करके हर एक के बीच में 1-1.5 घंटा का आप अंतराल रखिए। तो यह तो हो गया कि यदि आप बीज उपचार करते हैं तब, लेकिन बहुत आदमी है कि बीज उपचार नहीं करते हैं, इसमें बहुत सारी आपकी सब्जी की फसल भी है, जो सब्जी की फसल आप उसमें क्या कहते हैं, या तो कंद उपचारित करते हैं या आप उसका पिचड़ा उपचारित करते हैं, तो वहां पर क्या है कि यदि आप कंद का उपचार करना चाहते हैं तो वहां पर आप 2 kg राइजोबियम कल्चर ले लें, या जो भी एजोटोबैक्टर ही करना चाहते हैं तो एजोटोबैक्टर ले लें, और एजोटोबैक्टर या राइजोबियम कल्चर ले रहे हैं उसको लेकर के उसमें आपने कंद को भिगा दिया और उसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद आप निकाल करके 1/2 घंटा बाहर में रखिए, फिर छाए में उसका बुआई कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपको बिचड़ा उपचारित करना है तो बिचड़ा उपचारित करने के लिए आप 2 kg राइजोबियम कल्चर या जो भी आपका बायोफर्टिलाइजर है उसको 15 लीटर पानी में घोल लीजिए, और घोल करके उसके बिचड़ा का जो जड़ है उसको डुबा करके छोड़ दीजिए। अब 10-15 मिनट आप उसमें भिगा करके रखे, उसके बाद आप खेत में उसकी रुपाई कर देते हैं। बहुत किसान ऐसे हैं कि ये सब नहीं कर पाए, मान लीजिए वो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं, तो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा लगभग 5-6 किलो आपको कल्चर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उतना तो मान लीजिए किसान के पास नहीं होगा, तो उसका तरीका ये है कि आप 1-2 किलो आप उसमें कल्चर ले लीजिए, जो भी राइजोबियम कल्चर कर रहे हैं या एजोटोबैक्टर कल्चर कर रहे हैं तो वह आप कल्चर कर लीजिए, और उसमें आप 50 kg गोबर की खाद मिला दीजिए, और गोबर की खाद मिला करके इसको ढक करके रख दीजिए, उस पर हल्की सिंचाई कर दीजिए, और जो जूट का बोरा है उसे आप ढक दीजिए। ढक देने के बाद उसके बाद आप ढक करके कुछ दिन रखें, और उसके बाद आप क्या करेंगे तो उसको 5-10-15 दिन पर 5-10 दिन के अंतराल पर उसको पलट दीजिए थोड़ा बहुत और सिंचाई कर दीजिए, और 15 दिन के बाद जब आपका बन गया तो वो जितना आपका कल्चर था वह पूरे में फैल गया, उसमें है क्या जीवाणु है ना, तो वो जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरे में बढ़ गया, अब बढ़ करके उसके बाद आप खेत में प्रयोग कर दिए, तो यानी जो 2 ही किलो आपने कल्चर लिया था उसी से आपको 1 हेक्टेयर जमीन में हो जाएगा। तो इस ढंग से आप चाहे ट्राइकोडर्मा में प्रयोग करना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर करना चाहते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर करना चाहते हैं, चाहे पीएसबी करना चाहते हैं, तो ये इस ढंग से आप उसको फैला करके बढ़ा करके आप पूरे खेत में आप प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी लगेगी। तो ये तरीका है जिस ढंग से आप जो बायोफर्टिलाइजर है जैव उर्वरक है उसका प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं, चाहे बीज उपचार, लेकिन बीज उपचार सबसे बढ़िया है, बीज उपचार सबसे बढ़िया है, तो बीज उपचार करके कीजिए वो सबसे बढ़िया है
9: जी। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि रबी फसलों में जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और वैश्विक बाज़ार में कितनी इसकी मांग है वो बढ़ती जा रही है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो जैविक खेती करें, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि आप उसमें रासायनिक जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो अगर जानबूझकर आप ये गलती ना करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।
11: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
12: जी
11: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
12: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
11: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मॉलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, धमदा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जैसे पेड़ धैर्य से बढ़ते हैं वैसे ही जीवन भी समय के साथ खिलता है। प्रकृति को बचाइए क्योंकि यही जीवन को बचाने का सबसे सरल मार्ग है।
3: इस विचार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बेंगलुरु से जगदम्बिका और हेम सावेनी जी का।
2: माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं।
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
3: आपने आगे लिखा है, हमें उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग पूरा परिवार मिलकर इसे एक साथ सुनते हैं
2: जी।
3: बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों और प्रतिक्रियाओं के लिए।
3: आइए आज एक बार फिर से जानते हैं एक और आविष्कार की रोचक कहानी
2: जी। श्रोता मित्रों, आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अंदाजा लगाना है आज हम किस आविष्कार की बात करने जा रहे हैं, तो हो जाइए तैयार
3: जी। उसके बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सोचिए सोचिए। चलिए एक आसपास का हिंट आपको दे देते हैं। वो प्रायः डॉक्टरों की गर्दन पर लटका रहता है।
2: वो है स्टेथोस्कोप। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
3: क्या श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि इसका आविष्कार क्यों हुआ होगा? इसे पता लगाने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 200 साल पीछे, सन 1816 के फ्रांस में।
2: जी
3: श्रोताओं, तब तक चिकित्सा विज्ञान में यह समझा जा चुका था कि मरीज की तबीयत, रक्तचाप या स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए नब्ज देखना या हृदय की धड़कन को सुनना जरूरी है।
2: श्रोताओं, उन दिनों डॉक्टर आमतौर पर हर मरीज के सीने पर कान लगाकर हृदय की धड़कन सुनते थे, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से बहुत अटपटा था। फ्रांस के चिकित्सक थे रेने लेनेक। वे अक्सर सोचते थे, क्या हृदय की धड़कन सुनने का कोई और तरीका नहीं हो सकता?
3: श्रोताओ, वे अक्सर विचारों में डूबे रहकर इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। एक दिन की बात है, उन्हें अपने बचपन के दिनों का एक खेल याद आ गया
2: जी।
3: जब वे लकड़ी की कोई लंबी नली या ट्यूब लेकर उसके एक सिरे पर कुछ बोलते थे या हल्की खरोंच भी करते थे, तो दूसरे सिरे पर वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी।
2: फिर क्या था, उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने एक मोटे कागज की एक शीट को कसकर लपेटा और एक लंबी नली जैसी बना लिया। फिर उस नली का एक सिरा मरीज के सीने पर रखा और दूसरा सिरा अपने कान के पास।
3: और फिर ये हुआ कि वे उछल पड़े जब उन्हें रोगी के हृदय की धड़कन पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। डॉक्टर लेनेक ने इस उपकरण को नाम दिया स्टेथोस्कोप।
2: ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपेन यानी देखना या निरीक्षण करना। बाद में लेनेक ने इसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लकड़ी से बने नली नुमा उपकरण का इस्तेमाल किया।
3: बाद में इस पर बहुत बदलाव हुए। शुरुआती स्टेथोस्कोप आज के उपकरण से बिल्कुल अलग दिखता था। वो एक लकड़ी की कठोर नली जैसा था
2: जी।
3: लेकिन इस छोटे से उपकरण ने चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया।
2: अब परिस्थिति बदल गई। डॉक्टर केवल मरीज की नाड़ी या बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं थे, वे शरीर के भीतर पैदा हो रही आवाजों को सुनकर बीमारी के संकेत खोज सकते थे।
3: तो श्रोता मित्रों, समय के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी बदलता गया
2: जी।
3: लकड़ी की एक नली से आगे बढ़कर इसमें दो कानों के लिए नलियां, लचीली ट्यूब और छाती पर रखने के लिए विशेष चेस्ट पीस विकसित हुए। यानी स्टेथोस्कोप ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर की आवाज की भाषा सिखा दी।
2: हृदय की धड़कन, फेफड़ों से आने वाली सांस की आवाज, कभी कभी असामान्य ध्वनियाँ, इन सबको सुनकर डॉक्टर बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, हमें विश्वास है कि अगली बार जब भी आप किसी डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप देखेंगे, तो सिर्फ एक चिकित्सा उपकरण के रूप में मत देखिएगा, लगभग 200 वर्ष पुरानी एक कहानी दिखाई देगी।
2: सच है मेरे श्रोता मित्रों, कभी कभी किसी समस्या का समाधान किसी महंगी मशीन या बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। बस जरूरत है अवलोकन और निरीक्षण, प्रश्न पूछने की आदत और प्रयोग करने का साहस।
3: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी आज की ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। लिखिएगा जरूर। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द किस भाषा से आया है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो श्रोताओ, अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पड़ोसी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि एक अच्छे पड़ोसी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। संदेश दिया गया है कि हमें समाज में परस्पर सद्भाव और मेल प्रेम से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद यथासंभव करनी चाहिए।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी।

0: एक संत नदी में नहा रहे थे।
1: हर हर गंगे हर गंगे हरि ओ हरि ओ हरि ओ, हर हर गंगे हर गंगे हरि ओ हरि ओ हरि ओ।
0: उन्होंने एक बिच्छू को पानी में बहते हुए देखा।
2: अरे अरे बिच्छू, अरे।
0: उन्हें बिच्छू पर दया आ गई।
2: डूब जाएगा।
0: संत ने उसे हथेली पर लेकर पानी से बाहर निकालना चाहा। हथेली पर आते ही बिच्छू ने डंक मारा। संत का हाथ झन्ना गया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की बार बार कोशिश की।
2: अरे फिर चला गया।
0: बिच्छू हर बार डंक मारता और उनके हाथ से छूट जाता। संत लगातार कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल ही लिया।

0: किनारे पर खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने संत से पूछा,
1: बाबा आपने बिच्छू को क्यों निकाला? ये तो आपको बार बार डंक मार रहा था। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी।
2: बच्चे तुम ठीक कहते हो, तकलीफ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे खुशी भी है। मेरी थोड़ी सी तकलीफ से एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई, एक प्राणी की जान बच गई। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना, संत का स्वभाव है भलाई करना। बिच्छू ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता? मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता?

0: बालक सोचने लगा,
1: अरे बाबा ने एक छोटे से जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाई,

भले लोगों का तो काम ही है भलाई करना। किसी ने कहा भी है, भला वही जो बुराई के बदले भी भलाई करे।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी आपके मित्र अजीत
1: और विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
9: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद।
9: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
10: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
9: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
10: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी ना छोड़े ताकि डूबने या फंसने का खतरा ना हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे उचित स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
9: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
10: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
9: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें, वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुवाई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुवाई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे डॉक्टर अरुण कुमार झा सर से कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती को अपना कर हमारे किसान भाई बहन मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि अपनी सेहत को भी वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा सर का और उनसे जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। सर, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट BAU सबौर से, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसकी परिभाषा क्या है।
1: ऐसा है कि जो प्राकृतिक खेती है, कृषि की एक ऐसी प्राचीन और रसायन मुक्त पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन या रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों या बाहरी खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति के नियमों और स्थानीय संसाधनों, जैसे देसी गाय या देसी गाय के गोमूत्र, जो भी उनके गोबर या गोमूत्र होते हैं, उस पर आधारित होती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो उसी के प्रयोग के द्वारा हम इसकी खेती करते हैं।
0: जी सर। सर, अब दूसरा सवाल ये है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या महत्वपूर्ण अंतर है?
1: बहुत आपने एक समचीन प्रश्न पूछा, क्योंकि इसके लिए इसमें काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि आखिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो देखिए, बाहरी इनपुट के संदर्भ में मैं कहूं तो जैविक खेती में बाजार से खरीदे गए जैविक खाद, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहर से किसी भी प्रकार के खाद या दवा का प्रयोग उसमें अनुशंसित नहीं है, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रकृति और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। जो भी आपका फार्म है, उस फार्म पे जो कुछ आपको पैदा हो रहा है, उसी से आपको खेती करनी है। यह दोनों, एक तो महत्वपूर्ण इसमें अंतर है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है उसमें बाहर से भी जो रसायन मुक्त पदार्थ है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट कहीं और बनाते हैं तो उसका प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन जैविक खेती में नहीं। जैविक खेती में जो कुछ भी वहां पर बनता है, मान लीजिए वहां जो आपका देसी गाय है उसका जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उसी के उत्पाद हम बनाते हैं, जो भी जीवामृत, घन जीवामृत या जो कुछ भी उसके हैं, तो उसी का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, यदि लागत की बात करें तो जैविक खेती में बाहर के खाद खरीदने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाहरी चीजों पर कोई खर्च ही नहीं होता, कोई प्रयोग ही नहीं करना है, तो उस पर खर्च शून्य होता है, जिससे किसानों का लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। तीसरी बात, मिट्टी की जुताई की बात करें, जैविक खेती में खेत की जुताई, निराई, अन्य पारंपरिक कृषि कार्य किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में मिट्टी को जोतने, पलटने या खरपतवार हटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मल्चिंग और प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसमें आपको मिट्टी ज्यादा बढ़िया रहता है। और चौथी बात, प्रमाणीकरण की बात करें तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा सर्टिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है, तो आप प्रमाणीकरण के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये दोनों थोड़ा सा अलग हैं। तो यही मुख्य रूप से है, तो कई अंतर, लेकिन मुख्य रूप से यही अंतर है जैविक और प्राकृतिक खेती में। यदि किसान भाइयों को बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूं तो यही आप समझिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से जो उत्पाद बन रहा है, जो रसायन मुक्त है, जिसमें रसायन का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, उसका प्रयोग आप वहां कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है उसका प्रयोग कर सकते हैं बाहर से भी खरीद करके, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो आपका फार्म है, जो आपका क्षेत्र है, वहां पर जो कुछ आपने पैदा किया है उसी का प्रयोग करके उसकी खेती करते।
0: जी सर। सर, प्राकृतिक खेती के आधार क्या हैं?
1: देखिए, इसके मुख्य आधार दो ही हैं। एक तो देसी गाय के जो भी उत्पाद होते हैं उसी से हम इसकी खेती करते हैं, और दूसरी बात, देसी बीज पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है। अब देसी गाय की यदि हम बात करें तो देसी गाय में अब उससे जो गोबर निकलता है या गोमूत्र निकलता है, तो उससे हम कई तरह के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ या बीजामृत हुआ या दशपर्णी अर्क हुआ या नीमास्त्र हुआ या ब्रह्मास्त्र हुआ। तो यह सब जो आपके विभिन्न प्रकार के आपके जो उत्पाद होते हैं, अब जैसे बीजामृत है तो बीज के ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं बीजामृत, लेकिन जो जीवामृत है और घन जीवामृत है ये उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो हमने जैसे बताया दशपर्णी अर्क या नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र ये सब कीड़ा और बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन बनता किससे है, ये बनता है जो हमारे पौधे होते हैं जो हमने अपने फार्म में लगाए हैं उससे, और जो गोमूत्र है या जो कुछ वहां पर है तो उसी सब का प्रयोग करके हम इसका निर्माण करते हैं। तो यह मुख्य रूप से हमने कहा कि देसी गाय या उसके उत्पाद जो है उसका हम प्रयोग करते हैं, और इसमें प्राकृतिक खेती में हम देसी बीजों पर ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि आज देखते होंगे कि बहुत सारा सेंट हमारा वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा, बराबर लोग कहते हैं कि टेस्ट नहीं मिल पा रहा, तो बहुत सारी हमारी ऐसी धरोहर बीजें हैं जो कि काफी अच्छी हैं लेकिन उसका हम कह लीजिए कि उपयोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो देसी बीजों पर इसमें ज्यादा बल दिया जाता है।
0: जी सर, आधार के बाद अब स्तंभ के बारे में बताइए सर कि प्राकृतिक खेती के कौन कौन से स्तंभ हैं।
1: हाँ बिल्कुल, इसके मुख्य चार स्तंभ हैं। एक तो देसी गाय के गोबर या गोमूत्र से बनने वाले उत्पाद जिसके विषय में अभी हमने आपको कहा। दूसरी बात, सहफसली खेती की जाती है। सहफसली इसमें जो खेती की जाती है, जैसे कि मान लीजिए एक बड़े ऊंचाई वाला पौधा है, जैसे मान लीजिए मक्का ही है या धान गेहूं ही है, तो उसमें उसके बगल में जो हमारी दलहनी वाली फसल है उसको भी हम साथ साथ खेती करते हैं। उससे दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं वो दलहनी फसलें वहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, तो उससे जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है जो कि हमारे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है लेकिन जब वह उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमारे फसल के लिए काफी अच्छा होता है और काफी फायदा दे जाता है। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो यह जो हमारी फसल है वह फसल खास करके दलहनी फसलें, वह दलहनी फसलें नाइट्रोजन भी देती हैं। तो एक यदि हमने धान फसल लगाया उसी के साथ साथ सहफसली के रूप में हमने दलहनी फसल लगा दिया, तो एक तो पहली बात हमने कहा कि सहफसली का इसमें ज्यादा वल होता है, सहफसली पद्धति का हम उपयोग करते हैं। तीसरी बात है वापसा, वापसा का भी हम प्रयोग करते हैं और आच्छादन का भी करते हैं। अब वापसा के विषय में मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि इसमें क्या है कि यदि आप मिट्टी को देखेंगे तो इसमें क्या है 25% एयर होता है, हवा होता है, और 25% इसमें ये पानी भरा रहता है और 50% सॉलिड पार्ट होता है, यानी दोनों को यदि मिला दीजिए हवा पानी को तो लगभग 50% हो जाता है। तो अब क्या है कि इसमें हम मोटे तौर पर जो हमारी प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें हम मेड़ बनाते हैं और उसकी जो मेड़ की ऊंचाई है मेड़ के ऊपर हम फसल लगाते हैं और बीच में नाली में हम पानी का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है इसका वायु संचार ठीक ठाक रहता है, तो वायु संचार भी ठीक ठाक रहेगा, साथ ही साथ इस आच्छादन से जो सॉइल इरोजन हो रहा है सॉइल इरोजन भी हमारा कम होगा, और साथ ही साथ जो हमारे लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनकी भी संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो यह सब इसके फायदे हैं, इसलिए वापसा करने की बात है। वापसा कहने का मतलब यह है कि उसमें वायु संचार ठीक ठाक है। अब देखिए जो वायु है नीचे में यदि गया तो वायु संचार यदि ठीक ठाक है तो जो पौधे की जड़ें हैं उसका भी विकास ठीक ठाक होगा। बहुत सारे जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं जो कि ऑक्सीजन चाहती हैं तो उसमें वायु का संचार ठीक ठाक है तो वहां पर वो उसका भी विकास अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें फायदा है, इसीलिए वापसा करने की जरूरत है। और चौथी चीज हमने आपको बताया आच्छादन, तो चौथा पॉइंट है आच्छादन, तो आच्छादन पर भी हम बल देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बताइए आच्छादन क्या होता है और कितने तरह के आच्छादन होते हैं।
1: देखिए आच्छादन का पहली तो बात हम बताएंगे कि आज

0: चार पांच इंच की मिट्टी है उसको हम हल्की जुताई करते हैं, तो उससे उसका आच्छादन हो गया, तो वह आच्छादन हो गया तो इसमें वायु का संचार और सारी चीजें हो गई, तो उससे नमी का संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण इसमें थोड़ा सा ये योगदान करता है। जहां सजीव आच्छादन की बात है तो जो हम पौधा ऐसा लगाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को ढक करके रखे, और जो मिट्टी को ढक करके रखेगा तो वहां से जो हमने बताया सॉइल इरोजन और सारी चीजें, तो ये सॉइल इरोजन वगैरह वगैरह नहीं होगा, और साथ ही साथ इस आच्छादन के चलते वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं, चाहे बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक हैं, फंजाई हैं, एक्टोमाइसिट्स हैं या हमारे केचुए हैं, तो वह सब उस कम टेम्परेचर में बढ़िया से विकास कर पाएंगे, तो ये सजीव आच्छादन हो गया। और तीसरी बात हो गया कास्ट द्वारा आच्छादन, इवन जो आपके जो पुआल वगैरह वगैरह हैं या जो वो फसल के अवशेष हैं उसके द्वारा हम आच्छादन कर देते हैं, तो उससे भी जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उनका विकास बढ़ेगा और बढ़िया से हो पाएगा, तो यह हम आच्छादन करने से भी करते हैं। तो यह तो मुख्य बातें हैं जो कि आपको नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में ध्यान देना चाहिए, और यह यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय में, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, 3-4 साल में आप देखेंगे तो 3 साल में जो वहां लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा, लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, फास्फोरस आपके मिट्टी में बहुत है लेकिन वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या है कि वहां पर यदि फास्फेट स्टेबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ गया तो वह जो मिट्टी के फास्फोरस है उसको घुलनशील बना दिए, पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से पोटास मोबिलाइजर है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। एक मैं ताजुब की बात बताऊं कि जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर या पीएसवी कल्चर इसका प्रयोग किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे मिट्टी में कार्बन भी था और साथ ही साथ वहां पर नमी भी थी जिसके चलते वह खुद ब खुद बढ़ रहे थे, तो इसको हम अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूप से जो लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ेगी, और उससे फिर हम अपनी जो खाद्य सुरक्षा की बात है या पोषण सुरक्षा की बात है वह उसकी अवधारणा को हम संपुष्ट कर सकते हैं।
1: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हमें बताया प्राकृतिक खेती क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें, और एक और खास बात जो सर ने बताई कि कुछ जो हमारे देसी बीज हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य

0: केंद्र से संपर्क करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे आप सुनते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो जी हाँ, आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ज़रूरी बातें लेकर आए हैं, और मिट्टी की बात करते हैं हम हमेशा, और हमें अपनी मिट्टी को सेव करना है, उन्हें बचाना है, तो उनके पोषक तत्वों का ख्याल भी रखना होगा। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के आते हैं इसके जानकारी के लिए कि कैसे इस कमी को पूरा करें, कैसे पता चलेगा कि ये कमी हो गई है। तो इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपना विषय रखा है मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को पूरा कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
9: धन्यवाद मैडम।
4: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक, ये जो आपने बताया कि पोषक तत्व, ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं ये?
9: नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ, और जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक है किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो इसकी कमी को पूरा करने से पहले हम जानना चाहेंगे ये पोषक तत्व हैं तो किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी कमी के बिना जो हमारे पौधे हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे किसान बहनों और भाइयों, आप जानते होंगे, जैसे आप खेती बाड़ी करते होंगे, अपने खेत पर जाते होंगे तो आप बीज को लगाते हैं, बीज फिर अंकुरित होता है, फिर वो छोटे पौधे का रूप लेता है, फिर वो बीज वाले स्तर में आता है, फिर वह फल फूल देता है। तो अगर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मृदा में, अगर मिट्टी में कमी आती है तो ये अपना जीवन चक्र जो होता है, जहाँ मीन्स अंकुरित होकर होने से लेकर अपना फल फूल देने तक ये जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए पोषक तत्व बहुत पौधे के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है इसका ये मुख्य प्राइमरी मीन्स प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। इसका अगर इसकी कमी होती है तो पौधे जो हैं अपने अपना ऊर्जा जो ऊर्जा जो अपने लिए फूड बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, लाइक भोजन बनाते हैं जो सूर्य का प्रकाश है, वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। पौधे का जो जो सीडलिंग होता है, लाइक जो अपना बीज का अंकुरण होके अपने पौधे का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ बनाते हैं आप लोगों को भी ये पता होगा, पत्तियों में बनाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा प्रकाश लेते हैं तो उसमें अपना भोजन बनाते हैं, और उसी का ये इसमें ये जो है पोषक तत्व वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, और वो सूर्य ऊर्जा को लेकर, सूर्य के प्रकाश को लेकर भोजन बनाता है, जिसकी कमी से अपना जो पौधे हमारे हैं भोजन नहीं बना पाते हैं। इसकी ये कमी हो गई नाइट्रोजन की कमी से, ये पौधे में इसके असर पड़ेंगे। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पौधे का जो है जो हमारा उसका रंग होता है हरे रंग का होता है, हरे रंग ना होके पीलापन पे जाने लगता है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे जो होते हैं जो सीधे खड़े ना होकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वो जिनका स्टैंडिंग होता है ना पोजिशन, वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके कारण कमी होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और पोषक तत्व कमी और ये उत्पन्न कर देते हैं। और बात करेंगे हम फास्फोरस की, फास्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में भी ये प्राथमिक पोषक तत्व है, मीन्स इसकी कमी के बिना भी जो हमारे पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधे बेसिकली आपको जो फास्फोरस है, अगर फास्फोरस अगर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहेगा पौधे में, तो पौधे का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा से होता है। और इसके साथ साथ जो फास्फोरस हमें बीज का जो विमोचन होता है उसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को ऊर्जा संश्लेषण में हेल्प करता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, एवं इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं हमारे उसमें भी ये फास्फोरस जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारे जो जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हमारे जीन, हमारे डीएनए, तो पौधे भी तो सजीव है ना, उसमें भी होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं। ये अनुवांशिक गुण जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उसको फास्फोरस गवर्न करता है, उसको उसके लिए ये महत्वपूर्ण है जी। और तीसरी हमारी यहाँ पर पोषक तत्व जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसको किसान भाइयों एंड बहनों हमारे आप लोग, इसको हम बहुत अपने स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मिट्टी में हम इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, इसको मुख्य पोषक तत्व ना है, ठीक है नहीं है, बहुत सारे पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, ये भी हमारे अनुवांशिक स्तर, हमारा अनुवांशिक गुण है, उसको ये कंट्रोल करता है। इसका नाम है ये पोषक तत्व का जिंक। जिंक मुख्य पोषक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का कहने का मतलब हुआ हमारे किसानों, किसान बहनों भाइयों, इसकी ठीक है, इसकी मात्रा पौधों को बहुत कम में जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े में ही पौधे जो इसको लेकर अपने जीवन चक्र को अच्छे से अपना निभा लेते, अपने उनका जीवन चक्र अच्छे से चल जाता है, और अपने लाइक इनिशियल स्टेज से लेके वेजिटेटिव स्टेज से होते ही होते अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक अच्छे से ये अपने जीवन चक्र, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ये जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में, जहाँ पौधे जो अपने होते हैं भोजन बनाते हैं उसके निर्माण में ये मदद करता है, अनुवांशिक गुण को भी ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हमारे पौधे में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव स्टेज में समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाते हैं कुछ पोषक तत्व की कमी में, तो ये जो जिंक है ये बहुत सारे इंजाइम्स जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। कुछ इंजाइम्स की मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे ऑक्सिन, ये पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर जिंक की कमी होती है हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में, तो ये जो हमारे कुछ इंजाइम्स जो पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो उस लेवल पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इस पोषक तत्व की कमी के कारण। और यह जिंक प्रचुर मात्रा में पौधों को अवेलेबल हो पाता है तो जो भी इंजाइम्स हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं।
0: और ये तो बातें हो गई कि ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, अब हम बात करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व है इनका।
9: जी, जैसे मैंने आपको बताया ये पोषक तत्व के क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपकी आपकी जो दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल का भी मैंने इसका उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही मैंने दिया है। मैंने जैसे बताया, आपने पूछा किस तरह का पोषक तत्व है, तो मैंने बताया दो जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व है, और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर हम जानना चाहेंगे तो क्या है, मुख्य पोषक तत्व के बिना जो हमारे पौधे हैं अपन जीवन चक्रों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, और उनको वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे हैं, ठीक है उनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, बट उनको चाहिए होता है, उसका भी रोल है, उसका भी, जैसे मैंने बताया, जैसे जिंक ही है, जिंक भी अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको एक्टिवेट करता है। लाइकवाइज इसी प्रकार मैंने आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी बताया, इसके पौधे की दृष्टि से क्या इनका योगदान है। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो पौधे अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान बहनों एवं भाइयों, आपको ये पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी अपने खेत में, इतना मुझे तो भी जानकारी है, आप अपने खेत में कुछ नहीं डालते होंगे, तीन जो पोषक तत्व जरूर डालते हैं हर फसल, मतलब बात करें तो बहुत सारे फसलों के लिए आप ये पोषक तत्व का उपयोग जरूर करते हैं। ये पोषक तत्व हैं आपके, यूरिया आप जरूर डालते होंगे, उर्वरक की बात करें तो आप DAP जरूर डालते होंगे, आप MOP जरूर डालते होंगे, तो आपको ये पता है यूरिया किसका सोर्स है, यूरिया किसका स्रोत है। ये नाइट्रोजन जो मैं बोल रही हूँ, ये नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जो DAP है इसका पूरा नाम हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको नाइट्रोजन का भी नाइट्रोजन भी हमको प्रदान करता है और फॉस्फोरस भी प्रदान करता है, ये दोनों भी मुख्य पोषक तत्व हैं। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको ये भी किसका है, ये पोषक तत्व है पोटास का, पोटासियम जिसको हम कहते हैं, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं और इनका जो पौधे का जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके इसके बिना पौधे अपना अपने वृद्धि को, उनकी वृद्धि जो होती है उतनी सक्रियता से नहीं हो पाती है, पौधे का जो हमारा रंग होता है हरे रंग का वो नहीं हो पाता है, और हमारे जो बीज है, जो बीज अंकुरण है फॉस्फोरस की कमी हो तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, ऊर्जा का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है, जो उनके आनुवंशिक गुण को कंट्रोल करता है लाइक DNA RNA ATP जो ऊर्जा में प्रोवाइड करता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
4: और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन पोषक तत्वों की कमी की, तो क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
9: धन्यवाद मैडम ये प्रश्न के लिए। ये प्रश्न किसी की कमी को पूरा करने, जैसे ये पोषक तत्व हैं हमारा, जैसे हमारा टॉपिक था आज का नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक की कमी को, पोषक तत्व कमी को कैसे पूरा करें। तो किसी कमी पूरा करने से पहले हमें तो ये जानना पड़े ये कमी हो क्यों रही है। और ये किसान बहनों एवं भाइयों, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे जगह हैं, हर जगह की अपनी अपनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज़ कमी के लिए, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते यही फैक्टर है जिसके कारण ये कमी हो रही है, नहीं, बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें बताते हैं कि इसके कारण कमी होती है। अगर हम बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बहुत सारे हमारे प्रकार हो सकते, बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं कुछ तत्कालिक स्थिति के कारण भी ये कमियाँ आ सकती हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो हमारा कुछ एरिया है क्षेत्र है वहीं पर ये कमी आ रही है, और किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो कमी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको कहना चाहूँगी प्राकृतिक गुणवत्ता, मीन्स प्राकृतिक विशेषताएँ और जो गुणवत्ता जो मिट्टी वहाँ की है, जो विशिष्ट पर्टिकुलर जगह की जो है, पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है वहाँ पर की प्राकृतिक गुणवत्ता क्या है मिट्टी की, उसके कारण भी ये कमी आ सकती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपको फसल का प्रबंधन कैसे आपने करा है। अगर कभी फसल का प्रबंधन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी फसल को एक ही क्षेत्र पे बार बार आप उसी फसल को उगाएंगे तो जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। ये फसल का प्रबंधन इसलिए हम कहते हैं ना, एक ही क्षेत्र पर एक ही फसल को कई सालों तक हम नहीं उगाना चाहिए, हम इसलिए बोलते हैं हम क्रॉप चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं ना, फसल चक्र की हम बात करते हैं। हम क्यों सारे वैज्ञानिक हो गए हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी लोग हैं आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीसरा कारण हो सकता है कि वहाँ का टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का बोलने का तात्पर्य यह है वहाँ का स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, मीन्स कुछ आप देखते होंगे कहीं भी हमारी मिट्टियाँ कहीं उच्च स्तर पर रहती हैं, कहीं निम्न स्तर पर हैं, कहीं मिट्टियाँ हमारे दलदल स्थिति में होती हैं, ये हमारी टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत समतल स्तर पर हैं, कहीं की मिट्टियाँ ऊँची परत हैं उनकी जो है लाइक जो होती है ना ऊपर ऊपर वाले परत पे होती हैं, कोई निचले वाले परत पे होती हैं। तो ये जो हमारे हैं ना मिट्टियों का प्रकार हैं जिसको बोलते हैं लो लैंड हाई लैंड मिड लैंड में प्रेजेंट हैं उसके भी प्रकार इस टोपोग्राफी इस स्थलाकृतियाँ के कारण भी हमारे पोषक तत्व प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी अगर जो हमारे भूमि के ऊपर वाले परत हैं आप वहाँ पर देखेंगे उसकी कंपेरिजन आप लोअर जो हमारे निचली परत वाली है मृदी मिट्टी उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे जो ऊपरी वाली भूमि हमारी वहाँ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है कंपैरिजन टू आपके जो निचले स्तर वाले मिट्टी हैं। और चौथा पांचवा कारण आपका हो सकता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पोषक तत्व के बताने के लिए कि वहाँ पोषक तत्व की किस लाइक किस लेवल में प्रेजेंट है, किस रेंज में प्रेजेंट है। जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं, जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारे पानी में, हमारे वर्षा के पानी में घुलकर वो बह जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। अगर बारिश जितनी हमारे मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो रही है तो हमारे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे मात्रा में हमारे मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और पौधे वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं। और पाँचवा कारण आपका हो सकता है हमारे किसी तकनीक, आप कौन सी कृषि प्रथाएं को जो हमारे पहले जमाने की प्रथाएं हैं जो अभी जो हम तकनीक को उसका उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का कृषि तकनीक आप उपयोग कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे डिपेंड्स करते हैं कि वो जो हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को, मिट्टी में उपलब्धता को डिसाइड करता है। जैसे कि ये कृषि तकनीक अगर बात करें तो आप फसल का जीवन शैली कैसा है, फसल कौन सा चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पर कौन सा मुख्य पौधा मुख्य फसल कौन सा आपका है, और मुख्य फसल के अलावा आपका सब जिसको बोलते हैं सब क्रॉपिंग कौन सा आपने उसका चयन किया है वो भी बहुत डिसाइड करता है कि हमारा पोषक तत्व के वो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को वो बरकरार रखता है कि नहीं रखेगा। और छठा कारण हो सकता है आधुनिक कृषि तकनीक, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आधुनिक कृषि तकनीक ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे, क्योंकि हम आधुनिक कृषि तकनीक में क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लास्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेतियों की तरफ जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी बोले तो ज़्यादा हमें उपज, हमें किसी फसल का उपज ज़्यादा पाने के लिए कम समय में ज़्यादा उपज पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एक ना एक टाइम पे एक जाकर ये हमारे मृदा में हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लाएगा, तो उसको भी हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी हम खेती बाड़ी करें। कोई भी हमारा मौसम है, हमारा सीजन हो, और अगर फसल की आप चयन करें, इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है जिससे हम अपनी मिट्टी में हमारे जो नेटिव हमारे पोषक तत्व हैं अगर हम डालें या न डालें, हमारे मृदा में हमारी जो धरती माँ है उसमें बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बस उसको हम बर्बाद हम कर रहे हैं हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं जरूरी है, ज़रूरी है, बट उसको किस लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप जानते होंगे हर फसल के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक की तरफ से या कृषि अधिकारी की तरफ से आपको एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बताया जाता है, मतलब किस फसल के लिए कितना उर्वरक रासायनिक उर्वरक जाएंगे या जैविक उर्वरक जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों आप क्या करते हैं अपने, जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम जब प्रैक्टिकल खेती बाड़ी की बात करें, जब हम अपने किसान भाई खेत बाड़ी पर जाते हैं तो जितनी मात्रा में आपको डालना था, सपोज आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती के लिए आपको बता दिया गया कि 120/60/40 मीन्स NPK डालें, मीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम डालें, आपने इसका स्रोत रखा, इस उर्वरक का स्रोत रखा, यूरिया रख लिया, DAP रख लिया और MOP रख लिया, म्यूरेट ऑफ पोटास रख लिया, लेकिन इतना ना डालकर आप ज़्यादा डाल देते हैं कि आपको लगता है कि इस साथ ज़्यादा डालने से चाहे वहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही है, पौधों का विकास अच्छा से नहीं हो रहा, पौधों की वृद्धि अच्छी से नहीं हो रही है, तो आप इसका ज़्यादा मात्रा में डाल दें, तो ज़्यादा मात्रा में डालने से आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा मात्रा में डाल दे रहा हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी आएंगी, मेरी उपज बहुत ज़्यादा होगी जिससे हमें कुछ आय में आपको मुनाफा होगा। लेकिन क्या होता है, पौधों को जितना उनको उर्वरक जितना उनको पोषक तत्वों की जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, हमें जितना भूख लगता है, हमारे पेट में जितनी जगह होती है हम उतना ही खाते हैं ना, कभी कभी होता है हम ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर हम ज़्यादा खाते तो आपको भी ज़्यादा खाने का भी देखे होंगे दुरुपयोग क्या होता है, हमारे सर स्वास्थ्य पर क्या उसका हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, वैसे ही हमारे पौधे भी हैं, उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे। ज़्यादा डालने से क्या होता है, वो जो हमारे पोषक तत्व हैं पानी में मिलकर घुलनशील होकर वो लीच आउट हो जाते हैं और हमारे पोषक तत्व वो उनको पौधों को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये सभी चीज़ें हमें अपने अपने दिमाग में ये बातों को रखने हैं। और पांचवा कारण जैसे हो सकता है, छठा कारण मैं बोलूँ pH, आप जानते हैं pH हम करते हैं जैसे आप मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं ना, जिससे हमें मृदा में मिट्टी में पोषक तत्व क्या है उसका pH का लेवल क्या है वो हम जान पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारा कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट है, उपस्थित है, नहीं है, किसकी कमी है, कौन हमें प्रचुर मात्रा में है, किसकी उसके लिए हमें प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है, अगर कमी है तो उसके प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर pH का लेवल आप देखेंगे अगर ज़्यादा जाता है तो आप देखे होंगे pH का लेवल ज़्यादा होने से वहाँ पर जिंक की कमी हमें दिखने लगती है, जिंक की कमी हो जाती है उसमें मिट्टी में। और रासायनिक उर्वरक का भी मैं बता रही हूँ, जैसे रासायनिक उर्वरक आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमें हमारे जो हमारे नेटिव पोषक तत्व हैं, जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसकी कमी आने लगती है।
0: तो जी हाँ, ये कुछ लक्षण थे जिससे कि आपको पता लगता है और कि कैसे इसकी कमी हो रही है मिट्टी में। और अब इसकी कमी को हम पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दीजिए।
9: हाँ, अब ये इसी कमी, अभी तो हम लोगों ने जाना है किसान बहनों एवं भाइयों कि इसकी कमी क्यों हो रही है। और ये जितनी कमी मैं बताई आपको बिहार की दृष्टिकोण से बताई हूँ, और बिहार की ही दृष्टिकोण से अपनी मिट्टियों की इसमें जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आ रही है, उस पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकें। किसान भाइयों, हमारे जो आपके हैं, आपके जो लोकल रिसोर्सेस हैं, जिस लोकल हमारे जो स्रोत हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और आप उससे अवेयर भी हैं। बस वही होता है कि जैसे हम कुछ कामों को टालते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, जिसके कारण हमारे जो मृदा है, हमारा मृदा की उर्वरता चली जा रही है। मृदा की अगर उर्वरता जाएगी तो वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा, पौधों को प्राप्त नहीं होता पौधे की फसल अच्छे नहीं होंगी, उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। अगर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारे फसल जो है, फसल के जो हमारे उपज आते हैं वो हमें उसमें वृद्धि नहीं हमारी होगी। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए। जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जिंक की, इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। पहले किसी उपाय को मैं इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके खेत पर ही अवेलेबल है, आपके घर में ही अवेलेबल है, उसी चीज़ का पहले उसका करें। जैसे किसान भाइयों बहनों, आप करते होंगे अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, सपोज आपने कोई सब्जी ही उगाया, सब्जी उगाने का गोभी जैसे सबसे जो आपने उगाया, गोभी का फल तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, उसको उसका जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, चारे को भी उपयोग कर लेते हैं। चारा करते सही है, जिसके पास मवेशी है उसको चारा के रूप में प्रयोग करें वो भी सही है, क्योंकि चारा हमारे जो मवेशी है चारा खाएंगे तभी तो गोबर करेगा, गोबर भी हमारा बहुत अच्छा एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है हमारा। अगर आप नहीं करते हैं, जिनके पास मवेशी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अगर सब्जियां जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका जो अपना आपका मेन पार्ट है आपने उसको तोड़ लिया और जो उसका रेस्ट पार्ट बचा हो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में आप इसको काट लें और उसको काटने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिला दें, मिट्टी में लाइक प्लाविंग करते हैं ना, हम ट्रैक्टर से प्लाविंग करते हैं या कुदाल लेके फावड़ा ले लिया उसके वो मिट्टी में मिला देते हैं। और ये क्या हमारे सारे चीज़ क्या है, ये हमारे इसके बहुत जल्दी डिकम्पोज मीन्स वो विघटित हो जाता है मिट्टी में। हमारे जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के, हम बोले ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन आप देखे होंगे उसमें केचुआ, बहुत प्रकार प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियां उसमें रहती हैं, जो क्या करती है, ये जो चाहते हैं ना उनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड मीन्स भोजन का स्रोत होता है और उसको खाते हैं, और जिसके कारण ये जो क्या हमारे सब्जियां के जो सब्जियों या कुछ और फसल है ना उसके कारण वो उसको विघटित कर देते हैं। और ये जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो उपाय इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कहीं अगर गोबर गैस का प्लांट हो, नहीं भी हो, जहाँ भी है तो गोबर गैस बनने से गैस हम जब बना लेते हैं तो बहुत सारे उसके जो बाय प्रोडक्ट पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ जैविक खाद के रूप में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक और बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसको भी हम अपने मृदा में मिट्टी में मिला सकते हैं और इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चौथा कारण आपका हो सकता है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो आप कवर, जो कवर हम करते हैं ना, कवर क्रॉपिंग का बोलने का तात्पर्य है, कवर मीन्स जो जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर हमारे मिट्टी का, उसको अच्छे से कवर कर सके, जिससे हमारा जो पानी का भी होता है, जहाँ पानी कमी है तो क्या होता है जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी कमी होने लगती है। बहुत सारे हमारे जो फसल नहीं है जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वो उगने लगते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और जैसे और बहुत सारे ये जो हमारे कवर क्रॉपिंग है, नाइट्रोजन के जो उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं, ये हमारे कवर क्रॉपिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन कमी के लिए ये कौन से कवर क्रॉपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्रह्मासी है आप ईयर होल द ईयर मीन्स आप साल भर इसको उगा सकते हैं इस फसल को, और आपके नाइट्रोजन की कमी को आपकी मिट्टी में नहीं होने देता है। ये जो हमारे हैं, जो हमारे सालों भर उगते हैं फसल है, इनका नाम है गोल्ड हेम, आप गोल्ड हेम ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ढांचा लेते हैं, ये सब हमारे क्या है, कवर क्रॉप है। ये कवर क्रॉप को आप एक बार लगा दिए, ये ब्रह्मर्सी है, इसको थोड़ा आप प्रबंधन करते रहें, और इसमें क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है मीन्स जो नाइट्रोजन का इनका जो रूट पार्ट है ना वातावरण में जो हमारे नाइट्रोजन है उसका ये प्रबंध उससे हुए फिक्स करते हैं अपने जड़ में, इनमें नोडल्स बनते हैं और उसका फिक्सेशन करते हैं हमारे मिट्टी में, और जिसके नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस कमी को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी है, अगर इससे भी आपकी कमी नहीं पूरा हो पा रही है, जहाँ आपकी नाइट्रोजन की अगर कमी बहुत लो लेवल पर है, प्रजेंट है आपकी मिट्टी में, तो वहाँ पर और भी आप चाह सकते हैं, इंटीग्रेटेड में जा सकते हैं। अगर जैविक खाद से, जैविक खाद के प्रयोग से आपकी नाइट्रोजन कमी पूरा नहीं हो पा रही है, तो आप जा सकते हैं रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा ना करें आप, मेरा यही आप मानना है, उससे ज़्यादा प्रयोग हम ना करें। जैसे आप नाइट्रोजन कमी है तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उर्वरक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जैसे यूरिया करते हैं, जो भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड होता है उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे जो फसल चक्र आप अपनाते हैं, एक ही फसल को बार बार ना उगाकर फसल चक्र का अपनाएं। जैसे आपने धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, उसके बाद कोई दलहनी पौधों का आप उगाएं, या कोई हमारे तिलहन पौधे का उगाएं, दलहन तिलहन पौधे का उगाएं। दलहन पौधे का उगाने से क्या होता है, उसके जो हमारा जड़ होता है ना, उसमें जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जो हम रासायनिक खाद से डाल के जितना करेंगे ना, जो मान लो सपोज आप कहीं 120 केजी यूरिया डाल रहे हो पर हेक्टेयर, डाल रहे हो 120 केजी यूरिया पर हेक्टेयर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो और वहाँ दलहनी पौधा आपने लगा दिया, तो नाइट्रोजन हमारा जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है अपने जड़ में और उस कमी को, बहुत कमी को वहाँ तक उसको मिनिमाइज कर देता है जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 120 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर डाला है, अगर दलहन पौधे का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप फसल चक्र का जरूर अपनाएं और उस फसल चक्र में आप दलहनी पौधों का जरूर साल में एक बार या दो बार जरूर प्रयोग करें, और यही है इसके लिए। और जैविक खाद कंपोस्ट का प्रयोग करें, जो हमारे गोबर खाद उसका प्रयोग करें, हमारे केचुआ खाद का प्रयोग करें, जो भी आपके पास सब्जियों के, जो भी आपके फसल के कट्टे छिटे पार्ट होते हैं उसका आप उससे कंपोस्ट बनाएं और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें। ये सब इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के तरीके हो गए हैं। दूसरा हो सकता है फॉस्फोरस की कमी आती है, तो फॉस्फोरस कमी की भी पूरा करने के लिए आप जैविक खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद, उसमें भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सब डाल सकते हैं। कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो हमारा केचुआ खाद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस की कमी अगर ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक उर्वरक जो हैं, वो आपने नाम सुना होगा माइक्रो जो होता है हमारा माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स होते हैं। ये माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स क्या करता है, जो हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में जो हमारे नेटिव फॉस्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है। वो जो मतलब जो हमारे मिट्टी में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको लेने में पौधा जो है असक्षम हो रहा है, तो ये क्या करता है उसको, जो मतलब जहाँ वो उसको क्या करता है, जिस जहाँ वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है, तो इसको ये जो है हमारा माइक्रोराइजा ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करता है, मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म से एक्सचेंजेबल फॉर्म में लाता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मीन्स मोबिलाइजेशन का तरीका, मीन्स बोलने का मतलब यही है, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मैंने कहीं एक जगह मैं बैठी हूँ और मैं बहुत स्थिर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक डॉर्मेंट स्टेज में चली गई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कोई मुझे आया, मुझे कुछ ऐसा बात वाला मोटिवेशनल बात कहा चाहे कुछ भी कहा और मुझे एक्टिव स्टेज में ला दिया, तो जस्ट लाइक इसी जैसा है हमारा जो माइक्रोराइजा इनोकुलेंट से क्या करता है, ये फास्फोरस जहां हमारे नेटिव पूल में प्रेजेंट है और वो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, जहां से हम पौधे उसको उपलब्ध नहीं ले पा रहे, पौधे वहां से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करके एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। और तरीके हैं पौधे के लिए और फास्फोरस की कमी के पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं। आप इसके लिए बहुत सारे रासायनिक खाद भी यहाँ प्रयोग करते ही हैं, जैसे मैंने DAP के नाम बताया, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी कर सकते हैं। अमोनियम फॉस्फेट के भी प्रयोग से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन का भी उपलब्धता मिलता है, फॉस्फोरस का भी मिलता है। और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, इसकी भी हम प्रयोग करते हैं अपने फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। और मिट्टी में अगर फॉस्फोरस की कमी ज़्यादा आ रही है तो बोन मील, आपने इस नाम सुना होगा, बोन मील में भी डालने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में फॉस्फोरस कमी को ये पूरा करता है। और अब जिंक की बात करें, जैसे जैविक सामग्री जो भी हमारे होते हैं, जैविक खाद होते हैं, जैसे मैंने बोला गोबर खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो, बहुत प्रकार के हम जो खाद बनाते हैं हमारे, उसको डालने से क्या हो जाता है, जो फॉस्फोरस हमारे अनलॉक स्टेज, अनलॉक बोले तो जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होते हैं, उसको भी क्या कहता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेता आता है और पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है, ये जैविक जो हमारे खाद होते हैं। और जिंक की भी कमी है, जिंक की कमी के भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका भी आप समझे तो प्रकार ऐसा ही है, बट कुछ सोर्स अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ आपको बताया गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, केचुआ खाद डालो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। तो गोबर खाद या केचुआ खाद या कोई और भी कोई खाद हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं है जैविक खाद में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोटासियम ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है ये खाद डाल रहे हैं, तो इस खाद ये खाद भी उस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गोबर खाद में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी जिंक की कमी आ रही है, आप ना पोल्ट्री से बनी जो खाद होती है, जो हमारे मतलब जो भी पोल्ट्री जहाँ फार्म होती है उसके जो स्क्रीटा होते हैं, जो उसके गोबर खाद जो उसके गोबर होते हैं, जो उसके मल मूत्र होते हैं, उससे आप खाद बनाएं, उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक की कमी को वो पूरा करता है। इसके अलावा नीम केक, नीम तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम जो होता है जो हमारे नीम के पेड़ होते हैं, इस नीम से इनके लीफ से इनके ट्यूक से इनके फली से क्या करना है केक टाइप का बनाया जाता है और इसका डाला जाता है मृदा में। ये नीम केक भी जिंक की कमी को पूरा करता है। जैविक उर्वरक जैसे मैं बताई हूँ वर्मी कंपोस्ट, ये सभी प्रचुर मात्रा में आपकी जिंक को कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अजैविक अगर प्रबंधन की मैं बात करूँ, मीन्स कौन सा हम रासायनिक उर्वरक का डालें जहाँ अगर ज़्यादा कमी आ गई है, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जैविक प्रबंधन कर रहे हैं फिर भी आप जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है किसान बहनों और भाइयों, आपको अजैविक खेती की तरफ भी अजैविक प्रबंधन की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने फसल हमने जो लगाया है उसकी उपज अच्छी से लेनी है। और हमारे जितनी हमारी लाइक हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है भारत की, बिहार की, बिहार की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमें उनको भी हमें भोजन प्रदान कराना है, तो उस लेवल पे हमें अपनी खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी, फसल की उपज लेनी ही पड़ेगी। तो उस केस में हमें क्या होता है, जैविक अगर जैविक की बात करेंगे, जैविक प्रबंधन की बात करें तो नहीं हो पाता है, तो उसमें हमें क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोले तो आपको अजैविक प्रबंधन भी करने पड़ते हैं, जैविक प्रबंधन भी करने होते हैं। तो जिंक की जो कमी आ रही है तो उसके लिए अजैविक प्रबंधन के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक ये जिंक का बहुत अच्छा अजैविक स्रोत है, जो मिट्टी में जिंक की कमी आती है तो उसको ये पूरा करता है। और भी बहुत सारे जिंक खाद है हमारे, जैसे जिंक चिलेट्स के आते हैं, ये जिंक चिलेट्स भी एक अजैविक खाद है जो जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और पौधे को ये सीधा जिंक प्रदान करता है और पौधे को सीधा जिंक ग्रहण करने में या प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक की अगर कमी आ रही है तो पौधे पे आप डायरेक्ट जो जिंक जैविक जिंक का जो अच्छा अजैविक स्रोत है उसका फोलियर स्प्रे करते हैं, मीन्स उसका आप जिंक को आप पानी में घोल कर डायरेक्ट आप अपने पौधे के ऊपर, पौधे के पत्तियों पे या पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, जो जिंक की कमी को पूरा करता है। और यही सब जो हमारे हैं फसल चक्र, तो आपको सभी में अपनाने हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। जहाँ जरूरत पड़े आप जैविक खेत जैविक प्रबंधन करें, अगर इससे ज़्यादा इसकी कमी पूरा आप जैविक प्रबंधन से नहीं कर पाते हैं तो आप अजैविक प्रबंधन भी करें।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि मिट्टी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। तो अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं। और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है, वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: Missions by creatively adding story elements. C 2.1 and 2.2. Learning outcome, or LO, is understands flow of the story and compares it with friends' stories. Competency 2.2. Learning outcome understands the concept of storyboard. Competency 2.2. Learning outcome creatively changes order of situations to get a new story. Competency 2.2. Learning outcome works on building the scene together and not just one's ideas. Overall participation in class. All the learning outcomes to be assessed by teacher and self. Teacher's observations to be filled in the space given below. Other comments also to be mentioned in the given space. Chapter 7 ends here.
1: Basuri, you were just listening to this audiobook, Textbook of Arts for Grade 5. Narration, Tripti Upadhyay. Sound recordist, Amarjeet Sarkar. Production assistant, Vineet Kumar Sharma. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: Namaste class. TV Harega Desh Jitega ki class mein aapka swagat. Aur jaisa ki hum jante hain ki class mein hum sote hain to nuksan hamara hota hai. Is class mein aapko aur har deshvasi ko dhyan dena hoga kyunki TB kisi ko bhi ho sakta hai. Teacher ji.
3: Ji.
2: Please bataiye aaj aap kya naya sikhane wali hain.
3: Ji sir. Aaj ka subject hai टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान. टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है. दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल. साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी. उपचार चल सकता है और भी लंबा.
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना. तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें. इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं. टीबी हारेगा, देश जीतेगा.

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव की आज हम बात करें।

0: कि क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी है हमारे पशुपालक भाइयों को उनके पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए इस समय, ताकि वो रोग बीमारियों से दूर रहे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जो पशुओं को देखभाल और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के लिए, उनके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी, सबसे पहली बात है कि बारिश के मौसम हमारे किसानों के लिए, बारिश के साथ साथ चारों ओर हरियाली आती है जिससे हमारे किसानों का जो है मन प्रफुल्लित रहता है। लेकिन पशुपालकों के लिए बारिश का मौसम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र में, खास करके बारिश के मौसम में, हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे अगर आपके पशुशाला की छत की में पानी टपकता है तो उसका रिपेयरिंग पहले करवा लें। खास करके जल जमाव वाले क्षेत्रों में अगर निकासी की, जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो उसकी व्यवस्था पहले से आपको कर लेनी है। तथा अगर आपके आसपास जल जमाव होता है तो कोशिश करें अपने पशुओं को ऊंचे स्थान पर रखें, या जल जमाव बारिश में जब जल जमाव होता है उस, ताकि कीचड़ नहीं हो और आपके पशुओं को आप भींगने से बचाएं। अगर लगातार आपके पशु भींगते रहेंगे तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ आप अपने पशुओं को खिलाने के लिए जो भी आप सूखा चारा या जो दाना रखते हैं उसको रखने की जगह को भी सूखा रखना है, क्योंकि अगर नमी अधिक होगी, भींगेगा तो उसमें फफूंदी लगेगा, फंगस लगेगा, जिससे उसमें कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जिससे कई प्रकार की पशुओं में बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। और खास करके बरसात के पहले जो पशुओं में बचाव के लिए जो टीकाकरण सरकारी स्तर पर या अपने स्तर पर होता है उसको आपको लगवाना आवश्यक होगा।
0: जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में अपने आसपास या घर में पानी जमा नहीं होने देते, क्योंकि उससे मच्छर या अन्य बैक्टीरिया जो है वो पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार पशुपालक भाइयों को भी चाहिए कि पशु जहां पर रखते हैं आप, उस जगह को साफ सुथरा रखें, पानी जमाव ना होने दें, जल जमाव ना होने दें। डॉक्टर साहब, अब रोगों की बात करते, तो इस मौसम में कौन कौन से रोग हो सकते हैं पशुओं को और क्या बचाव का तरीका है?
1: खास करके यंग जो पशुओं में, वैसे पशु जो 3 साल तक के बाछी हैं, पाड़ी हैं, या जो गाय का बच्चा है जो तंदुरुस्त है, उनमें खास करके ऐसा देखा जाता है कि प्रायः 3 साल तक के उम्र के पशुओं में गलघोंटू या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, लंगड़ी या बीक्यू, एंथ्रैक्स या पिलभड़वा, ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में होती हैं। और खास करके अगर आपके पशुओं को आहार प्रबंधन में दिक्कत होगा, उनका इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होगा, तो ये बीमारियां होती हैं। और ऐसे भी ये बीमारियां जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं। तो एक पशु में होने के बाद इनका संक्रमण दूसरे में होता है और ये तेजी से फैलती भी हैं। इसलिए बरसात के मौसम में खास करके जो बीमारियाँ हैं, HS या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बीमारी, और एंथ्रेक्स या पिलबढ़वा, जिसमें कि आपके पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, खास करके पशु लंगड़ाने लगते हैं, और जो एंथ्रेक्स है जिसमें कि बिना कोई खास लक्षण दिखाए बहुत तीव्र ज्वर होता है और जब तक आपको कुछ समझ में आएगा तब तक आपके पशुओं की मृत्यु हो जाएगी, और जब मरने के पश्चात उनके जितने भी नाक से, कान से, मुंह से, मल द्वार से बिना जमा हुआ खून निकलता है, ये उसकी पहचान है कि इसमें एंथ्रेक्स हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको खास करके इन तीनों रोगों से बचाव के लिए हमको इन तीनों बीमारियों में, खासकर HSBQ या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर का और एंथ्रेक्स का, ये टीका सरकारी स्तर से या अपने व्यक्तिगत स्तर से भी हर एक जगह उपलब्ध है। इसकी टीका मॉनसून शुरू होने के पहले, अर्थात हमारे यहाँ जनरली 15 जून के बाद मॉनसून आउटब्रेक होता है, तो मई महीना के से लेके और जून के 15 तारीख के पहले आपको इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अपने पशुओं में अवश्य करवा लेना है, ताकि खास करके जो यंग पशु हैं, जो तीन साल तक के उम्र की बाछी हैं, बाछियां हैं, बछड़े हैं, उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आप अपने खास करके बाछे बाछियों में और पाड़ियों में इस तीनों बीमारियों से HS, BQ और एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीकाकरण करवा लें
0: जी।
1: इसके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में, जैसे जैसे आपने बताया कि चारों ओर जल जमाव होता है जिससे मक्खी का, मच्छर का, और ऐसे भी जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में नमी और गर्मी दोनों की अधिकता के चलते जो आपके पशुओं में चमोकन है, अठाइल है, किलनी है, जू है, मक्खी है, मच्छर है, इसके प्रकोप से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो परजीवी के चलते होती हैं या प्रोटोजोआ के चलते, जिसमें थलेरियसिस है, बेबेसियसिस है, या ट्रिप्नोसोमियसिस, या सर्रा, लाल पेशाब, इन बीमारियों की भी काफी अधिकता होती है। तो खास करके अपने, जैसा आपने बताया कि जल जमाव नहीं होने देना है, शाम के समय अपने पशुशाला में चारों ओर धुआं अवश्य करें जिससे कि मच्छर का प्रकोप नहीं हो, और समय समय पर अपने पशुशाला में पशुओं के शरीर पर जो बाह्य परजीवी से बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन या एमिट्राज नामक दवा का प्रयोग, एक लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा देके अपने पशुओं के शरीर पर इसको से धुलाई करें, और इसका छिड़काव अपने पशुशाला में भी करें, तो इससे आपके पशुओं में बीमारियां कम होंगी। और अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो ये जो संक्रामक बीमारियां हैं इनसे आप अपने पशुओं को बचाए रख सकते हैं
0: जी। तो ये कुछ रोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, और टीकाकरण से आप कैसे बचा सकते हैं, और दवाइयों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि अत्यधिक बारिश

सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, ना सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना? आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा समझेगा समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए, और ध्यान रखें कि लड़कों को ये जरूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है बहन है बच्ची है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है, हर पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 25 से 29 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से

70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 cm की दूरी पर 10 से 15 cm ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 cm ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें।
और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखे। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखे और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान न देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पर नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगें तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS-BQ-FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहाँ पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहाँ पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 700-452-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 700-452-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियाँ कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त RJ उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
0: मतलब उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
2: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो AI जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन न समझे, तो चीजें आसान हो जाएगी।
2: बिल्कुल, ये जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी बल्कि वो चीजें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं। तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें AI से हम पूछें, तो AI के पास अगर इस तरह के डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो AI की जो अपनी जो AI भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में AI से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो AI पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, AI आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही AI आपको बता देगा। और हम लोग भी AI आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AI आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में, अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है, तो इस चीज को AI बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब यह बारिश हो रही थी उस समय, तो आप AI के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सबके डेटा अगर आपके AI के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में AI आपको मदद करता है।
0: अच्छा, AI क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है AI हमें मौसम की सटीक जानकारी?
2: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो AI आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं, और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाव की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
0: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
2: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ, या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो एआई है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो एआई सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, मतलब और काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
0: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
2: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है। हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें। लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं, वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है, और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पर पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि AI की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है, और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
0: मतलब AI की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें AI की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है, और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और AI और कृषि मशीनें, ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
2: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि AI से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी AI आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है, और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में AI इनेबल्ड लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो AI कंट्रोल कर लेगा, और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा, और सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा, और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है, और AI जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में, और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुंचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
2: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम,

0: एआई चूंकि सारी चीजें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुँचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती हैं, या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए, एआई एक सुविधा एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पर लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न हैं तो आने वाला दिन आपका रहेगा, बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए, एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा, बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेजी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए।